बाबा आए हैं हम सभी को कर्मातीत बनाने। हम सब ये लक्ष्य रख लें, हमें कर्मातीत बनना है। सभी ध्यान से अपने को चेक करें, क्या हमें अपने लक्ष्य की स्मृति है या काम धंधे में इतने व्यस्त हो गए, योग नहीं लगता, मन परेशान रहता है। क्या इन सब संकल्पों के कारण अपने लक्ष्य को भूले रहते हैं? कर्मातीत होना है, अर्थात सभी विकर्मों को और विकारों को नष्ट करना है, करना ही होगा, क्योंकि वापिस जाना है, नहीं तो इसी कार्य के लिए बहुत कड़ी सजाएं प्राप्त होंगी। कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़ने वालों के लक्षण होंगे अंग अंग शीतल, कर्म इंद्रियां शीतल और सुगंधित। हमें अपनी सभी कर्म इंद्रियों को शीतल करना है, काम वासना की कर्म इंद्रियों को शीतल कर देना है। उनमें वासनाओं की अग्नि रहे ही नहीं, चित्त भी शीतल हो जाए, आंखें भी शीतल, कान भी शीतल, मुख भी शीतल, जिह्वा भी शीतल, बोल भी शीतल, सुगंधित, जो दूसरों के जीवन में भी सुगंधी भर दें, ऐसे बोल, ऐसी दृष्टि जो दूसरों के मन की दुर्गंध को समाप्त कर दे। तो इस सब के लिए बार बार हमें यह अभ्यास करना है कि मैं आत्मा देह से न्यारी हूं। जैसे जैसे हम देह से न्यारेपन की फीलिंग में रहते हैं, हमारी कर्मेंद्रियां शिथिल और शीतल होने लगती हैं, हम बहुत रिलैक्स होने लगते हैं। बाबा ने तो ये भी कह दिया है कि 1 घंटे की नींद का अनुभव 1 मिनट के अशरीरीपन से कर लेंगे। अंत में जब हम सभी सेवाओं में बहुत व्यस्त हो जाएंगे, जब हमें रेस्ट का भी समय नहीं मिलेगा, तब अशरीरी अवस्था हमें सच्चा रेस्ट का अनुभव कराएगी। तो हम अशरीरी होने की बहुत प्रैक्टिस करें, ये हमारी एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। इससे हम देह से दिनों दिन डिटैच होते जाएंगे, देह का आकर्षण समाप्त होता जाएगा, और जब देह के आकर्षण समाप्त हो जाते हैं तो संसार की हर व्यक्ति और वैभव के आकर्षण भी समाप्त हो जाते हैं। आत्मा स्वयं स्वयं में ही तृप्त रहने लगती है, संतुष्ट रहने लगती है। यही हमारी संतुष्ट मणि की एक बहुत सुंदर स्थिति होती है। दूसरा अभ्यास हमें करना है, मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर हूँ, परम पवित्र हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ, इस देह की भी मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूँ। ये बहुत गुड फीलिंग स्वयं को देनी है, मैं परम पवित्र हूँ, कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। और साथ साथ ये भी अभ्यास करना है कि मुझसे पवित्रता की सफेद किरणें फैल रही हैं, जो मेरे मस्तिष्क में जा रही हैं, पूरी देह में फैल रही हैं और अंग अंग को शीतल कर रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हम निरंतर करते रहेंगे। आज सारा दिन हर घंटे में हम 2 बार ये अभ्यास अवश्य करेंगे, मैं आत्मा हूँ प्रकुटी सिंहासन पर हूँ, इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, और मुझसे निकली हुई सफेद किरणें पवित्रता की या गोल्डन किरणें मेरे ब्रेन में फैल रही हैं, मेरे अंग अंग तक जा रही हैं, उन्हें रिलैक्स कर रही हैं, प्योरीफाई कर रही हैं, शीतल कर रही हैं। तो इस तरह हम
अंग अंग को प्रकाश देंगे, पवित्र वाइब्रेशंस देंगे और ध्यान देंगे, मुख से कटु वचन न निकलें, जीभ खाने पीने की आसक्तियों में न रहे, कान हमेशा व्यर्थ सुनने के लिए तैयार न रहें, आंखें देहधारियों को न देखने की इच्छा करें, देखें ही नहीं उन्हें, केवल आत्मा को देखें। ऐसा अभ्यास सारा दिन चलता रहेगा। ओम शांति।

0: भाई रुको भाई रुको, ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति, एक बाइक पे तीन है, ओए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टैंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। सड़क
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। कई बार हम यह सोचने लगते हैं कि आज हमारे लिए कोई अवसर ही नहीं बचा है कुछ करने के लिए, सफलता पाने के लिए, लेकिन यह गलत सोच है, एक निराशावादी सोच है। हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा। काम का अवसर मनुष्य के समक्ष हर समय उपस्थित रहता है। अवसर कभी भी समाप्त नहीं होते। जब भी कभी कुछ समाप्त होता है तो वह होता है उत्साह, दृढ़ इच्छा शक्ति और काम करने की भावना। यदि आपके मन में उत्साह है, दृढ़ इच्छा शक्ति व कार्य करने की भावना है, तो फिर क्या है, अवसर तो आपके सामने बिछा हुआ पड़ा है। आज के युग में जितने अधिक अवसर नव युवकों को आगे बढ़ने के लिए मिल रहे हैं, पहले तो कभी भी नहीं मिले। जरा सोचो, इस समय एक डॉक्टर या वकील, उनको जो फीस मिल रही है, इतनी फीस तो इन लोगों ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। और इन इंजीनियरों के वेतन को देखो, उन्हें कल्पना से भी कहीं अधिक वेतन मिल रहा है। आज कारोबार में जितना लाभ व्यापारी लोग कमा रहे हैं, इससे पहले तो इतना अधिक लाभ कभी नहीं होता था। आज आप लोगों के सामने मनोरंजन के कितने ही साधन सुलभ है। हवाई जहाजों में सीट नहीं मिलती, रेलगाड़ियों की उच्च श्रेणी फुल हैं, कारों की लंबी लाइनें सड़कों पर एक सड़क बनाती हुई नजर आ रही हैं। यह सब कुछ क्या है? ये सब खेल तो धन के ही हैं। इससे क्या यह सिद्ध नहीं होता कि लोगों के पास इतना अधिक धन आ चुका है कि वे मौज मस्ती की दुनिया में खो गए हैं? सिनेमा घरों पर हाउसफुल के बोर्ड, बहुमंजिला इमारतें। अब भी आप यदि कह रहे हैं कि अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस समय आपकी ही बुद्धि की कमी कही जाएगी। सच्चाई यह है कि इस समय प्रत्येक युवक के आगे बढ़ने के पूरे पूरे चांस हैं। हर एक के लिए अवसर उपलब्ध हैं। फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि नव युवकों की उन्नति के अवसर समाप्त हो चुके हैं? यह बात कहकर आप बड़ी भूल कर रहे हैं। हो सकता है ऐसी बात कहकर आप अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हों। अवसरों की कमी नहीं है, कमी है केवल योग्यता की। तो आइए अपनी योग्यताओं को इतना योग्य बनाएं कि अवसर स्वयं चल के अपने पास आए। इतना ही नहीं बल्कि हम स्वयं अवसर का निर्माण कर लें, उसकी प्रतीक्षा नहीं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि बेकारों की संख्या अधिक होती जा रही है, परंतु हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि इस बेकारी का सबसे बड़ा कारण उनकी अपनी ही अयोग्यता है। उनके पास बुद्धि की कमी है, शिक्षा की कमी है और ज्ञान की कमी है। कमी है योग्यता की, सबसे बड़ी कमी है आत्मविश्वास की। आप अपने ही जैसे भाइयों को काम करते देख रहे हैं, धन कमाते देख रहे हैं, जरा सोचो तो, क्या ये लोग धन और जीवन के अच्छे साधनों को पैदा होते हुए साथ ले आए थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनके पास जो कुछ भी आप देख रहे हैं, वह सब इनकी अपनी बुद्धि का ही कमाल है। इन्होंने अवसरों की तलाश का रोना नहीं रोया, इन्हें तो सब कुछ मिलता चला गया, क्योंकि इन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि हम ये सब कुछ पाकर ही रहेंगे। वे लोग आदमियों की भीड़ में गुम नहीं हुए, बल्कि अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे खूब ध्यान से देखते रहे। उन्हें अपने

लक्ष्य का अच्छी तरह पता था। यही सोचकर वे आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने निर्णय कर लिया था कि हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। अवसर मिले या न मिले, इससे उन्हें कोई वास्ता नहीं था। उन्होंने अपना काम जारी रखा और देखते ही देखते वे सफल हो गए। अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही उन्होंने चैन की सांस ली। अवसर उनके लिए उतना जरूरी नहीं था जितना कि मंजिल पर पहुंचना। उन्हें अपने आप पर दृढ़ विश्वास था कि वह एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच कर रहेंगे। जो लोग निराश हैं, आशा का दामन छोड़ चुके हैं, वे अपनी मंजिल तक कहां पहुंच पाएंगे? अच्छे पढ़े लिखे ज्ञान रखने वाले युवकों के लिए तो सारे द्वार खुले हैं। पहले अपनी कमजोरियों को दूर करें, फिर किसी दूसरे से शिकवा करें। दृढ़ निश्चय से ही भावनाओं की पूर्ति होती है। जीवन का रोना रोते रहोगे तो कोई पास भी नहीं आकर खड़ा रहेगा।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ऐसे लोगों के लिए सफलता के द्वार सदैव खुले रहते हैं जो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर प्रकार के संघर्ष के लिए तैयार हैं, जिनके पास निराशा नाम की कोई चीज नहीं है, केवल आगे बढ़ने की दृढ़ भावना है। यही भावना आपको सफलता के द्वार पर ले जाएगी। आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है, आपका दृढ़ आत्मविश्वास। जिस सफलता को आप बाहर तलाश करते हैं, वह सफलता तो आपके अंदर छिपी हुई है। आपकी सफलता आपके व्यक्तित्व और चरित्र पर ही आधारित है। आपकी सफलता उसी प्रकार आपकी आत्मशक्ति में छिपी हुई है, जिस प्रकार वट का विशाल वृक्ष वट के एक छोटे से बीज के अंदर छुपा रहता है। पहले अपना विकास कीजिए, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए, अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान को बढ़ाते जाइए, ताकि कोई आपकी इस कमजोरी को न पकड़ पाए, ताकि आप स्वयं को किसी से कमजोर महसूस न करें। यह बात याद रखें कि इंसान अपनी कमजोरी के कारण ही बहुत पीछे रह जाता है। अपनी कमजोरी को कभी भी दूसरों के आगे उजागर न होने दें, नहीं उसे अपने मन में महसूस करें। कहीं भी जाएं, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ यह समझ लें कि मुझ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, मैं हर काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं किसी से कमजोर नहीं हूँ, मैं हर परीक्षा में सफल हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, मैं हर काम कर सकती हूँ, मैं हजारों लाखों लोगों के सामने भाषण करके उनकी भावनाओं को जागृत करने की शक्ति रखता हूँ या रखती हूँ। बस फिर क्या है, आप सफल ही सफल हैं। आपका दृढ़ विश्वास ही आपको सफलता की मंजिल तक ले जाएगा। अपने मस्तिष्क पर बेकार का बोझ मत डालिए, उसे खुला छोड़ दें। जो अपने मस्तिष्क पर बेकार की चिंताओं का बोझ डाले रखते हैं, उनके आगे बढ़ने के द्वार करीब करीब बंद ही हो जाते हैं। इसीलिए मस्तिष्क पर चिंताओं का बोझ मत डालो, उसे हल्का रहने दो। जितना हल्का आपका मन होगा, उतने अच्छे विचार आप अपने मन में भर पाएंगे, और जितने अच्छे आपके विचार होंगे, उतना ही आपका लक्ष्य

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

इस समय आधुनिक युग चल रहा है। विज्ञान के बढ़ते चरण मानव को ऐसे ऐसे विचित्र आविष्कारों से परिचित करवा रहे हैं जिन पर हमारी बुद्धि विश्वास करने के लिए भी तैयार नहीं। इसे कुछ लोग विलक्षण साहस का युग भी कहते हैं। इस युग का यही प्रयत्न है कि हम ऊंचा उठें, मानव जाति अपनी उन्नति की सारी सीमाओं को पार कर ले। जिन सीढ़ियों से चढ़कर आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचना है वह आपसे दूर नहीं है। इस पूरे संसार को ही योग्य और बुद्धिमान व्यक्तियों की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति जो दृढ़ आत्मविश्वास के मालिक हों, जो आगे बढ़ने की बात ही मुख्य उद्देश्य समझे, जिनके मन में सदैव ऊंचा उठने की बात ही आती हो। ऐसे लोगों की तो हर जगह जरूरत है, उनके लिए हर और अवसर ही अवसर हैं, जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका साहस, आपकी इच्छा शक्ति, आपका विश्वास आपको आगे ले जाएंगे। इस नए दौर में लोग अवसर को नहीं योग्यता को पसंद करते हैं। उच्च कुल में जन्म लेने से ही लोग महान नहीं बन जाते, महान वही बनते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, जो परिश्रम है, जो मानवता के बारे में सोचते हैं, जो स्वार्थी नहीं होते। आज के युग में मानव जाति के लिए उन्नति के जितने द्वार खुले हैं उन्हें देखकर यह कहा जा सकता है कि जो लोग इनका लाभ नहीं उठा सकते वे सब के सब बेकार हैं, अभागे हैं। आज वह समय आ गया है कि बुद्धिमानों की हर स्थान पर जरूरत है। विज्ञान ने हमें जितना ऊंचा उठा दिया है उतनी अधिक भागदौड़ हमें करनी पड़ेगी। आगे बढ़ने की भावनाएं सबसे अधिक इस समय उन उद्योगपतियों में नजर आ रही हैं, जो विज्ञान के इस युग का पूरा पूरा लाभ उठा रहे हैं। ऐसे ही लोगों को तलाश रहती है उन योग्य व्यक्तियों की, जो उनकी भावनाओं के अनुकूल काम कर सकें। प्रत्येक देश को जरूरत है शासन को चलाने वाले केवल कुछ योग्य व्यक्तियों की, जो देश के हित को सामने रखकर परिश्रम करने वाले हों। तो आइए हम भी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को उतना योग्य बनाएं, उतना मेहनती बनाएं, उतना परिश्रमी बनाएं, जो हम भी खुद ऊंचे उठे और अपने देश को भी ऊंचा उठा लें। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। सहज स्वास्थ्य का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को लगता है कि कैसे विरोधाभासी नाम है ये, कि सहज और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए तो अनेक बड़े बड़े अस्पताल बनाए गए हैं, अनेक डॉक्टर्स सुपर स्पेशलिस्ट बनकर पढ़ाई करते हैं और सालों साल पढ़ाई करते हैं। कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है तो वो 4 साल करता है, मगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई अगर आप करना शुरू करें तो आप जानते हैं कि डॉक्टरी की पढ़ाई बैचलर्स की डिग्री में इतने बड़े ड्यूरेशन के लिए पढ़ाई की जाती है। फिर उसके बाद डॉक्टर स्पेशलाइजेशंस की तैयारियां करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं और कितना सब कुछ स्वास्थ्य के बारे में पढ़कर लोगों को शफा देने के लिए मेहनत करते हैं। ऐसे में क्या सहज स्वास्थ्य संभव है? ये एक रोचक प्रश्न है, मगर यह भी बात सही है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो क्या हम डॉक्टर्स की मदद नहीं कर रहे हैं? हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर बोझ कम करने से हम एक तरीके से उन्हें बेहतर काम करने के लिए और उन्हें आराम देने का काम कर सकते हैं। मगर आज के वर्तमान परिस्थितियों में हम देखते हैं कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे चिकित्सक ओवरवर्क्ड हैं, उनके ऊपर काम का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? आइए सहज स्वास्थ्य में कुछ ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ स्वास्थ्य जगत के ही एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। आज मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर राहुल मोदी जी का। डॉक्टर साहब पेशे से एक ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। भारत के जाने माने प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब सर्वप्रथम तो हम ये बात समझते हैं कि व्यक्ति का बीमार पड़ना स्वाभाविक सी चीज है, ऐसा हम मानते हैं, और हम ये कहते भी हैं कि बीमार पड़ना हमारे हाथ में नहीं होता है। जब भी बीमारी की बात कही जाती है तो संस्कृत की वो उक्ति कही जाती है कि जन्म मृत्यु जरा रोग ही पीड़ितम कर्म बंधन ही, ये बात प्रार्थना में भी कही

0: जाती है, यानी जन्म मृत्यु जरा और रोग हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा भी लोग कहते आए हैं। अब हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं तो हम समझते हैं कि रोगों के कारण क्या हैं, कि ये अचानक आए हुए रोग नहीं हैं, रोगों के कुछ कारक हैं, ऐसा हम समझते हैं। तो विज्ञान की दृष्टिकोण से, आप मेडिकल साइंस की दृष्टिकोण से आप बताएं कि आप रोगों को कैसे देखते हैं, रोग क्यों हो रहे हैं, रोगों के कारक क्या हैं।
1: हम लोग दो तरह से रोगों को विभाजित कर सकते हैं। एक जो बाहरी जीवाणु या कीटाणु की वजह से हुआ, और दूसरा जो हमारे अपने शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वो अगर ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं या वो परेशान हो रहे हैं तो हम उसको दूसरे नंबर पे सोच सकते हैं। एक और बहुत बड़ा तरीका है, इसको कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे जा सकती है, और नॉन कम्युनिकेबल की मतलब एक व्यक्ति को है तो दूसरे व्यक्ति को वो नहीं हो सकती है। जैसे अगर किसी को थायराइड की परेशानी है तो बगल में कोई उसके बैठा हो जी तो उसको वो नहीं हो सकती, या किसी को अगर कोई हृदय मतलब कोई संबंध किसी को है, या सबसे कॉमन कहे कि किसी का पैर टूटा हुआ है तो उसके बगल में आप बैठ जाइए तो आपका पैर नहीं टूट जाएगा, एकदम कॉमन का समझा जाए है।
0: जी
1: अब दूसरी तरफ समझा जाए कि अगर किसी को खांसी है, छी छी छींके पड़ा है वो, तो आप भी कहते अरे भाई जरा रुमाल रख के छींको, अरे भाई जरा मुंह मुंह पे हाथ रख के छींको। हमें स्कूलों में सिखाया जाता था जब हम छोटे थे कि वेन एवर यू हैव टू स्नीज, या जब भी आपको छींकना है तो मुंह पर एक रुमाल रखिए या अपने दोनों हाथ को अपने मुंह और नाक के ऊपर रखिए कि उस बैक्टीरिया या आपके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं पूरे वातावरण में ना जाए। आप देखिए हमारे कितने जैन मुनि ये मानते हैं कि किसी जीवाणु को नुकसान ना पहुंचे या हमारे जीवाणु उधर ना चले जाए, वो अपने मुंह पर हमेशा एक कपड़ा रख के बोलते हैं या वो हमेशा एक मास्क पहन के बात करते हैं। तो जीवाणुओं से होने वाली बीमारी और जो बीमारियां जिसमें कोई भी जीवाणु इन्वॉल्व नहीं है, ये सबसे मेजर मतलब सबसे कॉमन तरीका है कि इसको हम डिवाइड करने का तरीका है।
0: जी, जब आप जीवाणुओं की बात करते हैं, एक तो चीज समझ में आती है कि जो चीज फैल नहीं सकती एक व्यक्ति से दूसरे की तरफ। अब उन बीमारियों को अगर हम थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर भी दें, तो जो फैलने वाली बीमारी है उसके बारे में लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखा करते थे, अभी भी रखते हैं। लोग कहते हैं नहीं भाई, उससे दूर रहो, वो थोड़ा बीमार है, आपको भी हो सकता है। कॉमन सी बीमारी चिकन पॉक्स इत्यादि ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें बच्चों को कहा जाता है कि भाई उसको चिकन पॉक्स है, उसको अलग से कमरे में रखेंगे। तो ये जो बीमारियां हैं, ये जो कीटाणुओं से फैल रहे हैं, ये जो जीवाणुओं से फैल रहे हैं, इसको हम कैसे देखें कि क्या क्या चीजें ये बीमारियां लाती हैं, इनको हम कैसे देखते हैं?
1: जो जीवाणुओं को नॉर्मली भैया बैक्टीरिया वायरस फंगस इन तीन चीज में या पैथोजेंस इन तीन चार चीजों में डिवाइड किया जाता है। बैक्टीरिया वो है जिसके अंदर अपनी कोशिका है, अपना न्यूक्लियस है, अपना सब कुछ है, और वायरस तो वो है जिसके पास अपना कोशिका तक नहीं, मतलब एक कोशिका है उसके पास अपना कोई व्यवस्था नहीं, वो दूसरे के साथ जुड़कर फैल जाता है। फिर पैरासाइट्स हैं जैसे केंचुए हो गए या और मलेरिया हुआ, ये सारी चीजें। हम एक चीज पे भैया और थोड़ा सा हम सब लोग को गौर करना चाहिए कि हमारा सपोर्ट सिस्टम, हमारा हेल्थ सिस्टम इतना, और जो नई दवाइयां हैं एलोपैथी में, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, वो इतनी अच्छी और कारगर हो गई हैं कि अब इन बीमारियों के बारे में हमको ज्यादा सुनने को ही नहीं मिल रहा है। जैसे टीबी, ट्यूबरक्लोसिस अभी भी है मगर उसकी दवाइयां इतनी अच्छी हो गई हैं। पहले क्या करते थे, ट्यूबरक्लोसिस के लिए सेनेटोरियम बनता था शहर से दूर खुले वातावरण में। आप देखिए उस समय भी कितना, जिसने भी सोचा था कि यार मालूम नहीं चल रहा ये बीमारी फैल सकती है, तो हमें इम्यूनिटी को बढ़ाना है, जीवनी शक्ति को बढ़ाना है, इसको खुले वातावरण में ले जाओ, जहां पॉल्यूशन ना हो, जहां अच्छा ऑक्सीजन मिल पाए, जहां खूब पेड़ पौधे हो, तो इसकी इम्यूनिटी बेटर हो जाएगी और इसका शरीर उससे लड़ लेगा। अब तब जब ट्यूबरक्लोसिस मिला तब ये लगा चलो भाई इसमें ये दवाइयां दी जाए, ये चार दवाइयां दी जाए या पांच दवाइयां या नई दवाइयां दी जाए, उससे ठीक से इसका रोकथाम किया जाए, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल। अब बहुत सारे रेजिम आ गए जिसमें, और बड़ी अच्छी दवाइयां आ गई जिससे आदमी ठीक हो जा रहा है। टाइफाइड भैया होता था, पूरा का पूरा मोहल्ला बीमार पड़ता था, गंदे पानी से हो रहा है, लोगों को बोला जाता था कि, मैंने खुद दूरदर्शन पे एड देखा है कि टाइफाइड फैल रहा है, आप पानी उबाल के पीजिए। हमको सिखाया जाता था टीवी में कि बाथरूम से आने के बाद साबुन से अच्छे से अपना हाथ धोइए, रगड़िए, अपने हाथ को साफ सुथरा रखिए, कृपया शौचालय का प्रयोग करिए। देखिए भारत कितना अच्छा विकसित हो गया कि पहले हम ये सब बातें करते थे, अब हम कहीं भी आपको टाइफाइड के रोकथाम के लिए, निमोनिया के रोकथाम के लिए, कॉलरा हुआ, कितना सुना था कि लोग बड़े बड़े धार्मिक जगहों पे एकत्रित हुए या फिर कहीं नदी किनारे एकत्र, वहां कॉलरा हुआ, पूरा का पूरा जनसंख्या बीमार पड़ गई। तो प्लेग भैया सुना ही नहीं होगा, पिछला लोगों ने भारत में एक शहर के बारे में सुना और उसकी वजह से उस शहर ने इतनी अच्छे से अपनी शहर की सफाई करी कि पूरा का पूरा आज वो बहुत विकसित शहर भारत का बन गया। ये उस शहर की, उसके नागरिकों की अच्छाई है कि वो एक बीमारी के लिए उसका नाम हुआ और एकाएक आज वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट क्लॉथ मार्केट एंड मैन्युफैक्चरिंग हब गुजरात का वो शहर पूरे देश में बने। तो आप देखिए, अब बैक्टीरियल बीमारियों की पाती एकदम खत्म हो गई। अच्छा, बैक्टीरिया के बहुत सारी बीमारियों का वैक्सीन भी बन गया, उनको ठीक भी कर दिया गया। बैक्टीरिया के बाद जो दूसरी जिन्होंने सबसे ज्यादा बीमार किया वो है वायरस। और वायरस भैया एक ऐसी गुत्थी है जिसे आज भी विश्व भर के डॉक्टर, विश्व भर के साइंटिस्ट, रिसर्चर्स उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे जो कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जिसका इलाज ढूंढ पाना असंभव है, वो कॉमन कफ कोल्ड फ्लू, मतलब सर्दी, जुखाम, खांसी और नाक बहन। मतलब कहा जाता है इसके अरबों वायरस से ये हो सकता है। और ये कहा जाता है कि अगर आपको एक बार एक वायरस से आप बीमार पड़ गए हैं तो दूसरी बार वो कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी उस वायरस के लिए बन जाती है। हमारा एड्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, पोलियो वायरस, जीका वायरस, ये सारी वायरल बीमारियां हैं। इसमें अभी सिर्फ एड्स के लिए वैक्सीन ठीक से डेवलप नहीं हो पाई है, नहीं तो बाकी अधिकतर जो हैं उनके लिए वैक्सीन तक बन गई है। और हम लोगों के लिए ये एक बहुत, साइंस ने, देखिए साइंस भी बहुत अच्छा डेवलप हुआ, उसने हम सबको इतना मजबूत किया, हमारी दवाइयां इतनी अच्छी हुई, हम खुद अच्छे हुए, बच्चों को कितने टीके लगने लगे कि बचपन में ही उस बीमारी से उनको बचाया जा सके। सो अब हम बहुत सारे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। फंगस से भैया बहुत सारी स्किन एलर्जीज और वो सब हुई। हाँ, पैरासाइट इन्फेक्शन से, जैसे कीटाणु आप मान लीजिए, उससे मलेरिया हुआ, ये अमीबिक डिसेंट्री हुई, तो बहुत सारी बीमारियां इन सब से हो गई। तो सबसे कॉमन फीचर या जो कॉमन चीज, अगर आपको किसी जीवाणु से आप बीमार पड़े हैं तो वो है सर्दी, जुखाम, खांसी और बुखार। ये चार चीज यदि आपको इसमें से कोई एक चीज मिल रही है या आपको दो चीज मिल रही है या सब कुछ चारों मिल रहा है, इस

0: ये चीज़ें जैसे आप कहते हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रायः देखते हैं कि हमारे आसपास हो रही है, और लोग उससे बचने के लिए कोशिश भी करते हैं कि अगर किसी को ऐसी बीमारी है तो उससे दूरी बनाए रखने की भी हम कोशिश करते हैं। और जैसे आपने कहा, आज दवाइयाँ सारी चीज़ों के लिए मौजूद हैं, तो हम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं, मगर फिर भी हम अपना प्रिकॉशन ज़रूर रखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या एक व्यक्ति जिसको सर्दी खांसी बुखार ये चल रहा है, वो छींक रहा है, अगर वो एक कमरे में 50 लोग हैं और 50 लोगों के सामने उसने छींका, तो क्या उसका असर सभी 50 के 50 लोगों के ऊपर होगा और सबके सब लोग बीमार पड़ेंगे, उनको भी सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा? ये भी एक प्रश्न उठता है।
1: जिनकी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, या जो उस बैक्टीरिया वायरस से पहले से भी बीमार पड़ चुके होंगे, उनको ये बीमार नहीं करेगा। या जैसे कहा जाता है कि किसी को सीवियर हेपेटाइटिस या एड्स हो गया है, या सीवियर डायबिटीज है, जिसकी खुद की इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, उसके बीमार होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। एक चीज और बोली जाती है कि अगर उस 50 आदमियों में जो बहुत छोटे बच्चे होंगे या जो बहुत बूढ़े होंगे, मतलब छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हो पाई है, और इम्यूनिटी डेवलप कैसे होती है, बीमार पड़ पड़ के या किसी, अच्छा एक मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि जो वैक्सीन लगती है उस वैक्सीन में क्या है। जी भैया, आप बता पाएंगे कि जो वैक्सीन लगाई जाती है उस वैक्सीन में क्या होता है? उस वैक्सीन में जो बीमार करने वाला कीटाणु या जीवाणु होता है, वही कमजोर कंडीशन में होता है जो लगा दिया जाता है, कि वो आपके शरीर की इम्यूनिटी को डेवलप करा पाए। अगर और कॉमन भाषा में समझें कि जब वो जीवाणु हमला करेगा तो सोचिए 10 लाख लोगों के साथ हमला करेगा, तो उस वैक्सीन में 10 लाख की जगह 1,000 आदमी होंगे जो हमला करेंगे, तो आप उन 1,000 के खिलाफ स्ट्रेटजी बना पाएंगे? वो कैसे हमला करता है, मतलब क्या उनकी प्रतिक्रिया और क्रिया प्रतिक्रिया कैसी होगी, इसके बारे में आपका शरीर सीख लेगा। तो वो उन 1,000 के ऊपर जो एक्शन रिएक्शन वो सीख लेगा, उनके खिलाफ इम्यूनिटी या उनके खिलाफ क्या हमको कैसी कोशिकाएं चाहिए, क्या इम्यूनिटी चाहिए, कैसे WBC चाहिए, तैयार कर लेगा। तो फिर जब हमारे ऊपर बड़ा हमला होगा तो हम पहले से तैयार होंगे। ये जो 50 लोग हैं जिनको वो पहले से अगर कभी भी किसी छोटे मोटे उस सर्दी जुकाम से अगर बीमार पड़ चुके होंगे तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे। जो छोटे होंगे वो, उनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई होगी तो वो शायद बीमार पड़ सकते हैं। उस कमरे में जो गंदे संदे लोग होंगे, जो साफ सुथरे नहीं रहते होंगे, जिनको खुद ही एक आध इन्फेक्शन चल रहा होगा, पता चला खुद कुछ चल रहा है और ऊपर से हम लोग ने कुछ डाल दिया, मतलब आग जल रही थी हमने पेट्रोल और डाल दिया, तो उनके बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मॉडर्न साइंस जेनेटिक्स को भी कहता है कि आपकी जीन्स कैसे हैं, यदि आपके जीन्स कमजोर हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। यहाँ मेरी पत्नी और माँ दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो कभी कभार उनके पास लेडीज आती हैं और वो कहती हैं कि मेरा ये बच्चा ज्यादा बीमार पड़ जाता है क्योंकि सतमासा है, कॉमन टर्म, मतलब 7वें महीने में ही बाहर आ गया, तो उसकी इम्यूनिटी ठीक से डेवलप नहीं हो पाई। दूसरा एक देखा गया है कि वेरी ओल्ड मदर, अगर मदर और फादर की उम्र बहुत ज्यादा है, तब बच्चा अगर पैदा हुआ, उनको ओल्ड पेरेंट्स हैं, 40+ पेरेंट्स हैं, तो भैया उस बच्चे की इम्यूनिटी थोड़ी सी कमजोर होती है। उन 50 आदमियों से अगर किसी ने कोई वैक्सीन या वो सब कुछ नहीं लगवाया होगा तो चांसेस हैं कि वो बीमार पड़ सकता है। हाँ, और एक और चीज, वो खांस रहे व्यक्ति से कौन कितना दूर है, जो बगल वाला है उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है भैया, कोई पिक्चर हॉल में बैठा और उसने छींक दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे पिक्चर हॉल वाले बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, कोविड के समय ये बोला जा रहा था कि एक जगह अगर एक आदमी छीका तो पूरा का पूरा पिक्चर हॉल। ये दिल्ली में भी हुआ था भैया, जब सार्स वायरस वाला था कि

0: एक आदमी छींकता था तो मेट्रो में सब लोग डरने लगते थे कि अरे बाप रे बाप, क्या हो गया क्या हो गया। तो ये चांसेस भैया बीमार होने के, जैसे हम लोग रोज सहज स्वास्थ्य में बात करते हैं शुरू में कि बीमार पड़ने के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी खराब खाना पड़ेगा, आपको भी एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, आपको भी गंदा संदा रहना पड़ेगा, आपको भी एकदम तला भुना सड़क का खाना, बार बार जो तेल जिसमें समोसा हो तला जा रहा हो, ये सब वैसी चीजें खानी पड़ेंगी। नशा कर रहे हो आप, अपने शरीर का कोई ख्याल नहीं रख रहे, तब चांसेस आपके हैं कि आप ज्यादा बीमार पड़ेंगे।
1: बहुत ही सुंदर बातचीत समझ में आ रही है कि हम सोच रहे हैं कि रोग ऐसे ही हो जा रहे हैं, रोगों का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल ऋषि प्रज्ञा ने ये बात हमें बताई है कि प्राचीन समय से ऋषि मुनियों ने ये बात लिखी है कि भाई व्यक्ति के जीवन, मृत्यु, रोग और वृद्धाप्य के बारे में, बूढ़े होने के बारे में व्यक्ति के हाथ में कंट्रोल नहीं है। मगर आज हम ये भी चीजें जानते हैं कि अगर हम जो चीजें बीमार करने वाली हैं उनसे अपनी दूरी न बनाए रखें या फिर अपने आप को सशक्त न बनाए रखें तो ये बीमार करने वाली चीजें हम पर और ज्यादा हावी होंगी और हम बीमारी से ज्यादा देर तक लड़ते रहेंगे, ज्यादा दिनों तक बीमार रहेंगे या फिर वो बीमारी हमें कमजोर और करती चली जाएगी। बहुत ही खूबसूरत आज की ये चर्चा रही है डॉक्टर साहब। वक्त कहता है कि यहाँ रुकना चाहिए मगर प्रश्न और भी हैं, क्योंकि जब हम बीमारियों के बारे में बेहतर तरीके से समझते जाएंगे तो शायद हमें ये समझ में आएगा कि स्वास्थ्य कितना आवश्यक है और हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। श्रोता मित्रों, आप सभी की ओर से मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर आज दिया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों। सहज स्वास्थ्य में आज हमने इस बात को समझा है कि स्वस्थ रहना आसान है। हम अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए या बीमार पड़ने के लिए मेहनत करते हैं। हम खराब चीजें खाते हैं, असमय खाते हैं। हमारे उठने बैठने के, साफ सुथरे रहने के तरीकों को अगर हम नजरअंदाज करते हैं, हम सही समय पर सोते नहीं, आवश्यक मात्रा में सोते नहीं, और जहां पर बीमारियां पनप रही हैं उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है, अगर हम केयरलेस होते जा रहे हैं तो फिर हमारा बीमार होना स्वाभाविक ही लगता है। सहज स्वास्थ्य में इन सभी चीजों के प्रति आप जागरूक बने रहेंगे, अपने स्वास्थ्य को सहजता से बनाए रखेंगे, ऐसी शुभ आशाएं हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधर इधर इधर, भाई क्या पहुँचा दोगे? भाई कहाँ पहुँचा दोगे? भाई मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। भाई सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे। हैं कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? कोई जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: नमस्कार एंड वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इतना लंबा हमने सफर तय कर लिया, अब ऐसा लगता है कि जैसे एक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। और कितने सारे वो रहस्य सामने आते जा रहे हैं जो रहस्य लगते थे, लेकिन सच कितना सहज है। अपनी पहचान हुई, उस परमात्मा की पहचान, और फिर जिस समय में हम रह रहे हैं उस समय की पहचान। लेकिन अभी भी कुछ और बातें हैं जो कहीं ना कहीं छुपी हैं, जिनका रहस्य जो है उन रहस्य से पर्दा हटना जरूरी है। तो चलिए आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और हर बार की तरह इस पूरे सफर में हमें जितने भी रहस्य हैं उनसे दूर ले जाने के लिए, पर्दा हटाने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
4: ओम शांति
3: सिस्टर शिवानी। इतनी सारी बातें कर ली, इतना सब कुछ जान लिया हमने। खास जो हमने बात जानी थी, अगर पिछली कुछ कड़ियों को देखें तो जिस समय में हम रह रहे हैं, हम में से हर कोई ये महसूस कर रहा है कि समय बहुत बलवान है, ये भी कहते आ रहे हैं, लेकिन समय बहुत खराब चल रहा है ये भी सुनते आ रहे हैं। और जिस तरह से क्लैरिटी आई है हमारे सामने कि यस, कितने युगों की बात की है और अब आई थिंक अल्टीमेट हो चुका है, बिकॉज ब्लैकनेस इज देयर ऑल अराउंड अस। आपने बात की थी ट्रांसफॉर्मेशन की, उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे हम सोल लेवल पर या ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होगा। उससे पहले एक बार छोटा सा रिकैप करते हैं कि जिस समय में हम रह रहे हैं कहाँ से होते हुए आए हैं।
4: हमने सबसे पहले यही देखा कि टाइम मूव्स इन अ साइक्लिक मैनर, यू नो, टिल नाउ देयर वाज अ लिटिल कंफ्यूजन अबाउट ये सृष्टि कब शुरू हुई, अबाउट द क्रिएशन। और जहाँ क्रिएशन की बात आती तो फिर अब ये बात आने लग गई कि डिस्ट्रक्शन कब होने वाली है इसकी, यू नो, बिकॉज जो चीज़ क्रिएट होगी तो फिर वो एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय भी होगी। एंड राइट नाउ वी आर सीइंग द वर्ल्ड टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रक्शन, यू नो, एवरीवेयर। एंड उसकी वजह से एक भय, यू नो, एक इनसिक्योरिटी कि आखिर आने वाला समय कहाँ हमें लेकर जा रहा है। और अब तो पर्यावरण की वजह से कहीं ना कहीं, और न्यूक्लियर वेपन्स जो सारे रेडी हैं, और जो बहुत सारे प्रोफेसीज हो चुके हैं, यू नो, बहुत सारी प्रेडिक्शंस की गई है।
3: नास्टराडेमस की अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो लोग तो इतने डरे हुए हैं कि अब होने वाला है।
4: यस, सो एवरीवन इज लुकिंग एट द ईयर नाउ। नाउ इट्स बिकम ईयर स्पेसिफिक, यू नो, पहले था कि ये हो सकता है या ये होगा शायद, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि किस वर्ष में। एंड वो वर्ष भी जो आया है वो बहुत नज़दीक लग रहा है कि 2008, 2010, 2011। तो नाउ वी हैव रियलाइज दैट इट इज़ विद इन आर लाइफ टाइम। पहले लग रहा था कि हाँ सृष्टि को कुछ होने वाला है,
3: चलो जब होगा तब देखा जाएगा,
4: जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अब ये लगता है कि अपने ही इस लाइफ टाइम में होगा। तो समवेयर, इवन दो आई डोंट नो हाउ मच वी पे अटेंशन टू इट, लेकिन कहीं ना कहीं एक बीच बीच में वो डाउट आ जाता है, बट फिर हम उसको फिर इग्नोर कर देते हैं। सब कुछ पता होते हुए भी कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और ये लगता है कि जब होगा तो सारी दुनिया पर होगा। अभी तक हम अगर सुन भी रहे थे इन्फॉर्मेशन को तो हम एक नेगेटिव नोट पर सुन रहे थे कि हाँ ये सब होने वाला है, हाय क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। बट नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज साइक्लिक, तो फिर रात को डर नहीं लगता। हाँ होता है कि अंधेरा है तो कहीं ना कहीं हम ठोकर खाते हैं, लेकिन हम निराश होकर नहीं बैठ जाते कि दिस इज द एंड। हमें क्योंकि ये पता होता है कि रात के बाद सुबह होनी है।
3: इनफैक्ट एक और बात यहाँ जी जोड़ूंगी कि रात में भी रोशनी करने की टेक्निक हमने सीख ली।
4: यस, एब्सोल्युटली, ताकि वो रात भी उतनी तकलीफ नहीं देगी अगर हमें उसमें भी अपने आप को प्रिपेयर करना आ जाए. एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज वी नो कि नाउ इट्स ओनली अ साइन दैट द मॉर्निंग इज हियर. बस एक थोड़ा सा पीरियड जैसा बीच में है, लेकिन व्हाट अबाउट दैट ब्यूटिफुल मॉर्निंग व्हिच इज टू कम. जब हमें ये समझ में आया कि टाइम इज साइक्लिक, वी अंडरस्टूड दैट सोल मैटर एंड गॉड इज एनर्जी. तो एनर्जी पे फिर कुछ लॉज भी एप्लीकेबल होते हैं. एंड सबसे इम्पोर्टेंट लॉ था कि इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो एनर्जी इज कॉन्स्टेंट. तो इसलिए जितनी नंबर ऑफ सोल्स हैं वो फिक्स्ड है. उसमें ना कोई एडिशन है ना कोई सब्ट्रैक्शन है. एंड द अदर इज एनर्जी मूव्स फ्रॉम एन ऑर्डर्ड स्टेट. वो पहले एक ऑर्डर्ड स्टेट में है. जब वो मूवमेंट या एक्शन में आती है तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो ऑर्डर्ड स्टेट से क्योटिक स्टेज में आ जाती है. एंड देन अनदर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इंटरवीन्स. जो उस क्लोज्ड सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इंटरवीन करती है एंड दैट रिचार्जेस और रिकिंडल्स दिस सिस्टम ऑफ एनर्जी एंड इट मूव्स फ्रॉम अ क्योटिक स्टेज अगेन टू एन ऑर्डर्ड स्टेज. तो द सोल एनर्जी अपनी हाईएस्ट स्टेज पे थी. धीरे धीरे धीरे कर्म में आते आते आते इट मूव्स टू इट्स लोएस्ट स्टेज. फिनिश नहीं होती लेकिन वो लोएस्ट स्टेज वो है जब वो हायर पावर को, जिसको हम परमात्मा निराकार शिव बाबा कहते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी, ही इंटरवीन्स इनटू दिस क्लोज सिस्टम एंड द सोल गेट्स चार्ज्ड अगेन. एंड सो दिस साइकिल विल गो ऑन कि द सोल विल बी इट्स हाईएस्ट स्टेज, मूव कम टू इट्स लोएस्ट स्टेज, अगेन गो बैक टू इट्स हाईएस्ट स्टेज. तो हमें समझ में आता है कि थिंग्स आर मूविंग इन अ साइकिल. तो जैसे दिन का साइकिल सुबह दोपहर शाम रात, सिमिलरली ऑन अ बिगर लेवल नाउ सत्युग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग, या हम कहें गोल्डन एज सिल्वर एज कॉपर एज एंड देन आयरन एज. तो अब आयरन एज में हम आकर पहुंचे. कलयुग ये शब्द तो बच्चे बच्चे के मुंह पर है. कलयुग है आजकल हम कहते हैं घोर कलयुग है. जैसे आपने कहा कि अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया है और घोर कलयुग है, इसलिए हम धक्के खा रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं, दुख अशांति बढ़ गई है. लेकिन अब जब हमें ये पता चलता है कि ये कलयुग के बाद फिर इट्स नॉट अ होप, इट्स अ रियलिटी. सो इट्स जस्ट दैट वी प्रिपेयर फॉर दैट रियलिटी. अगर हमें रात के बाद सुबह नहीं है ये ना पता हो तो हमारी रात कैसे बीतेगी. It will feel कि oh my life will be like this, you know. But हमें पता है कि रात के बाद सुबह है, तो हम लोग उस रात को बहुत smoothly cross कर लेते हैं और सुबह की अपनी तैयारी कर लेते हैं. लेकिन सुबह की तैयारी हम करते हैं now on a global level. सुबह आने वाली है, अब हमें उसकी क्या तैयारी करनी है.
5: वंडरफुल. एक्चुअली यू नो माइंडसेट चेंज करने की बात है सबसे पहले. ये कहने के बजाय कि सब कुछ खत्म होने वाला है या घोर कलयुग है, वी हैव टू से आवरसेल्फ सुबह आने वाली है. इट मेक्स ऑल द डिफरेंस.
4: इट कांट गो ऑन इन एनी वेज इफ यू लुक एट इट एट एवरी पॉइंट ऑफ व्यू. पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, एनवायरमेंट, इट जस्ट कांट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर एवर. कब तक कब तक ये चल सकता है. कहीं ना कहीं तो एक जंप आएगा ही, कहीं ना कहीं तो वो परिवर्तन आएगा. तो जब हम सत्युग में थे या गोल्डन एज में थे तो सोल वॉज एब्सोल्युटली फुल, क्योंकि वो अपने घर से मैं आत्मा आई तो मैं आत्मा 100% प्योर. तो दैट इज दैट पोटेंशियल स्टेट, बिल्कुल फुल, हाईएस्ट एनर्जी, सोल कॉन्शियसनेस, नेचुरल. जो चीज आज एक क्षण के लिए भी याद नहीं रहती है कि मैं आत्मा हूँ, वो उस समय में 100% नेचुरल थी. जैसे आज मैं शरीर हूँ ये 100% नेचुरल लगता है, एफर्ट नहीं करना पड़ता कि मैं ये हूँ. उस टाइम मैं आत्मा हूँ इसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता था. इट वॉज नेचुरल कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ. लेकिन फिर कर्म करते गए, एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, दैट हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी मूव्ड फ्रॉम एन ऑर्डर्ड स्टेट स्लोली. बट इट वॉज अ स्लो प्रोसेस, इट वॉज अ स्लो प्रोसेस, ग्रेजुअल. एंड वी हैव एंजॉयड दैट जर्नी, वी हैव. जो आज कई बार लोग पूछते हैं कि फिर ये सृष्टि बनी क्यों, यू नो इतना दुख है, इतनी अशांति है. लेकिन कितना समय
5: अशांति तो अब आई है, you know,
4: अब आई है। ऐसे तो हम stage. कोई भी कर्म करने जाते हैं, हम ऑफिस भी जाते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे हम थक जाते हैं, हम कोई गेम भी खेलते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम वी गेट टायर्ड, बट वी एक्सेप्ट दैट, हम समझ लेते हैं कि 4 घंटे अगर खेलेंगे तो आखिरी के 15-20 मिनट तो थक जाएंगे, और फिर जब थक जाते हैं फिर हम रेस्ट करते हैं और फिर हम अगले दिन गेम फिर खेलते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ उस 15 मिनट को देखें कि ओ ये गेम खेलने से तो थकेंगे, तो विल वी स्टॉप प्लेइंग द गेम?
5: नो, वी विल नॉट।
4: 3 hours 45 minutes वाज गुड गेम, 15 मिनट्स पेन, कांट गिव अप द गेम,
5: बट इट पेन्स एक्चुअली दोस 15 मिनट्स, सो दैट्स द पेन वी आर फीलिंग नाउ,
4: दैट्स द पेन, एंड व्हाई आर वी फीलिंग दैट पेन, बिकॉज़ नाउ वी आर टायर्ड, यू नो The soul has really reached its stage where हमें ये याद ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, तो वो एनर्जी लेवल बिल्कुल जैसे फिनिश नहीं, लेकिन इट्स रीच्ड इट्स लोएस्ट पॉइंट, लेकिन नाउ वी हैव द अपॉर्चुनिटी बिकॉज द हाइएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी परमात्मा हैज इंटरवीन्ड इनटू द सिस्टम, सो ऑल दैट आई हैव टू डू इज नाउ
5: कनेक्ट
4: टू हिम एंड आई विल अगेन मूव फ्रॉम द कियोटिक स्टेज टू द ऑर्डर्ड स्टेज।
5: अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू दैट how things will transform, how I'll transform, is like, I want to ask you a question. ये जो हम पूरे चार युगों की बात करते आ रहे हैं, ये कई बार हो चुके हैं, that's what the question is, you know.
4: Cycle.
5: तो इसका मतलब कई बार हम
4: जैसे सुबह दोपहर शाम रात कई बार हो चुकी है,
5: कई दिनों में हो चुके, कई बार हो चुकी है,
4: कई बार हो चुकी है, आप गिनती कर सकते हैं कितनी बार हुई है, साइकिल है। तो अगेन अगर वो लीनियर होता तब आप कह सकते थे ये कब शुरू हुआ था, और अगर कभी शुरू हुआ था तो फिर फिनिश भी होगा, लेकिन साइकिल।
5: तो हम कई बार ये गेम खेलते आ रहे हैं,
4: एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी, क्योंकि कोई चीज अगर आपने कई बार की है देन
5: आपको पता है कि आगे भी क्या,
4: इट्स वेरी इजी। से जब हमें शिव बाबा आकर ये ज्ञान देते हैं तो हम आत्माएं उस समय बिल्कुल कमजोर होती हैं, एकदम थकी हुई जैसे, यू नो टायर्ड एट द एंड ऑफ द गेम, एंड परमात्मा आकर हमें बताते हैं कि हे आत्माएं तुम 100% प्योर थे, यू नो तुम्हें अब फिर से 100% सोल कॉन्शियस बनना है। वेरी डिफिकल्ट इट सीम्स, वेरी वेरी डिफिकल्ट कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो हाउ इज इट पॉसिबल कि एकदम 100% बॉडी कॉन्शियसनेस से 100% सोल कॉन्शियसनेस पे जाना है, एक ऐसी स्थिति तक पहुंचना है जब यू नो पीस एंड प्योरिटी एंड लव इज योर नेचुरल। पहली बार सुनने में इट साउंड्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जब हमें समय का ज्ञान मिलता है उससे सारा परसेप्शन चेंज हो जाता है। क्यों? आप आत्मा ही वैसे थे, आप थे 100% प्योर, आप वो 100% प्योरिटी से अब एकदम इम्प्योर वाले लेवल पर आए हो, लेकिन थे आप, और फिर आप इस इम्प्योरिटी के लेवल से फिर से प्योरिटी के लेवल पे
5: और
4: जाएंगे,
5: आप ही जाओगे, कोई
4: आप
5: और
4: ही
5: नहीं
4: जाओगे
5: जाएंगे।
4: और आपने ये जंप पहले भी किया है क्योंकि ये साइकिल पहले भी घूमा है, तो आप थे, आपने पहले भी ये किया है, जो चीज आपने इतनी बार की है वो अब आप एक बार फिर करने वाले हो, देन इट बिकम्स मच मच इजियर, यू रियलाइज आई वॉज दैट, यू नो इफ समबडी हैज टू मोटिवेट दिल से यू हैव डन इट बिफोर सो नाउ यू कैन डू इट अगेन, बट इफ समबडी आस्क्स मी टू डू समथिंग व्हिच आई हैव नेवर डन बिफोर इट विल बी लिटिल चैलेंजिंग, बट इफ आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स बिफोर देन इट्स सिंपल। तो इसलिए समय को पहचानने से सब कुछ बहुत सिंपल होने लगता है, क्योंकि मैं थी क्लीन, मैं गंदी हो गई हूँ, मुझे फिर से क्लीन होना है, बट आई वॉज क्लीन।
5: तभी सिस्टर शिवानी कई बार ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ, मैंने ये देखा हुआ है पहली बार। इनफैक्ट बहुत से हमारे ऑडियंस, हमारे पास इस तरह की अगर हम किताबें भी उठाकर देखें तो बहुत से लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं कि ये सिचुएशन मैंने पहले देखी हुई है, ये मेरे साथ हो चुका है, ये जगह पे मैं आया हुआ हूँ।
4: यस, ये मेजोरिटी मेरे को लगता है हम सबके साथ होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर सीन में होते हैं, एक दृश्य में होते हैं, और हमें लगता है ऐसे के ऐसे मैंने इस दृश्य को पहले देखा है, यही के यही लोग थे, यही का यही बिल्कुल ऐसा हो रहा था, बट इट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव सीन। तो ये व्हाट इज दिस, अगर वो सीन पहले कभी हुआ ही नहीं है तो हाउ कैन आई फील कि मैंने वो देखा है? लेकिन अब हमें समझ में आता है बिकॉज द साइकिल इज अ रेपिटिशन, इट इज मूविंग एंड मूव्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन, तो जो सीन आज हमारे साथ हो रहा है ये पहले भी
5: हो चुका है
4: जो हो चुका है वो यहाँ स्टोर्ड है, और इसीलिए जो चीज यहाँ स्टोर्ड है जब वो फिर से होती है और अगर वो हम क्लैरिटी से अपनी पास्ट मेमोरी को ले आए तो हमें लगता है हाँ यही का यही सीन हो चुका है। कई बार हम कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि आज ये होने वाला है, यू नो इंट्यूशन। इंट्यूशन भी कैसे होता है? इंट्यूशन के पीछे भी यही लॉजिक है, क्योंकि आज जो होने वाला है वो पहले हो चुका है, बिकॉज इट्स अ साइकिल। तो इंट्यूशन भी इसी पर आधारित है, क्योंकि आज जो मेरा कल जो मेरा फ्यूचर है, इट्स आई एम एट दिस पॉइंट इन द साइकिल एंड दिस पॉइंट इज माई फ्यूचर, इट्स माई टुमारो। बट इफ आई लुक एट इट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द साइकिल देन दिस पॉइंट इज ऑल्सो माई पास्ट।
5: ओके,
4: सी लुक एट इट ऑन अ साइकिल, हियर आई एम टूडे, दिस इज माई टुमारो, बट देन इफ आई लुक एट इट फ्रॉम हियर दिस इज माई यस्टरडे। सो दैट्स वाई, बिकॉज इट्स माई यस्टरडे, यस्टरडे तो याद है,
5: इट्स समवेयर देयर इन माय माइंड,
4: यहाँ है। तो जितना जितना माइंड को साइलेंट करते जाएंगे तो वो यस्टरडे याद आता जाएगा, और जितना यस्टरडे याद आएगा टुमारो पता लगता जाएगा।
5: नाउ द टाइम इज कि वी हैव टू बिकम प्रोएक्टिव,
4: एब्सोल्युटली, बिकॉज अब हमें बहुत कुछ करना है। नाउ इज नॉट द टाइम कि वी कैन जस्ट सिट बैक एंड से कि जो होना है वो, क्योंकि बाहर का परिवर्तन जितनी तीव्र गति से होगा उससे ज्यादा तीव्र गति से हमें अपना आंतरिक परिवर्तन चाहिए, क्योंकि केओस बाहर बढ़ेगा, यू नो ऑर्डर्ड टू केओटिक स्टेज। तो जो बाह्य चीजें हैं वो अभी तक ऑर्डर्ड से केओटिक स्टेज में जा रही हैं, और अभी भी और केओटिक स्टेज में जाने वाली हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग की हमने बात की या न्यूक्लियर व्हाटएवर एवरीथिंग, तो वो जो केओटिक स्टेज है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। वी विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दैट राइट नाउ, द इनर स्टेज, क्योंकि जब इनर स्टेज केओटिक स्टेज से ऑर्डर्ड स्टेज में आएगी तब बाहर वाली स्थिति
5: चेंज हो जाएगी,
4: फिर से ऑर्डर्ड स्टेट में आएगी, लेकिन पहले जिम्मेवारी आत्मा पर।
5: क्योंकि अगर हम अपनी जर्नी भी देखें तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी या क्योटिक स्टेज में हम इंटरनली आए थे बेसिकली, यू नो
4: वो पर्यावरण, हाँ एकदम अच्छा था। तो सारा कुछ पहले आत्मा में होता है, फिर उसका प्रभाव प्रकृति पर होता है। आत्मा प्योर, प्रकृति प्योर, आत्मा धीरे धीरे इम्प्योर होती गई, उसके फलस्वरूप धीरे धीरे प्रकृति इम्प्योर हो गई। अब अगर आत्मा वेट करे कि जब बाहर सब ठीक हो जाएगा तब मैं ठीक हो जाऊं, इट विल नॉट हैपन। रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले हम पर है कि मुझे अब फिर से वो 100% प्योरिटी पे जाना है, प्रकृति फिर अपने आप ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए अभी का जो समय है, वी आर एट द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इन द वर्ल्ड साइकिल, क्योंकि अभी तक जो था बैटरी डिस्चार्ज होने का समय था, नेचुरल है, उसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। बैटरी चार्ज हुई हुई थी, यूज किया, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो गई, लेकिन डिस्चार्ज से चार्ज
5: उसमें टाइम लगता है, और जब लास्ट
4: टाइम नहीं, उसमें थोड़ा सा एफर्ट
5: भी करना पड़ता है, और जब लास्ट से एंड खत्म होती है तो एकदम से होती है।
4: हाँ, बिकॉज इसीलिए हमें पता चल रहा है कि अभी जो डिक्लाइन है ऑन मॉरल सोशल फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल लेवल, दैट डिक्लाइन इज
5: वेरी वेरी फास्ट।
4: यू नो मोबाइल भी चार्ज करके चलते हैं तो सारा दिन धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, लेकिन एंड की दो लाइंस बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो अभी हम वो ही समय पर पहुंच रहे हैं जो डिक्लाइन बहुत फास्ट होगा, तो इसलिए वो फिनिश तो होगा नहीं, लेकिन उससे पहले अपने आप को फिर से चार्ज करना पड़ेगा। और चार्ज से डिस्चार्ज हम अपने आप हो गए थे, इसलिए परमात्मा का उसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन अब डिस्चार्ज से चार्ज, वो जो एक जंप है ये बहुत हाई जंप है, और ये हम आत्मा अपने आप नहीं कर सकती है। एंड तब परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है, एंड ये अब का जो समय है जब आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है, कनेक्शन होता है, या हम कहें आत्मा का परमात्मा के साथ संगम होता है, और इसीलिए इस समय को हम संगम युग कहते हैं। अब हम कलयुग में वैसे तो हैं जब तक हमें अपना और परमात्मा का परिचय नहीं, लेकिन जब हमें वो परिचय मिल गया, कनेक्शन जुड़ गया, अब हमारी जीवन कलयुग वाली नहीं, अब हम वो संगम के समय पर हैं। तो दिस पीरियड इज कॉल्ड द कॉन्फ्लुएंस एज, संगम। किसका संगम? आत्मा और परमात्मा का संगम।
5: स्ट्रेंथन्ड एक्चुअली,
4: यस। And that's why this age is called the diamond age. क्योंकि दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एज ऑफ द होल साइकिल. क्योंकि आत्मा का अपने पिता के साथ संगम है इस समय. सारे साइकिल में तो हम डिस्चार्ज होते आए, नो बिग डील, नेचुरल. लेकिन जब चार्ज होने का समय है, दैट इज अ बिग जंप फॉर द सोल. तो दिस एज इज द डायमंड एज. तो हम सब आत्माएं अभी एक मोस्ट ब्यूटिफुल पीरियड से गुजर रहे हैं ऑलरेडी. जो आने वाला समय है वो तो सुंदर है ही है, दैट इज द गोल्डन एज. लेकिन अभी जो समय चल रहा है जहाँ आत्मा अपने पिता से फिर संबंध जोड़ती है, ये संगम युग है.
5: मोस्ट एक्साइटिंग
4: वेयर यू कैन सी see what is the difference between golden age and now. Golden age में सब कुछ ही अच्छा है, you know. तो आपको अच्छाई का भी experience कब होता है, जब आपने अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को साथ साथ देखा हो. सत्युग में आप हमें feel भी नहीं होगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, because होगा ही अच्छा.
5: It is natural.
4: It will be natural. सुख क्या होता है वो हमें बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि दुख क्या होता है उसकी अनुभूति नहीं है. लेकिन अभी का जो समय है, जहाँ अभी हमारा जीवन दुखी है, अशांत है, परेशान है, और इसमें परमात्मा से संबंध जोड़ के हम उसी कलयुगी समय में रहते हुए जहाँ चारों तरफ त्राही है, अगर हम अपने जीवन को वो सुखी, पवित्र और शांत स्वरूप बना सकते हैं, तब वो जीवन कैसे होगी. And that's why it's the most valuable period. That's why, you know, we are not waiting for Satyug to come. No, we are not. Because this period is more beautiful than that. Because my life becomes so beautiful right now. तो ये वो संगम युग है. कलयुग से सत्युग, इन दोनों का भी संगम है अभी, और आत्मा और परमात्मा का भी संगम है. सो दिस इज द पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो घड़ी जो अब है वो बस 12 बजने को कुछ ही मिनट पर, कुछ ही मिनट भी नहीं कहेंगे अब तो, आकर पहुंची है. एंड इट हैज जस्ट टू मूव एंड द साइकिल हैज टू बिगिन ऑल ओवर अगेन. तो दिस इज दैट पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जहां फ्रॉम 100%, नॉट 100% बट वेरी इम्प्योर, वी विल जंप टू अ स्टेज ऑफ 100% pure. और उसको करने का तरीका कैसे होगा?
5: What I can feel is a meditation.
4: Yeah.
5: The way I link, because that, see, if we look at, मुझे लगता भी है कि सारे दर्शक जो हमारे देख भी रहे हैं प्रोग्राम, हमारे इस परिवार का हिस्सा है, कि अब दिन का सबसे खूबसूरत वक्त वो हो गया है जब हम वो मेडिटेशन में बैठे होते हैं. You know, it has, maybe it's 10 minutes, maybe it's 15 minutes, maybe it's half an hour, but that's the period you actually look forward to. And if you miss it, you don't like it, you know. Right. You want it to be there.
4: Say. तो अभी के ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में दो चीजें होंगी. मेडिटेशन. मेडिटेशन से क्या होगा कि आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार्स हैं, दे विल री इमर्ज. वो कॉन्शियसनेस फिर से आती जाएगी, और वो कॉन्शियसनेस जो अब आएगी वो ही हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर देगी. सत्युग में जाने के लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए? You know, जो हम सोल कॉन्शियसनेस, बिकॉज द सोल ओवर देयर वॉज इन 100% सोल कॉन्शियसनेस. अब परमात्मा आकर हमें वापस उस सोल कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं. तो जहाँ वो कॉन्शियसनेस अभी हमने अपने अंदर जागृत की, तो वही अवेयरनेस कि हम क्या थे वो फिर से जागृत होने लगेगी. पीस, प्योरिटी, लव, पावर, जो कि हमारी ओरिजिनल संस्कार थे, लेकिन इतने सब युगों के बाद वो स्टैक जो था संस्कार्स का, तो ये सारे संस्कार्स एकदम नीचे चले गए थे स्टैक में. तो मेडिटेशन क्या करेगा? नीचे से इनको एकदम ऊपर के लेयर में ले आ जाएगा, और हमें वो अवस्था में ले आएगा जो हम थे और जो अब हम बनेंगे घर जाने से पहले. क्योंकि द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी क्वाइट केओटिक आउटसाइड, यू नो, द आउटसाइड क्लीनिंग प्रोसेस विल टेक प्लेस. ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? एक तरफ पुराना घर टूटता है और दूसरी तरफ नया घर बनता है. तो एक तरफ कलयुग का परिवर्तन होगा, सृष्टि का परिवर्तन होगा. जो हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग, स्नो मेल्टिंग, वी से 20 feet द सी लेवल विल राइज, ऑल दिस विल हैपन.
5: इस प्रलय की बात की जाती थी.
4: तो ऑल दिस विल हैपन बिकॉज ये सारे ही तो विधि है जिससे सृष्टि की सफाई होगी. यू नो, पर्यावरण की सफाई होनी है. सत्योगी दुनिया कैसी होगी? एनवायरमेंट विल बी 100% प्योर. तो वो कब होगा? जब ये सफाई होगी. तो वी विल गो थ्रू दैट लिटिल क्रिटिकल पीरियड. लेकिन जो अंदर से स्टेबल होंगे उनके लिए वो पीरियड भी कब आकर निकल जाएगा? उन्हें पता भी नहीं चलेगा,
5: क्योंकि आई थिंक वो ऑलरेडी चार्ज्ड और ऑलरेडी उस अवेयरनेस में रहने शुरू
4: हो गए। एब्सोल्युटली। तो इसलिए इंटरनली हम अपने आप को उतना पावरफुल, उतना प्योर बनाएंगे। दो काम हम अभी कर रहे हैं, एक अपने ओरिजिनल संस्कार्स को फिर से री इमर्ज कर रहे हैं, और ये ओरिजिनल संस्कार्स मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार होंगे जिनको लेकर मैं अपने घर जाऊंगी परम धाम, और फिर से वो साइकिल के बिगिनिंग में फिर आ जाऊंगी। एंड दूसरा, जितने मैंने पीछे कॉपर एज से बहुत सारे जो विक्रम किए हैं, जिसका हिसाब किताब हमें अभी चुक तो करना पड़ता है, तो वो भी हम योग से चुक तो करते हैं। जैसे कार्मिक फिलोसफी की जब हम बात कर रहे थे, तो आपने कहा था कि इज देयर नो वे कि हम इसको सेटल कर सकें। तो जितना अभी डिक्लाइन हो रहा है, तो हमें भोगना की फीलिंग ज़्यादा आ रही है ना, सफरिंग हैज इंक्रीज्ड। तो ये सफरिंग को कम करने का दो ही तरीका है, कम या फिनिश करना है हमें, या तो भोग के या योग से, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि सब आत्माओं को अपने घर जाना है, और सब आत्माओं को सारा ये अकाउंट जो यहाँ क्रिएट किया था वो सेटल करके जाना है, प्योरिफाई होकर जाना है। तो प्योरिफाई होने का दो तरीका है, या तो भोग के, जिसको हम कहते हैं सजा भोग के, जिसका आज दिन तक हम सुनते थे कि ऊपर जाएंगे तो सजा मिलेगी, तो सजा कहीं ऊपर नहीं, वो सारी सजाएं हमें यही मिलती हैं। हर पल जब हम दुखी होते हैं, उससे बड़ी सजा और कोई नहीं होती है, दर्द में होते हैं वो ही हमारी सजा है। तो वो सारा जो अकाउंट हमें सेटल करना है, या तो दुख दर्द यहाँ भोग के, या फिर योग से। तो जितना हम योग करेंगे अभी, परमात्मा से वो कनेक्शन जोड़ेंगे, पुराना हिसाब किताब चुक तो करते जाएंगे, ओरिजिनल संस्कार्स इमर्ज करते जाएंगे, उतना दुख और दर्द की फीलिंग
5: कम होती जाएगी।
4: एंड जितना आपकी सफरिंग कम होती गई, मतलब उतने आपके अकाउंट्स सेटल होते गए। क्योंकि जितना टाइम क्रिटिकल और आता जाएगा, सफरिंग और भी बढ़ती जाएगी। तो जितना हम अपनी तैयारी अभी कर लेते हैं परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के, वो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस बिगिन करते हैं, तो बाहर सफाई चल रही होगी, लेकिन अंदर की तैयारी
5: जो है वो पूरी
4: उससे पहले हो जाएगी। सो वी विल बी एबल टू क्रॉस दैट टाइम वेरी ब्यूटीफुली, एंड इवन नाउ लाइफ विल बिकम वेरी वेरी स्टेबल एंड वेरी ब्यूटीफुल। एंड जो आने वाला समय है वो तो आएगा ही, वी कैन नॉट स्टॉप दैट।
5: सिस्टर शिवानी, नाउ एंड आई एम नॉट गोना से एनी मोर, यू गिव अस होप बिकॉज़ यू शोड अस अ रियलिटी, दैट्स व्हाट आई विल स्टिक टू। और ये जो पूरी हमारी आज बातचीत रही, ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले वक्त की तैयारी, सुबह की तैयारी हमें अभी करनी है, चाहे घोर कालिमा है, लेकिन इसी रात में हम तैयारी कर सकते हैं। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: ओम शांति।
5: ओम शांति। मानते हैं कि क्योस है, मानते हैं कि त्राही त्राही मची है, लेकिन जैसे हमने अपने अंदर, हमने पहले भी ये बात की थी कि बदलाव अपने ही अंदर आएगा, अब जब हमने इस पूरे चक्र को समझ लिया है, काल चक्र जिसे कहा जाता है, समय का चक्र, समय की सच्चाई, तो फिर आने वाला जो स्वर्ण युग है, जो गोल्डन एरा है, वो इंतजार कर रहा है। लेकिन अभी जो युग है वो भी बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ आत्मा और परमात्मा का वो मिलन हो रहा है जो किसी और युग में नहीं हुआ है। तो हम इस डायमंड युग को, इस संगम युग को भी इंजॉय कर सकते हैं, आने वाला जो भी क्योस सामने है उसकी तैयारी कर सकते हैं, और फिर उस स्वर्ण युग या गोल्डन एज की इमेजिनेशन कर सकते हैं। और जैसा कि सिस्टर शिवानी ने कहा था कि याद तो कहीं ना कहीं होगी ही, अगर हम उससे गुजरे हैं तो हो सकता है हमारी यादों में हो। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जिसका जवाब आप तलाश रहे हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999334666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। हमने स्वयं को भी पहचान लिया, सारी जानकारी हमें मिल गई है, समय चक्र भी पता चल गया, लेकिन परमात्मा जिनके बारे में हम ये कह रहे हैं कि शिव बाबा आ चुके हैं और स्वयं उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, उस युग में हमें लेकर जाएंगे, तो कहाँ है वो, उन्हें तलाशना भी बाकी है। तो अगली कड़ी में हम सीधा संपर्क जोड़ेंगे शिव बाबा से। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में फिर होगी मुलाकात।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: सुबह की कोमल धूप के साथ कुछ जानकारियाँ और मनोरंजन, ये है नई किरण।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आशा करूंगा कि आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज विशेष हमारे साथ मुंबई से कलाकार भी आए हुए हैं, उनसे बात करने वाले हैं। और आज का ये शुभ दिन आप सभी को, जैसे कि मंगल दिवस है, मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, तो आज मुझे लगता है कि आप फिर से हनुमान जी को याद करेंगे। और हनुमान जी बहुत पॉपुलर हो गए हैं, हनुमान अंश फिल्म की वजह से थिएटर जो है उनके वजह से फुल हो रहे हैं और एक नया इतिहास जो है उन्होंने रचा है। तो ये हनुमान जी की ही कृपा समझते हैं हम लोग। और इस तरह का जो इतिहास है पहली बार रिपीट हो रहा है, ऐसा इंडस्ट्री में जो पहले से इस्टेब्लिश हैं उनकी फिल्में ही ज़्यादातर चलती हैं और उसमें भी कुछ लोगों का चलता है। अब ऐसा पूरा ट्रेंड ही एक तरह का एक चेंज हो गया कि जो बिना प्रसारण के, बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना लॉन्चिंग के, यानी जो फिल्म को लॉन्च करने में जो पैसे लगते हैं या फिर जो इवेंट्स करते हैं या फिर ऐसे कुछ विशेष काम किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, ऐसा कुछ ना करते हुए भी ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आई और ऐसा लग रहा था कि फिल्म अभी फ्लॉप हो गई, अब नहीं चलेगी, बंद होने पर है। तो ऐसे सिचुएशन में पता नहीं क्या मैजिक हुआ और मैजिक देख ही रहे हैं हम सभी लोग कि फिल्म जो है धीरे धीरे अपनी जो है पकड़ मजबूत करने लगी और फिर इस तरह से हनुमान अंश फिल्म जो है सुपर डुपर हिट और जो वर्तमान समय का जो ट्रेंड है 300-400 करोड़ का जो बजट है या फिर इस तरह के जो नाम आते हैं कमाई के अलग अलग फिल्मों के, तो उस रेंज से भी आगे पहुंच रही है हनुमान अंश फिल्म। तो ये कहीं ना कहीं कुछ संकेत हम सभी को दे रहा है कि अध्यात्म जीवन का एक बहुत बड़ा मूल्य है जिसे हम सभी को समझना है और उस आस्था के साथ हमें जीवन जीना है ताकि हम अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करके अपने जीवन को जिए, ना कि किसी और चीज़ों के साथ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नई किरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मंगल दिवस की मंगल कामनाएं करते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुंदर संगीत आपके नाम, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। हनुमान जी का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे और मारुति नंदन जी का ये सुंदर गीत हम सभी को आकर्षित करता है और उनकी महिमा सुनकर खुशी भी होती है। चलिए, आज विश्व हृदय दिवस है और संकष्ट चतुर्थी है। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए, हमारे साथ राणा अभिनव जी जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ ही अब रेडियो पर अपनी सेवा दे रहे हैं। तो अभिनव जी, बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा
0: जी। जी जी, बताइए आप अभी वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं और क्या सीख रहे हैं?
1: सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार
0: जी,
1: और
0: जी
1: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रेडियो मधुबन में। और अभी मैं भाई जी से सीख रहा हूँ कि आरजे का काम क्या होता है, कैसे वो किस तरह से जो है आप सभी के लिए कितनी मेहनत करके प्रोग्राम डिज़ाइन करता है, तो अच्छा लग रहा है इसमें। जबकि मैं यहाँ पाया तो मुझे कुछ मतलब ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन अभी मुझे यहाँ आने के बाद भाई साहब ने सिखाया मुझे कि आपको जो है रिकॉर्ड भी करना है, खुद एडिटिंग भी करनी है, म्यूजिक भी देना है। तो लगभग लगभग मुझे आ गई हैं ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई साहब।
0: और आप बॉम्बे क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या रहा, उसके बारे में बताइए। पिछले
1: मुंबई में मैं एक्टर हूँ, राइटर हूँ। एज एन एक्टर मेरी अनवांटेड फिल्म आ चुकी है 2022 में, लीड था मैं और उस फिल्म का राइटर भी मैं हूँ। उसके बाद एक मूवी और आई है, फेसबुक वाला प्यार, जो अभी अमेजोन पे चली गई वो फिल्म।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद जो लेटेस्ट मूवी थी वो अपने ब्रह्मा कुमारीज की फिल्म थी द लाइट, जिसे सुजीत सरकार जी ने
0: बनाया
1: था उस फिल्म को। और अभी जो है करेंटली जो है अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें एक वेब सीरीज है जिसमें काम चल रहा है हमारा, और एक मूवी भी है।
0: चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इन सारी चीज़ों के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हैं, तो ब्रह्मा कुमारी का थोड़ा अनुभव सुनाइए।
1: मैं एक्चुअली बॉम्बे एक्टर बनने के लिए गया था, तो किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल में मैंने दाखिला लिया। और अपना जो है कोर्स कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि अगर इस लाइन में काम करना है तो मेडिटेशन आना भी ज़रूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो मेरे एक दोस्त थे तो वो मुझे लेकर गए वहीं लोखंडवाला में, ब्रह्मा कुमारीज का एक सेंटर है। तो पहले दिन मैं गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा अच्छी जगह है, यहाँ आना चाहिए। अब फिर 7 दिन का मेरा कोर्स हुआ और उसके बाद मुझे लगा कि ये तो जीवन का एक अभिन्न अंग है, तो इसको तो साथ रखना चाहिए। तब से मैं जुड़ गया और वहाँ जाने के बाद एक्चुअली मैं राइटर बना।
0: क्या बात।
1: क्योंकि वहाँ जाने के बाद वहाँ दीदियों ने मुझसे कहा कि आप एक्टर हो तो कुछ प्ले लिखो बच्चों के लिए। तो वहाँ समर वेकेशन में ये होता है, समर कैंप वगैरह हुआ करता
0: जी, जी, जी, जी।
1: तो वहाँ से मैंने प्ले लिखना शुरू किया और फिर उनका प्ले लिखते लिखते फिर दीदियों ने कहा कि अब आप भी प्ले करो। फिर हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया और प्ले करना शुरू किया, तो तकरीबन 40 प्ले मैंने लिखे और हम लोगों ने मंचन किया उसका, बहुत अच्छा रहा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और तब से अपना जो है लेखन का भी कार्य चल पड़ा।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया अभिनव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और यहाँ आकर आप एक नया प्रोग्राम भी कर रहे हैं और रेडियो मधुबन के लिए भी एक प्रोग्राम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अपना खुद का ही है। क्या नाम है उस प्रोग्राम का
1: जिसका नाम है आध्यात्म और मनोरंजन का संगम।
0: बहुत बढ़िया। चलिए, अध्यात्म और मनोरंजन का संगम रेडियो मधुबन, ये बहुत ही सुंदर जो प्रोग्राम है आने वाले समय में आप सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अभिनव जी की जो अनुभव है और फिल्म और अध्यात्म और मनोरंजन, ये तीनों का एक मिला जुला इस चीज़ों को समझ पाएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम को हमारे श्रोता तक पहुंचाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अभी तक 5-6 एपिसोड हो गए तो 30 एक बंच बनाने के लिए बोला है हमने। जब ये पूरा होता है तो आपके ये प्रोग्राम यहाँ पर रेडियो पे लॉन्च करेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बता दें आज हृदय दिवस है तो हार्ट के पेशेंट्स हमारे भारत में भी बढ़ रहे हैं, विदेशों में भी बढ़ रहे हैं, तो इसके ऊपर इसीलिए ये दिन मनाया जाता है ताकि लोग इसके ऊपर सोचे समझे और हार्ट अटैक से बचें, हृदय रोग से बचें। इसके लिए ये जागरूकता का दिन है तो आप सभी को हृदय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आशा करूंगा कि आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आ गए हम भूल जाओ गम। जी हाँ, विश्व हृदय दिवस की बातें कर रहे हैं और हर साल जो है 29 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। और अव्यवस्थित जीवन शैली और असंतुलन खानपान के चलते दुनिया भर में हृदय रोग के पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और भागती दौड़ती जिंदगी में लोगों को अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने का मौका नहीं मिलता, जिसके कारण भारी खामियाजा चुकाना पड़ रहा है। हृदय रोग विशेषज्ञों के अनुसार दिल की बीमारी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। इसके लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं होती। महिलाओं में हृदय रोग की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, बावजूद इसके कि इस बीमारी के जोखिमों को नज़रअंदाज कर देती है। आज भी भागदौड़ भरी जिंदगी में एक दिल ही है जिस पर सबसे अधिक बोझ पड़ता है। तनाव, थकान, प्रदूषण आदि कई वजहों से रक्त का आदान प्रदान करने वाले इस अति महत्वपूर्ण अंग को अपना काम करने में मुश्किल होती है। इसीलिए विश्व हृदय दिवस लोगों में ये भावना जागृत करता है कि वे हृदय की बीमारियों के प्रति सचेत रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आशा करूंगा कि आप सभी को पता है कि ये हृदय रोग कितना मुश्किल वाला काम कर देता है और बहुत से लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाकर उनकी जान तक ले लेता है। तो ऐसे में हम सभी को जो है इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है और ज़िंदगी को हंसी खुशी जीने के लिए ज़िंदगी की रीत को समझना है और अपने आप को इस दौड़ भागती हुई ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ पल अपने लिए भी निकालना है। थोड़ा सा समय अगर आप निकालेंगे अपने लिए, आधा घंटा, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर जीवन शैली को अपना सकते हैं। हेलो जी, नमस्कार। ओम शांति। सुरेश जी बोलिए, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की।
1: आपसे बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और अच्छा दिन है। जैसे आपने बताया कि आज हृदय दिन है, तो बिल्कुल सही है सर की आज उस भागती दौड़ की जिंदगी में पता नहीं लोग कहां से कहां दौड़ भाग हो रही है। हम देखते हैं कई जगह पे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड पे है, कोई बाजार में है, लोग दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि भाई दौड़ते दौड़ते हम खड़े हो जाएंगे कब पता नहीं। तो ख्याल रखना है, जिंदगी को एकदम अच्छा बनाना है कि जीवन बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है, फिर भी लोग आते पैसे के पीछे भाग रहे लेकिन खुद का ध्यान नहीं देते कि भाई हमारा स्वास्थ्य कैसा है। हमारे लिए भी खुद का थोड़ा सा टाइम निकालना जरूरी रहता है। तो बस आराम से काम कीजिए, हमारा शरीर का बॉडी का ध्यान रखना है, कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाना है। कई बार क्या लोग पता है कि भाई हमको ये तकलीफ है, मुझे थोड़ा सा तनाव, थोड़ा दुख रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर भी लोग नजरअंदाज करके अस्पताल नहीं जाते हैं और बाद में रात को सोते हैं तो सो ही जाते हैं, बाद में खड़े नहीं होते सुबह में। कई जगह पे हमारे गांव में भी दो तीन जगह पे ऐसा ही हुआ सर के रात को सोता है सुबह में जब जगह नहीं गया तो कुछ नहीं था बस, तो ऐसा हादसा हो जाता है। लेकिन बस हम तो ऐसा कहेंगे कि काम करना है लेकिन आराम से करना है, ध्यान रखना है, बॉडी को भी ध्यान रखना है, कैसे काम करें, समझ से काम करें। हम एक बार सूरत गए थे सर, रात को 2-3 बजे थे, हम ट्रेन में आने वाले थे, फिर भी रात को भी जैसे दिन है ऐसे लोग वो सीढ़ियों पर दौड़ते भागते जा रहे थे। तो मैंने सोचा ये जिंदगी क्या करनी है, पैसा कमाना है लेकिन ऐसा तो नहीं पैसा कमाना कि पूरा रात दिन तक बस दौड़ते ही जाए। बस हम तो ऐसे जिंदगी नहीं चाहिए सर, आराम से जिंदगी कीजिए तो हम अच्छी तरह से रह पाएंगे सर। और मंगलवार है, सभी आज के दिन की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हमारे सभी सुराराम जी है, कंचन भाई है, सभी मित्रों को आज के दिन की शुभकामना। एक गाना भी मैंने चुना है हनुमान जी का की मारे माथे दादानो हाथ भीक मन को नी लगे, मारे माथे छे दादानो हाथ भीक मन को नी लगे, पुष्ट बंजन सदाए थे साथ भीक मन को नी लगे। कैसा गाना है सर? नमस्ते सर, ओम शांति।
0: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जी, थैंक यू सो मच अपनी भावनाएं विचार साझा करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और विश्व हृदय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के समय में इसकी जो तादाद है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिस वजह से WHO का कहना है कि आज के दिन लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए और ख़ास इस विषय को लेकर विश्व हृदय दिवस को हृदय के बारे में लोगों को बताना, इसकी थीम वन डे वन होम वन हार्ट, यानी एक संसार एक घर और एक दिल, जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र हर व्यक्ति को अपने हृदय के प्रति जागरूक बनाना चाहता है। और ये खास इसलिए कहा जाता है कि भाई अगर आपका दिल ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर आपका दिल में गड़बड़ी है तो बाकी सब भी गड़बड़ आ जाता है। तो उद्देश्य यही है कि लोगों को हृदय रोग से बचाना, हृदय रोग के प्रति जागरूक करना और एक दूसरे को अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरणा देना और स्वस्थ जीवन शैली के लिए हृदय रोग से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है ये यहाँ पर बताया गया है। तो हृदयघात का संभावना जो है उम्र बढ़ने के साथ साथ दिल का दौरा पड़ता है और हम यही मानकर चलते हैं, लेकिन सच अभी ऐसा नहीं है। बूढ़ों को दिल का दौरा नहीं पड़ रहा है, दरअसल दिल के दौरे की नींव बचपन में ही आ जाती है और ये समस्या बचपन में शुरू हो जाती है और चुपचाप वो अपना काम करती रहती है और फिर जब समय आता है तो ये एक मुश्किल घड़ी पैदा कर देता है। तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना है कि बुढ़ापे की बीमारी है, ये किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है और इसका पूरा जो चीज़ें हमारी जंक फूड के कारण भी बहुत सारी चीज़ें और चर्बी या फिर नॉन वेज या फिर ऐसी चीज़ों का सेवन करने से ये ज़्यादा जोखिम भरा हो जाता है, जिसमें हमारी हृदय की नलियों में जो खून बहता है वो गाढ़ा हो जाता है या उसमें कचरा आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो हृदय तक नहीं पहुंचता है या उसकी गति कम हो जाती है तो मुश्किलें आ जाती है। तो ऐसे में हमें एक स्वस्थ जीवन शैली और अच्छे खान पान का आदत रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आज के दिन जागरूकता के रूप में देखा जाता है हृदय की सेहत को, यानी हृदय को दिल को अच्छा रखने के लिए कार्यस्थल पर ऑफिस में कुछ ख्याल रखना ज़रूरी है। कार्य प्रणाली के अनुरूप हृदय की सेहत कैसे दुरुस्त रहे, हृदय हमारा कैसे स्वस्थ रखे, इसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा समय व्यायाम के लिए निकालना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे तक व्यायाम करना हृदय के लिए अच्छा होता है। यदि समय की कमी है तो आप तेज कदमों से टहल भी सकते हैं। सेहत के अनुरूप ही खान पान तथा आहार लेना चाहिए। नमक की कमी मात्रा का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि सब्जियों में वैसे नेचुरल नमक होता है लेकिन हम थोड़ा अलग डाल देते हैं उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, तो इस चक्कर में भी काफ़ी कुछ आ जाता है। तो भोजन में कम वसा वाले आहार ग्रहण करना चाहिए। ताज़ी सब्जियां और फल अधिक मात्रा में लें। अपने प्रतिदिनचर्या में समय पर नाश्ता और समय पर लंच करें। तंबाकू जैसे और नशीली चीज़ों का व्यसन नहीं करें। घंटों एक ही सीट पर बैठना हृदय के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए बीच बीच में आप थोड़ा सा गैप ले लें। अगर एक ही काम बार बार कर रहे हैं तो 5-10 मिनट के लिए हर घंटे में आप उस काम को छोड़कर थोड़ा सा टहले और फिर काम पे लग जाए। तो आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जीवन शैली में जो चीज़ें बैठने का कंप्यूटर का काम करने का जो आ गया है, जिसके वजह से मुश्किलें और बढ़ी हैं। और इसके विपरीत अगर शाम को थोड़ा टाइम मिले साइकिल चलाएँ, थोड़ा टहले, थोड़ा सा अगर तैरना का मौका मिलता है या आपके आसपास में कई नदी हैं तो वहाँ जाके थोड़ा तैर के आइए। रोज़ाना 30 से 50 मिनट जो है आप अपने लिए दें, जिसमें आप इन्हीं चीज़ों को करें, व्यायाम करें, घूमना फिरना करें, तो इससे आपका हृदय रोग का बीमारी जो है कम होता है। तो चलिए वक्त हो रहा है समाचारों का, समाचारों के बाद फिर हम आपसे रूबरू होंगे और हृदय दिवस की जो है हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट यही है, अगर आपके घर में कोई माता पिता है जिनको हृदय का ऐसी चीज़ें हैं, या शुरू शुरू में ही हम इन सभी चीज़ों को अपने घर के सारे लोगों को कुछ आदतें ज़रूर डालने की रखनी चाहिए, जैसे सुबह आप जल्दी उठ जाएं, सभी लोग मिलकर योगासन करें, प्राणायाम करें, शाम को सोने के पहले भी थोड़ा सा ध्यान योग करके सोएं, और खाने का जो है एक अच्छी तरह से उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, एक नियम बना ले खाने का कि खाने में इस तरह के पूरे हफ्ते में हम इस तरह के वैरायटीज़ खाएंगे, अच्छे वैरायटीज़ खाएंगे, और उसमें देखना है कि वसा और इन सभी चीज़ों का उपयोग ना हो, ऐसी चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दें। तो आशा करूँगा कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो फिर मिलते हैं, समाचार आ चुके हैं, समाचार डाउनलोड हो चुके हैं, सब चलते हैं दिल्ली और समाचार सुनते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की। अमेरिका ने भारत और 19 अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के मौजूदा सत्र में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को CBSE से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 2027 से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से भारतीय मूल की दो भाषाओं सहित तीन भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन वाली अपनी नीति को लागू करने पर विचार करने को कहा था। ये विवाद CBSE के अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने के निर्णय से संबंधित है। इस रूपरेखा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और PUC प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्री हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को सुदृढ़ करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्चस्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले उसके दौरान जरूरी उपाय की समीक्षा की गई।
3: कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर PUCC नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान और नियमों का पालन सुनिश्चित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाई जाएगी और मलबा ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। सर्दियों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नितिका गुप्ता के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
4: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
5: हमारी संस्कृति हमें सिखाती कि प्रकृति से जितना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
4: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जरगा पंचायत ने सच कर दिखाया है। यहाँ के कझाटांड गाँव की भी बंजर रही भूमि को जल योद्धा पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी से हरा भरा कर दिया है। पार्वती देवी को इसके लिए राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है।
6: पहले बारिश के पानी सीधे जंगल चल जाता था, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सब सारा अनाज मिलेगा, बहुत ही अच्छा फसल होता है बारिश के पानी जब से रुका है।
4: साहिबगंज के आदिवासी इलाकों में इस साल 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर जल, जंगल और वन्य जीवों को नया जीवन दिया गया है। इससे स्थानीय आदिम जनजातियों को गांव में ही रोजगार और पत्तों और बांस से अतिरिक्त आय मिल रही है।
7: नाम है चुन्ना हरदा। इस जंगल में हम लोग आम भी लगवाए हैं और केन भी है, फल उल दर है। उससे हम लोग गांव वाला को भी यहां उस बेच उच करके हम लोग का सुविधा होगा।
4: ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। झुमरी तिलैया जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 10,000 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
2: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
8: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है जिनमें 4 स्वर्ण 20 रजत और 21 कांस्य पदक है।
2: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दक्षिण आंतरिक कर्नाटका तमिलनाडु पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश केरलम माही कोंकण गोवा और ओडिशा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है किशोरियों से गैंगरेप पूरे तंत्र की विफलता, रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े 4 और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने यूपीआई भुगतान से जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एमडीआर पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद, पंजाब केसरी की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लिखा है ट्रैफिक चालान न भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें, बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र तैयार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बयान अमर उजाला में है। हिंदुस्तान ने विश्व हृदय दिवस पर भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण दिया है। प्रदूषण दिल के मर्ज को जानलेवा बना रहा, हर साल 17 लाख लोगों की हार्ट अटैक से होती है मौत। लोकसत्ता ने मौसम का मिजाज शीर्षक से लिखा है सितंबर की बारिश ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, फिर भी 11.8% कम वर्षा। एशियाई खेलों में विद्या रामराज के नए रिकॉर्ड को भी अखबारों ने सचित्र दिया है।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष सीबीएसई की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आज हमारे साथ विशेष स्टूडियो में आप देख रहे हैं डॉक्टर जिनेन्द्र शास्त्री जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जो युवा समाज सेवी हैं और प्रदेश संयोजक भी हैं और साथ ही साथ भाजपा आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष प्रतिनिधित्व है राजस्थान के। आज हमारा जो विषय है युवा और अध्यात्मा, इसे आज हम देखते हैं कि युवाओं को कहीं न कहीं उनकी जो शक्ति है उसका सही उपयोग होना चाहिए। भारत एक युवा देश है, तो उन्हीं युवाओं को लेकर आज हमारे साथ डॉक्टर जिनेन्द्र शास्त्री जी आए हुए हैं अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर जिनेन्द्र शास्त्री जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। ओम शांति।
1: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी भाई साहब, और मैं बहुत अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ कि मधुबन रेडियो, जो कि इस क्षेत्र का ब्रह्मा कुमारी रेडियो स्टेशन का बहुत बड़ा एक प्रकल्प है, और मैं बहुत लंबे समय से आपके विषयों को भी सुनता हूँ। आपने पूर्व में भी मुझे बुलाया, मैं आपको आज स्टूडियो में बुलाने पर मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ समस्त युवाओं की तरफ से, उदयपुर के युवाओं की ओर से।
0: जी, डॉक्टर जितेंद्र शास्त्री जी, हम लोग आज जो विषय लेकर बात कर रहे हैं अध्यात्म और युवा, तो सबसे पहली बात आती है कि अध्यात्म व युवा को देखते हुए आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा कैसे आप बताएं?
1: देखिए, अध्यात्म और युवा दोनों देखा जाए तो एक दूसरे के पूरक है। आत्मा के उच्चतर समझना योग्य जो अभ्यास है वही अध्यात्म है, और युवा या साथ उसको विपरीत करते तो वायु बनता है। ये ऐसी एक उम्र 15-16 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की एक ऐसी उम्र जिसमें वो जो चाहे वो कर गुजरे, उसी का नाम युवा है। और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और वास्तविकता में अध्यात्म के बिना युवा नहीं हो सकता और युवा के बिना अध्यात्म नहीं हो सकता है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये परिस्थिति थोड़ी च्युत होती हुई हमें दिखती है,
0: बिल्कुल अलग होती हुई दिख रहा है दोनों परिप्रेक्ष्य। तो इसमें मैं चाहूंगा कि एक और सवाल आता है, युवा का आज का जो युवा है वो कहां जा रहा है, आपको क्या लग रहा है?
1: जी रमेश जी, आपका बिल्कुल सही कहना है कि आज का युवा कहीं ना कहीं भटक रहा है सही मार्ग के कारण। जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया, युवा को विपरीत करते तो वायु बनती है। वायु यदि सही दिशा में चले तो निश्चित ही खेत खलिहान बहुत व्यवस्थित रहेंगे और जीवन भी सामान्य रहेगा, लेकिन वही वायु बिगड़ जाए, तूफान का रूप ले ले, तो वो अस्त व्यस्त कर देगी, पूरा नष्ट कर देगी, बर्बाद कर देगी। ऐसा ही हमारा युवा है। अगर युवा सही दिशा में चलेगा तो देश का भी सार्थकता करेगा, समाज का भी भला करेगा और स्व का भी करेगा। लेकिन अगर युवा बिगड़ गया तो आप देख रहे हैं जो युवाओं की उम्र इस समय, युवा की जो 16 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के रूम आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया में अपराध हो, चाहे उनके निजी जीवन में अपराध हो, उनसे बचने के लिए अब युवाओं को अपने निज का ध्यान, अपनी आत्मा का कल्याण करने की ओर, और मैं तो कहता हूँ देश सेवा की ओर हम कैसे बढ़ें, उसकी चिंता करनी पड़ेगी। आज का युवा भटक गया है, और मैं चाहता हूँ युवाओं को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, रेडियो चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज का युवा सही दिशा में कैसे चले उसकी चिंता उसको करनी चाहिए, क्योंकि युवा सही दिशा में नहीं चलता है, और वह सही दिशा तभी निर्धारित हो पाएगी जब वो अध्यात्म की ओर बढ़ेगा और अपने आप में वो धर्म को जोड़ेगा। जब जब वो धर्म को छोड़ेगा वो अपनी दिशा भ्रमित होगा और धर्म को साधेगा तो निश्चित ही वो उसकी दिशा और दशा दोनों ठीक चलेगी, ऐसा मेरा मानना है।
0: जी, डॉक्टर जितेंद्र शास्त्री जी, काफी अच्छी बात है आपने बताया, वर्तमान परिपेक्ष को आपने जो है अपने शब्दों में बताने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आज युवा ये सब कुछ जानते हुए, अध्यात्म और युवा दोनों एक दूसरे के पूरक आपने शुरुआत में बताया है, तो युवा आज अध्यात्म से क्यों दूर जा रहा है, क्या कारण है?
1: इसका एक ही कारण है, युवा को इसका ध्यान नहीं है कि उसको करना क्या है। उसके कहीं ना कहीं प्रारंभिक अवस्था से ही संस्कारों में कमी का अभाव मैं समझता हूं, और इसके जिम्मेदार मैं उनके माता पिता को मानता हूं। आप देखिए रमेश जी, आपने बोला कि जिनेन्द्र जी आप अध्यात्म और युवा के बारे में समझाइए, तो डॉक्टर जिनेन्द्र शास्त्री आपको इसलिए बता पा रहा है कि मेरे को बचपन में ऐसे संस्कार दिए गए अध्यात्म के, धर्म के, संस्कृति के। आप देखिए, अगर आज का युवा संस्कारवान नहीं होगा तो निश्चित ही वो पदभ्रष्ट होगा, व्यभिचार करेगा, व्यसन करेगा, चोरी करेगा, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं धोखाधड़ी करेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं भाग्यवान उस देश में पैदा होने पर जिस देश में विश्व में सर्वाधिक युवाओं की संख्या यदि कहीं है वो मेरे भारत में, और आज का युवा यदि संस्कारवान होगा, बाल्यकाल से ही उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि सामूहिक परिवार एक बहुत बड़ा इन युवाओं को संस्कार देने का माध्यम होना हुआ करता था, लेकिन आजकल एकल परिवार होना, हम दो और हमारे एक, यह जो प्रवृत्ति होगी, ये मेरा ऐसा मानना है आने वाले 20 वर्षों में हमको देखने मिल जाएगा। किसी बहन के भाई नहीं होगी, भुआ नहीं होगी, अंकल नहीं होंगे, कई रिश्ते इनसे खत्म हो जाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि आज का युवा बहुत सुव्यवस्थित सुनियोजित अपने जीवन का यापन करे और सिर्फ हाय पैसा नहीं करे, क्योंकि युवा सोचता है अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छी लाड़ी मिल जाए, अच्छा जीवन यापन कर ले। तो मैं मानता हूँ शायद ये कहीं ना कहीं युवा की ये मिथ्या भ्रांतियां हैं, जिसको हम सबको मिलकर इनको सही मार्ग और सही दिशा और सही समय पर अगर इसको हम टर्न कर लेंगे तो निश्चित ही देश भी बढ़ेगा। और अगर किसी देश में युवा यदि सुसंस्कारवान है तो वो देश भी आगे बढ़ेगा, समाज भी आगे बढ़ेगा और वो परिवार भी आगे बढ़ेगा।
0: जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि आपने युवाओं को नजदीक से देखा है उनके जीवन को, इसलिए आप उनकी जो परिभाषा जो है बात ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। और एक बात यहाँ पर आता है कि वर्तमान में युवाओं की सोच जो आपने बताया, क्या वही है या कुछ और भी सोच उनका चल रहा है, किस तरह की सोच?
1: रमेश जी, आज के युवाओं की सोच सिर्फ पाश्चात्य देशों, पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। आप देखिए कि आज का युवा, आपको कुर्ता पजामा धोती तो गायब हो गई है, मुझे नहीं दिखता है कि शायद कोई युवा धोती पहन के चलता है। पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या पाश्चात्यता चढ़ गई है कि वो सोचता है नहीं, कुर्ते पजामे पहनना ये देहाती काम है। अरे, देश की संस्कृति है, जींस को इसलिए पहना जाता था, ये पाश्चात्य देशों में इसलिए पहना जाता था कि उसको कई दिनों तक धोना नहीं पड़ता था, उसी जबकि हमारे देश में तो प्रतिदिन कपड़े बदलने का प्रावधान है, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी और बहुत सारे वायरस होते हैं, इसलिए हमको नहाने का प्रावधान है। विदेशों में तो शौच क्रिया करने के बाद भी हाथ नहीं धोने के प्रावधान है, टिश्यू पेपर, ये कहां से पैदा हो गया? हमारे देश में तो हमारी संस्कृति अपने आप में पूर्ण है, और वो संस्कृति अगर अपने अपने अपना ली तो मैं मानता हूं देश का युवा भटक नहीं सकता है। वह युवा तभी भटकेगा जब संस्कृति से च्युत होगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मधुबन रेडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, 107.8 के माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित ही हम युवाओं को बाल्यकाल से ही इसकी ट्रेनिंग दें। मैं आरएसएस से जुड़ा हूं, हमको बाल्यकाल से ही शाखाओं में जाने का ट्रेनिंग दी जाती है। मैं जिस धर्म को मानता हूँ, जैन धर्म को, वह बाल्यकाल से ही हमको किस प्रकार का भोजन करना, कैसा भोजन करना, चोरी क्या होती है। आपने सुना होगा किसी की पड़ी हुई वस्तु को उठा लेना चोरी है, लेकिन जैन धर्म कहता है कि उसको चुराने का भाव करना भी चोरी है। भाव प्रधान धर्म होता है, और मैं तो कहता हूं कि ये जैन एक धर्म नहीं है, जैन एक सभ्यता है, जैन एक आमना है, जैन एक अनेकांत की ओर बढ़ाने वाला माध्यम है, और ये सभी धर्मों को एक साथ जोड़ने का मादा रखने वाला धर्म है। तो मैं मानता हूं हिंदू धर्म, जैन धर्म, सभी आपको अनेकता, एकता, अहिंसा, शाकाहार, इसकी ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आज का युवा सिगरेट फूकने में अपनी संस्कृति समझता है, गुटखा खाने में संस्कृति समझता है, बियर की बोतलों को के साथ फोटो खिंचाने में संस्कृति समझता है, जबकि उसको यह नहीं पता है कि जब वह विवाह करेगा, उसके बच्चे होंगे, तो निश्चित ही जैसे माँ बाप कर रहे हैं वैसा ही वो करेगा, और वो उसी में अपनी संस्कृति समझेगा। इसीलिए हम पाश्चात्य की ओर ना बढ़कर भारतीयता की ओर बढ़े, भारतीय संस्कृति की ओर बढ़े, और उसी को हमारी संस्कृति का अंग माने, तो मैं रमेश जी मानता हूं कि ये निश्चित ही हमको सफलता मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ, और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी जो महिलाएं थी उन्होंने भारतीय साड़ी पहनी। आप सोचिए, मेरे देश की संस्कृति विदेशी लोग अपना रहे हैं और हम च्युत हो रहे हैं, हमारे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं और विदेशों के कपड़े पूरे होते जा रहे हैं, हमको इस पर विचारना पड़ेगा। आप देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि रमेश जी, मैं बड़ा दुखी होता हूं कि आज का युवा प्रेग्नेंट उसकी पत्नी के पेट को वह पास ला के फोटो खिंचाता है। हमारे देश की ये संस्कृति नहीं है, हमारी ये परंपरा नहीं है। मैं समझ सकता हूं जब ये कुछ युवा सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा, देखिए नजर भी लगती है। हमारी देश में कुछ चीजें ऐसी भी है जिसको ढाकना पसंद है, प्रेग्नेंट महिला का पेट में और उसके पास आके फोटो खिंचाना, ये मेरे देश की संस्कृति नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए हमको समझना पड़ेगा, सिर्फ फोटो के लिए फोटोजेनिक अपने जीवन को बनाने से बढ़िया हमको रील नहीं, रियल लाइफ हो, इस पर चिंता करना चाहिए। और मैं मानता हूं निश्चित ही आपका जो मिशन है अध्यात्म और युवा, यह युवा इसको स्वीकार करेगा। इसके पीछे भी प्रश्न है, डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री है।
0: बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे परिवेश में ये सारी चीजें हम लोग जान रहे समझ रहे हैं। तो अब एक और बात आता है डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री जी कि अध्यात्म की बात आप शुरुआत से कर रहे हैं और युवा को उसमें जोड़ रहे हैं, लेकिन युवा इस बात से बड़ा मुश्किल में है कि किस उम्र में अध्यात्म को शुरू किया जाए। सभी जो है सोच रहे हैं कि अब तो अध्यात्म मना जब परिवार पूरा हो जाए, जब नौकरी पूरा हो जाए, रिटायरमेंट के टाइम पे ये सारी चीजें होनी चाहिए, ऐसी मानसिकता रहती है। तो आपके हिसाब से सही उम्र क्या है अध्यात्म में प्रवेश करने का?
1: बहुत आपने बहुत अच्छा ज्वलंत प्रश्न पूछा है और आज के युवाओं के लिए ये मैं तो कहता हूँ शायद इसका पूरा कंक्लूसिव जो निकला है वो यही प्रश्न है। देखिए रमेश जी की वास्तविकता में अध्यात्म करने की या धर्म करने की सही उम्र क्या है, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे तो लगता है शायद आप पूरी तैयारी से आए हैं इस बात के लिए कि कहीं ना कहीं जिनेंद्र जी को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि आखिर युवा अध्यात्म में क्या है। तो मैं आपको बता दूं अध्यात्म को सही करने की उम्र ही युवावस्था है। आप देखिए 65 वर्ष की उम्र के बाद अगर आप यात्रा करने जाएंगे तो कहीं घोड़े काम नहीं करेंगे, कहीं आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा, कहीं सर दर्द होगा, कहीं और अलग बीमारियां होगी, लेकिन अगर युवावस्था में अगर उसने धर्म मार्ग की ओर बढ़ा है, अध्यात्म की ओर बढ़ा है, आओ मंदिर चलो अभियान से अगर वो जुड़ेगा तो निश्चित ही मैं मानता हूं कि अध्यात्म को करने की सही उम्र युवावस्था ही है। उनको सब मंदिर, सब क्षेत्र, सब तीर्थों की वंदना करने की सही उम्र मैं ये समझता हूं वो युवावस्था ही हो सकती है। और बुजुर्ग की अवस्था में तो मैं तो कहता हूं उस गति में तो उस अवस्था में तो निश्चित ही हमें चिंतन करना चाहिए, उसके अलावा नहीं, क्योंकि सही उम्र युवावस्था है और युवावस्था के माध्यम से ही हम हमारे जीवन को समझ सकते हैं, हम अपने आप को समझ सकते हैं, या आपकी भाषा का कहूँगी अध्यात्म को सही समझने की उम्र युवावस्था है। थोड़ी उम्र बढ़ जाएगी तो आप बीमारी से गिर जाएंगे, कहीं आपकी फैमिली समस्या, कहीं आपकी दोईती की समस्या, कहीं पोता पोती की समस्या, कहीं बेटे की समस्या, कहीं रोजगार की समस्या, आप अध्यात्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा मानता है जब आप सेटल्ड हैं तभी वो युवावस्था और युवावस्था में ही अध्यात्म को करने की सही उम्र में, ऐसा मेरा मानना है।
0: जी डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, सही उम्र युवा अवस्था में ही हम अध्यात्म को अपने जीवन में अपना सकते हैं और अध्यात्म का विकास के साथ हम जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर और सुंदर बना सकते हैं। जिस तरह से आज हम लोग अध्यात्म को अपने जीवन में नहीं अपना रहे इसलिए कई मुश्किलों में फंस रहे हैं और जो भारत की छवि है उस पर कहीं ना कहीं दाग लग रहे हैं। अगर हम अध्यात्म को जुड़ेंगे, अध्यात्म को अपनाएंगे तो शायद अध्यात्म भारत का जो पहचान है पूरे विश्व में वो भारत को इसलिए मानते हैं क्योंकि अध्यात्म का देश भारत है, भारत अध्यात्म की जननी है। इसलिए सारे पूरे ही देश के पूरे राष्ट्र के लोग, कंट्रीज के लोग जो है भारत में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म को पाने के लिए। अगर हम युवा अध्यात्म का प्रदर्शन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में भारत अध्यात्म देश है ये पहचान शायद हम गुमा देंगे। इसलिए हमें अब इस बात पर जोर देना है कि हम सभी मिलकर भारत की इस पहचान को बनाए रखने में अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़े और अपने जीवन को सुंदर बनाए और इसी में पूरे विश्व का कल्याण समाया हुआ है। सारा विश्व जो है एक आंस की तरह भारत की ओर देखता है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन को या हमारे जीवन में खुशियां आ जाए तो वो अध्यात्म में आ सकती है, अध्यात्मिकता से आ सकती है। इसीलिए सारे लोग जो है उनकी एक मन में तमन्ना ही रहती है कि अगर हम अपने जीवन काल में किसी भी जगह विश्व के कोने में रहें लेकिन एक बार भारत की धरनी पे पांव जरूर रखें, ये कामना करते हैं सारे विश्व के लोग। अगर हम उस चीज को, उस भावना को अपने अंदर अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया और अध्यात्म और युवा पर जो चर्चा किया वो बहुत ही अच्छा लगा, शुक्रिया।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है सर्व संप्रदाय संत संस्थान उदयपुर के विशेष संस्थापक अध्यक्ष महंत इंद्रदेव दास जी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है
1: जी। ओम शांति।
0: ओम शांति। कैसे हैं महंत जी आप?
1: बहुत सुंदर। जैसा कि सनातन धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, जैसा कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब स्वस्थ रहे, सब मस्त रहे, यह कामना किया जाता है। मैं युवा पीढ़ियों से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि भक्ति का मार्ग बाल्यकाल से ही होना चाहिए। जिस तरह से नर्सरी LKG में पढ़ता है, उसी तरह से बच्चों को अपने माता पिता के द्वारा संस्कार दिया जाना चाहिए कि धर्म के ओर अग्रसित हो रहे जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताया। तो मैं चाहूंगा कि हमारे रेडियो के माध्यम से आपको काफी लोग सुन रहे हैं, एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे
1: जी? संदेश के रूप में मैं यही बताना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी संप्रदाय के हो, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो घटना हो रही है, जैसे कि अभी उदयपुर की घटना हुई कि 15 वर्ष के बच्चों के द्वारा उसके मौत का घाट उतार दिया गया, तो मैं सभी संप्रदाय के लोगों से एक ही बात बोलना चाहता हूं कि जिस तरह से सनातन धर्म में बच्चों को संस्कार दिया जाता है, उसी तरह से आप अपने बच्चों को संस्कार दें। आज से करीब करीब 25-30 वर्ष की पूर्व का आप देख लें कि जब स्कूल बच्चे जाता था तो उसके नख बड़े हो जाते थे तो नख कटवाता था, बाल बड़े हो जाते थे तो बाल कटवाता था, और अभी के समय में एक छुरा और हथियार लेकर के जाता है और उसके द्वारा मर्डर किया जाता है। तो यह बहुत ही निंदनीय, घोर निंदनीय है। इसके विषय में सभी संप्रदायों को सोचना चाहिए।
0: चलिए महंत जी, काफी अच्छी बातें आपने बताया है, और जहाँ तक चीजें जो है हम लोग आज देख रहे हैं, उस परिपेक्ष में अपनी भावनाएं विचार हम लोग सभी जानते हुए भी कहीं ना कहीं हमारी जो है अध्यात्म शक्ति की या भक्ति की या नैतिक मूल्यों की कमी होती जा रही है। तो यहाँ पर इन चीजों पर जो है हम सभी को मिलकर काम करना है, और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश अपने अभिभावक और अपने माता पिता का फर्ज बनता है। उसमें उन बच्चों पर ज्यादा ध्यान दें और बच्चों को अपना प्यार दें
1: जी। मैं पुनः मधुबन रेडियो के भाई रमेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि वास्तविक में आप धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ओम शांति।
0: ओम शांति महंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, हमारा गणेश। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति।
1: ओम शांति।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशेना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। बाहर के दुखों से मनुष्य लड़ लेता है, लेकिन भीतर के क्लेशों का सामना करना उसके लिए सबसे कठिन हो जाता है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, तरोई कैसे फ़ायदा करती है हमारे स्वास्थ्य के लिए, कौन सी बीमारियां ठीक करती है, जानेंगे आप सभी। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो व्यंजन कैसे भूल सकते हैं, नए नए व्यंजन भी सिखाएंगे। और आज का प्रश्न बहुत सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें। धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, बाहर के दुखों से मनुष्य लड़ लेता है, लेकिन भीतर के कलेशों का सामना करना उसके लिए सबसे कठिन हो जाता है। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे, बात चाहे उसके स्वयं के भीतर की हो या घर के भीतर की, दोनों ही क्लेश एक मनुष्य को तोड़ने के लिए किसी शस्त्र के समान है। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, भीतर का युद्ध जीतना इसलिए भी अति कठिन हो जाता है क्योंकि मनुष्य सबको समझा लेता है, लेकिन स्वयं के भीतर हो या घर के भीतर, दोनों को समझाना आसान नहीं हो पाता। दुनिया में अपनी वीरता का पराक्रम दिखाने वाला शूरवीर भी भीतर के क्लेशों के आगे मात खा करके हताश हो जाता है। भीतर की शांति ही हमारे जीवन में प्रसन्नता का स्तर निर्धारित करती है। स्वयं के भीतर हो अथवा घर के भीतर, जहाँ शांति का वास होता है वहाँ मनुष्य के जीवन में खुशियों का निवास भी होता है। मन के भीतर की शांति किसी मनुष्य को खुशहाल कर देती है और घर के भीतर की शांति पूरे जीवन को ही निहाल कर देती है। तो यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही जो आप सभी के सामने रखना चाहूँगी। एक भाई है बहुत बहादुर और बहुत ही अच्छे पद पोजीशन पर, बाहर से दुनिया उनको हर प्रकार से सुखी समझती है, उनका स्वभाव मिलनसार है और परिवार भी भरा भरा है, तो सब यही कहते कह रहे भाई किस्मत आपके जैसे होने चाहिए। देखो हमारे कहाँ ऐसे किस्मत है, आप तो खुश है, आपके कोई कमी नहीं, माता पिता है, भाई भी आपके अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, आपकी बीवी भी अच्छी है, आपका इतना अच्छा पद पोजीशन है, लोग आपको सम्मान देते हैं, और आपको क्या चाहिए। वो भी मुस्कुरा करके टाल देते कि हाँ बिल्कुल मैं भाग्यशाली हूँ, लेकिन अंदर उनका मन बेचैन रहता, अशांत रहता है, अकारण ही। और अकारण भी कैसे, अकारण नहीं, परिवार में कलह कलेश है लेकिन बाहर वो लाना नहीं चाहते, इसलिए अंदर ही अंदर उनका मन खाए जाता है कि कैसे मैं अपने परिवार में शांति लाऊं, कैसे मैं अपने भाई को शिक्षा दूं, कैसे मैं अपने बच्चों को सुधारूं, यही उतल पुतल अंदर मची रहती है। और बाहर सबके सामने हंसते हुए पेश आते हैं, बच्चा है, जुआ खेलना, शराब की लत, और बच्चा भी ऐसे लोगों के सामने अच्छा रहेगा लेकिन चुपके चुपके वो शराब पिएगा और जुए खेलेगा, गलत संग, तो पिता दुखी नहीं होंगे तो और कौन दुखी होंगे। और भाई है कि हर पल प्रॉपर्टी पर डिस्कस करना, चर्चा करना, झगड़ा करना, तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब है, ये घर मेरा है, ये वो मेरा है, माता पिता की भी नहीं सुनता है भाई। भाई पिता कहता है कि भले किसी का भी पद पोजीशन अच्छा हो लेकिन बंटवारा तो दोनों बराबर होगा, तो भाई हर पल झगड़ने को तैयार। और वो नहीं चाहते कि नहीं घर की बात बाहर जाए, इसलिए वो हर पल मुस्कुराते रहते हैं, घर की बात घर में रखते हैं, घर में अपने परिवार के सदस्यों को समझाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाहर लोग एक इशारे में समझ जाते हैं, बाहर किसी को भी वो सलाह देंगे तुरंत मान लेंगे, अंदर कोई मानने वाला नहीं, लेकिन बाहर से सुखी। इसीलिए कहा जाता है कि बाहर के दुखों से मनुष्य लड़ लेता है लेकिन भीतर के कलेशों का सामना करना उसके लिए सबसे कठिन हो जाता है। ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, और फिर से सुन लेते हैं गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। जी हाँ, तरोई जिसको गुजराती में तुरिया कहते हैं, कौन सी बीमारी ठीक करती है जानेंगे। देखिए तरोई क्या है, मधुर, स्निग्ध, पित्त शामक, कफवात वर्धक, मृदुरेचक, कृमिनाशक, मूत्रल, ज्वर, रक्तपीत और कुष्ठादि विकारों में पथ्यकर और उपयोगी है। ठीक है, उष्ण प्रकृति वालों को और पित्तजन्य व्याधियों में तथा श्वास, सुजाक, अर्श, रक्त, मूत्र आदि में इसका शाक विशेष पथ्यकर एवं हितकर है। ठीक है, तो कौन कौन सी बीमारी देख लीजिए, उष्ण प्रकृति वाले, पित्तजन्य व्याधि वाले, श्वास की समस्या, सुजाक, अर्श, रक्त, मूत्र, जिनको भी ये तकलीफ है उनको आप ये तरोई की सब्जी बना करके खाइएगा, काफ़ी हितकर रहेगा। ठीक है, फिर देखिए तरोई के बीज पीस लीजिए, गर्म करके तिल्ली की सूजन पर लेप करिए, इससे तिल्ली की सूजन कम हो जाएगी। अगर तिल्ली पर सूजन है तो तरोई के बीज पीस लीजिए, गर्म करके तिल्ली के सूजन पर लेप करिए, इससे ये सूजन कम हो जाएगी। तरोई के ताज़ा पत्ते पीस कर लगाने से अर्श ठीक हो जाता है। तरोई के ताज़ा पत्ते पीस कर लगाने से अर्श ठीक हो जाता है। अगर पथरी की समस्या है तो तरोई की जड़ ठंडे पानी में पी

करके छानी है। सुबह ही सुबह 3-4 दिनों तक पीजिएगा, पथरी गल करके निकल जाएगी। पथरी, जिसको स्टोन की समस्या भी कहते हैं, तो ऐसी स्थिति है तो तरोई की जड़ ठंडे पानी में पीस करके छान करके सुबह ही सुबह खाली पेट 3-4 दिनों तक पीजिएगा, इससे पथरी गल करके निकल जाएगी। आंखों की पुंसिया है, क्या है, कभी कभी बच्चों के आंखों पर पुंसिया हो जाती है, तो इसमें तरोई के पत्तों के रस की 2-3 बूंद डालनी चाहिए, लेकिन यह आंखों का मामला है इसलिए आप डॉक्टर से राय जरूर लीजिएगा। तरोई के सेवन से पेशाब में जलन दूर होती है और मूत्र खुल करके आता है। तरोई के सेवन से भले आप सब्जी बना करके खाइएगा या किसी भी प्रकार खाइएगा, तो इससे एक तो पेशाब की जलन होगी वो दूर होगी और बाथरूम है जो खुल करके आएगा। तो ये सारे उपाय बहुत ही अच्छे हैं और आप चाहे तो आजमा सकते हैं, क्योंकि इसमें तो अपना कुछ भी नहीं जा रहा है भाई, सब्जी बना करके तो हम खाते ही है, और अगर इस तरह की समस्या आए तो थोड़ा ज़्यादातर लगातार खाइए तो इन समस्या से आप निजात पाएंगे। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, देखिए श्राद्ध का समय चल रहा है, ठीक है, तो अगर आपको अपने किसी दिवंगत बुजुर्ग से 2 मिनट बात करने का अवसर मिले तो आप उनसे क्या कहना या पूछना चाहेंगे, ये आज का प्रश्न है। सभी आप अपने अपने पसंद के अनुसार, अपने अपने विवेक के अनुसार जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है और हमारा कहना यही है आज के आशियाना का प्रश्न, अगर आपको अपने किसी भी दिवंगत बुजुर्ग से 2 मिनट बात करने का अवसर मिले तो आप उनसे क्या कहना या पूछना चाहेंगे। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-14-14-15, और यही पर फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। आज का विषय बहुत ही सुंदर है। पानी तो सबके लिए एक जैसा ही होता है, लेकिन गन्ना मीठा, अंगूर खट्टा, करेला कड़वा और मिर्ची तीखी होती है। इसका कारण पानी नहीं बल्कि बीज है। हम अपने मन में जैसे विचार बोते हैं वैसे ही फलते फूलते हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत ही सुंदर विषय आप सभी के समक्ष रख चुकी हूँ, तो आप जुड़ने की कोशिश जरूर करिएगा। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। अगर आपको अपने किसी दिवंगत बुजुर्ग से 2 मिनट बात करने का अवसर मिले तो आप उनसे क्या कहना या फिर पूछना चाहेंगे? भई अपना अपना जवाब, इंडिविजुअल आप अपना अपना जवाब दे सकते हैं, और आज के विषय में आप जुड़ करके अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, तो आप जुड़ने की कोशिश जरूर करिएगा। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आज के विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। क्या बात है हमारे श्रोता बंधु भाई, व्यस्त हो गए ना? अच्छी बात है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। किसके किसकी तिथि, किसके किसकी तिथि? और श्राद्ध पक्ष तो ऐसे ही सुबह ही किया जाता है, तो जिनके यहाँ श्राद्ध है वो तो नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन सभी के एक साथ में तो आता नहीं है, तो जिनके यहाँ नहीं है वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप? विषय प्रैक्टिकल है। पानी तो सबके लिए एक जैसा ही होता है, लेकिन गन्ना मीठा, अंगूर खट्टा, करेला कड़वा और मिर्ची तीखी होती है। इसका कारण पानी नहीं बल्कि बीज है। हम अपने मन में जैसे विचार बोते हैं वैसे ही फलते फूलते हैं। हेलो हेलो, चलिए भाई फोन उठाया है तो बात कर लीजिए, और फिर से आप कोशिश करिएगा। अगर आपके फ़ोन में कोई गड़बड़ है, मान लीजिए आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो फिर से आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर विषय है। कितनी अच्छी बात है कि देखिए पानी तो एक जैसा ही होता है, फिर सारी चीज़ें भी एक ही स्वाद की होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए गन्ना मीठा लगता है, अंगूर खट्टा लगता है, करेला कड़वा लगता है, मिर्ची तीखी लगती है, जबकि पानी एक जैसा होता है ना? तो इंसान हम सभी क्या कहते हैं? अरे इंसान तो सब इंसान है, हम सभी एक जैसे ही तो है। दो आँख, दो हाथ, मुंह, दो पैर, सब एक जैसे ही तो है, फिर क्यों इतना भेदभाव? लेकिन है सब एक जैसे, ऊपर से सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर के विचार सबके अपने अपने होते हैं, है ना? जैसे कि आपने इंट्रो में भी सुना था। चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: Hello.
0: नमस्ते Hello. नमस्ते सुभाष भाई।
1: आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है, आपका मेरा आवाज आ रहा है?
0: आपके आवाज अच्छी तरह सुनाई दे रही है।
1: थैंक यू। देखो सबसे पहले आपको रेडियो मधुबन परिवार और हमारे सभी श्रोते भाई बहनों को सुभाष भाई का प्यार भरा नमस्कार। और आज हृदय बीमारी के ऊपर हमने कैसा ध्यान देना है, तो हृदय दिन पर आपने बहुत ही अच्छा सुविचार भी भी और सवाल भी रखा है। तो देखो हम जैसे विचार मन में लाते हैं और बुद्धि भी वैसी निर्णय देती है। अगर अच्छे विचार अगर हमने लाए, भले अपोजिट परिस्थिति है, लेकिन सामना करने की शक्ति से, सहन शक्ति से वो बुरे विचारों को खत्म करके अच्छे विचार लाएंगे, तो हमारी शक्ति बढ़ेगी और जो भी सामने प्रॉब्लम है उसके ऊपर शांति से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये शॉर्ट में बता दिया, जिसे आप और श्रोते भाई भी बताएंगे। और अपने सवाल ज्यादा फिर से गुनगुना दीजिए।
0: हाँ जी, आज का प्रश्न है, अगर आपके अपने किसी दिवंगत बुजुर्ग से 2 मिनट बात करने का अवसर मिले तो आप उनसे क्या कहना या पूछना चाहेंगे?
1: दिवंगत का कौन सा अर्थ लगा रहे?
0: दिवंगत यानी कि देखिए हम श्राद्ध कर रहे हैं, जो ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं।
1: वही मैं भी समझ गया। अभी जो हमारे पिताजी है, माताजी है, दादा दादी, नाना नानी और कोई भी हो रिलेटिव के, कोई भी अपने प्यारे दोस्त हो जिनके बारे में अभी हम याद कर रहे, लेकिन वो तो अभी नहीं है, पर उन्होंने जैसा जीवन व्यतीत किया है अच्छी तरह से और हमको पहले जो सीख दिए, अगर वो विचारों पर हम चलेंगे और धारणा करेंगे तो उनके आत्मा को शांति मिलेगी। तो हम उनको ये बोल सकते हैं साधक के दिन कि हम आपके सीख पर, आदर्श विचार करने पर चले चल रहे हैं। तो
0: यही
1: एक अच्छा श्राद्ध हम मना रहे हैं।
0: क्या बात है।
1: और जो दुखिया गाँव जो दुखी आत्मा है उनको अगर हम शांति दे, कोई भी उनकी गरज की चीजें दे या खाना खिलाए तो उनको आत्मा को शांति मिलेंगी और ये हम उन दिवंगत आत्माओं को भी बोल सकते हैं। ये थोड़े में बताया दीदी। और सभी को नमस्कार और ओम शांति।
0: बहुत बहुत आभार सुभाष भाई, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से। बहुत ही सुंदर आपने बात कही है, दिवंगत आत्माओं से अगर आप पूछना चाहेंगे तो क्या पूछेंगे, ये सभी के लिए है आज का प्रश्न। ठीक है, सब अपने अपने अनुसार दीजिएगा जवाब, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, और आज का विषय बहुत ही सुंदर है, पानी तो सबके लिए एक जैसा ही होता है लेकिन गन्ना मीठा, अंगूर खट्टा, करेला कड़वा और मिर्ची तीखी होती है। इसका कारण पानी नहीं बल्कि बीज है। हम अपने मन में जैसे विचार बोते हैं वैसे ही फलते फूलते हैं। हेलो।
2: हाँ दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
2: बहुत बहुत अच्छे हैं और आप आ गए, बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू।
2: बातें भी हो रही है, विषय भी अच्छा दिया है और सवाल भी अच्छा किया है दीदी। तो हमारे सुभाष भाई ने भी बहुत अच्छी बात बताई दीदी। तो मैं भी बात बताऊं कि हमारे दीदी भी, हमारे परसों भी मेरे माता जी की श्राद्ध की विधि थी, उसको 3 साल पूरे हो गए। तो हमारे घर पे भी कई सारे मेहमान आए थे, बहन आए थे, भांजी आई थी, भांजा आया था, भांजे की बहू आई थी, भांजा का जमाई आया था, सभी लोगों को हमने दीदी का हमारा यहाँ जो विधि थी और भोजन का भी रखा था
0: जी,
2: तो
0: जी,
2: सभी
0: जी।
2: ने सभी को हमने बुलाया था दीदी, मेरे घर कम से कम 70 लोग थे
0: जी जी। तो पहला श्राद्ध था।
2: हाँ पहला श्राद्ध था दीदी। हाँ महाराज को भी बुलाया तो महाराज के साथ हमने कई सारी दो घंटे तो हमारी माता जी की विधि की और यहाँ घर पे, और कई सारे मेहमान भी आए थे तो सभी खुश हो गए दीदी की इतने सारे इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे को भी मिलना जुलना हो जाता है और एक दूसरे को अच्छा, एक कहते ना कि ऐसे तो सभी लोग मिलते नहीं हैं आपस में
0: जी।
2: तो हमने सभी लोगों को, हमने परिवार को बुलाया था, सभी तो सभी इकट्ठे हुए और हमने यहाँ हमारी माता जी की पूजा भी की। 3 साल पूरे हो गए। तो बस दीदी हम तो एक ही कहेंगे कि जो आत्मा जाती है तो इस आत्मा को हम पीछे ज्यादा हम ऐसा नहीं कि हम करोड़ों का भी दान करें, लेकिन इसको थोड़ा आह्वान करें कि भाई हमारी माता जी को सबको ऐसा लगे नहीं कि भाई हमारे हमारे जाने के बाद हमारे सभी भांजी हैं बहन को वासी हम बोलते हैं गुजराती में, तो सबको खाना भी खाते खिलाते हैं और जो मिले हम दक्षिणा भी देते हैं दीदी। तो इसके आत्मा को भी शांति होती है कि पीछे हम हमारे जो आत्मा होती है तो आत्मा खुश हो जाती है कि भाई मेरे बेटे ने किया है अच्छा किया, और करना ही चाहिए दीदी, क्योंकि हम कवासी बहन को दीदी को बांजी को नहीं बुलाएंगे तो वो क्या हम अकेले अकेले खाएंगे तो सही है नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो हमने सबको बुलाया था परसों संडे के दिन, तो पूरा हमारा घर पूरा मेहमानों से भरा हो गया था दीदी
0: जी, जी, तो
2: इतनी खुशियाँ सबको मिली, और हमने पुजारी को बुलाया और पुजारी पूजा करवाई, अच्छी अच्छी पूजा भी करवाई माता जी के पीछे।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पूर्वजों का देखे उनका भी तर्पण करना ही चाहिए, उनका भी
2: करना ही चाहिए।
0: हाँ,
2: हाँ, करना ही चाहिए, क्योंकि बस हम तो दीदी एक ही बात करेंगे कि चलो भाई हम जीते जीते हमने बहुत माता जी को रखा है, लेकिन बाद में भी हमने जो हमारे शुरुआत में किया है, लेकिन आज क्या दीदी परिवार आज जो माता पिता को बच्चे रखते नहीं है वृद्धाश्रम भेज देते हैं, बाद में जो गुजर जाते हैं बाद में वो घर पे करते हैं ऐसा कुछ सब कुछ, तो कोई फायदा नहीं है दीदी।
0: जी,
2: अब जी, जी, जी जितना हो सके इसको रखो, अच्छी तरह से खाना खिलाओ, अच्छी तरह से उसको उसको चाहिए तो बस दो दो टाइम का भोजन चाहिए और जो दवाई चलती है वो चाहिए।
0: बुजुर्गों को प्यार और विश्वास की जरूरत रहती है, न कि उनको खाने पीने के भूखे
2: नहीं है दीदी, इसीलिए मैं तो यही कहता हूँ आपका प्यार दीजिए, आपको जो जब तक है तब को उसके साथ बात कीजिए, बैठिए अच्छी तरह से रखिए, वही सब कुछ आपके पीछे वही आप कितने करोड़ों पर आप जो दान करे भोजन करवाए को फायदा नहीं है।
0: बिल्कुल, जब वो अपने परिवार से संतुष्ट होकर के जाते हैं तो उनकी दुआएं निकलती है।
2: बिल्कुल, इसलिए तो दीदी आज हम माता पिता जो हमारे गुजर से हिसाब है हम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दुआ तो मेरे पास हरदम मेरे माता पिता की रहती है
0: जी,
2: और हम तो सभी को वह कहते हैं कि आप चाहे पीछे मत कुछ कीजिए, लेकिन जब तक है तब तक उसको अच्छी तरह से रखिए, खाना खिलाइए, अच्छी तरह से बात कीजिए, कभी तो आप पास में बैठिए थोड़ा सा, इसको भी अच्छा लगे नहीं मेरा बेटा है मेरे पास
0: जी,
2: ऐसा लगना चाहिए।
0: बिल्कुल
2: जी दीदी
0: बिल्कुल, और आज के प्रश्न का जवाब देंगे।
2: प्रश्न का जवाब तो मेरा वही है और विषय भी यही दोनों की है।
0: नहीं, अगर आपको अवसर मिले तो आप क्या पूछना चाहेंगे अपने पूर्वजों से या फिर अपने माता जी से भी?
2: हम तो वो एक ही पूछना चाहिए जो जो जीवित है दीदी
0: जी,
2: अभी
0: जी
2: कोई गुजर है हमारे पास पास में कोई रहता है कोई हमारे जो रिश्तेदार में है
0: जी,
2: तो हम तो दीदी ऐसा है कि उसकी सलाह लीजिए जरूर, क्योंकि गुजर जो गुजर लोग होते हैं इसको कोई पता होता है सभी कुछ सब सब कुछ पता होता है, हमारे कोई बात होती है तो इससे हम पूछ लेते हैं, पूछना ही चाहिए, वो अच्छी सलाह देते हैं, बस तो इसी सीख से हम आगे चले तो ही तो हम अच्छी तरह से कोई भी कार्य में हम पीछे नहीं रहे।
0: लेकिन आज का प्रश्न है, अगर आपके जीवन में किसी दिवंगत बुजुर्ग से 2 मिनट बात करने का अवसर मिले तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे? जो ये दुनिया छोड़कर चले गए उनसे मान लीजिए 2 मिनट आपको बोलने का अवसर मिले तो आप क्या बोलोगे उनको?
2: बस हम तो एक ही बोलेंगे दीदी कि बस जीते जी माता पिता को अच्छी तरह से रखते हुए, और
0: वो तो वो चले गए, दिवंगत आत्मा चली गई है, अब उनसे आप क्या कहोगे?
2: बस आत्मा को दीदी हम एक ही कहेंगे कि इसके आत्मा को परमात्मा सुखी रखे, जहाँ उसका आत्मा हो वहाँ अच्छी तरह से रहे, और बस एक ही मांगेंगे हमने इसकी आत्मा को परमात्मा शांति दे।
0: अच्छा चलिए ठीक है
2: जी,
0: बहुत बहुत आभार। हाँ जी नमस्ते, तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, और अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। विषय भी बहुत सुंदर है, प्रश्न भी आज का बहुत अच्छा है, उसको समझने की कोशिश करिएगा कि ये प्रश्न क्या कहना चाहता है, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपको अपने किसी दिवंगत बुजुर्ग से 2 मिनट बात करने का अवसर मिले तो आप उनसे क्या कहना या पूछना चाहेंगे? मान लीजिए मैं चली गई ये दुनिया छोड़ करके, ठीक है, फिर मैं आ गई कभी अचानक 2 मिनट के लिए आप सभी से मिलने, अब आप मुझे क्या कहने, आप लोग क्या कहना चाहेंगे, मुझसे क्या पूछना चाहेंगे, इस तरह का प्रश्न है। इसको और भी अधिक स्पष्ट कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही हमारे घर में बहुत सारे पूर्वज होते हैं, दादाजी, दादी जी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, जो भी परिवार के सदस्य हैं, चले गए और हमको 2 मिनट का अवसर मिला उनसे बात करने का, तो हम क्या बात करेंगे उनसे, क्या पूछेंगे उनसे। जैसे सुभाष भाई ने कहा था, ऐसे आप भी देखें अपने अपने विचार से, सबका विचार अलग अलग है, तो अपने अनुसार दीजिएगा जवाब। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं, आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं, तो आज के विषय में आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। तो अभी तो ले लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: प्यार में हंसी मजाक नोकझोंक चलता ही रहता है। पत्नी जब पति को कहती है कि उसे नीम की निमोली कड़वी लगती है, तो पति उसको मिश्री का बाग लगाने के लिए कहता है, यही तो प्यार है।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में बहुत ही सुंदर आज का प्रश्न भी है, तो विषय भी बहुत ही सुंदर है। प्रश्न है, अगर आपको अपने किसी दिवंगत बुजुर्ग से 2 मिनट बात करने का अवसर मिले तो आप उनसे क्या कहना या पूछना चाहेंगे? दिवंगत का मतलब है जो ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं, और मान लीजिए 2 मिनट उनसे बात करने का अवसर मिल गया आपको, तो सबसे पहले आप उनको क्या पूछेंगे? और आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है, पानी तो सबके लिए एक जैसा ही होता है, लेकिन गन्ना मीठा, अंगूर खट्टा, करेला कड़वा और मिर्ची तीखी होती है, क्या कारण है इसका बताइए। वो कहते हैं ना कि इसका कारण पानी नहीं बल्कि बीज है, हम अपने मन में जैसे विचार बोते हैं वैसे ही फलते फूलते हैं। तो देखिए, पानी होता है, अलग अलग रूप से उसका उपयोग किया जाता है, अलग अलग प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है। रोटी बनाने में घूनते हैं तो रोटी का टेस्ट अलग होता है, सब्जी बनाने में डालते हैं तो सब्जी का टेस्ट अलग होता है ना? ऐसे पानी डालते जाओ आप, चीज़ें अलग अलग अलग अलग डालते जाओ तो स्वाद चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या भावार्थ है, इसका क्या भावार्थ है, क्या बात है? आज हमारे श्रोता बंधु कहाँ व्यस्त हो गए हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो स्वाभाविक है, बुजुर्गों का श्राद्ध तो करिएगा, लेकिन समय मिले तो रेडियो से भी जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ये इसी के अंतर्गत प्रश्न है कि भाई अगर आपको मान लीजिए 2 मिनट के लिए भगवान ने छूट दे दी, ठीक है कि चलो 2 मिनट बात कर लो अपने बुजुर्ग से, तो आप क्या बात करना चाहेंगे, क्या उनको पूछना चाहेंगे, ये आज का प्रश्न है। और विषय बहुत सुंदर है, देखिए पानी एक जैसा है लेकिन फिर भी अंगूर खट्टे है, करेला कड़वा है, मिर्ची तीखी है, गन्ना मीठा है, सबके स्वाद अलग अलग होते हैं। वो क्या है कि मन के विचारों के ऊपर है ये सारा खेल, किसी के मन में पॉजिटिव चीज़ें चलती है, किसी के मन में नेगेटिव चीज़ें चलती है, ठीक है। और मन भी ऐसा है कि कभी पॉजिटिव भी चला लेता है तो कभी नेगेटिव भी चला लेता है। किसी ने प्यार से बोल दिया, सत्कार दे दिया, सम्मान दे दिया, तो उसके प्रति हमारे भाव बढ़ जाएंगे, तो मन में संकल्प चलेगा, देखो कितने अच्छे लोग हैं, है ना, कितना मतलब आदर्शवान है जो हमको सम्मान दिया, प्यार से बोला, वाह भाई वाह, मेरा तो आज मन बड़ा खुश हो गया, मेरा तो मन ऐसा हो रहा है कि बस मैं इसके लिए कुछ करूं। इतने में दूसरा बंदा मिल गया, उसने थोड़ा सा हमारा तिरस्कार कर दिया, थोड़े से रूडली बात कर ली, तो फिर से वो मन खराब हो गया, अरे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, इनको तो तमीज ही नहीं है बात करने की, अरे भाई मैंने इसका क्या बिगाड़ा जो ये ऐसी बातें कर रहा है, अरे भाई मैंने थोड़े ना इसके घर का कुछ खाया जो मैं इसकी 2 बात सुनूं, फिर सुना देते हैं। मतलब ये मन का ही खेल है कि मन में विचार किसी के प्रति अच्छा है, किसी के प्रति बुरा चलता रहता है और उथल पुथल होती रहती है, तो ये सारे बीच का खेल है। अगर किसी ने तिरस्कार भी कर दिया फिर भी हम ये सोच ले कि चलो ये उसके संस्कार है, मैं अपने संस्कार क्यों चेंज करूं, भाई उसने भले कैसा भी व्यवहार किया हो, जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसका रूडली व्यवहार, तो मैं भला दूसरों के साथ रूडली व्यवहार कैसे कर सकती हूँ, नहीं मुझे नहीं करना है। और उसने मेरे साथ जो किया है मैं भूल जाना चाहती हूँ, मुझे वो दोहराना नहीं है, मुझे वो याद नहीं रखना है, ये उसके संस्कार है, मेरे संस्कार अपने हैं, तो बात ही खत्म और मन शांत हो जाता है, ज़्यादा फिर वो सोचता नहीं है, क्योंकि क्यों क्या कैसे इन सब में हम जाते हैं ना, तो अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं मेरे प्यारे श्रोता बंधु, और मन बड़ा उदास हो जाता है, अशांत हो जाता है, इसलिए मन को तो समझाना बहुत जरूरी है। किसी ने हमारे से चीटिंग कर ली, धोखा दे दिया, तो मन कितना खराब हो जाता है, उसके प्रति नफरत हो जाती है कि अरे देखो देखो उसने रास्ते चलते हमको धोखा दे दिया, स्वाभाविक है धोखा सहन नहीं होता है, ठीक है फिर भी मिल गया, हमारे बस में तो नहीं था ना, अब सामने वाला धोखा दे रहा है, क्योंकि देखिए रिश्ते भी विश्वास पर चलते हैं, कारोबार भी विश्वास पर किया जाता है, हर चीज़ के लिए प्रूफ नहीं होता है, पहले तो बड़े बुजुर्ग चलते फिरते जुबान दे देते थे कि चलो ये हो गया, हम जुबान देते हैं, हमारे पोता हो गया, आपके पोती हो गई, तो हमारा
अपना संबंध फाइनल। माता पिता से भी नहीं पूछते थे, जिनके बच्चा होने वाला उनको भी नहीं पूछते थे कि हम ये इस तरह का, मतलब आपका क्या विचार है, अपनी बात अपना निर्णय सुना देते थे और छोटे भी उसको स्वीकार कर लेते थे कि कोई बात नहीं, बड़े बुजुर्गों ने कहा है तो पत्थर की लकीर है, सोच समझ के कहा होगा। और सचमुच अच्छा भी हो जाता है, क्योंकि सब पॉजिटिव रहते ना, पॉजिटिव रहते तो अच्छा भी हो जाता है कि भले बचपन में सगाई संबंध हो जाता है लेकिन बड़े होने के बाद भी अच्छी तरह निभाते, और फिर भी बड़ों का सम्मान कम नहीं होता था। यही कहते हैं कि बात जो बड़े करते वो अच्छा है। और आज तो पति करके आया है संबंध बच्चों का, तो पत्नी को संकल्प चलेगा, पता नहीं कैसा परिवार देखा होगा, इनको क्या समझ में आता है। और मान लीजिए पत्नी ने कहीं बात चला दी अपने रिश्तेदारों में, तो पति के संकल्प चलेंगे, अरे इसको तो समझ में नहीं आता है, बच्चों के जिंदगी का सवाल है, कितने प्रश्न खड़े हो जाते हैं, है ना। और पहले घर के बुजुर्ग अपने हिसाब से फाइनल कर देते थे, उसमें भरा परिवार होता, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि अरे आपने ऐसे कैसे फाइनल कर दिया हमें पूछे बिना, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, कोई ऐसे नहीं बोलते थे। तो ये विचारों का खेल है सब, है ना। पल में विचार अच्छा भी आता है, पल में विचार बुरा भी आता है। किसी ने कुछ खाने पीने का दे दिया तो दिल से दुआ निकलती है, अगर अरे वाह भाई आज तो मेरे को भूख लग रही थी और समय पर इसने मुझे अच्छा, बहुत अच्छा खाना खिला दिया, बहुत इसका भला हो। किसी के घर पर गए पानी का भाव भी नहीं पूछा तो मन क्या कहेगा, अरे कैसे लोग हैं, फालतू के आए, हमारा समय गया और फालतू के टिकट के पैसे बर्बाद हुए, इसने तो खाने पीने का भी नहीं पूछा है। ऐसे लोगों से तो कोई दोस्ती नहीं रखनी है, मतलब ये मन ऐसा है, अच्छा भी सोचता है बुरा भी सोचता है, लेकिन हमें हर समय किस तरह रहना है वो अब मन को समझाना पड़ेगा, क्योंकि मन तो चंचल है ना, तोड़ता रहता है बेलगाम घोड़ा, तो इसके लगाम पकड़ना तो बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हर हाल में मन को समझाना है कि तुझे तो हर पल खुश ही रहना है, और ये हर एक के बस में नहीं होता है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। इसके लिए काफ़ी कुछ हमें अच्छी अच्छी बातें सुननी होती है, जैसे कोई अच्छे वाचन आप कर सकते हैं, अच्छी किताबें आप पढ़ सकते हैं, अच्छे लोगों की दोस्ती में आप रह सकते हैं, या बड़े बुजुर्गों के संग आप रह सकते हैं, या फिर कोई आपके कॉन्टेक्ट में कोई अच्छे गुरु है, संत महात्मा है, या अच्छा आश्रम है, या जो भी है, कि जहाँ से आपको पॉजिटिव वेव्स मिले, जहाँ से आपको सकारात्मक बातें मिले, तो ऐसा आपको संग करना होगा, तभी ये मन धीरे धीरे धीरे धीरे शांत होगा और समझने लगेगा कि हाँ मुझे हर हाल में खुश रहना है। बाकी तो कहते हैं ना कि आप अच्छे रहेंगे तो दुनिया को थोड़े ना पचेगा कि ये अच्छे रह रहे तो कैसे रहने देवे, कुछ ना कुछ तो ऐसा ला करके रखेंगे कि दुखी हो जाए, लेकिन अब ये हमारे मन पर डिपेंड करता है कि हम खुश रहे या दुखी रहे। अपने विचारों पर आप ध्यान दीजिएगा, संकल्पों का ही सारा खेल है, ठीक है। और क्या बात है आज हमारे श्रोता बंधु इतने व्यस्त हो गए हैं, अरे गणपति के त्यौहार निकले उसमें भी आप इतने व्यस्त नहीं थे, आप जुड़े आराम से बात की और श्राद्ध में आप व्यस्त है, तो चलिए कोई बात नहीं, अपने बुजुर्गों के लिए भी समय देना बहुत ज़रूरी है। और अब इस विषय को यही समाप्त करते हैं, आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, मान लीजिए अगर आपको अपने किसी दिवंगत बुजुर्ग से 2 मिनट बात करने का अवसर मिलता है तो उनसे आप क्या पूछना चाहेंगे, कोई बात अधूरी रह गई है, या आप अपने हिसाब से बताइएगा, जवाब दीजिएगा। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15, और यहीं पर एक गीत सुन करके फिर से लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं गीता चिकारा करनाल से। आप सभी को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए। आज आपको मैं सिखाने जा रही हूँ खांडवी, ठीक है, जो गुजरात में बहुत ही बनाई जाती है। खांडवी बहुत पसंद करते हैं और गेस्ट आते हैं तब तो स्पेशल बनाते हैं, लेकिन बनाना आएगी तभी बनाएंगे ना। सुना तो बहुत है, खाया तो बहुत है, लेकिन क्या करे, बनाना नहीं आता है। तो आप चिंता मत करिए, आज आप रेडियो मधुबन के जरिए खांडवी बनाना सीखेंगे। लेकिन उसके पहले आज का प्रश्न, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो अगर आपको अपने किसी दिवंगत बुजुर्ग से 2 मिनट बात करने का अवसर मिले तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे, ये आज का प्रश्न है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94 1415 1415। और आइए, खांडवी के लिए मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ। बेसन 1 कप ले लीजिए, छाछ लेनी है 2 कप, हल्दी 1/4 चम्मच लेना है आपको, और नमक अपने स्वाद के अनुसार। फिर अदरक हरी मिर्च का पेस्ट 1 छोटा चम्मच आप ले सकते हैं। तड़के के लिए ले लीजिए तेल 1 चम्मच, 1/2 चम्मच राई, तिल ले लीजिए 1 चम्मच, करी पत्ते और हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, और ऊपर से नारियल, कद्दूकस किया हुआ और हरा धनिया। तो फिर से मैं सामग्री दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। गुजराती खांडवी के लिए 1 कप बेसन ले लीजिए, 2 कप छाछ लेनी है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिएगा, नमक अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, अदरक हरी मिर्च की पेस्ट 1 चम्मच आपको लेना है। फिर तड़का के लिए लेना है तेल 1 चम्मच, 1/2 चम्मच राई, 1 चम्मच तिल, करी पत्ते और हरी मिर्च आवश्यकता के अनुसार, ऊपर से नारियल, कद्दूकस किया हुआ, हरा धनिया। अब बनाने की विधि भी ध्यान से सुनिएगा, कैसे बनाया जाता है खांडवी, आप कैसे बनाएंगे। बेसन और छाछ को अच्छी तरह घोल करके उसमें नमक, हल्दी और अदरक हरी मिर्च की पेस्ट डालिए। हाँ, ये सब मिक्स करते समय ध्यान रखिएगा, घाट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, घाट नहीं पड़नी चाहिए। तो ये हो गया इसका मिश्रण। अब मिश्रण को कढ़ाई में डालकर लगातार आप हिलाते हुए मध्यम आंच पर इसको पकाइए। जब मिश्रण गाढ़ा होकर के चिकना हो जाए तो तुरंत ही थोड़ा सा मिश्रण थाली या प्लेट के पिछले पतली परत में फैलाइएगा। ठंडा होने पर चाकू से लंबी पट्टियां काट करके इसके रोल बना लीजिए। ऊपर से राई, तिल, करी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का लगाइएगा। और जब ये तड़का लगा दो तो ये जो खांडवी का आपने रोल बना रखे हैं, इन रोल को सब में एक जैसा जमा करके ये सारा मसाला उन रोल पर डाल दीजिए, और फिर ऊपर से नारियल और हरा धनिया भी डाल दीजिए। तो ये बन गई खांडवी। आप ध्यान से सुनिएगा विधि फिर से। आप क्या करेंगे, बेसन और छाछ लिया है, बेसन को छान दीजिए और बेसन में छाछ डाल करके इसका घोल तैयार करिए। फिर इसमें देखिए नमक, हल्दी, अदरक हरी मिर्च की पेस्ट भी डाल दीजिए। फिर इस मिश्रण को अच्छी तरह मिक्स करिएगा, घाट नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अब मिश्रण को कढ़ाई में डाल करके लगातार हिलाते हुए, जब ये मिश्रण तैयार हो जाए ना उसके बाद की प्रोसेस आपको बता रही हूँ। मिश्रण को कढ़ाई में डाल करके लगातार आप हिलाते रहिए, गैस चालू कर दीजिए और इसको हिलाते रहिए। नहीं हिलाएंगे ना तो गठाने पड़ जाएगी, फिर वो बेसन का स्वाद आएगा, खांडवी का स्वाद नहीं आएगा, इसलिए लगातार हिलाते रहिए, ठीक है, मध्यम आंच पर इसको पकाते हुए। जब मिश्रण गाढ़ा हो करके चिकना हो जाए तो तुरंत ही आप थोड़ा सा मिश्रण थाली या प्लेट के पिछले भाग में, ठीक है, पिछले भाग में थोड़ी सी चिकनाई लगा दीजिए, और चिकनाई लगा करके थोड़ा सा मिश्रण तुरंत डाल करके उसको फैला दीजिए, ठीक है। और फैलाने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो फिर इसको चाकू से लंबी लंबी पट्टियाँ, जैसे हम शक्कर पाले कर लंबी लंबी एक बार तो लंबी लाइन काटते हैं ना, बाद में हम तिरछी, तो हमको तिरछी नहीं काटनी है, लंबी लंबी काटिएगा, ठीक है। और काटने के बाद जब ये लंबी पट्टी हो गई है, अब इसका राउंड कर दीजिए, राउंड करके किसी बर्तन में रख दीजिए। और इधर आप क्या करेंगे, कढ़ाई रखिए गैस पर, फिर से उसमें तेल डालिए,
तेल में राई का तड़का लगा दीजिए, राई, तिल, हरी मिर्च और मीठा पत्ता, इन सब का तड़का लगा दीजिए। जब ये तड़का लग जाए तो इस तड़के को, अब ये जो खांडवी आपने बना रखी, रोल बना रखे हैं ना, रोल बना करके एक बर्तन में आपने रख दिया है, अब इसके ऊपर आप ये जो तड़का लगाया है सारा मसाला डाल दीजिए, चारों तरफ फैला दीजिए और फिर ऊपर से नारियल कद्दूकस किया हुआ और हरा धनिया डाल दीजिएगा। तो ये बन गई खांडवी, बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी पसंद करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप अपने इष्ट देव को भोग लगा करके ही खाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बन जाए तो चिंता मत करना, रख देना, इसमें खटाई है, ख़राब नहीं होगा, दूसरे दिन भी आप खा सकते हैं, ठीक है। और आज के प्रश्न की तरफ फिर से बढ़ते हैं। देखिए, दो मिनट के लिए कुदरत आपको छूट दे देवे कि आप अपने पसंद के बुजुर्गों से मिल सकते हैं, दिवंगत आत्माओं से मिल सकते हैं, तो सबसे पहले आप क्या उनको पूछना चाहेंगे, ये आज का प्रश्न है भाई। जैसे, चलिए मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे मैं ये

0: बहू
1: बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
2: जी आई माँ जी।
1: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
2: जी माँ जी आ गई, चलिए।
1: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
3: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
1: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
3: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
1: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
3: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
2: जी वो
1: ना। अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
3: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
4: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।

प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं जिनको आप आजमा सकते हैं। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, तो रेसिपी में आपको खांडवी बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके खाइएगा। ठीक है, अरे भाई कभी कभार बता दिया करो कि कौन सी रेसिपी बनाई है और कैसी अच्छी, मतलब कैसी लगी है। ठीक है, बहुत सारे श्रोता बंधुओं का इंडिविजुअल फ़ोन भी आता है, लेकिन आप रेडियो में बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अभी कल ही कोई बता रहे थे कि सर्दी खांसी के लिए जो आपने सूखी खांसी के लिए जो इलाज बताया है कि गीला कपड़ा पेट पर रखना है और शहद और काली मिर्च खानी है, उससे हमारे काफ़ी फ़र्क पड़ा है और हमारी सूखी खांसी ठीक हो गई। तो भगवती बहन तारापुर से तो मैं उनके लिए तालियां बजाना चाहूँगी। और अच्छा है, हम तो चाहते हैं कि इसी तरह फ़र्क पड़े, सभी स्वस्थ रहे, हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहे, हम भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई बीमारियों से हम वंचित रहते हैं, लेकिन हाँ वापस इलाज तो करना ही होता है, नुस्खों के माध्यम से ठीक होने की कोशिश करते हैं। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था। बात अगर आपको अपने किसी दिवंगत बुजुर्ग से 2 मिनट बात करने का अवसर मिले तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? तो सुभाष भाई महाराष्ट्र से आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। सुरेश भाई ने कहा है, झोटाना वाले सुरेश भाई ने कहा है कि हम यही कहेंगे कि उनको शांति मिले, वो सुखी रहे। तो वो तो देखो, वो तो हम ईश्वर से प्ले करेंगे ना, ईश्वर से दुआ मांगेंगे कि भाई हमारे बुजुर्ग आपके पास आए हैं तो ये इनको शांति मिले, सुखी रहे। लेकिन हम अपने बुजुर्ग से क्या पूछना चाहेंगे, जो हमारे दिवंगत आत्मा है वो हमें मिले तो क्या कहना चाहेंगे? ये जवाब सुभाष भाई महाराष्ट्र से आपने सही जवाब दिया है। पहले तो आपके लिए भाई मैं अपना भी जवाब देती हूँ कि अगर मुझे कोई हमारी दिवंगत आत्मा मिल जाए, 2 मिनट का अवसर मुझे ईश्वर देवे कि आप बात कर लो, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि भाई आपने अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाया, कैसे आपने उन्नति की और कैसे सबको खुश किया आपने। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि ऐसे भी पर्सनालिटी होते हैं जिनसे सभी खुश और संतुष्ट रहते हैं, तो इस गुण को और भी मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो ज़रूर पूछूँगी कि कैसे आपने परिवार को खुश और संतुष्ट किया, और कारोबार में भी, कर्म क्षेत्र पर भी और घर परिवार में भी कैसे बैलेंस बना करके आप आगे बढ़े, तो इसमें और भी मैं बेहतर बनने की कोशिश करूँगी। तो यही प्रश्न मेरा रहेगा। किसी हमारे श्रोता बंधु का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए मैं ये दुनिया छोड़कर चली गई, फिर 2 मिनट के लिए भगवान ने चांस दे दिया माइक पर बोलने का, तो आप मुझसे क्या पूछोगे? तो मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, मजाक की बात है। तो हमारे श्रोता एक जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि दीदी आपको ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो हम यही कहेंगे कि अच्छा आपको और क्या चाहिए, ड्राई फ्रूट्स की कौन सी मिठाई आपको पसंद है जो देवे, क्या चाहिए आपको? इस तरह उन्होंने कहा है। चलिए, एक मजाक हो गई, बहुत अच्छी बात है। और आज का मीठा मोती है, सरलता में महान सौंदर्य होता है, जो सरल है वह सत्य के समीप है। अब देखिए, समय हो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का। आज गीत कविता का बिल्कुल समय नहीं है, इसलिए बस हम आप सभी से अनुमति चाहेंगे। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी के नए रंग लेकर आते हैं हम आपके पास। वैसे तो हर कोई चाहता है कि मैं जिंदगी में ये करूं, मैं जिंदगी में वो करूं, लेकिन लौट कर अपने घर की ओर आते हैं, अपने पन की ओर आते हैं, उनके पास आते हैं जिनसे हम बेहद प्यार करते हैं। लेकिन अगर वहाँ रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी भी मुश्किल आ जाती है तो ऐसा लगता है वो सफलता भी कुछ फीकी सी है। तो चलिए उन इमोशंस को संवारते हैं, आपकी जिंदगी को संवारते हैं, सफलता को खुशियों से और भर देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं भावनाओं के बारे में, सेंसिटिविटी वर्सेस सेंसिबिलिटी में आप कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी एक्सपर्ट ग्लोबल अस्पताल से कल्पना जी, जो कि हमारे गाइड हैं और साथ साथ हमारे दोस्त भी हैं। वो एक साइकोथेरेपिस्ट हैं और स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। एक लंबे काल का अनुभव है उन्हें, बहुत लोगों को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं। कल्पना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरुषि जी, ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे रेडियो के माध्यम से श्रोताओं से मुखातिब होने का चांस मिलता है। और जब हम श्रोताओं से ऐसे बातचीत करते हैं तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो अनसुलझी पहेलियां होती है अपने जीवन की, वो धीरे धीरे सुलझते हुए महसूस होती है। सो मुझे अक्सर श्रोताओं से बात करना बहुत पसंद है, तो इस चांस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और मुझे एक बात, जो हम टॉपिक पे आए उससे पहले, क्योंकि कई बार हमें काउंसलर के पास जब जाने की बात आती है तो डर लगता है या फिर घबराहट लगती है कि मुझे कुछ हुआ थोड़ी है जो मुझे जरूरत पड़े जाने की। लेकिन जिसने भी काउंसलिंग की है वो आई थिंक एक्सपीरियंस करके बता सकते हैं कि बहुत ही फ्रेंडली अप्रोच होती है, एक्सेप्टिंग होते हैं और जैसा आपने कहा सुलझाते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप काउंसलिंग के बारे में भी अगर आज हमारे श्रोताओं को बताएं तो हमें अच्छा लगेगा।
1: वंडरफुल, मुझे ये प्रश्न सुनकर बहुत अच्छा लगा और मैं थोड़ा सा पास्ट में चली गई, रिफ्लेक्ट करने लगी कि जब मेरे पास पेशेंट आता है तो वो बहुत चिढ़ा हुआ और गुस्से में होता है कि डॉक्टर ने मुझे यहाँ क्यों भेजा, मैं कोई पागल हूँ या मुझे कोई काउंसलिंग की जरूरत है। सो सचमुच आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि काउंसलिंग में जाना मतलब आपके मेंटल फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है, आप मेंटली शायद ठीक नहीं हो इसलिए आपको काउंसलर के पास जाना पड़ता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास आने वाला कोई भी व्यक्ति केवल 10 मिनट के लिए ही उलझा हुआ रहता है, 10 मिनट के बाद वो महसूस करने लगता है कि अरे मैं तो सही जगह पर आया, क्योंकि हमारा जो अप्रोच होता है हमारे आने वाले हर व्यक्ति की तरफ, जिसको हम काउंसिली कहते हैं या क्लाइंट कहते हैं, उनके प्रति हमारा जो अप्रोच होता है वो किसी भी प्रकार के जजमेंटल नहीं होता है, रिलैक्सिंग होता है। हम अपने आसपास का एटमॉस्फेयर भी ऐसा बना के रखते हैं फिजिकल, जिससे कि आने वाले को ऐसे लगता है कि अरे कितनी अच्छी जगह है ये, कितनी शांति है यहाँ, कितना सुकून है। और फिर जो हमारा इसको कहते हैं ना एप्रिसिएटिव इंक्वायरी,
0: जी
1: एप्रिसिएटिव इंक्वायरी या कंपैशनेट इंक्वायरी का तरीका हम अपनाते हैं, तब उन्हें महसूस होता है कि अरे मेरी बात छोटी भी है या बड़ी भी है तो भी मुझे डिस्कस करनी चाहिए, इतना प्यार से मुझे रिस्पेक्ट देते हुए पूछा जा रहा है। सो 10 मिनट्स लगते हैं लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन जब जुड़ जाते हैं तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि कई माउंट आबू के यूथ है, बच्चे है, जो सालों से खुद फोन करके कहते हैं दीदी मैम मुझे आपके पास आना है, क्या मैं आऊं, थोड़ा मुझे जरूरत है आपके साथ बातचीत करने की। सो दिस इज आवर क्रेडिट कि जब लोग खुद फोन करके कहते हैं कि आज मुझे आपसे मिलने आना है, कई लोग ऐसे हैं माउंट आबू के, आबू रोड के या सिरोही जिले के, जो कहते हैं कि हम खास आपके पास इसलिए आए हैं कि आपके डिपार्टमेंट में आसपास इतनी जो शांति है उस शांति का अनुभव करने के लिए आए हैं। फिर जो आपके पास स्पेशल मेडिटेशन रूम है वहाँ पर बैठने के बाद हमें अपने कई सारे सवालों का जवाब ऐसे ही मिल जाता है, तो हम वहाँ केवल बैठने आए हैं।
0: तो मतलब आप जब बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कितना प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, और वो डर तो सिर्फ मन में ही है, एक्चुअल रियलिटी तो है ही नहीं। तो अगर आप किसी को नहीं सुना सकते हैं तो आप काउंसलर के पास जाइए, आपको वो एक्सपीरियंस होगा जो आपने सोचा भी नहीं है। तो डेफिनेटली परसेप्शन बहुत अलग है और रियलिटी बहुत अलग है, हम सोचते अलग है होता अलग है,
1: राइट।
0: right. आज आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम रेडियो के माध्यम से भी पहुंच रहे हैं बहुत घरों तक, और ये भी एक तरह की काउंसलिंग है जो शायद हम सबको चाहिए, क्योंकि हम अपनी भावनाओं में खुद ही बहुत फंसे हुए हैं आज, कल्पना जी। तो आज जब हमने कुछ एपिसोड्स में बात की थी कि हम सेंसिटिव हो गए बहुत ज्यादा इमोशंस को लेके भी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी सेंसिबिलिटी क्या होते हैं। सेंसिबिलिटी मतलब ऐसा लगता है कि वो दिमाग का काम है बहुत, तो इमोशनल सेंसिबिलिटी।
1: देखो, सिंपल से सेंसिटिव होना, ये जनरल कॉमनली शब्द हम यूज करते हैं कि क्या अरुषि जी आज बहुत आप सेंसिटिव हो गए थी। सबको याद है कब आप सेंसिटिव हुए थे। तो आज ही मेरे पास एक सिस्टर आए थे जो कैंसर पेशेंट के लिए प्रमोशन का काम कर रहे थे, जो हमारा अबू रोड में कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर बना है, जो कि फ्री कैंसर स्क्रीनिंग करवाता है हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए और आसपास की बहनों के लिए भी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। तो वो प्रमोशनल काम कर रही थी और देख रही थी कि इतना प्रमोशन करने के बाद भी लेडीज स्क्रीनिंग के लिए आने में दिक्कत होती है उनको या नहीं पहुंच पाती है। तो बड़ी उदास हो रही थी, निराश हो रही थी और सेंसिटिव इसलिए हो रही थी, उसके आंखों में आंसू आ गए। इतनी बहनें तकलीफ में हैं, कईयों को पता ही नहीं है। कैंसर जैसी बीमारी ऐसे है जो माताओं बहनों में ज्यादा होती है। एक पेल्विक कैंसर होता है, एक ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो वो बीमारी माताओं बहनों में, क्योंकि उनको ब्रेस्ट है, तो वो कैंसर ऐसी चीज है ना, वो पेनलेस गांठे होती है या पेनलेस होता है वो, उसका हमें जल्दी पता नहीं चलता है। तो वो रोने लग गई कि देखो ना, इतनी बहनें तकलीफ में हैं। कई बहनों का स्क्रीनिंग के बाद, डिटेक्ट होने के बाद भी वो मेडिसिन नहीं ले रही है, ट्रीटमेंट नहीं ले रही है। मुझे नहीं समझ में आता है क्या मजबूरी है उनकी। तो वो रोने लगी। तो हम थोड़ा सा चुप हुए। आसपास हम दो काउंसलर्स बैठे थे। हमने कहा, जो आपको रोना आ रहा है ना, इसे सेंसिटिविटी कहते हैं। जो आपका काम है, जो आपका प्रोफेशन है, अगर आप हर बार ऐसे रोते रहेंगी, मेरे पास पेशेंट आते हैं, अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं, तो अगर हम उनकी कहानी में रोने लगे या सेंसिटिव हो जाए, तो हम उनको मदद कैसे करेंगे, है ना। तो सेंसिटिव होना मतलब जल्दी से इमोशंस के प्रभाव में आकर उस इमोशंस के साथ रिएक्ट करना, चाहे वो गुस्सा हो, रोना हो, उदास होना हो, निराश होना हो, या डर लगना हो, चिंता होनी हो, या लज्जा आनी हो, शेम फील करना हो, या गिल्ट फील करना हो। ये जो फीलिंग हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, उसको सेंसिटिविटी कहते हैं। ये बहुत सेंसिटिव है, तुरंत रोने लगती है, ऐसे बोला जाता है। एंड हमें अब सेंसिटिविटी से सेंसिबिलिटी की तरफ बढ़ना है। सेंसिबिलिटी का मतलब है समझदारी, संवेदनशीलता।
0: ओके।
1: संवेदनशील, उसमें शील शब्द आता है। शील मना वो ऊंचा चरित्र है।
0: ओके।
1: है ना। सो संवेदना क्या है कि भाई हम दूसरों की बात को समझते हैं, उनके साथ हम खड़े हैं, परंतु जब वो इमोशनल है तब हम स्टेबल रहते हैं, शांत रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और उनके अपने साथ होने का, मैं उनके साथ हूँ, ऐसा हम उनको एहसास कराते हैं। इसलिए रोना जरूरी नहीं है, रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, चेहरे के हाव भाव बदलना जरूरी नहीं है, बस किसी के साथ होना, उसको कहते संवेदनाशीलता या समझदार इमोशंस के एक्सप्रेशन। समझो, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में डेथ हो जाती है
0: जी,
1: है ना, तो हम उनके पास सांत्वना देने के लिए जाते हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, उनको रोता हुआ देखकर खुद भी रोने लग जाते हैं
0: जी,
1: है ना, तो माहौल गमगीन हो जाता है। बट ऐसे समय पर ऐसे समझदार लोगों की आवश्यकता है जो बिना रोए उनको साथ का अनुभव कराए। और कई लोग क्या करते हैं कि रोते हुए को बोलते, अरे क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रोने से क्या होगा, रोने से क्या फायदा, ऐसे रिएक्ट करते हैं। ये भी समझदारी नहीं। अगर कोई रो रहा है तो उसे रोने का पूरा मौका देके, जरा सा हल्का करके, फिर उसके बाद हम उनको प्यार से अगर कहे कि कोई बात नहीं, अब जो हुआ है सो हुआ है, हम आपके साथ है, बहुत जल्द आप शांत और रिलैक्स महसूस करेंगे, बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा, है ना। वास्तविकता को सामना करना, किसी की मृत्यु हो या कई बार किसी को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तब भी उनकी स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई व्यक्ति मर गया हो, सब कुछ डूब गया, खत्म हो गया। उड़ीसा में बाढ़ आई, कई जगह बाढ़ आती है, सब कुछ खत्म हो रहा, कल था आज कुछ भी नहीं है, तो ऐसे समय पर रोना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, तो किसी को रोने से रोकने की आवश्यकता नहीं है। परंतु वो रोने का उबाल जब शांत हो जाए तब तक इंतजार करके उस व्यक्ति को सही सपोर्ट करना, इंग्लिश में दो शब्द है, सिंपथी और एम्पथी।
0: एम्पथी,

0: है ना, इनको समझना बहुत जरूरी है। सिंपैथी वो है कि हम असहानुभूति दिखाते हैं लोगों को और रहम करते हैं उनके ऊपर, उनकी स्थिति पर हमें दया आती है। लेकिन एम्पथी, एम्पथी का मतलब है आप उनके साथ उनकी भावनाओं का अनुभव करते हुए, कदर करते हुए उनके साथ खड़े हैं, है ना, बिना रिएक्टिव हुए, स्टेबिलिटी के साथ।
1: ये एक लाइन है कि हम वहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं भावनाओं के साथ, और यहाँ पे भावनाएं हैं, ऐसा नहीं है भावनाएं चली गई हैं, लेकिन हैंडल कर पा रहे हैं सिचुएशन को बेटर, दूसरे को भी मदद कर पा रहे हैं।
0: जी,
1: बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना, मुझे लगता है हम सबको काम आने वाली चीज है। खासतौर से हम आज बच्चों की बात करें अगर, या यंगस्टर्स की बात करें, कई बार में बहुत बुरा लगता है। जैसे हम मान लीजिए एक छोटी सी ही बात है, किसी को कुछ चाहिए और लेकिन वो नहीं मिलता है, तो हमें कभी कभी ये लगता है कि बहुत अनफेयर हो रहा है हमारे साथ, कि हमारे माता पिता दे तो सकते हैं हमें, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं दे सकते हैं, बट वो नहीं दे रहे हैं, उनको लग रहा है हम बिगड़ जाएंगे, हम वो कर जाएंगे, तो फिर वो फील होता है कि उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या, और ये तो हमारे लिए जरूरी है, ये तो नॉर्मल है, सबके पास है, चाहे वीडियो गेम हो या फोन हो, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगती है जितना बड़ा रिएक्शन होता है पेरेंट्स का कि नहीं मिलेगा, तो फिर उससे इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, और लगता है कि वो हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे, वो इनसेंसिटिव है हमारे भावनाओं को लेकर, तो ऐसे में फिर क्या करें।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल की जो पीढ़ी आगे आ रही है उनमें बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, सेंसिबिलिटी की कमी महसूस होती है। सेंसिटिविटी का मतलब है कि उनको हर वो चीज जो चाहते हैं वो तुरंत मिलनी चाहिए, अगर ना मिले
1: इनसेंसिटिव लगते हैं, ऐसा लगता है वो हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे, वो इनसेंसिटिव है, हमें तो जरूरत है, बट हाउ कैन दे बी सो इनसेंसिटिव।
0: बिल्कुल, ये उनकी जो समझ है वो सही नहीं है। मैं एक घटना के साथ आपको उस बात को समझाना चाहूंगी।
1: जी।
0: हमें साइकिल चाहिए, या हमें स्कूटर चाहिए, या हमें मोबाइल चाहिए। अच्छा, मोबाइल की आवश्यकता जब है तब वो आवश्यकता कितनी है, मतलब बेसिक चीजें उसमें से हमें यूज करनी है, जैसे फोन पर बात करनी है, या मैसेजिंग के लिए यूज करना है, इमरजेंसी के लिए यूज करना है, पढ़ाई के लिए यूज करना है, बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो पढ़ाई में काम आते हैं। बट फोन एक लग्जरी हो जाए, रिक्वायरमेंट की जगह वो एक लग्जरी का साधन बन जाए, शो करने के लिए अपने दोस्तों के सामने कि मेरे पास इतना महंगा मोबाइल है। तो जब माता पिता वो पूरी नहीं करते इच्छा, तो बच्चे रिएक्ट हो जाते हैं, इनसेंसिटिव समझते कि इनके पास तो इतना धन दौलत है, फिर ये हमें क्यों नहीं देते हैं,
1: हमारी खुशी के लिए इतना तो कर सकते हैं,
0: कर सकते हैं ना। बट बच्चे तो नादान है, उनको नहीं पता, पेरेंट्स को पता है कि ये चीज के साथ नहीं, भावनाओं की बात है, चीज की बात नहीं है, भावनाओं की बात है। अब इसमें कौन सी भावनाएं जुड़ी है, देखो हर एक इंसान को समझना चाहिए कि मेरी आवश्यकता क्या है और लग्जरी क्या है, मतलब बिना आवश्यकता के मैं दूसरों को दिखाने के लिए वो चीज कितनी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर शो के लिए मुझे वो चीज लेनी है, तो ये सेंसिबिलिटी है भावनाओं की कि वो चीज आपके काम नहीं आएंगी, या काम की चीज आप उससे यूज नहीं कर पाएंगे, बिना काम के चीजों में आपका उसमें टाइम चला जाएगा, जैसे गेमिंग है, या फिर मेरे पास कई ऐसे यूथ के माता पिता आए हैं, यूथ के, कि हमारा बेटा मोबाइल पर पता नहीं क्या कुछ गेम के माध्यम से पैसे कमाने का कोई पता, मुझे भी नहीं पता है ये, कि वो कुछ करते हैं। तो पेरेंट्स आते हैं कि ये इसको अभी लत लग गई है, ये गेम्स के माध्यम से पैसा कमाने के लिए घंटों फोन से चिपका रहता है। सो ये नहीं हो, इसलिए पेरेंट्स लग्जरियस चीजें बच्चों को प्रोवाइड करने में थोड़ा सा समय लेते हैं। तो अब मतलब मेरी भलाई तो मुझे ही सोचनी है ना, पेरेंट्स सोचते हैं तो हमें उनको लगता है कि वो सेंसिटिव नहीं है,
1: इस जनरेशन को नहीं समझ रहे, वो हमें वैसे बड़ा करना चाहते हैं जैसे वो बड़े हुए हैं।
0: हाँ जी, हाँ
1: टाइम
0: हाँ जी,
1: चेंज हो गया, उनके पास फोन उस समय नहीं था, अब है, तो फिर व्हाई नॉट।
0: हाँ, तो सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी अगर हम हर चीज में इस बात को अप्लाई करते हैं तो बहुत मजा आएगा। सेंसिबल बनकर कोई काम करना या सेंसिटिव होकर कोई काम करना, इसमें हमें फायदा है। अगर हम सेंसिबल बनके, मतलब समझदार बनके अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए, अगर पेरेंट आपको कुछ चीज देने में देरी करते हैं, तो मुझे बताइए कि आप में कौन सी एक वैल्यू है जो डेवलप होगी अगर आप इंतजार करेंगे।
1: ओके, आई थिंक पेशेंस।
0: यस, पेशेंस डेवलप होगा, है ना। और पेशेंस कितना जरूरी है, कोई भी चीज पाने के लिए अगर हमें इंतजार करना पड़ता है तो वो चीज मिलने के बाद उसकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है, और हम में वो वैल्यू आ गई पेशेंस की। तो हर चीज हमें सिखाने वाली है, क्यों ना हम सेंसिबल बनकर ये सोचे कि चलो अगर देर हो रही है या पेरेंट्स मेरी बात नहीं समझ रहे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम एक किस्सा लेते हैं कि समझो एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स से कुछ डिमांड कर रहा है और पेरेंट्स उसको नहीं दे रहे हैं, तो वो समझता है कि मेरे पेरेंट्स के पास तो है, कैपेबिलिटी है, फिर भी नहीं दे रहे हैं। और बच्चे की मांग, तो अब बच्चा अगर ये करे जिद करने की जगह, गुस्सा करने की जगह, टेंट्रम दिखाने की जगह, वो पेरेंट्स को बोले कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ।
1: ओके,
0: मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो दोनों पेरेंट्स बैठ जाओ एंड मैं भी बैठता हूँ। क्या बात करनी है बेटा? तो वो बेटा बोलेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने इतने कामों के लिए जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे ये चीज आप अगर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पेरेंट्स क्या कहेंगे? हाँ बेटा, हम जानते हैं आपको इस चीज की बहुत आवश्यकता है, परंतु हम जो घर का खर्चा चला रहे हैं, EMIs भर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने EMIs जो जा रहे हैं, इसके कारण थोड़ा मैनेज करने में हमें अभी दिक्कत आ रही है, तो क्या हम आपको थोड़े दिन के बाद पैसे को मैनेज करके आपको दे तो आपको चलेगा?
1: मतलब बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स बताते नहीं है कई बार।
0: हाँ, या कुछ वो सोचते हैं क्यों हम अपनी परेशानी बच्चों को बताएं। हाँ, तो वो सोचते हैं कि ठीक है थोड़े दिन बाद मैनेज करके दे देंगे उनको। तो बच्चों को जब समझ में आता है कि अरे जैसे मेरी 4-5 प्रायोरिटीज है, रिक्वायरमेंट्स है, वैसे 4-5 चीजों जगह पर उनको मनी मैनेज करना है, तो मैं थोड़ा सा रुक सकता हूँ। और वो देखता है कि कितना सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स मुझे वो चीज दिलवाने के लिए, तो उसको कदर होती है उस चीज की, उसे एहसास होता है कि इस वजह से देरी हो रही है।
1: ओके,
0: है ना। तो उसमें पेरेंट्स के बीच में बहुत ये जो फैमिली का बॉन्डिंग है ना, पेरेंट्स के बीच में एक पीसफुल कम्युनिकेशन होता है, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एक बहुत सुंदर ब्रिज बन जाता है। मैं देखती हूँ आजकल रिलेशनशिप में वॉल्स बनती जा रही है, दीवारें खड़ी हो रही है आपस में,
1: शेयर नहीं करते
0: तो ब्रिज बन जाएगा।
1: That's wonderful, क्योंकि सेंसिबिलिटी की बात है, भावनात्मक, मुझे लगता है बच्चे शायद इतना नहीं समझेंगे, पर बच्चों को बताएंगे तो समझेंगे और वो बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा। ये हमने आज जाना आज के एपिसोड में। आई थिंक बहुत बहुत ही अच्छा आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन था, बहुत इंटरेस्टिंग था कॉन्वर्सेशन। जाते जाते कल्पना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई भी ऐसे 2 मिनट का आप हमें एक्सपीरियंस करा सके या कोई भी ऐसे शब्द बता सके जो हम शायद रिकॉल करें, तो हम ये बातें याद रखें, अपने साथ लेकर जाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आज हमने सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी दो शब्दों को अच्छे से समझा और उन्हें महसूस किया, तो उसी तरह से अगर हम सेंसिटिविटी को सेंसिबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो हमें कुछ अभ्यास मेंटल और फिजिकल करने की आवश्यकता है। जो एक छोटा सा अभ्यास हमें बहुत सारी चीजों को अचीव करने में मदद करेगा, इंटरनली, इमोशनली और फिजिकली भी। तो एक बहुत सुंदर अभ्यास है जिसको अगर हमारे यूथ 1 मिनट के लिए भी बैठकर करें। अरुषि जी, आप ये बताएंगे कि 1 मिनट में हम कितनी सांसें लेते हैं?
1: कितनी पड़ेगी?
0: चलो, तो हमारे श्रोताओं को ये अभ्यास है कि वो गिने 1 मिनट में कितनी सांसें।
1: मैं भी करूंगी अभ्यास, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है।
0: और गिनते समय थोड़ा हर सांस को लंबा और गहरा लेने की कोशिश करें। इसे सांस हम नाक से लेते हैं तो हमारे छाती से होकर पेट तक पहुंचती है सांस। तो एक बहुत सुंदर अभ्यास है कि बस शांति से बैठ जाए, अपनी सांसों को देखे और लंबी और गहरी सांसें ले, और उसके साथ अपने मन में 2 या 3 विचारों को दोहराए जो भी आपको अच्छे लगते हैं, है ना। सो आज के टॉपिक के अनुसार हम क्या ले सकते हैं कि आई एम अ सेंसिबल पर्सन। गहरी और लंबी सांस लेकर अपने सांसों को देखने का अभ्यास करें। हर सांस के साथ अपने मन और शरीर को रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स फील करें। अपने मन में इन विचारों को दोहराए, मैं संवेदनाशील सेंसिबल हूं। संवेदनाशीलता सेंसिबिलिटी मेरी शक्ति है। गहरी और लंबी सांस ले। इस सवाल को, इस प्रश्न को या इस वाक्य को दोबारा दोहराए, मैं संवेदनाशील हूं, मेरी संवेदनाशीलता मेरी शक्ति है। गहरी लंबी सांस ले। दूसरा वाक्य है, मैं प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना और सोचना ये अभ्यास करती हूं। मैं प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना और सोचना ये अभ्यास करती हूं। गहरी लंबी सांस ले और रिलैक्सेशन के साथ तीसरा अफर्मेशन या तीसरा वाक्य अपने मन में दोहराए, मैं आहत होने पर भी सम्मान पूर्वक संवाद करना चुनती हूं या चुनता हूं। मैं आहत होने पर भी सम्मान पूर्वक संवेदनाशील होकर संवाद करना चुनती हूं या चुनता हूं। गहरी लंबी सांस ले और इसी के साथ हम यहीं पर इस चीज को समाप्त करते हैं।
1: थैंक यू सो मच कल्पना जी। मुझे लगता है हमने आज डिफरेंस भी जाना, सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी की वो लाइन को भी समझा और किस तरह से रिएक्ट करते हैं इमोशंस को लेके, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है वो भी जाना, और कैसे हमारा उससे बॉन्ड भी हमारे हर रिलेशनशिप से बेटर हो रहा है ये भी जाना। वो तो हम सब चाहते हैं कि हो, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमें इस कार्यक्रम में समय देने के लिए।
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और सबसे पहले हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच दोस्तों, और चलिए फिलहाल वक्त हो गया इजाजत लेने का। लव यू जिंदगी के साथ लव यू जिंदगी कार्यक्रम में अगली कड़ी में मुलाकात होगी। तब तक जिंदगी को खुल कर कहिए कि लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम कार्यक्रम एक नारी शक्ति पर आधारित है। हर एक महिलाओं में कोई न कोई विशेषताएं होती है, लेकिन वो विशेषताएं बाहर तक नहीं आ पाती है। लेकिन रेडियो मधुबन का मंच ऐसा है जिसके द्वारा आप अपनी आवाज, आप अपने विचार, आप अपनी बात को सभी तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति आज हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में विराजमान है, जिनका नाम है नीलम शर्मा। आप आबू तलेटी में रहते हैं। आपने पढ़ाई नहीं की है, आपकी उम्र 50 वर्ष की है, शिक्षा का अभाव है जो आज भी आपको खलता है। बाकी आप कढ़ाई बुनाई और मधुर व्यवहार आपका सभी के साथ है और घर बार तो सभी संभालते हैं, और एक नारी शक्ति घर परिवार को कितनी बखूबी संभालती वो आप सभी जानते ही है। तो आइए मिलवाते हैं नीलम जी से। नमस्कार नीलम जी।
1: नमस्ते दीदी,
0: बहुत बहुत स्वागत आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: थैंक यू दीदी।
0: तो नीलम जी, चलिए हम आपके बचपन की तरफ चलते हैं थोड़े समय के लिए। आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता?
1: सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है।
0: सोनीपत हरियाणा?
1: जी हरियाणा।
0: अच्छा जी।
1: उधर मेरा जन्म हुआ था और एक गरीब परिवार से जन्म हुआ था। हम 7 भाई बहन है
0: जी।
1: 3 भाई है, 4 बहनें।
0: अच्छा, आपका नंबर कौन सा था?
1: मैं सबसे लास्ट हूँ।
0: क्या बात है, आप तो सबसे छोटे, तो आपके ऊपर इतना लोड नहीं रहा होगा?
1: नहीं, लोड तो नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे मास्टर मारते पीटते बहुत थे बच्चों को।
0: अच्छा।
1: तो मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन भाइयों ने मेरे को भेजा नहीं। कह रहे नहीं नहीं, बहुत मारते हैं, तू मार नहीं सहन कर पाएगी। तो इस कारण से मेरे को स्कूल में भेजा ही नहीं।
0: अच्छा, तो आप कोई भी बहन ने पढ़ाई नहीं की?
1: कोई बहन ने पढ़ाई नहीं,
0: भाइयों ने की।
1: हाँ, भाइयों ने किसी ने 8, किसी ने 10, किसी आगे नहीं।
0: अच्छा, इससे ज्यादा नहीं। तो आपके पढ़ने की इच्छा थी?
1: जी।
0: तो आप कहते ना कि भाई मैं गलती करूंगी तो मुझे मारेंगे, बिना गलती मुझे कैसे मारेंगे, मुझे पढ़ने दो।
1: कोशिश तो करी थी, किसी ने मेरा नाम ही नहीं लिखवाया वहाँ पे।
0: अच्छा, पढ़ने की बड़ी इच्छा थी लेकिन नाम नहीं लिखाया और आप पढ़ाई से वंचित रहे।
1: जी।
0: तो आपकी सखी सहेलियां भी रही होगी, वो भी सभी अनपढ़ी थी या उन्होंने पढ़ेगी?
1: बस एक ही थी, वो भी कम ही पढ़ी हुई थी, बाकी खेती थी हमारी, तो खेत वगैरह का ही काम था।
0: अच्छा, खेती बाड़ी संभाल देते हैं
1: जी।
0: और आपस में आप सभी भाई बहन कैसे रहते थे?
1: मैं सबसे छोटी थी तो बस एक भाई के साथ में मैं अच्छे से बोल लेती थी, बाकी के साथ में तो चुपी रहती थी।
0: अच्छा, उम्र का ज्यादा गैप था क्या?
1: जो बड़ी बहनें वे सब जब मैं 2 साल की थी उनके साथ हो चुकी थी।
0: अच्छा जी जी। तो एक भाई के साथ आपकी अच्छी बनती थी जो आपसे बड़े थे?
1: हाँ।
0: उनको आप दिल खोल करके बात करते थे?
1: हाँ, उनसे अच्छे से बात।
0: लड़ाई झगड़ा भी होता था कभी? चिटचैट
1: होते थी,
0: होते थे। और बाकी तो भाई बड़े हैं, बहनें बड़ी हैं, तो शादी हुई होगी तो आपके सामने भाभियां भी रही होगी, आपके जीजा जी भी आए होंगे। तो भाभियों के साथ किस तरह का तालमेल था?
1: बस जो छोटे वाले हैं उनके साथ में थोड़ा अच्छा था, क्योंकि वो मेरे साथ सीखे थे, बाकी बड़ों के साथ में तो ऐसे ही जैसे माँ बाप के सामने रहते हैं।
0: जी जी, उस समय की बात कर रहे हैं जब मर्यादाएं हुआ करती थी, भाभी को भी माँ के समान देखा जाता था।
1: जी।
0: तो ज्यादा ऐसे हंसी मजाक वगैरह नहीं होती थी?
1: नहीं।
0: फिर आपको कोई चीज चाहिए तो आप किसको कहते थे, अपने माता जी को या भाइयों को?
1: मम्मी को बोलती थी।
0: जी जी, चलिए अच्छी बात है। और खेती बाड़ी में आप क्या काम करते थे?
1: खेती बाड़ी में हर प्रकार की खेती होती थी, जैसे भुट्टे वाला मक्का होता और सगरगंदी वगैरह, गेहूं भी होते, धान भी होते, सभी खेती होती थी, सब्जी भी सभी होती है।
0: तो आप क्या करते थे, बोतने का काम करते थे या पानी या केयर करने का, पंछी पक्षी कहीं आपके दाने नहीं खा जाए ऐसे?
1: नहीं, जैसे भाई वगैरह जाते थे तो उनका खाना देने के लिए चले जाते थे, और थोड़ा अपने खेत को चारों तरफ से देखते थे, बाकी तो काम तो कोई और ही करते थे।
0: भाई लोग खेत पर जाते तो आप खाना लेके जाते, बना के आपके भाभियां देती, तो आप किचन में मदद करते थे?
1: जी।
0: अपनी भाभियों की मदद करते थे?
1: जी।
0: अच्छा, और आप सबसे छोटे हैं तो प्यार तो बहुत आपको मिला होगा सभी का?
1: हाँ
0: जी,
1: सभी का बहुत प्यार मिला है।
0: खेती बाड़ी में जाना आपको अच्छा लगता था, आप टिफिन लेके जाते थे, फिर वहाँ खेतों को निहारते थे, और आपको क्या अच्छा लगता है?
1: बस ऐसे जैसे सभी खेतों में होते थे, उनके साथ में ऐसे ही चिट चैट करना, थोड़ा पेड़ पौधों पे चढ़ जाना।
0: अच्छा
1: ऐसे खेल कूद में
0: पेड़ पौधों पर क्या तोड़ने के लिए, कुछ फ्रूट तोड़ने के लिए?
1: हाँ, जैसे कोई अमरूद तोड़ने के लिए, कभी जामुन तोड़ने के लिए, ऐसे कई बार पेड़ से गिर भी गई थी।
0: अच्छा, वो तो चढ़ेंगे तो गिरेंगे भी है, लेकिन बचपना होता है ना तो गिरने का भी डर नहीं रहता है कि गिरे तो फिर से संभलेंगे और फिर से चढ़ेंगे।
1: वही वही।
0: तो कभी कोई डांटते नहीं थे कि भाई गिर गई हो, लगी है, अब नहीं चढ़ना है?
1: नहीं, डांटते थे लेकिन बचपना था, फिर कर देते थे वही।
0: जी जी जी, वो मजा ही अलग है। भले सब नीचे अपने को मिल जाता है, किसी को बोलते तो कोई आपको हाथ में लाके दे देते हैं। हाँ। लेकिन एक चढ़ करके तोड़ के खाने का मजा ही अलग था।
1: वो अलग है।
0: और आप क्या क्या काम करते हैं?
1: जैसे सिलाई वगैरह करते थे।
0: अच्छा, सिलाई आती थी?
1: हाँ,
0: सिलाई कहाँ से सीखी आपने?
1: सिलाई मैंने घर से ही सीखी थी, और सिलाई वैसे तो कम ही आती थी, लेकिन फिर जैसे ससुराल में चले गए थे उस टाइम के बाद थोड़ी सी कुछ परिस्थिति आई, तो उस टाइम पे थोड़ा सिलाई का।
0: अच्छा, बाद में सीखा, पहले नहीं सीखा था?
1: पहले सीखी थी लेकिन कम ही करते थे।
0: जी, आप सबसे छोटे थे, इतनी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। आपकी भाभियाँ थी, माताजी थे। हाँ। बहनें थी बड़ी। हाँ। तो वो करते होंगे। हाँ। लेकिन आपने वो ध्यान नहीं दिया होगा।
1: हाँ
0: जी जी। और किचन में आप क्या बनाते थे, किस तरह की मदद करते थे अपने मम्मी और भाभी?
1: ऐसे जैसे बर्तन वगैरह धुलाई कर दिए, थोड़ी साफ सफाई में, खाना तो बाकी वही बनाते थे।
0: अच्छा, कभी खाना नहीं बनाया आपने शादी के पहले?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो कभी जैसे कोई घर पर नहीं है, कुछ बनाने का आपको बोल दिया
1: तो बनाते थे?
0: अच्छा, ऐसे ज्ञान था।
1: ऐसे तो बना लेते, रोटी सब्जी सब कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी।
0: जी जी। और आप बता रहे कि आपके सखी एक ही है?
1: हाँ, वो एक ही है।
0: तो आपके मोहल्ले में एक ही?
1: नहीं, और भी थी, लेकिन ज्यादा कर उन्हीं के साथ मैं ज्यादा रहती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ। और उससे पहले एक और भी थी जिसको थोड़ा सांप ने काट लिया था, उनकी डेथ हो गई थी।
0: अच्छा, तो क्या सांप भी निकलते थे क्या आप जा रहते थे वहाँ?
1: पता नहीं, वो जैसे अपने ही घर में कोई पैसे उसने छुपा रखे थे वहाँ पे, तो उनकी मम्मी ने बोला कि कुछ सामान लेके आना है, तो वो वहां से पैसे निकालने लगी, कह लगी पता नहीं मेरे हाथ में कुछ लग गया, तो एक दो घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई।
0: अच्छा, तो फिर कैसे पता चला, वो सांप पकड़ में आया?
1: नहीं, सांप पकड़ में नहीं आया, बस फिर जैसे वो नीली हो गई, जहर चढ़ गया, तो यही लगा कि वहां से पैसे निकाली थी शायद, फिर वहीं पे इसको कुछ
0: काट दिया। ओहो, पता भी नहीं चला और सांप भी पकड़ में नहीं आया। कितने बड़ी होगी और उसकी डेथ हुई इस तरह?
1: नहीं, उसकी डेथ हुई जब वो होगी 16-17 साल तक की।
0: अच्छी बड़ी होकर गई।
1: काफी जी, बड़ी जी थी।
0: आपको तो उस समय बहुत ऐसा लगा होगा कि जैसे मेरा कोई नहीं लगता है ना।
1: बिल्कुल।
0: सखियों के साथ जितना हम खुल करके बात कर सकते हैं, उतना किसी के सामने नहीं कर सकते।
1: किसी के सामने नहीं कर सकते
0: जी। बिल्कुल। थोड़े हंसी मजाक भी कर लेते हैं।
1: हाँ।
0: हर प्रकार से हम जैसे चाहे सखियों के साथ रह सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप तीन सखियां थी जी, फिर आप दो ही रह गए?
1: फिर हम दो।
0: तो खेती बाड़ी में आप दोनों साथ में जाते या फिर आप ही जाते?
1: नहीं, साथ साथ में भी चले जाते थे हम, कभी उन्होंने भी जाना होता था जब कह देते ठीक है चलो आज दोनों चलते हैं
0: जी,
1: तो दोनों चले जाते थे। फिर ऐसे ही थोड़ा जैसे पापा के भाई थे, चाचा हमारे
0: जी,
1: तो उनके साथ में ज्यादा हमारी टकराव ज्यादा रहते थे।
0: अच्छा, क्यों, कारण?
1: बस कुछ ऐसा होता था, जैसे मैं तो जब जन्म लिया था, मैंने एक दो साल की होंगी तभी मेरे पापा की डेथ हो गई थी।
0: अच्छा, तो आपने तो पिताजी को देखा ही नहीं?
1: नहीं, मेरे कोई शक्ल भी याद नहीं है मेरे पापा की
0: जी।
1: तो उसके बाद में फिर जैसे चाचा अम्मा को दबा के रखना चाहते थे
0: जी।
1: एक बार चाचा ने काफी कुछ हमारे साथ में मारपीट की, भाभी का हाथ तोड़ दिया था।
0: भाभी के ऊपर भी हाथ उठा दिया?
1: हाँ, भैया का सिर फोड़ दिया था और हमारी भैंसों को जहर वगैरह भी दे दिया था।
0: और रे रे रे। तो भैंसे भी मर गई?
1: सब मर गई थी।
0: फिर आपने पुलिस केस नहीं किया?
1: सब कुछ हुआ था लेकिन मैं तो उस टाइम पे बिल्कुल छोटी थी
0: जी,
1: तो सब कुछ किया था। मेरी मम्मी के भी अंगूठे भी खा लिए थे।
0: अच्छा,
1: उनकी लड़की। हाँ, काफी कुछ हुआ था।
0: चलिए नीलम जी, और भी आपके अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चाहे गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुणे लौट रहे हैं, कहीं भी जाइएगा नहीं। नीलम जी के अनुभव और भी बाकी है जो हम बाद में सुनेंगे, पहले सुनेंगे गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नारी केवल रिश्तों की डोर नहीं, नारी केवल रिश्तों की डोर नहीं, आधुनिक युग की मजबूत हकदार है। वो चलती है स्नेह भी लेकर, वो चलती है स्नेह भी लेकर, और हर कदम पर प्रखर प्रहार है, और हर कदम पर प्रखर प्रहार है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में नीलम जी हमारे साथ बने हुए हैं। नीलम जी के काफी अनुभव हमने सुने हैं, और आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। तो नीलम जी, जैसे आप बता रहे थे कि आप साल डेढ़ साल के थे और आपके पिताजी का देहांत हो गया
2: जी।
1: फिर चाचा जी ने बहुत खराब व्यवहार किया, हाथ भी तोड़ दिया आपके भाभी के, आपके मम्मी के हाथ की उंगलियां खा गए, भाई का सिर फोड़ दिया, आपके जो भैंसे थी उनको जहर दे दिया
2: जी।
1: पहले तो ये बताइए कि आपका गांव कितना बड़ा था, शहर था या गांव था?
2: गांव था।
1: गांव था, तो आपके आसपास के लोगों ने या और भी रिश्तेदारों ने कुछ कहा नहीं?
2: नहीं, सभी आए थे, लेकिन जो हो गया तो उसको तो कोई

0: बदलने सकता था उस टाइम पे,
1: जी
0: लेकिन उसके बाद फिर पुलिस केस वगैरह हुए, काफी दिन तक केस चले।
1: जी
0: लेकिन हमारे चाचा का यही रहता था, थोड़ा सा चलते थे, एक केस खत्म हुआ दूसरे के साथ में फिर कर देते
1: आपके साथ
0: थे,
1: ही करते थे?
0: और किसी के साथ में भी कर देते थे,
1: अच्छा
0: लेकिन हमारे साथ में कुछ ज्यादा करते थे।
1: अच्छा तो वो हर एक के साथ ऐसे झगड़ना करना?
0: हमारे साथ में तो इसी बात पे किया था कि उनका घर नीचे की साइड में था, हमारा ऊपर की साइड में, कह रहे यहाँ से ना पानी नहीं जाने देंगे आपका,
1: अच्छा
0: जो ढलाव में पानी जाता था, क्योंकि यहाँ पानी नहीं जाने देंगे। तो कह
1: जी
0: लगे भाई पानी तो यहीं से ही जाएगा,
1: जी
0: तो ऐसे करके उन्होंने हमारा पानी रोक रखा था।
1: जी
0: फिर पड़ोसियों ने आके भाइयों को बोल दिया तुम खोल लो, हम खड़े हैं।
1: जी
0: जैसे ही उन्होंने उस पानी को खोला तो बस उस टाइम पे फिर मारपीट उन्होंने शुरू कर दी।
1: तो आपके तो चार भाई है, वो तो अकेले चाचा जी थे?
0: नहीं, उनके भी चार पांच लड़के थे, और उसके पास में और भी कोई आते थे बाहर के भी।
1: बाहर के लोग भी सपोर्ट करते थे?
0: हाँ
1: तो सबने मिलके मारा? तो उस समय गांव वालों ने कुछ नहीं किया जब उन्होंने कहा कि आप खोलो तो?
0: बस उस टाइम पे देखो, बीच में लड़ाई के बीच में जब मारपीट होती है तो तब कोई नहीं बढ़ जाता है,
1: जी
0: लेकिन फिर भी कुछ इंसान आगे आके छुड़वाने के लिए आए थे,
1: जी
0: छुड़वाया था। उसके बाद फिर केस वगैरह आगे चले गया।
1: जी तो आपके एक ही चाचा जी है?
0: हाँ एक ही थे, वो भी चले गए अब तो।
1: जी लेकिन ऐसे वो बहुत उन्होंने
0: हाँ बहुत कुछ उन्होंने
1: जी,
0: किया।
1: तो उनके
0: हाँ
1: बेटे भी ऐसा ही करते थे जैसे चाचा कहते वैसे ही करते थे उनके बेटे, या
0: हाँ
1: वो थोड़े अक्कल वाले थे?
0: बस एक ही उनका अच्छा था, जो नहीं मानता था, वो अपनी पत्नी को लेके कहीं बाहर चला गया था, कैसे ना कैसे करके उन्होंने खत्म करवा दिया,
1: बेटे को ही खत्म करवा दिया?
0: उनको भी खत्म करवा दिया था।
1: अच्छा ये तो बड़े खतरनाक बात है। अच्छा
0: बेटा था, उन्होंने अपने घर पे जन्म दिया, वहीं पे पाला, कम से कम 10-12 साल का हो गया, वो वहीं पे बैठी थी कि भाई मेरे को ले जाएं, लेकिन कोई इसको लेने नहीं जा रहा था। तो फिर जैसे थोड़ा सा वो बड़ा हो गया था, बड़ा होने के बाद उसको खोस लिया, लड़के को भी
1: खुद ले गए,
0: उन्होंने,
1: लड़के को ले गए?
0: लड़के को भी उन्होंने खोस
1: क्यों,
0: लिया।
1: लड़के को क्यों ले गए भाई? आपने तो माता पिता को चाहा ही नहीं, फिर लड़के को कैसे ले जा सकते हैं? उन्होंने केस नहीं किया?
0: बस वो बहू भी थोड़ी गरीब घर की थी, तो ज्यादा कुछ नहीं उसने किया, बस इंतजार ही किया, लेकिन लास्ट में सुनाई में आई है कि वो आ गई थी वहीं पे ही, अपने बेटे के पास में ही आ गई थी।
1: अच्छा बेटा तो छोटा था, फिर पालन पोषण कौन करता है?
0: उस टाइम पे
1: तो
0: दादा दादी जिंदे थे तो उन्होंने ही किया,
1: फिर वो बहू को ले आए?
0: नहीं वो नहीं लेके आए, जब जैसे धीरे धीरे वो बड़ा हुआ तो थोड़ा सा हमारे चाचा जी चले गए, फिर उसके अंदर में थोड़ी हिम्मत आ गई कि मैं अब जाके अपने अपना हक लूं, मेरा बच्चा है मैं उससे मिलूं, तो ऐसे करके फिर वो लास्ट में उधर आ गई थी।
1: अच्छा फिर तो बेटा ने भी माँ को
0: हाँ
1: रखा, तो उनके साथ तो फिर अच्छे रहे, वो उनके भी चाचा चाची हो गए ना?
0: हाँ उनके भी चाचा चाची थे, लेकिन उस टाइम पे थोड़े सही रहे, लेकिन वो हमारे साथ में बाकी कुल मिला के अच्छा नहीं रहा था।
1: तो ये कितने साल आपके चला था?
0: ये कम से कम चला होगा 15-20 साल।
1: 15-20 साल, बहुत लंबे होते हैं। आपके पिताजी की डेथ के बाद ही वो झगड़ते या पहले से ही झगड़ते आए?
0: डेथ के बाद ही।
1: अच्छा, बाकी आपके पिताजी का रुतबा था
0: हाँ बाकी उस टाइम पे कुछ नहीं कहते थे,
1: तो बाद में उनको क्या सूझा, क्यों वो आड़ाई पर आ गए?
0: पता नहीं उनका क्या दिमाग में आ जाती थी, जैसे खेत में अच्छा कुछ हो जाता था उनके जैसे, तो पैसा आने के बाद उनके अंदर में एक अजीब सी फीलिंग हो जाती थी,
1: पैसा कहाँ से
0: और
1: आता है उनका?
0: वो जो खेत में जाते थे ना
1: जी
0: तो खेत से उनके पैसा आता था,
1: तो आपके शामिल तो नहीं था, अलग अलग था?
0: अलग अलग था,
1: अच्छा तो वो पैसे को ऐसे बर्बाद करते थे
0: बर्बाद कर
1: ऐसे?
0: देते थे।
1: तो बेटे कुछ नहीं कहते कि घर में पैसे नहीं है और आप झगड़ा?
0: बेटे भी उनके साथ में थे।
1: अच्छा इसलिए वो सब ऐसे ही करते थे।
0: हाँ
1: तो कभी पुलिस तक वो पहुंचे, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत जनों के साथ झगड़ते थे, तो कभी उनको अरेस्ट भी किया? नहीं,
0: हाँ अरेस्ट भी किया था उनको, लेकिन वही बात है फिर आगे भी क्या होता है, पैसा वगैरह भर देते हैं और छूट जाते हैं,
1: जी, हाँ
0: तो केस तो काफी साल चला भी था,
1: जी
0: लेकिन फिर हो कुछ नहीं पाया, पैसा भर दिया गया।

0: वे छूट गए।
1: जी। अभी कैसा है? अभी जैसे चाचा जी तो नहीं, आपके उनके लड़के हैं तो वो सब आते जाते हैं परिवार में?
0: नहीं, आते जाते नहीं है।
1: पर अभी तो झगड़ा खत्म हो गया या अभी तक भी ऐसा ही है?
0: नहीं, झगड़ा तो खत्म हो गया है लेकिन आते जाते नहीं है। किसी ने कभी बोलना हो तो बोल भी लेते हैं लेकिन वो बात नहीं है।
1: अब वो तो फिर रख के भी क्या करेंगे, जब
0: हाँ
1: कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, इतना नुकसान पहुंचा चुके
0: हाँ
1: हैं। कितनी भैंसे मरी होगी उस समय?
0: पांच।
1: 5 भैंस। अब उनको मारने से उनको क्या मिला?
0: अब क्या बताएं, ये सोच रहे थे ना भाई अब ये कहीं कहीं से पैसा इनका नुकसान हो जाएगा, कहाँ से लगाएंगे केस में, इस प्रकार से मतलब उन्होंने सोच के ऐसा किया।
1: जी। और झूठ भी बोल दिया होगा क्योंकि डायरेक्ट तो मारेंगे नहीं।
0: हाँ नहीं, ऐसे देखो देखा नहीं ने, कुछ वो करते हुए, लेकिन जैसे ऐसे कभी किसी के साथ में हुआ नहीं कि भाई सभी भैंस एकदम से ऐसे मर गई हैं और फट भी गई हैं जैसे।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: ओहो, वो जहर इतना खतरनाक था। चलिए, आपके बचपन की बातें चल रही है, आप तो 1.5 साल के थे तो आपको कुछ पता नहीं। जब आप संभले तो आपके पिताजी तो नहीं थे, आपके माताजी ने आपको शिक्षा संस्कार दी होगी,
0: जी
1: तो उस समय आपके माताजी के साथ सब अच्छे रहते थे, भाई भाभी आपके सभी?
0: हाँ, सभी अच्छे रहते थे।
1: जी। तो आपको विशेष करके उस समय क्या आपको सीखने को मिलता, क्योंकि आप सबसे छोटे हैं तो काफी मर्यादाओं में आप रहे होंगे, बड़ों के सामने नहीं बोलना या विशेष डिमांड नहीं करना। पिताजी ने होने से भी बहुत सारी चीजें ऐसे लगता है ना कि माताजी दे नहीं पाएंगे, तो अपने मन को मारते थे या फिर आपको मिल जाता था जो चाहते थे वो?
0: नहीं, बस किसी बड़ी चीज की तैसी में डिमांड नहीं करती थी क्योंकि हमें पता था अपने घर क्या हालात कैसे हैं,
1: जी
0: लेकिन कोई भी ऐसी छोटी मोटी कोई सूट है कोई भी चीज है ऐसी मेरी तो मम्मी को बोल देती थी, दिला देती थी।
1: अच्छा, मम्मी
0: और
1: दिलाते।
0: भाई भी कोई ऐसे वो नहीं करते थे, सब अच्छे थे। हाँ,
1: जी। और आपके तो बड़ी बहनें भी थी,
0: बड़ी
1: तो
0: बहनें भी
1: बहनों
0: थी।
1: से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा।
0: बस बहनें तकरीबन ससुराल में ही चली गई थी
1: जी
0: तो कई बार बहनों के पास में जाना हुआ, जैसे उनके छोटे छोटे बच्चे थे इस टाइम पे
1: जी
0: तो कई बार चली जाती थी, काफी काफी दिन उधर रुकी आती थी। वहां का भी उनका सबका प्यार बहुत अच्छा रहता था क्योंकि सबसे छोटी थी तो सबका ही लगाव था मेरे साथ में।
1: जी। और जैसे आप बड़े हुए, आपने दुनिया देखना शुरू किया, तब आपके चाचा चाची आपको बुलाते थे या बिल्कुल बेटियों से भी बात नहीं करते थे?
0: नहीं, वो बात नहीं करते थे।
1: अच्छा, और उनके बेटों बेटियों से भी बात नहीं करना?
0: नहीं, कभी कभी कभार हो भी जाती थी लेकिन वो बात नहीं थी कि उनके घर जाके बैठना ये
1: हाँ,
0: करना।
1: वो कुछ नहीं था।
0: हाँ, ऐसा नहीं था,
1: जी।
0: बस निकलते राम रमी हो जाती थी,
1: जी।
0: बस इतना ही।
1: अच्छा, और आपको क्या शौक रहा?
0: सिलाई का भी शौक था मेरे को और पढ़ाई का भी शौक था। सिलाई का तो फिर भी कुछ हद तक मैंने पूरा किया लेकिन पढ़ाई का नहीं हो पाया।
1: तो जैसे घर में बैठ के भी तो आप पढ़ सकते थे, कभी ये नहीं सोचा कि मैं घर पर बैठ कर ही अपना साइन करना है, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना सीखूं?
0: नहीं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। भाभी भी मेरी कोई सी पढ़ी लिखी नहीं है और बहन भी पढ़ी लिखी नहीं है, भाई पढ़े
1: अच्छा,
0: लिखे थे तो
1: जी।
0: भाइयों ने भी कुछ फिर आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की।
1: जी, सभी उन्हीं उलझन में उलझे हुए थे।
0: जो मेरा छोटा वाला भाई था मास्टर, उसको इतना मार देते थे अब वो चक्कर खा के बेहोश होकर गिर जाता था तो
1: टीचर
0: कहता,
1: इतना मारते थे?
0: इतना मारते थे तो इसीलिए वो कहता था देख मैं इतना मेरे को मार देते तू तो इतना सहन भी नहीं कर पाएगी।
1: तो इतना क्यों मारते?
0: पता नहीं क्या पहले के क्यों करते थे ऐसा, अभी तो
1: भाई
0: ऐसा
1: बच्चे
0: नहीं है।
1: गलती करे तो उनको भाई समझाओ मारो, लेके ऐसे मारते थे कि चक्कर भी आ जाए?
0: हाँ, चक्कर खा के बेहोश हो जाता था
1: ओ, तो फिर सुन करके तो दूसरे तो घबराएंगे ना, तो फिर
0: इसीलिए।
1: कभी कंप्लेन नहीं की कि आप क्यों इतना मारते हो?
0: बस ऐसे कंप्लेंट वगैरह का नहीं था उस टाइम पे,
1: अच्छा,
0: इतना कुछ नहीं था, बस थे काम नहीं हुआ ये नहीं हुआ।
1: चलो, अब उसका तो कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि समय
0: बिल्कुल
1: बीत
0: बिल्कुल।
1: चुका है। तो नीलम जी, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर से समय हो चला है गीत सुनने का, तो ये गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: Jis ghar mein betiyan muskra de, jis ghar mein betiyan muskra de, wo ghar mandir ho jata hai. Uske aanchal ki thandi chhaya mein har dukh chhota ho jata hai. Uske aanchal ki thandi chhaya mein har dukh छोटा हो जाता है. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में नीलम जी हमारे साथ बने हुए हैं. नीलम जी, आपके काफी अनुभव हमने सुने हैं. अब इतना सा हम पूछना चाहेंगे कि आपके शादी कितने साल के थे और हुई, और शादी के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया?
2: जब मैं होंगी 24 साल के करीब तब मेरी शादी हुई थी
1: जी.
2: तो अगले ससुराल में भी 6 भाई थे, 2 ननद थी
1: जी,
2: ससुर नहीं थे, सास थी
1: जी.
2: सभी परिवार अच्छा था. और लेकिन जैसे जैसे ससुराल में रहे, सभी के साथ में अच्छे से रहे.
1: आपका ससुराल में कौन सा नंबर आता है?
2: ससुराल में मेरा 3रा नंबर आता है.
1: अच्छा अच्छा. गांव से कितना दूर था?
2: गांव से काफी दूर था. गांव से?
1: अच्छा, काफी दूर.
2: हाँ.
1: क्या नाम है आपके ससुराल के गांव का?
2: लेकिन है सोनीपत के उसमें मुरथल.
1: मतलब मुरथल में आपकी शादी हुई? तो ये एक गांव है, कस्बा है, कैसा है?
2: सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ही लगता है.
1: मतलब गांव है या कस्बा है, शहर है?
2: शहर में लगता है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के नजदीक है, बिल्कुल लगता ही है.
1: जी जी. तो यहाँ पर भी बड़ा परिवार, सभी साथ में रहते थे?
2: साथ में रहते थे. दो जो बड़े जेठ थे वे बाहर गए हुए थे.
1: अच्छा, वो बाहर रहते थे?
2: वो बाहर रहते थे.
1: अच्छा, और आप लोग गांव में रहते थे?
2: हम गांव में रहते
1: थे. तो आपके हस्बैंड क्या काम करते थे?
2: इनका अपना काम था, बस थोड़े ही दिन रहे थे गांव में, फिर इनका अपना काम था. हम दिल्ली आ गए थे, इनका फ्रूट का काम था. हिमाचल से फ्रूट लेके आते थे और आड़त की दुकान पे सप्लाई करते थे.
1: होलसेल का?
2: होलसेल का
1: जी. तो फिर आप कितने समय ससुराल रह करके हिमाचल चले गए?
2: मैं दो साल के करीब रहे होंगे.
1: अच्छा, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आए? ससुराल में आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपको मिलता था?
2: हाँ, ठीक था, सब अच्छा था
1: जी. और ससुराल वाले भी, सास ससुर सभी अच्छे थे?
2: सभी अच्छे थे.
1: जेठ जेठानी देवर देवरानी
2: सभी अच्छे थे
1: जी. जी, तो दो साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला होगा
2: जी.
1: फिर उसके बाद आप हिमाचल चले गए, तो वहां पर आपको बहुत ही अकेलापन लगा होगा, क्योंकि बड़े परिवार से आप निकले.
2: नहीं, हिमाचल ऐसे बीच बीच में जाते थे, बाकी दिल्ली आ गए थे हम.
1: अच्छा.
2: हाँ,
1: फिर दिल्ली? तो दिल्ली आप अकेले रहते होंगे?
2: दिल्ली अकेले नहीं, साथ में रहते. हाँ, हस्बैंड के साथ में.
1: हाँ, वही आप. हाँ, और आपके हस्बैंड. हाँ, तो इधर तो इतना बड़ा परिवार, उधर आप दोनों जने, तो आपको बहुत ही ऐसे अकेलापन महसूस हुआ होगा.
2: ये तो है.
1: तो पूरे दिन आप क्या करते हैं? आपके हस्बैंड बिजनेस पर चले जाते हैं? फिर
2: वो करीब 10 बजे से बज जाते थे, उसके बाद घर का काम करना, कपड़े धुलाई, साफ सफाई, इसी में लगे रहते थे. और उसी टाइम पे था
1: बेटे का जन्म भी हुआ.
2: जन्म हुआ उसी टाइम पे, समय से सत्संग में जाने लग गई थी.
1: अच्छा, आप गर्भवती थे तब से आपको सत्संग मिल गया?
2: जी.
1: तो आप सत्संग में जाते थे
2: जी,
1: दिल्ली में
2: जी.
1: तो आप एक छोटे से गांव से बड़े शहर में आए, आपको पहले तो बड़ा अजीब लगा होगा कि ये मैं कहाँ आ गई. एक तो गांवों में तो मिलना जुलना चालू रहता है.
2: बिल्कुल.
1: अब शहरों में सब व्यस्त होते हैं.
2: हाँ,
1: तो कैसे आप समय व्यतीत करते थे? आपको ऐसा लगता होगा ना कि मैं किससे बात करूं?
2: नहीं, जिसके हम किराए पर रहते थे वो दीदी बहुत अच्छे थे
1: जी.
2: बहुत प्यार से रहते थे, ऐसे रहते थे जैसे अपने घर की तरह से. खाना भी मेरे पास ही आके खाते थे, और अच्छे मिलजुल के रहते थे बहुत अच्छी तरह से
1: जी. जी,
2: उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया.
1: अच्छा.
2: हाँ, अच्छे से रहते थे.
1: तो आप कितने साल वहाँ?
2: वहाँ मैं 4 साल के करीब.
1: दिल्ली में?
2: दिल्ली.
1: फिर 4 साल बाद?
2: फिर 4 साल बाद जैसे इधर भी आए थे एक बार.
1: आबू
2: भी
1: जी.
2: तो पूरे परिवार के साथ में आए थे, बेटा भी और उनके पापा भी
1: जी.
2: तो उस टाइम पे ये इससे जुड़ चुके थे, इस सत्संग से
1: जी. जी.
2: तो फिर जैसे यहाँ आए, उसके बाद फिर वो जाने के बाद थोड़े से ऐसे सत्संग में जाते थे उनको पसंद नहीं आता था, भाई कहते थे नहीं ये कुछ नहीं है, ढोंग होता है, ये होता है।
1: अच्छा हाँ। फिर आबू आने के बाद आप अपने ससुराल गए?
2: नहीं ससुराल नहीं गई, हाँ फिर एक बार यहाँ से आके फिर एक बार वापसी चले गए थे।
1: हाँ तो आप अपने गांव ही गए होंगे ना आपके
2: हाँ,
1: ससुराल?
2: हाँ
1: तो वहाँ पर फिर सभी ने कहा कि इस सत्संग में नहीं जाना है, तो फिर क्या किया आपने?
2: तो फिर ऐसे करके इनकी तबीयत खराब हो गई, ये दौर चलते चलते तबीयत खराब होने के बाद ये एक दो साल बीमार रहे, और फिर इनको अचानक ही उल्टी दस्त वगैरह और उनकी उस टाइम पे फिर डेथ हो गई।
1: तो इलाज नहीं करवाया?
2: हाँ हॉस्पिटल में ही थे उस टाइम पे जिस टाइम पे डेथ हुई, तो इलाज ही चल रहा था लेकिन कुछ नहीं हो पाया।
1: अच्छा बेटा कितना बड़ा था उस समय?
2: 4 साल का।
1: 4 साल का ही था? आपके ससुराल में ही ये हादसा हुआ?
2: नहीं ये हादसा हुआ करनाल में।
1: करनाल आ गए थे रहने
2: जो हॉस्पिटल में?
1: नहीं वो तो है लेकिन रहते थे आप अपने ही घर में, ससुराल में ही रहते थे?
2: नहीं करनाल में ही रहते थे।
1: अच्छा करनाल में क्या बिजनेस था आपका?
2: नहीं फिर उन्होंने दिल्ली से जब बीमार हो गए थे तो कहने लगे भाई मैं थोड़ा सा ऐसे एरिया में रहना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आ गए थे थोड़ा खुला खुला से उसमें।
1: अच्छा करनाल आ गए रहने और फिर यहीं पर यह तकलीफ शुरू हो गई?
2: जी।
1: और यहीं पर डेथ हो गई? तो फिर क्या किया आपने? आप अपने ससुराल जाकर रहे या फिर सीधे आबू आए रहने?
2: नहीं ससुराल तो नहीं गई, थोड़े ही जैसे उनकी डेथ के बाद जो जेठ थे उनके थोड़े से मेरे प्रति गलत संकल्प हो गए थे
1: जी,
2: तो थोड़ा जिठानी के दिल दिमाग में ऐसा हो गया भाई मेरा घर उजड़ जाएगा ये हो जाएगा
1: जी,
2: तो मैंने उसको बोला कि दीदी आप चिंता ना करें, मैं ऐसा कभी सुन नहीं सकती जो आप सोच रहे हैं
1: जी,
2: तो ऐसा कभी नहीं होएगा। तो फिर मैं बेटे को उधर से लेके और मैं कहीं बाहर आ गई, रेवाड़ी आ गई मैं।
1: रेवाड़ी क्या है?
2: बस ऐसे ही आ गई, रेवाड़ी की जान पहचान थी उधर, तो उनके उधर आके मैं किराए पर रहने लग गई।
1: 4 साल के बच्चे को लेके? उस समय आपके सास ससुर नहीं थे?
2: नहीं ससुर तो पहले ही नहीं था, सास थी
1: जी। तो आपके सास ने कुछ नहीं कहा कि तू अकेली कहाँ जाएगी रहने, तू यही घर में रह?
2: नहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा उस टाइम पे।
1: तो फिर रेवाड़ी में आकर
2: उन्होंने और उल्टा इल्जाम मेरे ऊपर ही लगा दिया कि तेरे वजह से ये हो गया वो हो गया, तो फिर इसलिए मैंने वहां पर रहना फिर अच्छा नहीं समझा
1: जी। तो रेवाड़ी तो कोई नहीं था, आप अपने पियर जा सकते थे?
2: देखो पियर में भी अब मैं सबसे छोटी थी और सबको ये हो जाता, मम्मी मेरी डेथ हो गई थी।
1: अच्छा जी जी जी। हाँ, तो भाई भाभी है तो फिर अपना अधिकार इतना नहीं रहता।
2: हाँ फिर सभी को ये रहता उसके पास रहे उसके पास रहे, तो ये चीजें मैंने किसी को परेशान नहीं किया
1: जी। बहुत अच्छा किया। फिर रेवाड़ी में आपने क्या किया?
2: मैंने वहाँ पे आके सिलाई शुरू की।
1: अच्छा तो पहले सिलाई सीखी होगी आपने?
2: नहीं सिलाई मैं पहले से थोड़ी सीख रही थी ना, तो वहाँ पे मैं रेडीमेड जैसे साड़ी के नीचे वाले पेटीकोट होते हैं वो मैं रेडीमेड सिलती थी।
1: अच्छा।
2: और बच्चे को पढ़ाती थी।
1: तो गुजारा चल जाता था?
2: बस चल जाता था
1: जी जी। तो चलिए नीलम जी के अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला है एक गीत सुनने का, तो एक ब्रेक लेंगे उसके बाद पुनः लौटेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। नारी को कमजोर कहने वालों, हिम्मत करो, पहले उसे समझो तो सही। नारी को कमजोर कहने वालों, हिम्मत करो, पहले उसे समझो तो सही। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में नीलम जी हमारे साथ है। नीलम जी के काफी अनुभव सुने हैं, और आइए और भी हम सुनेंगे। नीलम जी, जैसे आप बता रहे थे कि आपके हस्बैंड की डेथ के बाद आप रेवाड़ी चले गए रहने के लिए, 4 साल के बच्चे को लेकर। उस समय आपके पास कोई काम धंधा नहीं था, क्या करेंगे क्या नहीं कुछ पता नहीं था। फिर वहां आकर के आपने सिलाई शुरू की, फिर कैसे आप आगे बढ़े? और वहां पर किसी का सपोर्ट मिलता था?
3: नहीं, जैसे कुछ मेरे को इंश्योरेंस था इनका, तो वो पैसा मिला था, उधर ही मैंने घर ले लिया था।
2: अच्छा।
3: और बस ऐसे सिलाई वगैरह करते मैं करती रही, थोड़ा किराए पे भी मैंने दे दिया था उधर।
2: अच्छा, घर रेवाड़ी में खरीदा आपने?
3: जी।
2: तो आपको घर में से तो कुछ नहीं मिला हिस्सा?
3: नहीं मिला, उधर से तो कुछ नहीं मिला था, इंश्योरेंस था, मैं वहां से कुछ नहीं लेके आई।
2: अच्छा अच्छा, हाँ वो इंश्योरेंस था जो, उससे आपके बच्चे का भी गुजारा और आपके मतलब घर भी खरीद सके।
3: हाँ,
2: तो ये अच्छा किया कि कम से कम अपना घर होगा तो कोई निकालने वाला तो नहीं मिलेगा। फिर आप आबू तलेटी कैसे आए?
3: जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी रही, तो मैंने बस ये ठान लिया, भगवान भी कहते हैं कि लास्ट में इधर ही आना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अभी से ही अपने जाने की तैयारी करूं। बीच बीच में इधर मैं माउंट आबू में आती रहती थी,
2: तो ये अच्छा लग गया आपको?
3: अच्छा लगता था जब अपने बहन भाइयों का इतना प्यार, इतना स्नेह से मिलन देखते थे, बाबा का प्यार, तो फिर मैंने ठान लिया कि अब मैं यहाँ से अब रोड चली जाऊंगी।
2: बच्चा कितना बड़ा था और आप इधर आए?
3: अब तो बड़ा हो गया था बच्चा, काफी 17-18 साल का हो गया।
2: और आपको इधर आए हुए कितना समय हो गया?
3: 5-6 साल हो गए।
2: 5-6 साल हो गए, तो अच्छा लग रहा है यहाँ आपको?
3: हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान के प्यार में, सभी भाई बहनों के स्नेह में, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
2: जी, कहते हैं ना कि आपके 4 साल का बच्चा था और आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, बहुत जने दूसरी शादी कर लेते हैं, आपने कभी सोचा नहीं?
3: नहीं, लेकिन देखो परिस्थितियों को देखते हुए देख रहे थे, और फिर थोड़ा सा सत्संग की तरफ भी थे
2: जी,
3: तो इसी कारण से फिर समझा के ठीक है, जो भी हमारी किस्मत में था वो मिल गया है, अब भगवान में जुड़ गए तो फिर दूसरी तरफ नहीं देखा।
2: जी जी, बिल्कुल आपने सोचा ही नहीं, क्योंकि आप सत्संग में शुरू से जाते थे इसलिए।
3: जी,
2: चलिए बहुत अच्छा। और बच्चे को कहाँ तक पढ़ाया आपने?
3: बच्चे ने 10 की थी बस, उससे आ गया, इसका दिमाग नहीं चला, बाकी ये और काम हर काम कर लेता, इससे कोई काम भी नहीं छूटा। शायद ऐसा महसूस होता जैसे पिछले जन्मों का कोई इंजीनियर है।
2: अच्छा।
3: इससे कोई काम नहीं छूटा, हर काम को कर लेता ये।
2: चलिए बहुत बढ़िया। और आपके ससुराल जाते हैं आप?
3: नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाती हूँ, ना माई के जाती ना ससुराल जाती।
2: नहीं बुलाते वो, या फिर आपने अपने मन से?
3: मैं जाती ही नहीं हूँ।
2: और बच्चा अभी यहाँ पे खुश है?
3: हाँ खुश है
2: जी। सिलाई काम अभी भी करते हैं आप?
3: नहीं अभी नहीं करती।
2: तो अभी आप क्या काम करते हैं?
3: अभी बस थोड़ा सा ये SLPS कंपनी से जुड़े हुए हैं, और इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हम अभी इसी में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागृत करते हैं।
2: अच्छा, तो ये आपने कहीं से ट्रेनिंग ली?
3: हाँ, ये ट्रेनिंग चलती है हमारी ऑनलाइन।
2: अच्छा, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर के ऐसे आप जुड़े हैं?
3: जी।
2: तो आपका काम अच्छा चल रहा है?
3: जी अच्छा चल रहा है।
2: और फिर आपके रेवाड़ी में घर, उसका क्या किया?
3: नहीं, उसको बेच के हमने इधर ही ले लिया था।
2: अच्छा, इधर खरीद लिया?
3: हाँ।
2: चलिए बहुत अच्छा है। और नीलम जी, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जो हमारी बहनें सुन रही है उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
3: देखो यही कहना चाहते कि अब खुद ही हम करेंगे तभी हमें सुख मिलेगा, दूसरों के ऊपर जिएंगे तो दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है।
2: जी जी जी, तो आपके कहने का मतलब यह है कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए।
3: जी,
2: तो बहुत अच्छा संदेश दिया है नीलम जी ने कि आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। दूसरों पर डिपेंड रहेंगे तो दुखी होंगे और आत्मनिर्भर बन के रहेंगे तो सुखी होंगे। बहुत ही सही मैसेज आपने दिया है, क्योंकि आपने भी सिलाई के द्वारा अपने बच्चे की पालना की है और स्वयं का भी किया है। तो नीलम जी के हिम्मत को दाद देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, जो आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव शेयर किए सभी के साथ इसके लिए।
3: थैंक यू दीदी, थैंक यू।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में नीलम जी शर्मा हमारे साथ बने हुए थे। आपकी उम्र 50 वर्ष की, आप हरियाणा से थे लेकिन अभी 6-7 वर्षों से आप आबू तलेटी में रहते हैं और आपके जीवन के अनुभव हम सभी ने सुने हैं कितने गहरे हैं। कम उम्र में आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और आपने पढ़ाई नहीं की है लेकिन सिलाई के द्वारा आपने 4 साल के बच्चे की परवरिश की, घर चलाया। उस समय आप किराए पर रहते थे, धीरे धीरे आपने घर भी खरीदा, बच्चे को भी काबिल बनाया और इस तरह आप अपने घर की गाड़ी को आज भी अच्छी तरह चला रहे हैं। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।
4: अभी बचे हैं दोपहर के 1।

0: सहज बहाव में जीना ही इस चेतना का सत्य घेरा। हमारी जो चेतना है वो सरलता को तलाश करती है, पर कहीं ना कहीं वो जटिलताओं में घिरी हुई होती है। इसलिए कहते हैं, नदी जैसी बहती चेतना न रुके कहीं न बंधे दिशा। नदी का जल सभी के लिए है, वह सबको अपना बना लेती है, जहां भी जाती है उसे लाभ देती है, विलीन होने के लिए भी तैयार है। नदियों की अविरल धाराओं में निस्वार्थ प्रेम है। नदी अटूट प्रेम, अनन्य प्रेम की चिरस्थायी प्रतीक है। वह बिना कुछ कहे परोपकार किए जाती है। तो आज कार्यक्रम गुलदस्ता में स्वर्णलता आप सभी का फिर से स्वागत करती है और आगाज करती है, क्योंकि आज हम एक खास नदी पर बातें भी करेंगे और उस नदी से जुड़े गीत भी सुनेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप हैं रेडियो मधुबन पर, सुनते हुए गुनगुनाते हुए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: यमुना मैया यमुना मैया, तेरे जल में बसती है माया। मेरे हर एक ख्वाब में माँ तेरी ही छवि दिखाई दे। युगों युगों से नदियां बहती आ रही हैं, विश्व के नक्शे की यह साथी हैं, संगिनी हैं। पूरे विश्व में अपने अपने स्थानों में प्रचलित नदियां हैं, जो वहां के रहवासियों की जननी हैं। जैसे धरती को माँ कहा जाता है, नदी भी जननी है हमारी। खेत खलिहानों की सिंचाई से लेकर शरीर निर्वाह तक उसकी जरूरत अनवरत है। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आज हम सुनेंगे यमुना नदी की गाथा। यह एक ऐसी अविरल धारा है जिसकी धाराओं में हमारी भारत की प्राचीन संस्कृति बसती है। हमारी प्राचीन संस्कृति में यमुना की बहुत महिमा है और उस महिमा को हम इन गीतों के जरिए और कुछ बातों के जरिए अभिव्यक्त करेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप हैं स्वर्णलता के साथ आपके फेवरेट शो में गुलदस्ता में। जब मन में आशा गंगा, धैर्य यमुना और दूसरों से अपेक्षा सरस्वती हो जाए, तो जीवन संगम सा सुंदर व शांत हो जाता है। इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे। लेट अस एंजॉय टुडेस शो।
1: मम्मी मम्मी।
2: हाँ बेटा।
1: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है। वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वही भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पिटती होगी। क्यों ना हम उसे पढ़ाएं।

यमुना मैया तेरे जल में पावन कहानियां पाई जाती हैं, तेरी महिमा न्यारी है और तूने कृष्ण मुरारी राधा रानी की कहानियां भी देखी हैं। तुम साक्षी हो, इतिहास में तुम्हारी बहुत महिमा।

0: सुंदर कहानी है। इन नदियों में हमारे भारतवर्ष की ही नहीं, इन नदियों में अलग अलग जगहों में उनकी भी कहानी छुपी हुई है। तो देर न करते हुए ट्यून कीजिए, रेडियो मधुबन पर आ जाएं, क्योंकि कार्यक्रम गुलदस्ता में आज हम यमुना नदी के बारे में सुनेंगे, क्योंकि यह बहुत ही ऊंच नदी है।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सुरों की मल्लिका लता जी की आवाज में हम यमुनाष्टकम सुन रहे थे। कार्यक्रम है गुलदस्ता। श्री यमुना महारानी की महिमा, उनके गुणों और श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति का वर्णन करने वाला एक अत्यंत पवित्र अष्टक, और इसके रचयिता थे श्री वल्लभाचार्य। इस यमुनाष्टकम का सार है, मैं सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली श्री यमुना जी को प्रसन्नता के साथ प्रणाम करता हूँ, जिनकी रेत श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से चमकती है और जिनके तटों पर नए वन तथा सुंदर पुष्प खिले रहते हैं। बहुत ही अद्भुत श्लोक है, और इस श्लोक को सुनकर हमारे दिल में यमुना नदी के प्रति जो प्रेम है वह और भी बढ़ गया है ना। हम सुन रहे हैं यमुना नदी की महिमा आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसे कि हमें मालूम है, नदी को माँ का स्थान भी दिया गया है। नदियाँ तो कई हैं भारत में, गोदावरी, कावेरी, गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, सिंधु, महानदी, अनगिनत नदियाँ हैं, और ये प्रचलित नदियाँ हैं भारत वर्ष की, और इसमें यमुना का भी एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है हमारे दिलों में।
1: वो पहाड़ देख रहे हो?
2: हाँ, कितना सुंदर है।
1: और उनको देख रहे हो?
2: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
1: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
3: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आपने सुना जमुना पर एक बहुत ही सुंदर गीत जो हमें बहुत इमोशनल कर रही थी, भाव विभोर कर रही थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अलग अलग प्रांतों की एक स्पेशल नदी है और हम सब जिस भी प्रांत के हों उन प्रांतों की जो नदियां हैं, जो स्पेशल नदियां हैं, चर्चित नदियां हैं, उन नदियों के साथ भी हमारी कहानी जुड़ी हुई है। उन नदियों के आस

0: भी हमारी बचपन और बचपन में खेलकूद किए हुए हैं हम ऐसी नदियों के तट पर अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के लोगों के साथ। तो ये बहुत भावपूर्ण गीत था हम सबके लिए। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर अभी हम यमुना नदी के बारे में थोड़ी बातें करेंगे कि यमुना नदी भारत की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर 1376 किलोमीटर का सफर तय करते हुए प्रयागराज में गंगा से मिलती है। यह नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो आज हमने यमुना नदी के बारे में जाना कि वो कहाँ से गुजरती हुई कहाँ को जाती है, तो अंत में यह नदी गंगा नदी में ही विलीन हो जाती है।
1: ओए रुको, रुक रुक, भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पे कहाँ चले जा रहे हो हैं?
2: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
1: और पहाड़ भले ही न टूटे लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा, और इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
3: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम गुलदस्ता में अभी हमने ब्रज भाषा में एक गीत सुना जगजीत सिंह जी की आवाज में, जिसके बोल थे तरुवर छाँव तीर जमुना के कीर पठावत डोले, रूप रास कौ नवल किशोरी मोहन कह कह बोले। है ना, बहुत खूबसूरत गीत। वैसे दोस्तों, जब भी यमुना नदी की बात होती है तो श्री कृष्ण और राधा इन दोनों का जिक्र तो होना ही है। वैसे यमुना नदी का ब्रज मंडल से गहरा नाता है। श्री कृष्ण की बाल्यावस्था और उनकी कई लीलाएं इसी नदी के तट पर हुई। तो अभी जो हमने एक गीत सुना ब्रज भाषा में, आइए उसका अर्थ थोड़ा समझ लें कि यमुना नदी के शीतल तट पर घने वृक्षों की छाव है, जहां तोते प्रेम के बोल बोल रहे हैं और इधर उधर फुदक रहे हैं। वहां अनुपम सौंदर्य और रस की सागर वह नवल किशोरी श्री राधा विराजमान है, जिन्हें देखकर श्री कृष्ण बार बार कुछ कह रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर गीत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए आ रहे हैं दो गीत बैक टू बैक यमुना नदी के बारे में। तो आइए यमुना तट पर हम अपने दिल को बसा दें।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वयं से जुड़े प्रश्न पूछें। मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैंने जीवन में अब तक क्या पाया है, ये आत्मा चिंतन की पहली सीढ़ी है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर हम सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता, और आज हम सब यमुना नदी के बारे में बातें कर रहे हैं और इस नदी पर ही गीत सुन रहे हैं। और आप सब हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, क्योंकि यमुना नदी की कहानी बहुत गहरी है, इसने कई कहानियों को साक्षी होकर देखा है। आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए, जाते जाते आप सभी के लिए आ रहा है एक राजस्थानी भजन यमुना नदी पर। यमुना जल माँ केसर घोली भजन के बोल हैं, और इस भजन को सुनते हुए हम विदा लेंगे। और आपको हम यही कहना चाहेंगे कि नदी जो है सुखदायिनी है। नदी तट पर बैठकर इंसान घंटों बातें करता है नदी के साथ, और उसको ऐसा लगता है कि नदी उसके प्रश्नों को सुन रही है और जवाब भी दे रही है। नदी के साथ हमारा गहरा रिश्ता होता है, तो ऐसे ही हम प्रकृति के पांच तत्वों के साथ रिश्ता बनाकर उसे खुश करें और उससे खुशी प्राप्त करें। तो आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह एक नवीनतम विषय के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मंजू, मैं बाड़मेर से हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: नमस्ते जी, मैं अजय कांत रुईया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में भाषा में सबना हार्दिक नमस्कार कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरा संपर्क हुआ तब से मना जिंदगी को एक नया दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम्स जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इन्हें से मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारा लोगों ना बोलूंगा कि अपना जो भी काम आप करा मन लगाकर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाऊंगा। फिर नमस्ते, हंसते रहो मुस्कुराते रहो।
1: थारी कंचन सी का यारो भरोसो कौन लोभी जीवड़ी ला कौन पापी जीवड़ी ला

0: नमस्ते दोस्तों, देखा पहुंच गया ना सही समय पे आप सब से मिलने और आपको मीना से मिलवाने।
1: लो वो रहे मीना के दोस्त सुमीर, रानो और सुनील अपने स्कूल के मैदान में।
0: अभी अभी आधी छुट्टी जो हुई है,
1: लेकिन ये तीनों इतने उदास क्यों हैं? आओ जरा देखे तो।
2: अरे सुमी, रानो, सुनील, क्या हुआ? तुम सब इतने उदास क्यों लग रहे हो? और तुम वापस कहाँ जा रहे हो?
3: बहन जी, हम क्लास में जा रहे हैं।
2: लेकिन क्या हुआ सुनील? अभी तो आधी छुट्टी हुई है। और रानो तुम बताओ क्या बात है?
4: बहन जी, वो मैं बताती हूँ बहन जी।
2: हाँ हाँ सुमी बोलो।
4: बहन जी, दीपू ने अभी हम सबको बहुत तंग किया
3: और उसने हमारी गेंद भी छीन ली। और जब हमने उससे अपनी गेंद वापिस मांगी तो वो बोला, जाओ जाओ, नहीं वापिस करूँगा तुम्हारी गेंद।
2: सुनील, दीपू तो अक्सर तुम सबके साथ खेलता है, फिर आज उसे ऐसा क्या हो गया कि वो तुम्हें तंग कर रहा है?
3: बहन जी, यही तो हमें समझ नहीं आ रहा।
2: तुम लोग चिंता मत करो, मैं दीपू से इस बारे में बात करूंगी।
3: ठीक है बहन जी।
1: और फिर बहन जी पहुंची दीपू के पास।
2: दीपू, तुम यहाँ पेड़ के नीचे अकेले क्यों बैठे हो?
4: बहन जी, वो...
2: अरे क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगे?
4: बहन जी, मैंने बहुत मेहनत से एक किताब बनाई थी, लेकिन बारिश की वजह से मेरी किताब खराब हो गई।
2: किताब बनाई थी? मैं समझी नहीं।
4: बहन जी, अपने गांव में जो मेला लगा है ना, उसमें एक मुकाबला होने वाला है चित्र वाली कहानियों की किताब बनाने का। मैंने उसी मुकाबले के लिए एक बहुत सुंदर किताब बनाई थी, लेकिन बारिश में भीगने से मेरी किताब।
2: रो मत दीपू, तुम दोबारा भी तो वैसी ही किताब बना सकते हो, है ना?
4: नहीं बहन जी, वो मुकाबला कल है। एक दिन में फिर से वैसी किताब बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल।
1: दीपू रोते रोते क्लास की तरफ भागा। मीना, जो कि दीपू और बहन जी की बात सुन रही थी, बहन जी के पास आई और बोली,
5: बहन जी, क्या हम सब मिलकर दीपू की मदद नहीं कर सकते?
2: तुम ठीक कह रही हो मीना, चलो। बच्चों, आज तुम सब मिलके बनाओगे कहानियों की किताबें। मैं तुम सबको तीन समूहों में बांट देती हूँ। हर समूह के बच्चे चित्र बना के एक सुंदर सी कहानियों की किताब बनाएंगे, ठीक है?
6: जी बहन जी।
4: बहन जी,
2: क्या हुआ दीपू?
4: मैं अपनी किताब अकेले ही बनाऊंगा।
2: अरे अभी तुमने खुद तो कहा था कि एक दिन में तुम्हारे लिए किताब बनाना मुश्किल है।
4: लेकिन बहन जी।
2: दीपू, दोस्तों के साथ मिलके काम करोगे तो काम बढ़िया भी होगा और जल्दी भी। मैंने ठीक कहा ना बच्चों?
6: जी बहन जी।
1: लो भाई, बहन जी ने क्लास को तीन समूहों में बांट दिया और फिर शुरू हुई हर समूह की तैयारी।
7: एक बहुत बड़ी किताब बनाते हैं, रंग बिरंगे चित्रों वाली।
8: नहीं रानू, कविताओं की किताब बनाते हैं।
9: नहीं कृष्णा, शेर की कहानी लिखते हैं।
10: नहीं,
11: राजा की।
12: अरे अरे एक मिनट, अगर हम सारे साथ बोलेंगे तो किसी को भी किसी की बात समझ नहीं आएगी। एक एक करके अपने सुझाव देते हैं।
13: सुमी ठीक कह रही है।
14: सुमी ठीक कह रही है, एक एक करके बोलना सही है।
1: लो भाई, सुमी का समूह तो उसकी बात मान गया। और उधर मीना के समूह में,
15: मैं नदी का चित्र बनाऊंगी।
3: नदी का नहीं, पहाड़ का।
16: नहीं नहीं, एक सुंदर से जंगल का चित्र बनाते हैं।
3: नहीं नहीं, फल और सब्जियों का चित्र बनाएंगे।
17: सोमा, चमेली, सुनील, अगर हम सारे ही चित्र बनाएंगे तो कहानी कौन लिखेगा?
3: बात तो ठीक है मीना, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि किताब बनाना कैसे शुरू करें।
17: मेरे पास एक सुझाव है सुनील, क्यों ना तुम और चमेली चित्र बनाओ और सोमा और मैं कहानी लिखे।
15: हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा।
16: बिल्कुल सही कहा मीना,
3: ऐसे अपनी किताब भी जल्दी से बन जाएगी।
1: चलो भाई, मीना के समूह ने भी अपनी किताब बनानी शुरू कर दी। आओ अब देखते हैं कि दीपू के समूह में क्या हो रहा है।
16: दीपू, मुझे एक बहुत अच्छी कहानी आती है, क्यों ना हम उसे को।
4: नहीं नहीं रोशनी, मुझे पता है जो कहानी लिखनी है, मैं अकेले ही कर लूँगा।
18: लेकिन दीपू, बहन जी ने हमें एक साथ मिलकर किताब बनाने के लिए कहा है।
4: देखो मिली, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं अपनी पहले वाली कहानी ही लिखूंगा बस।
16: लेकिन हम सब।
10: दीपू यहाँ आओ।
4: जी बहन जी।
10: क्या हुआ दीपू, कोई परेशानी है क्या?
4: देखिए ना बहन जी, रोशनी और मिली मेरी कहानी के बजाय कोई नई कहानी लिखना चाहती हैं।
10: दीपू क्या तुमने रोशनी और मिली को अपनी कहानी सुनाई?
4: जी नहीं।
10: तो फिर पहले उन्हें अपनी कहानी सुनाओ और फिर देखो, क्या पता उनके सुझाव से तुम्हारी कहानी और भी अच्छी हो जाए, है ना?
4: जी बहन जी।
0: बहन जी की बात मान के दीपू रोशनी और मिली को अपनी कहानी सुनाने गया।
4: रोशनी मिली, क्या मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना सकता हूँ?
16: हाँ हाँ दीपू सुनाओ।
4: एक बार एक शिकारी ने कबूतरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और बेचारे कबूतर उस जाल में फंस गए।
16: दीपू अगर वो सारे कबूतर एक साथ उड़ने की कोशिश करे

0: तो वो उस जाल को एक साथ लेकर उड़ सकते हैं।
1: अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वाह रोशनी, क्या सुझाव दिया है।
2: क्या सुझाव दिया है, कहानी को बढ़िया बना दिया है।
1: लेकिन उन कबूतरों को उस जाल से निकालेगा कौन?
0: मैं बताऊं? हाँ मिली, बताओ।
3: अगर कुछ चूहे उन कबूतरों के दोस्त हों और वो अपने दांतों से वो जाल कुतर दे तो कबूतर आजाद हो जाएंगे।
1: वाह मिली, अब बनी है कहानी। रोशनी, मिली, तुम दोनों के सुझावों से तो ये कहानी बहुत अच्छी हो गई है।
0: चलो दीपू, तुम और मैं कहानी लिखते हैं और मिली तुम चित्र बनाओ।
3: ठीक है रोशनी।
4: और फिर देखते ही देखते तीनों समूहों के बच्चों ने एक एक कहानी की किताब बना दी सुंदर सुंदर चित्रों के साथ। बहन जी ने तीनों किताबें देखी और उनकी बहुत तारीफ की और फिर वो दीपू से बोली,
5: दीपू अगर कल के मुकाबले में सुमी या मीना के समूह के बच्चों की किताबों को पहला पुरस्कार मिला तो?
1: अब मुझे उस पुरस्कार की कोई चिंता नहीं बहन जी, क्योंकि आज मुझे सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया है।
5: मैं समझी नहीं दीपू, सबसे बड़ा पुरस्कार?
1: हाँ बहन जी, आज मैं दोस्तों के साथ मिलके काम करना सीख गया हूँ। मुझे नहीं पता था कि दोस्तों के साथ मिलके काम करना इतना मजेदार होता है, इसलिए यही है मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार।
2: सबसे बड़ा पुरस्कार, दीपू हो गया समझदार।
5: पता है बच्चों, मैंने तुम्हें अलग अलग समूहों में क्यों बांटा? मैं बताती हूँ, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम सब आपस में मिलके एक दूसरे की बात सुनो और फिर अपनी बात रखो और आपस में मिलके अपना काम पूरा करो। तभी तो कहते हैं एक और एक ग्यारह।
2: एक और एक ग्यारह, मजा आया बहुत सारा।
4: और अगले दिन मुकाबले में पहला पुरस्कार मिला दीपू, रोशनी और मिली की किताब को। क्यों दोस्तों, मजा आया ना मीना से मिलके? चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक प्यारी सी कविता।
0: एक दूजे की बात सुनो और अपनी बात बताओ,
2: आपस में मिलजुल के काम को पूरा करते जाओ।
4: भाई वाह, क्या कविता लिखी है अपनी मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक बढ़िया सा गीत।

0: गाना सुन के मजा आया ना, फिर ठीक है अब चलते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, अब चलते हैं एक नया खेल खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़। हाँ मैं तुम्हें तीन कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी बहन जी।
1: तो सुनो पहली कड़ी। रूप न मेरा रंग है कोई, कौन हूँ मैं बतलाओ, उस जैसा बन जाऊं जिस भी चीज में मुझे मिलाओ।
3: हवा।
1: वो कैसे मोनू?
3: क्योंकि हवा का कोई रंग और रूप नहीं होता।
1: ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या हम हवा को किसी चीज में मिला सकते हैं? भूल गए? उस जैसा बन जाऊं जिस भी चीज में मुझे मिलाओ।
3: ओहो ये तो मैं भूल ही गया था।
4: बहन जी दूसरी कड़ी बताइए ना।
1: ठीक है रोशनी। बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी। सेहत खेती साफ सफाई, मुझ बिन सभी अधूरा, एक तिहाई हूँ पृथ्वी का, मुझसे जीवन पूरा।
5: मैं बताऊँ बहन जी?
1: हाँ हाँ गोलू बताओ।
5: सही जवाब है साबुन, क्योंकि साबुन साफ सफाई के काम आता है।
1: और क्या साबुन इस पृथ्वी का एक तिहाई हिस्सा है? इसीलिए ये सही जवाब नहीं है गोलू। भूल गए पहली कड़ी, एक तिहाई हूँ पृथ्वी का, मुझसे जीवन पूरा।
5: बहन जी ये वाली बात तो मैं भूल ही गया था।
1: अब सुनो तीसरी कड़ी।
6: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है पानी, क्योंकि पानी है हमारी पृथ्वी का एक तिहाई हिस्सा। पानी का ना तो कोई रंग होता है और ना ही कोई रूप, और उसे जिस भी चीज में मिलाओ वो उस जैसा ही बन जाता है।
1: बिल्कुल ठीक मीना, शाबाश। तो मजा आया ना बच्चों?
2: जी बहनजी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
7: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

मैं हूं संजय कुमार और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

एनसीईआर के द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 13वां पाठ बसेरा ऊंचाई पर पृष्ठ संख्या 120 कहानी एक यात्री की। मैं हूँ गौरव जानी और यह है लोनर, मेरी सबसे बढ़िया साथी, मेरी मोटरसाइकिल। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। वैसे तो मेरी मोटर

0: साइकिल अकेली नहीं है, उसके साथ मैं हूं हरदम। हम दोनों ही मुंबई की भीड़भाड़ वाली, शोरगुल वाली गलियों और ऊंची ऊंची इमारतों में से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं। हम दोनों को ही अपने सुंदर देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक है। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक अद्भुत कहानी, दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों पर मोटरसाइकिल यात्रा की। कैसे की तैयारी? मेरी यात्रा थी लगभग 2 महीने की। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना, वह भी मोटरसाइकिल पर लाद कर। मैंने बहुत सोच समझ कर जरूरत का सामान इकट्ठा किया। रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट और स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, काफी दिन तक खराब ना होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल, रखने के लिए डिब्बे इत्यादि भी। मैं मुंबई से निकला, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। मुंबई से दिल्ली तक का 1,400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय किया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, पर दिल्ली भी मुंबई जैसी ही लगी। इतने सालों से मैं थक चुका था एक तरह के शहर देखते देखते। पृष्ठ 121। वही एक जैसे घर, सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए। अब आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं बहुत उत्सुक था। मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने को मिलेंगे लकड़ी के घर, ढलवा छत वाले और बर्फ से ढके घर, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने किताबों में भी देखे थे। दिल्ली में सारा सामान भरवा कर मैं आगे बढ़ा। 2 दिन बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों की ताजी हवा के बीच मैंने चैन की सांस ली। असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख में लेह तक जाना था। पता करो, नक्शे में देखकर बताओ कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन-कौन से राज्य आएंगे। गौरव जानी, मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनकी राजधानियों के नाम पता करो। क्या और कोई भी बड़ा शहर रास्ते में आया होगा? मनाली मैदानी इलाका है या पहाड़ी? यह शहर कौन से राज्य में है? मेरा नया घर। मैं और मेरी लोनर आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट। मेरे छोटे से नायलॉन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि मैं सो सकूं। रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती। सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहक से ही रोज आंख खुलती। पृष्ठ 122। बताओ, क्या तुम कभी टेंट में रहे हो? कहाँ? कैसा अनुभव था? मान लो तुम्हें अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक एक टेंट में रहना है और तुम अपने साथ केवल 10 चीजें ले जा सकते हो। उन 10 चीजों की सूची बनाओ जो तुम ले जाना चाहोगे। तुमने किस किस तरह के घर देखे हैं उनके बारे में बताओ, चित्र भी बनाओ। ठंडा रेगिस्तान। आखिरकार मैं और लोनार लेह पहुंच ही गए। अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। वे लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। ताशी के घर पर। ताशी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। उसका घर 2 मंजिला था। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था, हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते थे। पृष्ठ 123। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह थी और जरूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल हुए थे। फिर ताशी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नजारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थीं। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी पर उपले सूख रहे थे। ताशी ने बताया कि छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है। ये ठंडे दिनों में इस्तेमाल होती है जब फल सब्जी नहीं मिल पाते। सोचो यह किन महीनों में होता होगा और क्यों? वहां खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हर हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया था, बिल्कुल वहां के मौसम और लोगों की जरूरत के अनुकूल। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते होंगे। लिखो। ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, वे ऐसा क्यों करते होंगे? तुम्हारे घर की छत कैसी है? तुम्हारे यहाँ छत किन किन कामों के लिए इस्तेमाल होती है? पृष्ठ 124। दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेढ़े संकरे पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर जाता जा रहा था। कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर। लोनर का चलना मुश्किलों से भरा था। अब मैं चांगयांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। मैं कई दिन तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। ना ही कोई पेट्रोल पंप, ना मैकेनिक, सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब। कई रातें और कई दिन बीत गए, मैं अकेला ही बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान और उसमें चरती भेड़ बकरियां। थोड़ी ही देर पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इस सुनसान इलाके में ये कौन लोग थे और क्या कर रहे थे।
1: पता करो तुम जिस इलाके में रहते हो वह कितनी ऊंचाई पर है। गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा? इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। तुम कभी पहाड़ी इलाके में गए हो? कहां? वह कितनी ऊंचाई पर था? क्या वहां सांस लेने में तुम्हें भी परेशानी आई? तुम ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई तक गए हो? पृष्ठ संख्या 125। चांगपा। वहां मैं मिला नामग्याल से। उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग। चांगपा घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से उन्हें अपनी जरूरत का सामान मिल जाता है। दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। चंगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा और नरम होंगे। इसीलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही है इनकी जिंदगी। मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। जहां ठहरना हो वहां कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। आपका स्वागत है कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया। ये अपने टेंटों को रेवो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियां बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। पृष्ठ संख्या 126। ये बहुत मजबूत होती हैं और गर्म भी। पट्टियां 9 डंडियों के सहारे जमीन से बंधी थीं। टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे के आसपास ऊंची जमीन पर टेंट लगाते हैं। टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह खूब ऊंचा था और मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता। रेवो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। 2 लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था। रेवो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहां से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना था। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते हैं। ठंड भी कैसी, सर्दियों में यहां का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है और हवा भी बहुत तेज चलती है। दुनिया में मशहूर पश्मीना, माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहां सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत, सोचो अगर डिजाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। पृष्ठ संख्या 127। 1 घंटे में 70 किलोमीटर की गति। सोचो अगर तुम अपने गांव में बस में बैठे और वह इसी गति से चले तो तुम 1 घंटे में कहां पहुंच जाओगे। रेवो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए एक जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाते हैं और ये काम औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम है। चांगपा लोगों की जिंदगी पूरी तरह से इन जानवरों से जुड़ी है। क्या कोई जानवर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है? जैसे तुम्हारा कोई पालतू जानवर या खेती में इस्तेमाल किए गए जानवर इत्यादि। ऐसे 5 उदाहरण सोचो और लिखो कि जानवर तुम्हारी जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। क्या भेड़ बकरियों को अपने शरीर के बाल की जरूरत नहीं होती? चर्चा करो, पता करो। तुमने पढ़ा कि चांगथांग इलाके में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से काफी कम हो जाता है। टीवी या अखबार में देखकर बताओ कि और कौन से शहर हैं जिनका तापमान 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। वे शहर भारत के हो सकते हैं या किसी और देश के भी। किन महीनों में तुम्हें ऐसे तापमान की खबरें देखने को मिलेंगी? श्रीनगर की ओर मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताए। ना चाहते हुए भी आगे तो बढ़ना ही था। लेह से वापसी की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से दूर एक दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली थी। लेह से वापस आते समय मैंने श्रीनगर की ओर का रास्ता पकड़ा। कारगिल से होता हुआ फिर श्रीनगर पहुंचा। रास्ते में मैंने कई तरह के घर और अद्भुत इमारतें देखीं। फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा। वहां के अलग घरों को देखकर मैं हैरान था। उन घरों ने मेरा दिल ही जीत लिया। कोई पहाड़ पर तो कोई पानी पर, तरह तरह के घरों में लोग रहते थे। पृष्ठ संख्या 128। उन घरों में मैंने कई फोटो खींचे। ये फोटो तुम भी देखो। अपने सफर की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी ना था कि एक ही राज्य में मुझे इतनी तरह के घर और लोगों के रहन सहन के तरीके देखने को मिलेंगे। लेह में एक अनुभव था दुनिया की चोटी पर रहने का, और श्रीनगर में अनुभव था पानी पर रहने का। इन इलाकों में घर भी ऐसे खास थे जो वहां के मौसम के अनुकूल थे। वापसी का समय, फिर आगे बढ़ने का समय आ गया। इस बार जम्मू शहर से होते हुए जाना था। अब फिर वैसे ही घर दिखे जिन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ हूं। वही सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील। इस बारे में कोई दो राय नहीं कि ये मजबूत और टिकाऊ हैं, पर इनमें उन घरों जैसी खासियत नहीं थी जो मैंने खुशकिस्मती से लेह और श्रीनगर में देखे। फिर से उतना ही लंबा वापसी का सफर करके मैं और लोनर मुंबई पहुंचने ही वाले थे। मुंबई शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर लोनर वापिस नहीं आना चाह रही थी। मेरा मन भी भारी हो रहा था, पर अंदर से दिल में एक खुशी थी। इतना कुछ अनोखा और नया मैं अपनी यादों और अपने कैमरे में कैद कर लाया था, और यह अंत थोड़ी ही है। मैं और मेरी मोटरसाइकिल फिर जब इस शहर से ऊब जाएंगे तो निकल पड़ेंगे एक नए सफर पर। देखो और बताओ। देखो, जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरह के घर हैं जो कि वहां के लोगों की जरूरत और मौसम के अनुरूप बनाए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 129। श्रीनगर के घरों पर एक नजर। यहां 6 तस्वीरें दी गई हैं। पहली तस्वीर श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट या हाउस बोट में जो रहते हैं उनके बारे में है। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। दूसरी तस्वीर, बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। तीसरी तस्वीर है हाउस बोट, और हाउस बोट के बारे में यहां पर बताया गया है। हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिग्सो पजल जैसा दिखता है। दूसरी तस्वीर में चलते हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवां होती है। अगली तस्वीर, यहां के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियां। ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नजारा बढ़िया दिखता है। और अंतिम तस्वीर यहाँ के पुराने घरों की खासियत है,

0: पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजों खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। पृष्ठ संख्या 130। क्या तुम्हारे इलाके में अलग अलग तरह के घर हैं? अगर हाँ तो इसके कारण सोचो। तुम्हारे घर में क्या कोई खास बात है, जैसे ज्यादा बारिश होती है तो ढलवां छत या बड़ा बरामदा, जहां गर्मियों में सोते हो और धूप में कुछ सुखाते हो? अपने घर के बारे में सोचो। घर बनाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है? मिट्टी, पत्थर, लकड़ी या सीमेंट? अपने घर की खास बात चित्र द्वारा दिखाओ। सोचो और लिखो। इस चित्र को देखो, क्या इसमें कुछ घर पहचान पा रहे हो? ये लकड़ी और मिट्टी के घर हैं जिनमें सर्दियों में कोई नहीं रहता। गर्मियों में बकरवाल लोग यहां रहने आते हैं, जब वे बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। अंदाजा लगाओ कि बकरवाल और चांगपा लोगों की जिंदगी में कौन सी बातें मिलती जुलती हो सकती हैं और क्या फर्क है। हम क्या समझे? तुमने जम्मू कश्मीर के तरह तरह के बसेरों के बारे में पढ़ा, कुछ ऊंचे पहाड़ पर, कुछ पानी में, कुछ जिनमें लकड़ी और पत्थर पर सुंदर डिजाइन है, कुछ जिन्हें बांधकर किसी और जगह भी ले जाया जा सकता है। बताओ, यह बसेरे वहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से कैसे बने हैं? यह घर तुम्हारे घर से कैसे अलग हैं?
1: बसेरा ऊंचाई पर। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 13वां पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।

0: क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: 107.8 FM सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम है बच्चों की दुनिया। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। एक बार सब आप लोग अपना नाम बता दो, यहाँ से शुरू करेंगे, और कौन सी क्लास में पढ़ते हो वो भी बताना। पहले आप बताओ।
2: मयंक वाधवानी, क्लास 4th।
3: नीर मोलयानी, 3rd पे गया हूँ।
1: आप बताओ।
4: नीर मोलयानी, 1 पे गया।
5: KG1 पे गया।
6: KG1 पे।
7: नेम बीके सानिया, क्लास 7th।
8: बीके राशि, क्लास 7th।
1: क्लास 7th। अच्छा, तो यहाँ सबसे बड़ा कौन है?
9: ये।
1: हाँ,
9: ये 8th में, उसने 7th बोल दिया। उसने
7: अभी 8th में जाऊंगी। अभी
1: 8th में जाओगे? अभी एग्जाम्स खत्म हो गए ना, लेकिन अब 8th में पढ़ाई शुरू करोगे। और सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? देव। KG1। अच्छा, आप लोग का सबसे फेवरेट काम क्या है करने के लिए? सबसे ज्यादा क्या करने में आपको बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है जो करने में? बहुत। स्कूल में, घर में खेलना कूदना, क्या करना अच्छा लगता है?
10: खेलना।
1: हाँ, पेंटिंग करना, फ्रेंड्स के साथ बातें करना, क्या अच्छा लगता है?
10: पेंटिंग।
1: ड्राइंग। और
10: मेहंदी।
1: आपको?
10: मेरे को ड्राइंग।
1: और आपको?
11: मेरे को भी ड्राइंग
1: अच्छी लगती है। तो हाँ, आपको क्या अच्छा लगता है देव?
11: ड्राइंग।
1: किसी को डांस करना नहीं अच्छा लगता है यहाँ पे?
10: मुझे।
1: क्या, कौन से गाने पे डांस करते हो?
10: बाबा के गीत।
1: कोई भी? ओके, वंडरफुल। अच्छा, एक बात बताओ, लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट होती है कि लड़के?
10: लड़कियां।
1: दोनों या लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं?
10: दोनों।
1: अच्छा, लड़के लड़कियों में क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस होता है लगता है आपको?
10: क्या पता?
11: बालों से।
1: हाँ, अंतर है ना, उनकी लंबी चोटी और आपके शॉर्ट हेयर है ना। हाँ। और कोई डिफरेंस होता है?
10: ड्रेस।
1: हाँ, ड्रेस भी अलग अलग पहनते हैं।
10: नेचर
1: अलग अलग होते है? क्या अलग होता है? अच्छा, स्पोर्ट्स कौन खेलता है, लड़के या लड़कियाँ?
10: दोनों।
1: ज्यादा अच्छा कौन खेलता है?
10: दोनों अच्छा खेलते हैं।
1: अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप लोग अपने पेरेंट्स से सब कुछ शेयर करते हो?
10: यस।
1: और कुछ गलती करते हो फिर भी बता देते हो?
10: हैं,
1: फिर डांट नहीं
10: पड़ती है?
1: तो फिर डर नहीं लगता है?
10: अगर खुद बता देते हैं तो कम डांट पड़ती है।
1: हाँ, और बाद में पता चलता है तो ज्यादा पड़ती है ना।
10: हाँ। हाँ।
1: इसलिए बता देते हो सब? कभी ऐसा झूठ नहीं बोला?
10: नहीं।
1: कभी नहीं?
10: नहीं।
1: ओके, बोला है? नहीं बोला। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, आप लोग सपने देखते हो? कोई सपने, ड्रीम्स आती हैं आपको?
10: हाँ, बिल्कुल।
1: आती है?
10: आती है।
1: कोई बताओ, क्या ड्रीम आती है? क्या ड्रीम आई बताओ, आपकी कोई ड्रीम बताओ।
10: अरे, हम तो उठते हैं और भूल जाते हैं।
1: भूल जाते हो? और किसी को याद है अपनी ड्रीम?
10: भूतिया।
1: क्या दिखता है उसमें?
10: भूत।
1: क्या कर?
10: भूत दिखते मुझे।
11: भूत दिखते सब
1: हैं।
11: और भूत वाली मूवी दिखता है, भूत कब आता है।
1: हाँ, फिर क्या करता है भूत आता है तो?
11: चिल्लाता है।
1: कैसे? ऐसे करता है? ये तो खांसी हो गई उसको, कफ सिरप दे दो। बोला भूत भैया आप देखो
5: आजकल हमारा दवाई का दुकान है, हम नहीं देंगे
1: दवाई की दुकान है तो भूत को दवाई दे दिया करो, है ना बोला आपके पेट में दर्द है, ये लो दवाई, कैसी कैसी आवाजें निकाल रही हो आप
5: तो पेट पर गुड़ गुड़ हो रही है, थोड़ा काला भी दे लेंगे,
1: है ना
12: तो खोला तो पानी भी दे दूंगा पीने के लिए,
1: पानी भी दे, कितना अच्छा है देव, देखो सेवा करता है भूत की।
12: हाँ दीदी,
1: और आप लोग को किसी को ड्रीम याद है अपनी, कोई सपना याद है?
7: सपना आते ही नहीं है।
1: आता नहीं, याद है आपको? हम सब सुनाएंगे। नहीं, कोई ऐसे रात को सपना दिखता है आपको कि जब सो रहे होते हो तब? जैसे मुझे पहले बचपन में सपना आता था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बिल्डिंग है और मैं उससे ऐसे नीचे नीचे नीचे नीचे
7: मैं पहाड़ से गिर रही हूँ,
1: ऐसा सपना आता है, है ना? मुझे
7: जैसे नींद से परखते ऐसा लगता गिरने वाले, फिर नींद खुल जाती है,
1: अचानक से नींद खुल जाती है ना, ये मेरे साथ भी होता था बहुत।
5: मेरा तो थोड़े तो कभी कभी ऐसा भी आता है कि मैं बिल्डिंग से गिर रहा हूँ।
1: आपको भी ऐसे आता है?
5: और मैं सोता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई खींच रहा है।
1: फिर क्या कर?
5: फिर मैं उठता फिर से सोने की कोशिश करता,
1: फिर पकड़ रहा है। फिर आपको क्या लगता है?
5: बस।
1: तो आप क्या करते हो फिर जब ऐसा लगता है कोई खींच रहा है आपको, तो क्या करते हो फिर?
5: मैं कोई भी भूतिया वो ड्रीम आते तो मैं स्वमान बोलता हूँ।
1: क्या बोलते हो, कौन सा स्वमान?
5: मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। हाँ।
1: और आपको कोई ड्रीम आया? कभी ड्रीम आया आपको कोई? क्या
5: याद नहीं है,
1: भूल गए ना सारे? तो डर लगता है ड्रीम में या नहीं लगता कि अच्छा
5: लगता
1: ड्रीम
5: है? बहुत डर लगता है।
1: तो आप लोग फिर मम्मी को पापा को किसको बताते हो घर पे जब ऐसा ड्रीम आता है? तो
5: हम भूल ही जाते हैं।
1: भूल जाते हैं। आप किसको बताते हो? हाँ,
5: किसी को भी नहीं।
1: किसी को भी नहीं,
5: बस किसी से बात करता हूँ तो उसको बता देता।
1: अच्छा, किसी को भी बता देता आप लोग किसको बताते हो?
5: किसी को नहीं।
1: किसी को नहीं, किसी को शेयर नहीं करते कि अरे मैंने देखा ऐसा सपना देखा आज, ऐसा नहीं बताते? नहीं, फिर डर नहीं लगता?
12: और मैंने आज सपना देखा।
1: क्या देखा?
12: भूत आ रहा है मेरे पास।
1: भूत ही आता रहता है आपके पास? इतने सारे भैया लोग हैं उनको बुलाया करो, भूत को क्यों बुलाते हो आप?
12: मैं भूत भूत आ जाता है तो मैं किसी को नहीं बताता।
1: किसी को नहीं बताते? ओहो। अच्छा, अभी तक का आप लोगों का बेस्ट मोमेंट क्या था? सबको सबसे ज्यादा खुशी कब हुई थी? बहुत अच्छा लगा हो जब आपको बहुत मजा आया हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो।
5: मैं जब ट्री में से गया था, ट्री में से वाटर पार्क गया था।
1: अच्छा, घूमने गए थे?
5: हाँ।
1: वो बहुत अच्छा लगा था।
5: वाटर पार्क,
1: बुद्धा पार्क,
5: वाटर पार्क, ट्री में से वाटर पार्क,
1: आप भी गए थे?
5: हाँ।
1: बहुत मजा आया था।
12: हाँ। के लिए ऐसे कूद गया मैं नदी में,
5: मजा आया।
1: हाँ।
5: से।
1: आप लोगों को क्या अच्छा लगा था? मतलब ऐसे कभी कभी हमारी बहुत अच्छी लगता है।
12: स्लाइड तो ऐसे ही डूब गया।
1: स्लाइड में डूब गए?
5: हाँ, मैं स्लाइड में गिरा।
1: हाँ।
5: मेरी मामी ने पकड़ लिया, मजा आया था बहुत।
12: और मैं मम पकड़ ली थी तो सीधा पानी में खेल गया।
1: सेफ्टी के साथ पानी में खेलना चाहिए, बड़ों के साथ लेके जाना चाहिए बड़ों को, है ना?
12: मैली ने मामी का नाम बताओ।
1: बताओ।
5: दिया मामी, खुशबू मामी।
12: दिया मामी, खुशबू मामी।
1: वेरी गुड। और आपको सबसे अच्छा क्या लगा था बताओ?
7: मेरे को मेरे को तो नहीं पता।
1: जब क्लास में अच्छे मार्क्स आए हो या आप कहीं गए हो, कुछ भी अच्छा लगा होगा।
7: लगा है?
1: क्या लगा?
7: मेरी क्लास में अच्छे नंबर आते हैं।
1: तो आपको बहुत अच्छा लगता है? टीचर्स अप्रिशिएट करते हैं आपको, बोलते हैं कि अरे वाह, ऐसा।
7: वो हमको गिफ्ट भी देते हैं।
1: हाँ, क्या मिलता है गिफ्ट में?
7: ट्रॉफी।
1: अरे वाह, ट्रॉफी लेके तो बड़ा अच्छा लगता होगा ना। चलो तालियां बजाते हैं हम सभी। वेरी गुड।
13: आप लोगों को क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा?
7: जब हम माउंट आबू पहली बार आए थे
13: तब अच्छा लगा था। और क्या अच्छा लगा?
7: एग्जाम देने जाते थे तब बाबा को लेके जाते थे, बाबा एग्जाम देते थे।
13: और क्या मजा आता है करने में? और अच्छा क्या लगता है? कोई फ्रेंड से मिलना या फिर कहीं घूमने और जाना?
7: नहीं, फ्रेंड्स तो बनाते ही नहीं है।
13: नहीं फ्रेंड्स नहीं? आप लोग आप दोनों फ्रेंड्स हो कि नहीं? बस आप दो फ्रेंड्स हो तो एक दूसरे के साथ रहना भी तो अच्छा लगता होगा। लगता है थोड़ा कि बहुत?
7: बहुत
13: बहुत। स्माइल कर रही है। कुछ खेलना अच्छा लगता होगा? बहुत। नहीं कुछ खेलना अच्छा नहीं लगता। क्या करना अच्छा लगता है? खाना बनाना अच्छा लगता है? पढ़ाई करना अच्छा लगता है?
7: डांस करना
13: अच्छा लगता है? लगता है
7: पेंटिंग करना
13: अच्छा लगता है? वेरी नाइस। सबको अलग अलग चीजें अच्छी लगती है ना। अच्छा तो आप में से कौन ये बताएगा कि इंडिया की राजधानी क्या है? क्या है बताओ? पता है किसी को?
14: मुझे तो पता ही नहीं है जी के।
13: बताओ भारत की राजधानी कौन सी है? अच्छा मैं हिंट देती हूँ, ठीक है? उसका नाम एन से शुरू होता है, मतलब उसके और क्या हिंट दूं मैं? चलो मैं बता ही देती हूँ, बता दूं फिर उसके बाद याद रखोगे आप लोग सब लोग?
7: हाँ,
13: पक्का?
7: हाँ, पक्का।
13: इंडिया की राजधानी है नई दिल्ली।
7: ओ हाँ रे,
13: न्यू दिल्ली है ना?
7: न्यू दिल्ली
13: दिल्ली
14: मतलब कैपिटल।
13: कैपिटल।
14: अच्छा मुझे भी पता था राजधानी, मतलब हाँ। मुझे भी पता नहीं था
13: राजधानी शब्द नहीं पता था ना आपको?
14: हाँ।
13: कैपिटल
7: न्यू दिल्ली तो पता है।
14: ये पता है कि इसका कैपिटल राजधानी है।
13: अच्छा हिंदी में पूछा ना मैंने, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए। कैपिटल को हिंदी में राजधानी। अच्छा गाना आप लोग का फेवरेट कौन सा है?
14: तेरे नादिया गिरीश का गाना।
7: गिरीश का गाना
13: गा के सुनाओगे?
14: दिल ना दिया ओता, दिल ना दिया, दिल ना दिया बोलो।

0: बाकी दुनिया
1: में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने तो। अच्छा, आप लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या लगती है? जैसे मान लो अगर बड़े लोग, जैसे बच्चों में लड़ाई होती है, बड़े लोगों में होती है, होती है, तो बड़े लोगों को लड़ाई कैसे सॉल्व करनी चाहिए, क्या करना चाहिए अगर उनकी लड़ाई हो जाए तो?
2: सॉरी बोलना चाहिए।
0: क्या लगता, सॉरी बोलना चाहिए,
2: माफी मांग लेनी चाहिए
0: ना? और क्या करना चाहिए बताओ? अगर आपके पास हम आए, मेरी लड़ाई हो गई तो क्या बताओगे मुझे, कैसे हेल्प करोगे, क्या करोगे मेरी लड़ाई हो गई तो?
3: नहीं पता,
0: कुछ तो पता होगा।
2: किसी बड़े को बुला लेना चाहिए।
0: हाँ, जो बड़े हैं उनको भी अपने बड़ों को बुला लेना हाँ। चाहिए, है ना? और क्या करना चाहिए अगर लड़ाई हो जाए तो? हैं देव, क्या करना?
3: माफी मांगना चाहिए।
0: सॉरी करने से सॉरी माफी कर देते हैं लोग, मांग देते हैं। मैं बोलूं सॉरी देव, मैंने आपका टॉय तोड़ दिया, आप मुझे माफ कर दोगे? कर दोगे पक्का? अरे देव तो बहुत अच्छा। और नील क्या कर सकते हैं? और अगर मान लो लड़ाई हो जाए तो, मैंने आपका कोई
3: चीज टूट गया तो उसको वापस दे देना, खरीद के वापस दे देना है।
0: खरीद के वापस देना चाहिए ना, कंपनसेट कर देना चाहिए, मतलब सोल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए, है ना?
3: यस।
0: वेरी नाइस, वेरी वेरी इंटेलिजेंट आप लोग, तो बहुत समझदार हो। अच्छा, आप लोग का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा है?
3: कार्टून कैरेक्टर ऑगी
2: द कॉकरोच, नहीं डोरेमोन।
3: सिंचन भी।
0: आपका?
3: रुद्रा।
0: वाओ, आप लोग का?
2: डोरेमोन।
0: आपका?
3: एंजल का पैटर्न देखती
0: हूँ। हाँ, क्या सुपर पावर क्या होती है, मतलब वो क्या करते हैं जो आपका फेवरेट कैरेक्टर है, उसमें अच्छा क्या लगता है आपको?
3: इन देखे बस सुपर पावर्स होती है और हमेशा वो उड़ते रहते हैं।
0: ओके, और आपका डोरेमोन क्या करता है?
3: उड़ता है, सारे चीज का गैजेट होता है कि इसको कैसे सुधारे।
0: हाँ, तो क्या सुपर पावर क्या अच्छी लगती है उनकी?
3: डोरेमोन बहुत हंसाता है,
2: कॉमेडी।
0: और रुद्रा क्या करता है?
3: रुद्रा एक मैजिशियन है,
0: जादू करता है।
2: और डोरेमोन के पास हर चीज का सॉल्यूशन रहता है,
0: हर चीज का सॉल्यूशन रहता है। और आपका था एंजल, एंजल का तो आपने बताया। क्या बात है, बहुत सारी सुपर पावर्स आप लोगों के पास भी है लग रहा है मुझे, है क्या? है क्या सुपर पावर है आप लोग? अगर आपको मान लो एक विश मिले और आपको बोला जाए एक एक सुपर पावर सबको मिलेगी, तो कौन सी सुपर पावर चाहिए आपको?
3: एंजल की
0: सुपर पावर। आपको कौन सी सुपर पावर?
3: सॉल्यूशंस,
0: सबको सॉल्यूशन कर देने की। आपको क्या सुपर पावर?
3: मैजिशियंस की।
0: क्या जादू करोगे?
3: जादू करूंगा।
0: क्या करोगे जादू से? क्या करोगे
3: जादू से? पूरा पुरुषार्थ कर लूंगा।
0: क्या होता है पुरुषार्थ? मतलब आपको मान लो मैजिक करना है, कुछ ठीक करना है, क्या करोगे? जैसे इसको बड़ा कर दोगे, इसको छोटा कर दोगे,
3: इसको पतला कर दोगे, इसको मोटा
0: कर दोगे, किसी को क्या करोगे?
2: किसी की दुकान
0: से उड़ लोगे मैजिक से?
3: उड़ूंगा हाथ से, मुंह से आग निकालेगा।
0: हाँ, ऐसा करोगे क्या?
3: नहीं।
0: उड़ो, उड़ के कहीं भी पहुंच जाओगे ना। और आपको कोई सुपर पावर मिले तो कौन सी चाहिए? सुपर हीरो बन के क्या करोगे? उड़ोगे, भागोगे,
2: सबकी हेल्प?
0: लंबे हो जाओगे, क्या करोगे?
3: लंबे हो जाऊंगा, भागूंगा, उड़ भी जाओगे,
0: सब कुछ कर लोगे।
3: फ्रेश बनूंगा, फ्रेश से ऐसे भागूंगा, कहीं भी चला जाऊंगा, बहुत तेज भागूंगा फ्रेश से ऐसे, और मैं भी फ्रेश से भागूंगा।
0: चलो, अपनी अपनी सुपर पावर खुद हमें बनानी है, और उसके लिए ढेर सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे। चीकू भी खाना पड़ेगा।
2: हाँ।
0: है? और कौन कौन से फ्रूट्स खाने पड़ेंगे?
3: केला, कीवी
0: और
3: ऑरेंज,
0: और
3: मैंगो, ग्रेप्स,
0: और
3: वाटरमेलन, ग्रेप्स, वाटरमेलन।
0: खाते हो आप लोग?
3: एप्पल, मैंगो,
2: वाटरमेलन।
0: ऐसे तो नहीं बोलते मैं नहीं खाऊंगा ये फ्रूट।
3: मेरे को तो सारे फ्रूट पसंद है।
0: अरे,
3: और ये वाटरमेलन
0: नहीं खाती? कोई और तो खाती होगी ना?
3: मैंगो
0: सिर्फ, और
2: कीवी, पपाया,
0: और
2: एप्पल, बनाना,
0: फ्रूट खाने चाहिए, उससे हम हेल्दी हो जाते हैं। जो आप सुपर पावर बोल रहे हो ना, सब मिल जाएंगे, ठीक है? समझे थे? चलो, अभी हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं बाय बाय। सब लोग बोल दो बाय बाय
3: बाय बाय
2: बाय बाय
3: बाय बाय।

0: हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, आप सुन रहे हैं ताल पे गिनती
1: छोटी बड़ी बातें, इनमें छुपी है बच्चों के दिल की बात। छोटी बड़ी

0: नमस्ते भाभी, ये लुई की लंबी लिस्ट वाली सारी सब्जियां हाजिर है।
1: ओ शुक्रिया मनोज, अब क्या बताऊं, जब तुम्हारे लुई भाई साहब रसोई में लग जाते हैं उन्हें तो घंटी भी नहीं सुनाई देती। कह रहे थे आज सबकी छुट्टी है, कुछ खास बनाता हूँ।
0: अरे फिर तो अच्छा हुआ, जो मैं बाजार निकल ही रहा था आज मंडी में ताजा ताजा
2: गाजर।
0: हाँ भाई एल्मो, ताजी भिंडी और पालक भी।
2: एल्मो मनोज अंकल के साथ खेलेगा अपना नया खेल, सब्जी गिनो रंग से छाटो। एल्मो गिन के छाटेगा 3 लाल और 3 हरी सब्जियाँ।
0: 1, 2, 3 हो जाओ शुरू।
2: पहले 3 लाल सब्जियाँ, गाजर। 1, 2, 3 3 लाल लाल गाजर।
0: अरे वाह।
2: और अब 3 हरी सब्जियाँ, भिंडी। 1, 2, 3 3 हरी हरी भिंडियाँ।
0: क्या बात है, तुमने तो चुटकी में गिन ली। अच्छा एल्मो, भाभी बाद में मिलते हैं।
2: ओके अंकल।
1: अच्छा मनोज, तो क्या कहते हो एल्मो, हो जाए मम्मी के साथ एक और गिनती वाला खेल?
2: नया खेल मम्मी के साथ।
1: बिल्कुल, और इस खेल को कहते हैं हाँ, ताल पे गिनती।
2: ताल पे गिनती।
1: हाँ, मजेदार गिनती। एक खिलाड़ी सुर गाएगा और दूसरा उन सुरों को गिनकर उतनी ही बार इस डब्बा ढोलक पर ताल बजाएगा।
2: हो, जितने सुर उतनी बार डब्बा ढोलक। ओके, अब मम्मी पहले पहले एल्मो बजाएगा
1: और मम्मी गाएगी। एल्मो तैयार?
2: सुपर तैयार।
1: तो शुरू करते हैं। ला
2: मम्मी ने गाया एक सुर, तो एल्मो बजाएगा ढोलक एक बार।
1: वाह एल्मो वाह, पहला राउंड हुआ पार। टडा, अब अगला।
2: ला ला, एक ला और एक ला। मम्मी ने गाए 2 सुर और ये एल्मो ने बजाया ढोलक 1, 2, 2 बार।
1: बिल्कुल सही गिना उस्ताद एल्मो डब्बे वाले। और अब ध्यान से सुनो।
2: ला ला ला, एक ला, एक ला और एक ला। यानी 3 सुर। एल्मो को ढोलक बजाना है 1, 2, 3 3 बार।
1: और इसी के साथ एल्मो ने किए ताल पे गिनती के सभी राउंड पार। शानदार। अब एक और ताल पे गिनती वाला खेल हो जाए।
2: हो जाए।
1: ताल पे गिनती द्वितीय। इस खेल में हम दोनों बारी बारी से कोई धुन गाएंगे और दूसरा उस धुन में जितने सुर है उतनी ही चीजें गिनेगा।
2: हाँ, तो पहले मम्मी गाएंगी और फिर वो चीजें गिनेगा। रेडी?
1: रेडी। तो पहली धुन है ला ला ला ला।
2: हाँ, 4 सुर, 4 चीजें। हाँ, ये भी 1, 2, 3, 4 4 किताबें।
1: एल्मो ने पूरा किया एक और धुआंदार खेल। अब मम्मी के गिनने की बारी
2: और एल्मो सुर में गाएगा ला ला ला ला ला।
1: 5 सुर। क्या गिनूं? हाँ, 1, 2, 3, 4, 5 5 कटोरियां।
2: वाह मम्मी गिनती वाली, आपने भी राउंड किया पार फटाफट। अब मम्मी गाएगी, मम्मी गाएगी।
1: ठीक है, शुरू करते हैं।
3: ला ला ला ला ला ला।
2: ओ, 6 सुर 6 सुर। एल्मो गिनेगा 6 चम्मचें। हाँ, 1, 2,

0: एक मिली फाइल, दो नीली फाइल,
1: हाँ,
0: तीन मिली फाइल,
1: शाबाश।
2: वैसे एल्मो को गिनने का शौक तो है, पर वो साथ साथ डब्बा मतलब ढोलक बजाने में भी सच में उस्ताद है।
1: हाँ, और मजे की बात तो ये है कि चाहे घर में रखी या आसपास की चीजें हो, गागा कर गिनना हो या एक ही रंग या आकार की चीजें ढूंढनी हो, ये सारे ही खेल गिनती सीखने के मजेदार तरीके हैं। हर रोज कुछ नया ट्राई कर सकते हैं।
2: अरे वाह, ये तो काफी जबरदस्त खेल है भाभी, मैं भी चिंटू के साथ ट्राई करूंगा। वैसे चिंटू भी बाजार में सारी दुकानें गिन लेता है।
1: वाह बढ़िया है।
2: और उससे भी बढ़िया, जब बच्चे हमें गिनने को कहते हैं और हम भी खेल खेल में बच्चे बन जाते हैं।
3: सेसेमी वर्कशॉप इंडिया द्वारा निर्मित, यूबीएस ऑप्टिमस फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा समर्थित।

0: मैं हूं ममता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू, तीसरा पाठ, भोपाल की सैर, पृष्ठ 23। आज सुगंधा बहुत खुश है। उसके स्कूल के सभी बच्चे अध्यापकों के साथ भोपाल घूमने जा रहे हैं। मीनाक्षी मैडम और राकेश सर बात कर रहे हैं कि कुल कितनी बसें चाहिए। मीनाक्षी मैडम,
2: हमें 4 बसें चाहिए।
1: राकेश सर, मुझे लगता है 5 की जरूरत पड़ेगी। मीनाक्षी मैडम,
2: हर बस में 50 सीटें हैं।
1: राकेश सर, पहले पता कर लें कि कितने बच्चे जा रहे हैं। इस पृष्ठ के दाहिनी तरफ सबसे ऊपर कक्षा में मीनाक्षी मैडम और राकेश सर को बातें करते दिखाया गया है। यहां पर एक तालिका है जिसके 2 भाग हैं। एक में लिखा है कक्षा और दूसरे में लिखा है बच्चों की संख्या। कक्षा 1 बच्चों की संख्या 33, कक्षा 2 बच्चों की संख्या 32, कक्षा 3 बच्चों की संख्या 42, कक्षा 4 बच्चों की संख्या 50 और कक्षा 5 बच्चों की संख्या 53। कुल बच्चों की संख्या बराबर रिक्त स्थान। मीनाक्षी मैडम ने कहा,
2: क्या हमें 4 बसों की जरूरत पड़ेगी? अगर एक बस में 50 बच्चे जा सकते हैं तो 4 बसों में 50×4 बराबर कितने होंगे?
1: तो कुल मिलाकर रिक्त स्थान बच्चे जा रहे हैं। अगर उन्हें 4 बसें मिलती हैं तो कितने बच्चे बैठ पाएंगे रिक्त स्थान? क्या कोई बच्चा बैठने से रह जाएगा रिक्त स्थान?
2: एक मैडम ने कहा, थोड़े से बच्चों के लिए हम एक और बस नहीं मंगवा सकते।
1: दूसरे ने कहा,
2: हम मिलजुल कर बैठ जाएंगे।
1: शिक्षकों के लिए निर्देश, बच्चों को पहले अनुमान लगाने, सोचने के लिए प्रेरित किया जाए। उत्तर ढूंढने के लिए वो कोई भी तरीका अपना सकते हैं। छात्रों द्वारा सोचे गए अलग अलग तरीकों पर चर्चा करना आवश्यक है। पृष्ठ 24, बसों के इंतजार में। साहिबा बार बार लाइन से बाहर निकलकर देख रही थी कि बस आ रही है या नहीं। अचानक वो जोर से चिल्लाई,
2: अरे मुझे बस दिखाई दे गई है, भागो, खिड़की वाले सीट पर कब्जा करो।
1: दूसरे बच्चे भी जोश में आकर उछल कूद करने लगे, लेकिन मैडम ने कहा,
2: रुको रुको रुको, ये क्या, ये बसें तो बहुत छोटी हैं।
1: बहस शुरू हो गई। मैडम ने कहा,
2: हमने तुम्हें बड़ी बसें लाने को कहा था।
1: कर्मचारी बोले,
3: हमारे पास ज्यादा बड़ी बसें नहीं थीं, इसलिए हम बहुत सारी छोटी बसें ले आए हैं।
1: इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर दाहिनी तरफ बच्चों का चित्र है जो एक पंक्ति में खड़े हुए हैं और सबसे आगे मैडम खड़ी हैं। साथ ही एक और दृश्य में मैडम को कर्मचारियों से बातें करते दिखाया गया है और सबसे नीचे बसों के कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें बच्चों को पंक्ति से उनमें चढ़ते हुए दिखाया गया है। हर छोटी बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं। सभी बच्चों के बैठने के लिए कितनी छोटी बसों की जरूरत होगी? रिक्त स्थान। पृष्ठ 25, यात्रा शुरू हुई। इस पृष्ठ में सबसे ऊपर बाईं तरफ एक बच्चे और एक सर का चित्र है। जैसे ही बसों ने होशंगाबाद से चलना शुरू किया, बच्चे खुशी से उछलने लगे और जोर जोर से गाने लगे। कुछ बच्चे बाहर के हरे मैदान और पहाड़ों के नजारे का मजा ले रहे थे। इंदिरा,
4: हम भोपाल कब पहुंचेंगे?
1: आशा मैडम,
3: अगर हम रास्ते में कहीं ना रुकें तो हमें 2 घंटे में पहुंच जाना चाहिए।
1: लगभग रिक्त स्थान बजे। मंजीत,
5: बहुत दूर है क्या?
1: भीमसेन सर, लगभग 70 किलोमीटर दूर है। रूबी,
6: क्या हम रास्ते में कहीं रुकेंगे?
1: राकेश सर, शायद भीमबेट का, यहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। अगर वो भीमबेट का जाएं तो वे वहां पहुंचेंगे 10 बजे से पहले, 10 और 11 बजे के बीच या 11 बजे के बाद। जब वो सब बातें कर रहे थे, बहादुर चिल्लाया,
4: वाह नर्मदा नदी!
1: सभी खिड़की से बाहर देखने लगे। रूबी ने कहा,
4: अरे कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है,
3: चलो अंदाजा लगाएं कितनी चौड़ी होगी।
1: और इसी पृष्ठ पर सबसे नीचे नर्मदा नदी का चित्र बना है जिसके ऊपर पुल को दिखाया गया है। पृष्ठ 26। गोपी,
6: 100 मीटर
4: नहीं और भी ज्यादा,
6: पता नहीं कितनी।
1: विक्टोरिया,
3: ये जरूर ही 0.5 किलोमीटर से ज्यादा होगी।
1: आशा मैडम,
3: देखो यहां लिखा है ये पुल 756.82 मीटर लंबा है, इसलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नर्मदा लगभग 500 मीटर चौड़ी होगी।
1: क्या विक्टोरिया सही थी? सदफ,
4: मैं तो सोच भी नहीं सकता 500 मीटर।
1: आशा मैडम,
3: देखो हमारी बस लगभग 5 मीटर लंबी है, सोचो इस पुल पर एक के पीछे एक कितनी बसें खड़ी हो सकती हैं।
1: क्या तुमने कभी किसी लंबे पुल को पार किया है? वो लगभग कितने मीटर लंबा होगा? रिक्त स्थान। फिर सभी बच्चे पुल से नीचे झांकते हुए नदी को देखने लगे। राकेश सर,
7: अब पानी का स्तर काफी नीचा है, ये पुल से लगभग 40 मीटर नीचे होगा।
1: आशा मैडम,
3: लेकिन मैंने इस पानी को बरसात में देखा है, तब ये बहुत ऊपर तक आ गया था, तब तो ये पुल से लगभग 15 मीटर नीचे था।
1: नर्मदा के पानी के स्तर में बरसात वाले मौसम और अब के मौसम के बीच कितना अंतर है? रिक्त स्थान, मीटर। बच्चे नदी के बारे में थोड़ी देर तक बातें करते रहे। इसी पृष्ठ के सबसे अंतिम हिस्से में एक पुल का चित्र बना है। पृष्ठ 27। अचानक एक झटके के साथ बस रुकी।
7: ओह पेट्रोल पंप, 2 बसों में डीजल डलवाना होगा।
1: सभी बसें एक लाइन में खड़ी हो गईं। बच्चे खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर देखने लगे कि डीजल कैसे भरा जाता है। कुछ बच्चे नीचे उतर आए ताकि वो पास से देख सकें। हर एक बस में डीजल भरने में 15 मिनट लगते हैं और 2 बसों में डीजल भरवाना है, इसलिए वो लोग वहां लगभग, रिक्त स्थान, मिनट रुकेंगे। इसका मतलब है कि उन्हें पहुंचने में, रिक्त स्थान, मिनट की देर हो जाएगी। इस पृष्ठ पर एक पेट्रोल पंप का चित्र है। इस चित्र में कई वाहनों को पेट्रोल भरते हुए दिखाया गया है, साथ ही कुछ बच्चे पेट्रोल पंप की मशीन को ध्यान से देख रहे हैं। एक लड़के ने कहा,
4: अरे इसका पेट कितना बड़ा है, ये तो पहले ही 100 लीटर ले चुका है।
1: एक लड़का बोला,
3: इसलिए हमें डीजल के लिए 3500 रुपए देने पड़ेंगे।
1: चित्र में देखो और 1 लीटर डीजल की कीमत मालूम करो। रिक्त स्थान। जब बसों में डीजल भरा जा रहा था, कुछ बच्चे पेट्रोल पंप के पास के शौचालय चले गए। अमन को शौचालय से बाहर आने में कितना समय लगा? एक लड़की बोली,
3: अमन को खाली होने में उतना ही समय लगा जितना एक बस में डीजल भरवाने में।
1: पृष्ठ 28। भीमबेटका की ओर। बसों में डीजल भरवाने के बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई। अब

0: नहीं सोच सकता।
1: गौरी,
0: मैं 100 साल के बारे में सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की दादी माँ 100 साल की हैं।
1: मंजीत,
0: इसका मतलब ये गुफाएं लगभग 100 परदादी माँ जितनी पुरानी हैं।
1: सभी जोर जोर से हंस पड़े। बच्चे गुफाओं में की गई चित्रकारी को देखना चाहते थे। लगभग 11 बजे वो भीमबेटका पहुंचे। एक बच्चा बोला,
0: कमाल है, 10,000 साल पहले भी वो इतनी अच्छी चित्रकारी कर सकते थे, वो भी चट्टानों पर।
1: एक लड़की बोली,
0: अरे ये चट्टानें 1,000 साल पुरानी हैं।
1: इस पृष्ठ के अंतिम भाग में गुफा का एक चित्र बना है जिसमें कुछ जानवरों को दिखाया गया है। पृष्ठ 29। शंकर,
0: इस चित्र में बहुत बड़े बड़े सांड बने हैं। अरे मुझे एक बात सूझी है, इन चित्रों में मैं सांडों को गिनता हूं और तुम हिरणों को गिनो।
1: बोनोमाला,
0: मैं लोगों को गिनती हूं, देखते हैं कौन ज्यादा है, सांड, हिरण या लोग।
1: एक लड़के ने गिना,
0: 34, 35, 36, 37, मैंने 37 सांड गिने।
1: लड़की बोली,
0: 112, 113, 114, 115, 116, 117, मैंने 117 हिरण गिने हैं।
1: यहां पर सांड से हिरण कितने ज्यादा हैं? रिक्त स्थान। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें विभिन्न जानवरों के चित्र बने हैं, जैसे सांड, हिरण इत्यादि। लेकिन बोनोमाला सबसे ज्यादा खुश थी क्योंकि लोगों की संख्या सांडों और हिरणों की संख्या दोनों को मिलाकर उनसे ज्यादा थी, लेकिन उसकी गिनती 200 से कम थी। उसने कितने लोगों को गिना होगा? 214, 154, 134 या 177? रिक्त स्थान। गाइड ने बताया कि यहां कुल मिलाकर 600 गुफा चित्र हैं। अब भीमबेटका से चलने का समय हो गया था। वो लोग लगभग 1 घंटा बिता चुके थे। कितने बजे होंगे? रिक्त स्थान। आखिरकार अब वो भोपाल की ओर चल पड़े। अब उन्हें वहां 1 घंटे से भी कम समय में लगभग रिक्त स्थान बजे पहुंच जाना चाहिए। पृष्ठ 30। भोजन का समय। बच्चों को अब तक भूख लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने अपने खाने के डिब्बे खोल लिए। बिस्कुट, संतरे और केले भी सभी बसों में बांटे गए। हर एक बच्चे को 1 संतरा, 1 केला और 5 बिस्कुट दिए गए। सभी बच्चों ने संतरे और बिस्कुट लिए, पर 38 बच्चों ने केले नहीं लिए। कितने संतरे, बिस्कुट और केले बांटे गए? इस पृष्ठ पर दाई तरफ बिस्कुट और फलों के चित्र बने हैं और बाई तरफ कुछ बच्चे इन वस्तुओं को देख रहे हैं। मंजीत और भानु ने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और समय बिताने के लिए पहेलियां बुझाने लगे। मंजीत,
0: मुझे वो संख्या बताओ जो 100 और 150 के बिल्कुल बीच में पड़ती हो।
1: भानु,
0: 120 नहीं, 130 नहीं, ये 125 होगी।
1: मंजीत,

0: बिल्कुल ठीक, अब तुम पूछो।
1: तभी और बच्चे भी उनमें शामिल हो गए। वो सभी तरह तरह की पहेलियां बुझाने लगे।
0: मैंने चार चार टॉफी अपने चार दोस्तों में बांट दी और तीन टॉफी फिर भी बच गईं। कुल कितनी टॉफी मेरे पास थीं?
1: रिक्त स्थान। दूसरा बच्चा बोला, ख,
0: तीन पांच और सात अंकों को मिलाकर तुम कितनी संख्याएं बना सकते हो? तुम 357 और 537 बना सकते हो। इसके अलावा और क्या बना सकते हो?
1: एक और बच्चा बोला, ग,
0: एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वो दुगनी हो जाती है, वो संख्या क्या होगी?
1: यहां पर कुछ बच्चों का चित्र दिया गया है जो आपस में बातें करते हुए दिखाए गए हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश, बच्चों को ऐसे ही और अधिक प्रश्न या पहेलियां मौखिक रूप से और लिखकर हल करने को कहा जा सकता है। उन्हें हल करने के लिए उपयोग में लाए गए तरीके समझाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पृष्ठ 31। घ, एक लड़के ने कहा,
0: ऐसी संख्या सोचिए जो 2, 3 और 5 से भाग हो जाए तथा 25 और 50 के बीच हो।
1: एक और बच्चा बोला, ल,
0: एक छोटी चींटी 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है और 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। उसे 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा?
1: क्या तुम भी इनको हल कर सकते हो? कोशिश करके देखो। हम कौन सी नाव में बैठें? बच्चे पहेलियों में इतना खो गए थे कि उन्हें पता भी न चला कि वो कब भोपाल में ताल के पास पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ा ताल था जिसके बीच में एक छोटा सा टापू बना हुआ था। ताल उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। उसमें बहुत सी बतखें शोर कर रही थीं। कुछ बच्चों ने उन्हें पॉपकॉर्न खिलाए। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर बाईं ओर एक लड़की का चित्र है और सबसे नीचे कुछ बच्चे ताल के पास दिखाए गए हैं। कुछ को नाव चलाते हुए दिखाया गया है और कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। ताल में बतखों को तैरते हुए भी दिखाया गया है। उसके बाद आया सबसे मजेदार समय, नाव में घूमने का। इसके लिए उन्हें नाव को चुनना था, जो आसान नहीं था। पृष्ठ 32। वहां अलग अलग तरह की नावें थीं, जिसके टिकटों की कीमतें भी अलग अलग थीं और उनके चक्रों का समय भी अलग अलग था। यहां पर एक तालिका के 3 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है नाव का नाम, दूसरे में लिखा है टिकट की कीमत प्रति बच्चा और तीसरे में समय लिखा है। आइए अब हम तालिका को पढ़ें। 1, नाव का नाम, डबल डेकर, टिकट की कीमत प्रति बच्चा 30 रुपए, समय 45 मिनट। 2, नाव का नाम, पैडल बोट, टिकट की कीमत प्रति बच्चा 15 रुपए, समय 30 मिनट। नाव का नाम। 3, मोटर बोट, टिकट की कीमत प्रति बच्चा 25 रुपए, समय 20 मिनट। नाव का नाम। 4, चप्पू वाली नाव, टिकट की कीमत प्रति बच्चा 15 रुपए, समय 45 मिनट। इसी पृष्ठ पर कुछ बच्चे इस तालिका को पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पृष्ठ के सबसे अंतिम भाग में एक चित्र है जिसमें विभिन्न प्रकार की नावों को दर्शाया गया है और साथ ही कुछ लोग वहां खड़े दिखाई दे रहे हैं और साथ ही कुछ बच्चों के चित्र भी बने हैं। एक लड़की बोली,
0: हम चारों पैडल नाव लेते हैं और गौरी और उसके ग्रुप के साथ रेस लगाएंगे।
1: एक दूसरी लड़के ने कहा,
0: हम मोटर नाव लेंगे, ये महंगी तो रहेगी पर बड़ा मजा आएगा।
1: शिक्षकों के लिए निर्देश, टिकट की कीमत समय आदि की दी गई तालिका पर आधारित कुछ प्रश्न पुस्तक में दिए गए हैं। बच्चों को ऐसे ही और अधिक प्रश्न स्वयं बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। पृष्ठ 33। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर एक नदी का दृश्य है जिसमें विभिन्न प्रकार की नावें दिखाई गई हैं। लड़की बोली,
0: चलो हम चप्पू वाली नाव लेते हैं, ये महंगी भी नहीं है और हमें इस आराम की सवारी में समय भी ज्यादा मिलेगा।
1: एक दूसरी लड़के ने कहा,
2: हे हम तो डबल डेकर लेंगे, इसमें संगीत भी सुनने को मिलेगा। इसकी कीमत जरूर कुछ ज्यादा है पर समय भी तो ज्यादा मिलेगा।
1: इस पृष्ठ पर कुछ बच्चों के चित्र भी दिखाए गए हैं। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इंदिरा और भानु पहले मोटर नाव में गए, फिर उन्होंने चप्पू वाली नाव ले ली। उन्होंने कुल मिलाकर दोनों नावों के लिए कितने पैसे दिए? रिक्त स्थान रुपए। उनको दोनों नावों को चलाने के लिए कितना समय मिला? रिक्त स्थान। बच्चों का एक समूह डबल डेकर नाव में गया, उन्होंने कुल मिलाकर 450 रुपए दिए। कितने बच्चे डबल डेकर में गए? रिक्त स्थान। कौन सी नाव एक घंटे में दो चक्कर लगाती है? रिक्त स्थान। कौन सी नाव आधे घंटे से कम समय में एक चक्कर लगाती है? रिक्त स्थान। किस नाव में सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा समय मिलता है? रिक्त स्थान। जावेद ने दो बार नाव चलाई, उसने कुल 40 रुपए दिए और 50 मिनट नाव चलाई। उसने दो कौन सी नाव ली होंगी? रिक्त स्थान। वापसी। बच्चे 4 बजे तक अलग अलग नावों को चलाते रहे। अब वापस लौटने का समय हो गया था। लौटते हुए वो कहीं नहीं रुकेंगे और 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो उन्हें होशंगाबाद रिक्त स्थान बजे तक पहुंच जाना चाहिए। इस पृष्ठ के सबसे अंतिम भाग में कुछ बच्चों को बस में चढ़ते हुए दिखाया गया है, साथ ही उनकी मैडम और सर भी दिखाई दे रहे हैं। पृष्ठ 34। पता करो, क्या तुम कभी स्कूल ट्रिप पर गए हो? कुल मिलाकर कितने बच्चे गए थे? तुम कैसे गए थे और कितनी दूर गए थे? उसमें कितना समय लगा था? हरेक बच्चे की यात्रा का खर्चा कितना आया? पता करने की कोशिश करो। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर दाहिनी तरफ कुछ बच्चों का चित्र बना हुआ है जो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अभ्यास। 1. बताए गए 4 पुराने गुफा चित्रों में सबसे पुराना कौन सा है? क 4200 वर्ष पुराना, ख 1000 वर्ष पुराना, ग 8500 वर्ष पुराना या घ 1300 वर्ष पुराना। रिक्त स्थान। 2. एक बस में 48 बच्चे जा सकते हैं, 3 बसों में लगभग कितने बच्चे जा सकते हैं? क 100, ख 200 या ग 150। रिक्त स्थान। 3. संख्याओं का कौन सा जोड़ 500 से ज्यादा बनता है? क 152 और 241, ख 321 और 192, ग 99 और 299 या घ 401 और 91। 4. किस समय पर क्या हुआ था? मिलान करो। इस चित्र पर सबसे अंतिम भाग में बाईं तरफ कुछ गतिविधियां दी गई हैं और उनके सामने दाईं तरफ समय लिखा हुआ है। आपको इनका आपस में सही मिलान करना है। नर्मदा नदी को पार करना, भीमबेटका के चित्रों को देखना, पेट्रोल पंप पर, ताल पर बोटिंग, दिन का भोजन और होशंगाबाद वापसी। और इनके सामने लिखा है शाम 3 बजे, शाम 6 बजे, सुबह 9:10, दोपहर 12:30, दिन में 11:30 और सुबह 9:30।
0: इस तालिका में पहली गतिविधि को समय के साथ मिलाया गया है, जो इस प्रकार है, नर्मदा नदी को पार करना सुबह 9:10 पर। अब आगे आपको स्वयं सही मिलान करना है। इसी के साथ तीसरा पाठ भोपाल की सैर यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलेंग लिंगदो, ध्वनियंकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

तब जब उसकी रहमत हो, उससे मिलने की तरकीब कहूँ गर तुम सहमत हो। तुम फूल ही हो इसमें नहीं कोई शक मुझको, तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको, तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको, नहीं अब हक मुझको।

नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए 29 सितंबर की कुछ बातें आपसे शेयर करने वाला हूं। और 29 सितंबर जो है वैसे एक विशेष विश्व हृदय दिवस के लिए याद किया जाता है। और पितृ श्राद्ध आज से आरंभ हो गया था। और विश्व हृदय दिवस की कुछ बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। और महमूद एस एच कपाड़िया, सत्यव्रती शास्त्री, ब्रजेश मिश्रा, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही मातांगनी हाजरा, बालमणि अम्मा, टॉम अल्टर, गोपाल सेन, केसी शिवशंकर, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम लोग एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कहते हैं, जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है, आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब ना कोई आश्चर्य होगा, ना कोई आनंद और ना कोई अजरत। अब आप एक मृत जीवन जिएंगे, इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। और हमारे सभी लिसनर्स जो है, सुभाष जी

जलगांव से सुरेश जी, जोटाना से सुरेश जी, पिंडवाड़ा से सुरेश जी, अहमदाबाद से, और दयाराम जी लाखनी से, और कंचन भाई मंडाली से, कोपाराम जी कोटड़ा से, और इसके साथ मदन लाल जी गुजरात से, और हमारे अर्जुन सिंह जी महाराष्ट्र से, रमेश जी महाराष्ट्र से, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। और हमारे बहनों में से विभा दीदी और हर्षिता जी और जैनाब जी, खुशी जी, अंजिता जी और सुगना बहन, सभी को खुशी जी और लता जी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। लीजिए आप सभी के लिए एक गीत, अभी सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए, विश्व हृदय दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है, 29 सितंबर को ये मनाया जाता है। और आज के समय में हमारे जीवन शैली में असंतुलन और खान पीने में भी असंतुलन, दुनिया भर की मुश्किलों के साथ हम जी रहे हैं, इसलिए दुनिया भर में हृदय रोग के पीड़ितों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोगों को अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने का मौका नहीं मिल रहा है, जिसका उन्हें भारी कामयाजा भुगतना पड़ता है। हृदय रोग विशेषज्ञों के अनुसार दिल की बीमारी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है, इसके लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं होती। महिलाओं में हृदय रोग की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, बावजूद इसके वे इस बीमारी के जोखिमों को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में एक दिल है जो जिस पर सबके अधिक बोझ पड़ रहे हैं। तनाव, थकान, प्रदूषण आदि कई वजहों से रक्त का आदान प्रदान करने वाले इसी अति महत्वपूर्ण अंग को अपना काम करने में मुश्किल होती है, इसलिए विश्व हृदय दिवस लोगों में ये भावना जागृत करता है कि वे हृदय की बीमारियों के प्रति सचेत रहे। दुनिया भर में हर साल ये 29% मौत का भी कारण बना है, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है हृदयघात या हृदय की बीमारी से, या हृदय गति रुक जाने से, या दिल का दौरा पड़ने से। सिंपल भाषा में हर साल 1.71 करोड़ से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। आम लोगों को इन बीमारियों व दिल के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने के प्रति जागरूक करने के मकसद से ही ये दिन मनाने का शुरुआत हुआ, विश्व हृदय दिवस 2000 से। अब तक सितंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता था, लेकिन फिर 2014 में इसे 29 सितंबर को मुकर्रर किया, और तब से WHO के मापदंडों के अनुसार ये विश्व संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमों के अनुसार विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये विश्व हृदय दिवस मनाने का मापदंड जो है पूरा किया गया। तो हृदय रोग पूरे विश्व में आज एक गंभीर बीमारी के तौर पे उभर रहा है, तो इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं आगे। लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, मैं हूं गौरव आसुदानी टेकीगल से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए, दिल की बीमारी या दिल धड़कता है तो प्यार हो जाता है, लेकिन दिल रुक जाता है तो मौत हो जाती है। तो इसीलिए दिल को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। हृदयघात होता क्या है और ये कैसे होता है, इसको समझना और इसका ख्याल कैसे रखना, इसके बारे में आपको आज के दिन, विशेष विश्व हृदय दिवस के दिन, लोग आपको बताते हैं। डॉक्टर भी आपके लिए विशेष रूप से कुछ अच्छी बातें बताने के लिए आपके सामने आ जाते हैं। तो ऐसा देखा गया कि आजकल अधिकतर ऑफिसेस में समय बीतता है, जिसकी वजह से व्यायाम कम होने की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ दिल का दौर भी बढ़ता है, दौरा भी बढ़ जाता है, और यही मानकर चलते हैं कि, लेकिन ये सच नहीं है, सभी बूढ़ों को दिल का दौरा नहीं पड़ता। दरअसल दिल के दौरे की नींव बचपन से ही आ जाते हैं। ये समस्या सालों तक चुपचाप अंदर ही अंदर काम करती रहती है और एक दिन दिल के दौरे में तब्दील हो जाती है। दिल के सेहत से जुड़े कुछ तत्वों को हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है और बस इसके लिए अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं करते हैं तो फिर कभी ना कभी दिल का दौरा पड़कर दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। इसमें काफ़ी जो सर्कुलेशन जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो लोग अपने भोजन में अत्यधिक वसा, चर्बी, नमक, अंडे और मांस खाते हैं, उन्हें दूसरों के मुकाबले दिल का दौरा पड़ने का जोखिम 35% अधिक हो जाता है। इसकी तुलना में जो लोग 60 ग्राम साबुत अनाज से बना हुआ दलिया खाते हैं, उन्हें ये जोखिम कम हो जाता है। रोगियों की संख्या की बात करें तो हृदय के साथ साथ होने वाले छेड़छाड़ का नतीजा है कि आज विश्व भर में हृदय रोगियों की संख्या बढ़ गई है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 10.2 करोड़ लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। पूरी दुनिया में हर साल 1.73 करोड़ लोगों की मौत इस बीमारी की वजह से हो जाती है और यदि हालतों पर काबू नहीं किया गया तो 2020 तक हर तीसरे व्यक्ति को मौत हृदयघात की वजह से हो सकता है। तो ये विशेष रूप से है, तो सेहत का आपको ध्यान रखना है, अपने हृदय का ध्यान रखना है। इसके लिए पहला एक नियम है, प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा समय व्यायाम के लिए निकलना चाहिए। दूसरा, प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे तक व्यायाम करना हृदय के लिए अच्छा होता है। तीसरा, यदि समय की कमी है तो आप तेज कदमों से टहलना भी कर सकते हैं। सेहत के अनुरूप ही खान पान तथा आहार लेना चाहिए। नमक की कम मात्रा का सेवन करें, भोजन में कम वसा वाले आहार ग्रहण करना चाहिए। ताज़ी सब्जियां और फल आदि मात्रा में लें। अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में समय पर नाश्ता और समय पर लंच करें। तंबाकू जैसे पदार्थों से हमेशा दूरी बनाए रखें। घंटों तक एक ही स्थिति में बैठना हृदय के लिए हानिकारक हो सकता है। आज की भागदौड़ वाली जीवन शैली में तनाव भी बढ़ गया है, इससे पूरी तरह बचना तो मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक संभव हो इससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। साइकिल चलाना, नियमित रूप से टहलना और तैरना, ये काम अच्छा है, इसको करने से व्यायाम हो जाता है शरीर का। रोजाना 30 मिनट योग और ध्यान करने की प्रक्रिया अपनाएं। धूम्रपान से बिल्कुल दूर रहें, ये दिल के बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसे खाद्य तेल का चयन करें जिससे 0 ट्रांस फैटी एसिड हो। नींद दिल की स्वास्थ्य रखने के लिए ज़रूरी है, रोजाना 7 घंटे की नींद लें। कैफीन की मात्रा कम करें और काली या हरी मिर्च, हरी चाय पिए। गर्मियों में प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिए। तो ये थी कुछ खास बातें आपके लिए हृदय गति से या हृदय की संभाल करने के लिए या दिल का दौरा से बचने के लिए। तो आशा करूँगा कि आप सभी को ये बातें नोट करके रखनी चाहिए, इसके ऊपर कुछ कुछ काम शुरू कर दें आप, है ना। अपने से प्यार करते हैं, अपने दिल से प्यार करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र, इस कार्यक्रम को सुनते रहो।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए शिरोष विशेष एसएच कपाड़िया के बारे में बात करते हैं। शिरोष होमी कपाड़िया, जिनका पूरा नाम है, भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम किया। एसएच कपाड़िया 12 मई 2010 को विश्व सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और 28 सितंबर 2012 में इस पद से वो सेवानिवृत्त हुए। एक न्यायाधीश के अतिरिक्त एचएस कपाड़िया अर्थशास्त्र, लोक वित्त, सैद्धांतिक भौतिकी में भी गहरे जानकार रखते थे। हिंदू और बौद्धिक दर्शनों का भी इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया था। और एचएस कपाड़िया का जन्म आज ही के दिन 1947 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और पारसी समुदाय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे। 2G, वोडाफोन, सहारा और सलवा जुडुम जैसे कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए न्यायाधीश एसएच कपाड़िया जाने जाते हैं। एसएच कपाड़िया के कानूनी सफ़र की शुरुआत एक लॉ फॉर्म में काम करने के साथ ही हुई थी। उनका जीवन जीने का तरीका काफ़ी सादा था। मुंबई उच्च न्यायालय के शुरुआती दिनों में वे नाश्ते में सिर्फ चने खाते थे। सेवानिवृत्ति के बाद भी 2012 में एचएस कपाड़िया ने किसी कमेटी में कोई पद नहीं लिया। वे बस अपने ऑफिस में ही काम करते रहे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सफर इस कार्यक्रम को। आइए आगे बढ़ते हैं। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने जो काम किया उसके लिए अगर मैं बात करूँ, उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश रहे एचएस कपाड़िया को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 12 मई को भारत के 38वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई थी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उनके कैबिनेट के सहयोगी नव निर्माण प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति के जी बालकृष्णन और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। और 12 मई 2010 से 28 सितंबर 2012 तक प्रधान न्यायाधीश के पद पर ये आसीन रहे। न्यायाधीश वाली संविधानिक पीठ से जुड़े रहे और जिसने 9वीं अनुसूचित में शामिल कानून की न्यायपालिका पुनरीक्षक का ऐतिहासिक फैसला किया था। और कपाड़िया कर कानूनों के विशेष जानकार थे। वो कपड़े न्याय अनुशासन के लिए भी जाने जाते थे, कड़े न्याय अनुशासन के लिए जाने जाते थे। और उन्होंने अपने मुख्य न्यायाधीश का पदभार ऐसे समय ग्रहण किया जब भारतीय नगर पालिका न्यायपालिका भ्रष्टाचार संबंधी विवादों में गिरी थी। न्यायमूर्ति एच एस कपाड़िया सुप्रीम कोर्ट में लगभग 771 फैसलों से संबंध रहे और न्यायाधीश के रूप में उन्होंने 28 महीने का कार्यकाल बेहद चुनौतीपूर्ण उनका रहा। लेकिन वो केवल उच्चतम न्यायालय बल्कि उच्च न्यायालय और निचली अदालतों में भी बड़ी संख्या में मामले लंबित थे, जिसकी संख्या कम करने का अवश्य उन्होंने भूमिका निभाई थी। तो ये थी कुछ खास बातें एसएच कपाड़िया के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, मैं हूँ किरण शूद्र की सांडली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है, सत्यव्रत शास्त्री के बारे में। जी हाँ, भारत के विद्वान और महत्वपूर्ण मनीषी रचनाकार हैं। वे 3 महाकाव्यों के रचनाकार हैं जिनमें ये प्रत्येक में लगभग 1000 श्लोक है और वैदिक व्याकरण उनकी मुख्य रचनाएं हैं। 2007 में सत्यव्रत शास्त्री को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए इनके बारे में जानते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, आज ही के दिन 29 सितंबर 1930 को इनका जन्म हुआ। 1947 से लेकर 49 तक मध्य इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद 1991 और 1953 में इन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की और विश्वविद्यालय दिल्ली से प्रोफेसर बने। साथ ही JNU के संस्कृत स्कूल में भी योगदान दिया और श्री जगन्नाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी पूरी उड़ीसा में वाइस चांसलर भी बने। इसके अलावा वो भारत सरकार के संस्कृत आयोग के अध्यक्ष बने और प्रेसिडेंस एशिया इंस्टीट्यूट टेरिनो इटाली भी है। उन्हें अब तक 108 अवार्ड मिल चुके हैं। थाईलैंड महारानी को संस्कृत की शिक्षा इन्होंने दी। संस्कृत के प्रख्यात विद्वान पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री अकेले ही ऐसे शख्स है जिन्होंने थाईलैंड की महारानी को संस्कृत सिखाई और संस्कृत में ही BA व MA की डिग्री दिलाई। यही नहीं, थाईलैंड समेत कई देशों में उन्होंने संस्कृत के अभिलेख ढूंढे। सत्यव्रत शास्त्री के अनुसार सन 1977 में थाईलैंड की हरयोल हाइनेस महाचक्र प्रिंसेस सिरिन थोर को संस्कृत में MA करनी थी और वो बैंकॉक में शिक्षा ग्रहण कर रही थी। थाईलैंड की सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि महारानी को संस्कृत पढ़ने के लिए किसी अनुभवी संस्कृत शिक्षक की व्यवस्था की जाए। उसके बाद भारत सरकार ने डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री का नाम तय किया और उन्हें पढ़ाने के लिए भेज दिया गया। उसी दौरान वो थाईलैंड में भ्रमण करने निकले तो उन्हें शाकोन समेत कई नाम लिखे मिले। उसी के डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री को एक और काम मिल गया। वो खुश इसलिए थे कि संस्कृत के अभिलेख वहाँ मिलने लगे। उन्होंने बताया कि रामा स्टोरी साउथ एशिया पर काम कर रहे हैं। 7 देशों की यात्रा के जरिए ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। उनका कहना था कि ग्रैंड फादर पंडित चारुदेव शास्त्री संस्कृत के विद्वान थे, उन्हीं के जरिए ये सीखी और अब तक 36 किताबें लिख चुके हैं। तो इनके नाम कुछ पुरस्कार जैसे पद्म भूषण 2010 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 में और पद्मश्री 1999 में। और ये विशेष संस्कृत साहित्यकार सत्यव्रत शास्त्री का निधन 14 नवंबर 2021 को हुआ, संस्कृत की सेवा करते करते। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। ये गीत आप सबके लिए। सुनते रहो मस्कर।

0: ब्रह्मकुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए सत्यव्रत शास्त्री की बातें सुनकर अच्छा लगा होगा, जो भारत की संस्कृति को उन्होंने बाहर के विदेशी महारानी को सिखाकर एक नया परचम लहराया, उनके लिए हमेशा यादगार रहा और भारत का ये इतिहास बना। चलिए अब बात करते हैं ब्रजेश मिश्रा के बारे में। भारत के पहले राष्ट्रपति, सुरक्षा सलाहकार और भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधान सचिव के रूप में इन्होंने काम किया। ब्रजेश मिश्रा का जन्म आज के दिन 1928 को 29 सितंबर को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र के पुत्र थे। इनके पिता इंदिरा गांधी के बेहद करीबी थे। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी नीति को दिशा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी और इसके पहले वो विदेश मंत्रालय के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में काम किया। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान मिश्रा ने वाजपेयी की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 2004 में रजाक सरकार के पतन और विजय वाजपेयी की राजनीति से दूरी बना लेने के बाद मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गए। ब्रजेश मिश्रा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के काल में भी भारत और अमेरिका के बीच परमाणु करार का समर्थन किया था। भारत और अमेरिका के नज़दीकी रिश्तों के असाधारण पक्षधार थे। ब्रजेश मिश्रा की कमी हम सबको खलेगी, लेकिन दुनिया उनके योगदान को हमेशा याद रखेंगे। दिल की बीमारी की वजह से 28 सितंबर 2012 को नई दिल्ली में ब्रजेश मिश्रा का निधन हो गया था। तो ये थी कुछ खास बातें ब्रजेश मिश्रा के बारे में आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर इस कार्यक्रम को। आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके लिए अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। महमूद की बातें आइए आप करते हैं आप सभी के लिए। जीवन में अगर हास्य अभिनेता की बात करें तो उसमें इनका नाम प्रथम श्रेणी में आता है। फिल्म जगत के बहुत ही पॉपुलर हास्य अभिनेता, इनका पूरा नाम महमूद अली था और 3 दशक लंबे चले उनके करियर में उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। अपने बहुरंगी किरदारों से दर्शकों को हंसाने और गंभीर भूमिका कर रुलाने वाले महमूद अभिनय के प्रति समर्पित थे। अपने बहुमुखी अभिनय और कला के प्रति समर्पण ने उन्हें बुलंदियां दी और उनको फिल्म फेयर सहित कई पुरस्कारों का सम्मान मिला। उन्हें कई फिल्मों में गीत ही नहीं गाए बल्कि फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया है, तो है ना कमाल की बात। इनका जन्म आज के दिन 1932 को मुंबई में हुआ था और महमूद मशहूर नृत्य मुमताज अली के बेटे और चारित्र अभिनेत्री बिन्नो मुमताज अली के भाई थे। महमूद ने अभिनेत्री मीना कुमारी की बहन मधु से विवाह किया था। 8 संतानों के पिता महमूद के दूसरे बेटा मकसूद लकी अली जाने माने गायक और अभिनेता हैं। निर्देशक के रूप में महमूद की अंतिम फिल्म थी दुश्मन दुनिया का और 1996 में बनी फिल्म उन्होंने अपने बेटे मंजूर अली को पर्दे पर उतारा था। तो आइए उनकी जीवन कहानी से जुड़ी हुई कुछ बातें और डायलॉग आपको सुनाते हैं। संगीत, गीत और संवाद आपके नाम अभी, महमूद की कहानी। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: एक बात मेरे को मालूम है, किशन ने कंस को मार दिया था।
1: वो किशन नहीं, किशन वो अपना
0: अल्लाह, उसको मेरे को नहीं मालूम भाई। लेकिन टेबल पे सारे लोग तुम्हारे नाम का वजीफा पढ़ रहे हैं।
2: ये वो कलाकार हैं जब स्क्रीन पर आते हैं तो दुखी से दुखी मन भी खुश हो जाता है, पेट पकड़ पकड़ कर लोग हंसते हैं। भारतीय सिनेमा के ऐसे कॉमेडियन जिसने जब चाहा हंसाया और जब चाहा रुलाया। हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर महमूद अली खान की। जन्म 29 सितंबर सन 1932 में हुआ।

मोहम्मद साहब के माता पिता खुद एक्टर और डांसर थे। मुंबई में अक्सर ये स्टेज शोज पर नजर आते थे और साथ ही कुछ फिल्मों में भी। महमूद साहब की एक बड़ी बहन थी और 6 छोटे भाई बहन। इनकी बहन मीनू मुमताज एक बहुत ही प्रतिभाशाली डांसर और कैरेक्टर एक्ट्रेस थी। ये किस्सा मशहूर है कि महमूद साहब अक्सर शरारतें किया करते थे और एक ऐसी ही शरारत की वजह से इन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम मिला। हुआ यूं था कि अशोक कुमार यानी कि दादा मुनि जो फिल्म किस्मत के हीरो थे एक चाइल्ड आर्टिस्ट को ढूंढ रहे थे जो उनके बचपन का रोल प्ले कर सके। ऐसे में स्टूडियो के इर्द गिर्द एक शैतान बच्चा नजर आया और वो कोई और नहीं, वो थे महमूद साहब। दादा मुनि ने देखा इन्हें और फाइनल कर दिया। इस तरह से इनके करियर की शुरुआत हुई।

0: धीरे धीरे महमूद साहब की कॉमेडी की ऐसी धाक जमी कि बहुत सी फिल्मों में महमूद साहब का होना जरूरी हो गया था। लेजेंडरी कॉमेडियन जॉनी वॉकर के बाद महमूद साहब एक ऐसा नाम बन के आए जो सिल्वर स्क्रीन पर छा गया। यूं तो महमूद साहब ने बहुत हंसाया, पर एक ऐसी फिल्म इन्होंने बनाई जिसने लोगों की आंखों में आंसू भर दिए। ये फिल्म थी कुंवारा बाप, जिसमें एक रिक्शे वाला एक पोलियो ग्रस्त बच्चे को पालता है।
1: पसंद आया? नहीं नहीं, शेक्सपियर नहीं पसंद आया। कालिदास सुनाओ, कालिदास हां हां सुनाओ, कल वो भी नहीं, फिर क्या करूं क्या करूं।
0: महमूद साहब उन एक्टर्स में से रहे जिन्हें बहुत ही जबरदस्त गाने मिले, और इनके लिए प्लेबैक दिया मोहम्मद रफी और मन्ना डे ने। मामा।

ये बात जानकर भी हैरानी होती है कि मशहूर मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन को पहला ब्रेक देने वाले इंसान महमूद थे। फिल्म का नाम था छोटे नवाब और फिल्म इंडस्ट्री में सभी लोग इन्हें भाई जान कह के पुकारा करते थे।

0: सुपरस्टार अमिताभ बच्चन महमूद साहब के ही घर में बतौर किराएदार रहते थे। तकरीबन 11 महीने बच्चन साहब इनके यहाँ रहे और फिर महमूद के छोटे भाई अनवर अली के कहने पर अमिताभ बच्चन को फिल्म बॉम्बे टू गोवा में बतौर हीरो लिया गया, जिसमें हीरोइन थी अरुणा ईरानी। ये बात भी चर्चा में रही कि महमूद साहब और अरुणा ईरानी का प्रेम संबंध था, इस वजह से अरुणा जी को फिल्म बॉम्बे टू गोवा में बतौर हीरोइन लिया गया। पर अपने आखिरी दिनों में महमूद अमिताभ बच्चन से खासे खफा नजर आए। वजह ये थी कि जब इनकी बाईपास सर्जरी हुई, उसी हॉस्पिटल में अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का भी ट्रीटमेंट चल रहा था। अमिताभ अपने पिता से मिलने जरूर आए, पर महमूद के कमरे में कभी नहीं गए।
1: तो अमित अपने वालिद को लेके वहाँ आए, ब्रिज कैली, जहाँ मेरा बाईपास हुआ था, उसने आके मुझे हॉस्पिटल में विश भी नहीं किया।
0: एक वक्त ऐसा था जब महमूद डायरेक्टर पीएल संतोषी के यहाँ बतौर ड्राइवर काम किया करते थे, और फिर वो वक्त आया जब पीएल संतोषी के बेटे राजकुमार संतोषी ने इन्हें अपनी फिल्म अंदाज अपना अपना में एक बहुत ही अनोखा किरदार निभाने को दिया।
2: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या चेहरा है, क्या थोबड़ा है, अपने ढंग का एक ही नमूना है। आका थु थु थु थु थु थु।
3: ये क्या,
2: नजर नहीं लगे इसलिए थूका।
3: अच्छा गुरु जी, मैं स्टार बन जाऊंगा ना?
2: बन जाऊंगा, अरे बन गए तुम स्टार यार।
0: ये कैसे कलाकार थे जो बहुत भावुक थे, बहुत ही इमोशनल फिल्म्स इन्होंने बनाई। इनकी जोड़ी आईएस जोहर और शोभा खोटे के साथ खूब जमी। फिल्म पड़ोसन में बतौर साउथ इंडियन म्यूजिक टीचर का किरदार इन्होंने ऐसा निभाया कि आज भी वो हमारी यादों में ताजा है।

0: दिल की लंबी बीमारी की वजह से 23 जुलाई सन 2004 में यूएस के पेंसिल्वेनिया में महमूद साहब ये दुनिया छोड़ गए। भारतीय सिनेमा के इतिहास में महमूद अली खान का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।
1: मैं कहता हूँ आप सब पागल हैं जिन्होंने मुझे लखपति का बेटा समझा। आप लोगों में से किसी ने यह मालूम कराने की कोशिश की कि ये बात सच है या झूठ? नहीं, लखपति सुनते ही सब मक्खी की तरह मेरे भिड़ाने लगे। मेरी सेवा करने के लिए, मुझे मक्का मारने के लिए आपस में झगड़ने लगे। कल तक तो मेरा अपमान कर रहे और आज सब मित्र मेरा सम्मान कर रहे हैं। आपको देखिए मैडम, जिलेबी अचानक इनके लिए मैं खूबसूरत बन गई, मुझे जिलेबी खिला रही हूँ।
2: तो ये थी कहानी महमूद की आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हाँ, लीजिए एक और प्यारा सा गीत आपके नाम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि बस इतना ही, और एक छोटी सी कहानी के साथ मैं कार्यक्रम को पूरा करता हूँ। और कहते हैं कि एक दिन की बात है, अकबर महाराज ने अपने सभा में एक अजीब सा सवाल पूछा जिससे पूरी सभा के लोग हैरान रह गए। जैसे वे सभी उत्तर जानने की कोशिश कर रहे थे, तभी बीरबल अंदर आए और पूछा कि मामला क्या है। उन्होंने उससे सवाल दोहराया, फिर से सवाल था, शहर में कितने कौवे हैं। बीरबल तुरंत मुस्कुराया और अकबर के पास गए। उन्होंने उत्तर की घोषणा की। उनका जवाब था कि नगर में 21,523 कौवे हैं। ये पूछे जाने पर कि ये उत्तर कैसे जानते हैं आप, तब बीरबल ने उत्तर दिया, अपने आदमियों से कौवों की संख्या गिनने के लिए कहें, यदि अधिक मिले तो कौवे के रिश्तेदार उनके आसपास के शहरों में आ रहे होंगे, यदि कम है तो हमारे शहर के कौवे शहर से बाहर रहने वाले अपने रिश्तेदारों के पास जरूर गए होंगे। ये जवाब सुनकर राजा को काफ़ी संतोष मिला। इस उत्तर से प्रसन्न होकर अकबर ने बीरबल को एक माणिक और मोती की जंजीर भेंट की। वहीं उन्होंने बीरबल की बुद्धि की काफ़ी प्रशंसा करी। तो कहानी से सीख ये मिलता है कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपके उत्तर में सही स्पष्टीकरण होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही उत्तर का होना। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और चलिए जाते जाते एक और विचार के साथ कार्यक्रम को पूरा करते हैं। अगर आपको अक्सर ऐसा लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रहा है, तो शायद अभी आपको अपनी कोशिशों में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। और जब आप कोशिशों को लगातार रखते हुए बदलाव करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ, ढेर सारी खुशियों के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खम्मा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: उठो जागो अपना भाग्य संवारो। ये समय है जागने का, जागृति लाने का। ये समय है ईश्वर से प्रीत निभाने का। ये समय है स्वर्णिम युग बनाने का, जिसकी शुरुआत स्वयं से होती है।
1: किस्मत से कह दो।
2: अभी बजे हैं शाम के 5।

रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच और युवाओं के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 29 सितंबर और आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स के बारे में। जी हाँ, स्पोर्ट्स क्योंकि चल रहे हैं एशियन गेम्स और एशियन गेम्स में भारत का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कमाल का चल रहा है। कई ऐसे गेम्स हैं जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, अभी तक 5 गोल्ड भारत को मिल चुके हैं और अभी भी ये गेम्स आगे चल रहे हैं। कुछ और ऐसे गेम्स हैं जो आने वाले हैं। अगर आप स्पोर्ट्स देखते हैं तो आपको ज़रूर इंटरेस्ट आता होगा, अगर आप खेलते हैं तो भी आता होगा, और नहीं खेलते नहीं देखते तो भी अपने देश को भारत को सपोर्ट करने के लिए भी थोड़ा इंटरेस्ट जगा सकते हैं। वैसे बहुत सारे गेम्स इसमें हो रहे हैं। पोल वॉल्ट का गेम चल रहा है अभी। एक पोल होता है, उसको लेकर दौड़ना और उसके बाद एक ऊंची जंप लगानी होती है। हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, साथ साथ जब एथलेटिक्स की बात आती है तो बहुत तरह की रेस होती है। 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, इस तरह की बहुत तरह की रेस भी होती है। तो उसके साथ साथ हर्डल्स होता है, स्टिपल चेज होता है, आपका स्क्वाश है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, क्रिकेट है, न जाने कितने सारे स्पोर्ट्स है जिसमें हो रहा है और उसकी अपडेट हम आपको बताएंगे। लेकिन बने रहिए हमारे साथ उसके लिए, यानी कि रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।
1: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। कार्यक्रम है युवा मंच और दोस्तों आपसे हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स के बारे में, खेल के बारे में, जो सिर्फ फिजिकल हेल्थ को ठीक ही नहीं रखते बल्कि उमंग उत्साह को भी बनाकर रखते हैं, एक बहुत अच्छा करियर भी सिद्ध हो सकते हैं। और एशियन गेम्स की बात करें दोस्तों, हर 4 साल में एक ही बार होते हैं ये गेम्स और अभी भारत की जो स्टैंडिंग है वो पहले से बेहतर होती जा रही है। पहले हम जितने स्पोर्ट्स में मेडल लाया करते थे, खेला करते थे, उससे अब और बेहतर कई खेलों में हमारी जो स्टैंडिंग है वो अब रह रही है। और अभी हम आपके पॉइंट टेबल जो आपसे डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि भाई भारत क्या खड़ा है, कहाँ खड़ा है, क्या क्या किस कैटेगरी में कौन से मेडल जीते हैं। दोस्तों आज की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो भारत के लिए एक बड़ा मोमेंट रहा है वो रहा है शूटिंग में। जी हाँ, शूटिंग में बात करें तो तरह तरह की शूटिंग होती हैं जिसमें 25 मीटर पिस्टल भी होती है, आपका 3 पोजीशंस वाली भी शूटिंग होती है जिसमें आपको एक लेट करके बैठ खड़े होकर के 3 अलग अलग पोजीशन में शूट करना होता है, फिर उसके साथ अलग अलग डिस्टेंस में भी शूटिंग होती है। तो इस तरह की कई तरह की स्कीट होती है और विमेन ट्रैप की जो टीम है उनको सिल्वर मिला है। साथ साथ विमेन ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट में, यानी कि वो एक जो आपको निशाना लगाना होता है, एक बड़ी सी राइफल आपके पास होती है, टारगेट आपका उड़ के सामने से आ रहा होता है और एग्जैक्टली उस पर पॉइंट करना होता है, नहीं तो वो टारगेट आपका चला जाता है। तो नीरू ढांडा जो हैं भारत की, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जी हाँ, बहुत ही कमाल उन्होंने करके दिखाया है नीरू ढांडा ने और साथ साथ गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया है उन्होंने, यानी कि अब तक का एशियन गेम्स का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया है इस कैटेगरी में। तो ये है बहुत ही कमाल की बात। टीम की बात करें तो टीम ने भी सिल्वर जीता है जिसमें वैलरविन है, सोना मस्कर हैं और साथ साथ विद्रासा विनोद जो है वो भी हैं, आपकी नीरू ढांडा, आशिमा लावत और मनीषा खीर की टीम है। तो ऐसे अलग अलग टीम्स जो हैं वो भी परफॉर्म कर रही हैं बहुत कमाल का। बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्सिंग के भी सेमीफाइनल राउंड से फाइनल में प्रवेश कर रहे हैं कई, तो उसका भी अभी होना बाकी है। सबसे बड़ी न्यूज़ आज की नीरू ढांडा के वहाँ से आई है और अभी दोस्तों रेस होने वाली है कुछ ही देर में, रिले रेस 100 मीटर + × 4, यानी कि 4 लोग 100 मीटर दौड़ेंगे जिसमें भारत ने बहुत कमाल का कल परफॉर्म किया था, क्वालिफाई कर लिया था फाइनल के लिए। भारत के जो अविनाश हैं उनमें से वो गिरे भी थे, उनको चोट भी लगी, लेकिन फिर भी वो रेस कंटिन्यू करके भारत ने बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस दिया था। तो अगर आप नहीं देख रहे हैं तो अभी भी समय है, एशियन गेम्स देखिए जरूर, आपको भी अच्छा लगेगा, बच्चे भी मोटिवेट होंगे और क्या पता कल के लिए कोई नई उम्मीद जाग जाए। चलिए फिलहाल हम आपको सुनाते हैं बहुत सुंदर सा नगमा रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हेलो, हाँ हाँ पहुंचा दूंगा, आप समय से पहुंचा दूंगा।
2: ओए इधर इधर इधर, ओए क्या पहुंचा दोगे हैं? ओए कहाँ पहुंचा दोगे? ओए मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुंच जाओगे। ओए सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? ओए ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? ओए जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
3: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
4: पूरा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है युवा मंच। और आपको बता रहे हैं हम एशियन गेम्स में भारत कितना कमाल की परफॉर्मेंस कर रहा है। रिले रेस 4x100 की शुरू होने वाली है, फाइनल राउंड होने वाला है और बहुत ही कमाल का ये रेस होने वाला है, मूवमेंट होने वाला है। चंद लम्हों में आपको बताएंगे कि इसमें भारत क्या करता है। और शुरुआत जो मेडल तालिका की हुई थी गोल्ड मेडल से, वो हुई थी विमेन में क्रिकेट से। महिला क्रिकेट ने कमाल करके दिखाया, 140 रन से ऊपर से हराया और एकदम ही जो है साबित कर दिया कि नंबर वन कौन है। उसके बाद कबड्डी की मेन टीम विमेन टीम दोनों ने गोल्ड हासिल करके न सिर्फ दिखाया बल्कि अपने मेडल को डिफेंड किया, यानी पिछली बार भी उनको मिला था और इस बार भी गोल्ड मेडल उन्होंने अपना कायम रखा। चौथा जो गोल्ड मेडल आया वो आया शूटिंग से मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल, जिसमें कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मेडल दिलाया। और पांचवा जो गोल्ड मेडल भारत को मिला है आज, जैसा मैंने बताया, वुमेन ट्रैप इंडिविजुअल में नीरू ढांडा को। तो ये टीम्स याद रखिए, सिल्वर किसने पाया है बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया।

0: भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
1: माँ अब तो बस करो।
2: बहू क्या सोच रही हो, घर चले? नन्नी परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो।
3: कोख को कबर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में ला।
4: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
5: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट है। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: जापान से जहाँ एशियन गेम्स चल रहे हैं वहां पे 400 मीटर रिले रेस में, मिक्स्ड रिले रेस में जिसमें दो वुमेन और दो मेन पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, बहुत अच्छी दमदार शुरुआत भारत ने की थी और बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। जी हाँ, अभी अभी ये जो आया है मैंने अभी अभी ये रेस बस पूरी हुई है और इसके बाद अभी होने वाली है बहुत और भी चीजें। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि गेम्स खत्म हो जा रहे हैं, इसके बाद अभी महिलाओं के 4x400 मीटर रिले रेस, ये 4x100 थी यानी हर किसी को 100 मीटर भागना है, यहाँ पे 4x400 मीटर है यानी सबको 400, चारों को 400 भागना है। उसके बाद जो है वो मेंस 4x400 रिले भी फाइनल होने वाला है आज, तो देखते हैं उसमें क्या क्या होने वाला है। साथ साथ अभी हैमर थ्रो भी चल रहा है, इंडिया की जो तान्या है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, साथ में एक और एथलीट भी है जो उसको पार्टिसिपेट कर रही है। और कितना मेहनत है दोस्तों इसमें, जब आप एक वो जब आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो हैवी होता है, कितना हैमर और गोल गोल घूम के उसको फेंकना होता है, कितनी ताकत चाहिए उसमें, कितनी मेहनत लगती है, तब समझ में आता है ये एथलीट्स इतनी मेहनत करते हैं, जी जान अपनी लगा देते हैं देश के नाम मेडल करने के लिए, अपने नाम मेडल करने के लिए। तो उनको सपोर्ट हमें करना चाहिए और सच में जब हम देखेंगे इनको तो उनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। जैसे हम क्रिकेट को हमने बहुत सम्मान बहुत प्यार दिया है और वो खेल हमारे पसंदीदा खेलों में से एक बन चुका है, ऐसे और खेलों को भी अब दिल में जगह देने का समय आ गया है दोस्तों। अब आज वॉलीबॉल टीम का भी मैच था और इतना क्रिटिकल मैच हुआ है, अगर आप उसकी हाईलाइट देखना चाहें तो जरूर देखें। कतार के साथ भारत की टीम खेल रही थी, भारत की मेंस टीम खेल रही थी और ऐसा हो रहा था कि शुरू के अब इसे 5 राउंड्स में से शुरू के 2 राउंड्स वो कतार जीत चुका था, उसके बाद वापसी की भारतीय टीम ने 2 राउंड जीते। उसके बाद में जब ऐसा होता है जब स्कोर बराबर हो जाते हैं तो मैच पॉइंट एक बार में आप पॉइंट में नहीं जीत सकते, आपको 2 पॉइंट्स लगातार करने होते हैं तब आप मैच जीते हैं। ऐसा टेबल टेनिस में भी होता है, ऐसा बैडमिंटन में भी होता है और ऐसा वॉलीबॉल में भी होता है। तो वहां पे हुआ ऐसा रहा था क्योंकि कतार के एक जो टीम प्लेयर थे वो बहुत ही हाइट लंबी थी उनकी और स्मैश वो बहुत अच्छा कर रहे थे, तो बार बार विनिंग पॉइंट मतलब जो एडवांटेज था वो मिल जा रहा था कतार को और वो एक और पॉइंट अगर कर लेते तो वो जीत जाते, लेकिन भारत बार बार उस एक पॉइंट को बचा ले रहा था। और कुछ नहीं तो कम से कम 5-6 बार ऐसा हुआ कि लग रहा था कतार को एडवांटेज मिला और भारत ने बचाया, उन्हें मिला और भारत ने बचाया, लेकिन फाइनली भारत ने वो करके दिखाया जिसका इंतजार था हर भारतीय को और वॉलीबॉल के इस पूरे मैच को जीत लिया उन्होंने। अब क्वार्टर फाइनल की तरफ आगे बढ़ेगी भारतीय मेन वॉलीबॉल टीम। तो सच में जब हम लोग को खेलते हुए देखते हैं तब समझ में आता है इनकी मेहनत, इनका डेडिकेशन कितना लंबा है, कितना गहरा है और इसके लिए सम्मान बढ़ जाता है उन एथलीट्स के लिए। और जो ये लोग खेलते हैं दोस्तों इनका भी इनका नाम होना चाहिए, इनको मान सम्मान ज्यादा मिलना चाहिए जो अभी उतना नहीं मिलता शायद। इसे इसके लिए जरूर देखिए, अपने दोस्तों को कहिए, बच्चों को कहिए, एशियन गेम्स में भारत जो परफॉर्म कर रहा है जरूर देखिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वो बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वो सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच और मेरी आवाज में आपको अगर खुशी समझ में आ रही है तो दोस्तों सही समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत ही खुशी की खबर है। एशियन गेम्स में महिलाओं में 4x400 मीटर रिले रेस में भारत ने जीत लिया है स्वर्ण पदक। जी हाँ, गोल्ड मेडल मिल चुका है भारत को, और इतना कमाल का परफॉर्मेंस है कि आप मतलब बहरेन की टीम भी थी, चाइना की टीम भी थी, श्रीलंका भी थी, और इतना अच्छा वो लोग सब खेलने वाले एथलीट्स हैं। और शुरू में सब लोग सोच रहे थे कि ठीक है भारत की टीम खेलने आ रही है ज़रूर, लेकिन एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा उम्मीदें कई बार नहीं रहती हैं, कई बार रहती भी हैं, लेकिन इस बार जो है कमाल करके दिखाया। पिछली बार सिल्वर मेडल मिला था विमेन में, विमेन 4x400 रिले रेस में, और इस बार तो गोल्ड अपने हाथ में उन्होंने लेकर दिखाया है। अगर आपको मेरे दोस्तों, मैं दोबारा कहूँगी, हाईलाइट ज़रूर देखिएगा, कितना कमाल का परफॉर्मेंस किया है, इतना फास्ट वो भागी हैं, किस तरह से चाइना के एथलीट जो सबसे नंबर वन पे चल रही थी उनको टेक ओवर किया है, उसके बाद अपनी गति को आगे बढ़ाती रही हैं लगातार। पीछे बहरेन की भी एथलीट थी जो लगातार आगे बढ़ रही थी, चाइना से भी आगे बढ़ रही थी, मगर जो भारत की एथलीट थी उन्होंने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, और किस तरीके से 400 मीटर सभी ने भागा और उसके बाद गोल्ड मेडल हासिल किया, ये एक देखने जैसी कला है। सच में बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। भारत की बेटियों ने इस बार कमाल ही करके दिखा दिया है, चाहे शूटिंग की बात हो, एथलेटिक्स की बात हो, या फिर बात हो कबड्डी की, या फिर बात हो क्रिकेट की। अगर गोल्ड मेडल ज्यादातर आए हैं तो इस बार महिलाओं ने ही दिलवाए हैं। तो देखिए क्या बात है ना, भारत की बेटियां आसमान भी छू रही हैं और साथ साथ जमीन पर रफ्तार जो है उनकी वो इतनी बढ़ती जा रही है कि उनको पकड़ना अब नामुमकिन है। चलिए भारती की बेटियों के नाम सुनते हैं अगला गाना। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सबसे बड़ा ज्ञान स्वयं को जानना है। मन का मंथन करें, विचारों को शुद्ध करें और आत्मा की शांति का अनुभव करें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पे। और दोस्तों एक और खुशखबरी आ रही है भारत के कंटिजेंट से। जी हाँ, मेन रिले रेस 4x400 मीटर में आ गया है एक और मेडल। भले एक मेडल की कीमत कई बार हमें लगता है इससे बेटर और मेडल मिले, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन था तो गोल्ड की पूरी आशा थी, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल मिला है भारत को, वो भी कमाल की परफॉर्मेंस के बाद ही मिला है। तो डेफिनेटली अप्रिशिएट करने जैसा है और भारत एथलेटिक्स में इस बार काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया था, अभी भारत के पास शुरू में मैंने आपको बताया था अब 6 गोल्ड हो चुके हैं, क्योंकि महिलाओं ने 4x400 मीटर रिले रेस में जीता है एक और गोल्ड, और भारत के पास मेडल की जो तालिका है वो बढ़ती ही जा रही है। साथ साथ अगर बात करें मेन 10,000 मीटर की या फिर मेन मैराथन की, और सबसे टफ एक गेम होता है, कौन सा सोचिएगा, कौन सा गेम होता है जो बहुत ही टफ होता है, जिसमें 10 खेल खेलने पड़ते हैं एक बार मेडल हासिल करने के लिए, वो गेम कौन सा होता है, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जाती हूँ। और इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा रेडियो मधुबन पर, हमारा नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। और कल हम अनाउंस करेंगे इसके विनर, कौन बताता है सही सवाल सही जवाब, वो हम बताएंगे कल शाम के शो में। तो सवाल फिर से सुन लीजिए, कौन सा एक खेल होता है जिसमें आपको एक मेडल जीतने के लिए 10 खेल खेलने पड़ते हैं, 10 अलग अलग गेम्स खेलने पड़ते हैं एक मेडल के लिए, कौन सा खेल है, नाम बताइएगा, मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा हमारे नंबर पर, यानी कि 9414151415 पर, 9414151415 पर। भारत की बेटियों की तारीफ आप भी कर रहे हैं, ऑनलाइन मैसेजेस भी हमें मिल रहे हैं, डेफिनेटली अप्रिसिएशन डिजर्व करती हैं भारत की बेटियों को, सलाम करते हैं हम सभी एथलीट्स को, सभी स्पोर्ट्स पर्सन को सलाम करते हैं, और उन्हें विश करते हैं कि आगे और मेहनत करते जाएं, बढ़ते जाएं, भारत का झंडा ऊंचा करते जाएं। फिलहाल लेते हैं इजाजत, रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वो क्या होता है?
1: अरे टिकू नहीं पता क्या? इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: उन्होंने राम जी का अवतार लेकर अत्याचारी रावण का वध करके संसार को बुराई से मुक्ति दिलाई। तो बोलो, भगवान श्री राम की
1: जय।
0: भगवान श्री राम की
1: जय।
2: जहांपना, काफी देर से महसूस कर रहा हूं कि आप लगातार कुछ सोच रहे हैं।
3: आप सही कह रहे हैं बिरबल, हम वाकई कुछ सोच रहे हैं।
2: क्या मैं जान सकता हूं जहांपना कि आप क्या सोच रहे हैं?
3: दरअसल हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं बिरबल, लेकिन आप कहीं नाराज ना हो जाएं इसलिए हम आपसे कुछ पूछ नहीं पा रहे। आप हमारे सलाहकार से पहले हमारे मित्र हैं। हम अपने सवाल से अपने मित्र को नाराज नहीं कर सकते।
2: अगर ऐसी बात है जहांपना, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके पूछे गए सवाल से मैं नाराज नहीं होऊंगा। आप निश्चिंत होकर अपनी बात कहें।
3: तो सुनिए बिरबल, हमें आपके दर्शन शास्त्र समझ नहीं आ रहे। हमारे मुताबिक आपके भगवान और हमारी स्थिति बिल्कुल एक सी है। हम हमेशा बुराई को हराने के लिए अपने सहायकों को देश के कोने कोने में भेजते हैं, क्योंकि हर जगह हमारा उपस्थित होना मुमकिन नहीं है। मगर आपके भगवान जिसने संसार बनाया है, वो तो हर बुराई को कुचलने के लिए स्वयं धरती पर आ जाते हैं। कभी राम तो कभी कृष्ण और कभी परशुराम बनके। ऐसा क्यों बिरबल? इतने शक्तिशाली, इतने ताकतवर होने के बावजूद आपके भगवान बुराई को खत्म करने के लिए अपने सहायकों को क्यों नहीं भेजते?
2: आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है जहांपना।
3: यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने ही शास्त्रों का इल्म नहीं?
2: नहीं जहांपना, ऐसा नहीं है।
3: लेकिन आपकी बातों से तो हमें यही महसूस हुआ बिरबल, और ये कहते हुए हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे दरबार के सबसे बेशकीमती रत्न को अपने ही धर्म की पूरी जानकारी नहीं। हम आपको हमारे सवाल का जवाब देने के लिए 2 दिन का वक्त देते हैं। अगर आप हमें सही जवाब नहीं दे पाए तो मजबूरन हमें आपसे विशेष सलाहकार का पद वापस लेना होगा।

0: क्या बात है जहाँ पना? आपके माथे की सिलवटें बता रही हैं कि आप परेशान हैं।
1: बेगम, आज हमने बिरबल से उनके धर्म को लेकर एक सवाल किया था जिसका जवाब वो नहीं दे पाए।
0: हम सुन रहे हैं जहाँ पना।
1: आपको तो पता ही है बेगम साहिबा कि बिरबल हमारे सबसे खास सलाहकार हैं। जिस ओहदे पर वो हैं, उस ओहदे पर रहने वाले हर शख्स को अपने धर्म का इल्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश सिर्फ बातों और कानून व्यवस्था से नहीं बल्कि धार्मिक गतिविधियों से भी चलता है, और धार्मिक गतिविधियों को सही ढंग से वही चला सकता है जिसे उसका इल्म हो। इसलिए हमारे सलाहकार को अपने धर्म का इल्म होना जरूरी है।
0: आप चिंता ना करें बादशाह हुजूर, बिरबल बहुत तेज बुद्धि के हैं। आज नहीं तो कल वो आपके सवाल का जवाब जरूर दे देंगे।
1: अगर नहीं दे पाए तो उन्हें विशेष सलाहकार के पद से हमें हटाना होगा बेगम। आज शहजादे को गर्मी कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही है। आप उन्हें लोरी सुनाइए, हम पंखा चलाते हैं। आइए।
2: आपके पास तो हर सवाल का जवाब होता है स्वामी, फिर आपने महाराज को उनके सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया?
3: मैं भी एक साधारण मनुष्य ही हूँ उर्वशी, उस वक्त मुझे जहाँ पना के सवाल का जवाब नहीं सूझा। सच कहूँ तो मैं अब तक उनके सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पाया कि संसार बनाने वाले भगवान संसार की बुराई को खत्म करने स्वयं क्यों चले आते हैं, जबकि इस काम के लिए वे अपने विशेष सहायकों को भी भेज सकते हैं।
2: आप चिंता न करें स्वामी, आपको जल्द ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हमें आप पर पूरा भरोसा है। रात बहुत हो चुकी है, चलकर आराम कर लीजिए।
3: नहीं उर्वशी, जब तक मुझे जहां पना के सवाल का जवाब नहीं मिल जाता मैं सो नहीं पाऊंगा। मैं जरा बाहर टहल कर आता हूँ।

0: बिरबल, क्या आपको हमारे सवाल का जवाब मिला?
1: मुझे पूरी उम्मीद है जहांपनाह, आपकी तय सीमा से पहले ही मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे दूंगा कि मुसीबत के समय भगवान हमारी रक्षा करने स्वयं धरती पर आने की बजाय अपने सहायकों को ही क्यों नहीं भेज देते।
0: हमें भी आपकी उम्मीद पर उम्मीद है बिरबल। ये क्या सुलोचना शहजादे को लेकर नाव के किनारे पर क्यों खड़ी है? क्या इसे इतनी भी समझ नहीं है कि बहता हुआ पानी कभी भी नाव को झटका दे सकता है और ऐसे में कुछ भी हो सकता है? शहजादे!
2: हे भगवान, ये क्या हुआ?
1: जहाँपनाह रुकिए, रुकिए जहाँपनाह!

0: शहजादे, शहजादे।
1: जहांपनाह, आप ठीक तो हैं?
0: ये क्या बेगम, शहजादे आपके पास है तो ये कौन है? गुड्डा, ये क्या सुलझ? शहजादे की जगह गुड्डा पकड़ा हुआ था तुमने? हमें जल्दी से इसका मतलब समझाइए, वरना हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती।
2: इसे माफ कर दीजिए जहांपनाह, इसमें सुलोचना का कोई कसूर नहीं। इसने जो भी किया मेरे कहने पे किया।
0: अब तो हमारी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई है ये जानने के लिए बिरबल कि आपने हमारे साथ ऐसा बेहुदा मजाक क्यों किया।
2: ये मजाक नहीं है जहांपनाह, बल्कि अपनी बात आपके सामने बेहतर तरीके से रखने की ये मेरी सिर्फ एक कोशिश भर है।
0: साफ साफ बताओ बिरबल, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो?
2: जहांपनाह, आप जानना चाहते थे ना कि भगवान हम लोगों को मुश्किल में देखकर अपने सहायकों को भेजने की बजाय हमारी रक्षा करने स्वयं क्यों चले आते हैं? मैं आपको बस वही बात समझाने की कोशिश कर रहा था।
0: तो ये बात है तो ठीक है बिरबल, हमें खुलकर अपनी बात समझाइए।
2: जहांपनाह, जिस प्रकार आप अपने बच्चे को खतरे में देखकर उसे बचाने के लिए स्वयं दौड़ पड़े, मैंने

0: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: किसी को मजदूर चाहिए क्या? मजदूर
1: मैं सारा काम कर सकता हूँ,
2: क्या कोई काम देगा हमें?
3: तुम लोग कौन हो बच्चों?
0: हम तीनों अनाथ भाई हैं।
1: इसीलिए गांव-गांव घूम रहे हैं, शायद कोई दयालु मालिक मिल जाए तो फिर हम उसके लिए काम कर सके
2: हैं, और उसे अपने पिता की तरह आदर और सम्मान भी देते हैं।
0: हाँ
3: अच्छा अच्छा, तो आज से मैं तुम्हारा धर्म पिता होऊंगा।
4: वो तीनों भाई तैयार हो गए और उस बूढ़े के साथ चल पड़े। अंधेरे जंगल के अंदर से त्रिभुजाकार मैदान को पार करते हुए उन्हें मिला एक बड़ा मकान जो बहुत ही सुंदर था। पास ही था एक बगीचा और उसमें रंग बिरंगे फूल। एक सुंदर सी लड़की उस बगीचे में पानी दे रही थी।
0: अरे वाह, कितनी सुंदर है। अगर ऐसी लड़की से मेरी शादी हो जाती और मेरे पास कुछ गाय भी होती तो फिर हम अपनी जिंदगी सुख से बिताते।
3: तुम्हारे मन की इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ।
0: सच में आप पूरा कर सकते हैं?
3: तुम लोग मेरे धर्म पुत्र हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता?
4: बूढ़े ने आगे जाकर उस लड़की से बात की।
3: तुम्हारी किस्मत अच्छी है। वो लड़की तैयार है?
0: तैयार है।
3: चलो चलो, आज ही तुम लोगों की शादी करवाऊंगा। बस तुम लोग सच्चाई का रास्ता मत भूलना बेटा। हाँ,
4: बूढ़े ने जैसा कहा वैसा ही किया। शादी धूमधाम से हो गई। अब रास्ते पर आगे बढ़े मझला भाई, छोटा भाई और वो बूढ़ा।
1: वाह, अब जाकर भैया के सुख के दिन शुरू हो गए। हमारा क्या होगा कौन जाने।
3: अगर किस्मत में हुआ तो तुम्हें भी सब मिलेगा।
4: वो बूढ़ा आदमी दोनों भाई को लेकर आगे बढ़ता गया।
1: बाबा बाबा, मैं और नहीं चल सकता हूँ बाबा।
3: ठीक है ठीक है, वो वहाँ जो रोशनी जल रही है उसी घर में जाकर हम आश्रय लेंगे। हाँ।
1: वाह, कितना बड़ा और सुंदर मकान है।
2: हाँ, मकान के बाहर तालाब भी है। और वो क्या है?
3: आटा चक्की।
1: आह, काश ऐसी आटा चक्की और तालाब हमारे भी होते।
3: कोई घर में है क्या?
1: वाह, कितनी सुंदर है। अगर ऐसी लड़की मेरी बीवी होती तो फिर मैं ही आटा चक्की में गेहूँ पीसता और खाते पीते सुख के दिन उसके साथ बिताता।
5: जी कहिए।
3: हमें आज रात के लिए आश्रय और कुछ खाना चाहिए।
5: अच्छा ठीक है, आइए।
1: बाबा बाबा, क्या मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता? दरअसल वो
3: अपने इस पुत्र के साथ, क्या मैं तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ बेटी? अगर और हाँ सुनो, कभी भी सच्चाई का रास्ता मत भूलना।
4: इसी तरह बड़े भाई की तरह ही मझले भाई की भी शादी हो गई और आखिर में सिर्फ धर्म पिता और छोटा भाई सफर में आगे बढ़े।
2: आहा, कितना सुंदर गांव है, कितनी शांति है चारों ओर। ऐसा लग रहा है कि काश ऐसे ही किसी गांव में एक छोटा सा घर बनाकर मैं रह जाता।
3: हाँ, यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, पर बहुत ही ज्यादा सुखी हैं।
2: मैं भी ऐसे ही सुखी होना चाहता हूँ पिताजी। बड़ा आदमी बनकर क्या होगा अगर शांति ही ना रहे।
3: वाह वाह वाह, ठीक है ठीक है।
4: उसी वक्त वहाँ झोपड़ी से हाथों में घड़ा लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की बाहर आई। छोटे भाई की नजर उस पर पड़ी।
2: देखिए पिताजी, वो लड़की कितनी सुंदर है, अगर ऐसी लड़की मेरी पत्नी बन जाती तो।
3: लेकिन ये तो बहुत ही गरीब है।
2: उससे क्या, हम दोनों मिलकर अपना गुजारा तो आराम से कर लेंगे पिताजी, और कोई कमी भी नहीं होगी।
3: अच्छा अच्छा, तो फिर चलो मेरे साथ। बेटी थोड़ा पानी दोगी? बेटी बहुत प्यास लगी है।
5: आप दलान में बैठिए बूढ़े बाबा, मैं अभी लाती हूँ। ठीक है।

0: अब जाकर प्यास मिटी बेटी। तुम्हारा नाम क्या है?
1: मैं यशोदा हूँ।
0: बेटी यशोदा, मैं इस लड़के का धर्म पिता हूँ। मेरे बेटे को तुम बहुत पसंद आ गई हो बेटी। अगर तुम चाहो तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ।
1: पिताजी।
0: हमेशा खुश रहो बेटी यशोदा, खुश रहो। और तुम सुनो बेटा, सच्चाई की राह कभी मत भूलना, समझे? अब मैं चलता हूँ।
2: इसके बाद कुछ साल बीत गए और इन सालों में बड़ा भाई बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया और वो मोहरे जमा करने लगा। मझला भाई भी अपने धंधे में फलने फूलने लगा और छोटा भाई कष्ट से अपना निर्वाह किया करता, पर जो कुछ भी उसे मिलते उससे वो खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहा था। कुछ समय बाद वो बूढ़ा आदमी तीर्थ से लौटा और अपने तीनों बेटे को देखना चाहा।

0: मालिक जरा दया करिए और इस बेचारे बूढ़े को कुछ खाने को दे दीजिए।
1: तू बूढ़ा कहाँ है? अगर चाहे तो तू कुछ काम करके अपना पेट भर सकता है। चल भाग यहाँ से, भाग।
0: नया घर बनवाया है, भंडार में पूरा सामान भरा पड़ा है, चावल की बोरियाँ, अनगिनत रुपए, फिर भी एक मुट्ठी भीख नहीं दे पाए।
2: थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वहाँ से कुछ ऊंचाई पर जाकर बड़े भाई के घर द्वार को अच्छे से देखने लगा, तभी सब जलकर राख हो गया।
1: हाय हाय, ये क्या हो गया?
3: पानी पानी पानी पानी
2: पानी। उसके बाद वो मझले भाई के पास गया।
4: सुनो, अच्छे से बोरियो का मुंह सुनो, समझे?
0: बेटा, थोड़ा सा आटा दे दो, पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया है।
4: अरे हटो, तुम्हारे जैसे यहाँ बहुत आते जाते रहते हैं, अगर मैं सबको खिलाता रहा तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। जाओ जाओ, पता नहीं कहाँ से चले आते।
2: खाली हाथ वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। कुछ दूर जाकर उसने पहले की ही तरह देखा और फिर आग और धुएं से भर गई वो आटा चक्की।
3: बचाओ, बचाओ, बचाओ।
0: ओ प्यारे भले इंसान, कुछ खाने को है तो दे दो, पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया है बेटा।
5: अजी सुनती हो?
6: जी आई, बोलिए।
5: इन्हें घर में ले जाकर बिठाओ और कुछ खाने को दो।
6: अच्छा, आइए बाबा, अंदर आइए। बाबा, आपके कपड़े ना बिल्कुल फट चुके हैं, लीजिए ये पहन लीजिए।
5: ये क्या, आपके सीने पर क्या हुआ है?
0: ये पुराना घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, इसी घाव की वजह से ही मैं जल्दी ही मर जाऊंगा।
6: अरे ये क्या बात हुई, इस घाव को ठीक करने की कोई दवा नहीं है क्या?
0: है, पर दे सकने के बावजूद कोई नहीं देगा।
5: क्यों नहीं देगा, बताइए क्या दवा है, हम लोग देंगे।
0: ये काम बहुत ही कठिन है, अगर कोई मकान मालिक अपनी सारी चीजों के साथ अपना घर जलाकर उसकी राख मेरे शरीर पर छिड़क दे, तभी मेरा ये घाव सूखेगा।
5: हैं? क्या कहा? सुनो, तुम क्या कहती हो?
6: देखिए, थोड़ा दुख उठाकर हम दूसरा मकान तो बना लेंगे, लेकिन अगर एक इंसान मर जाए तो क्या हम उसे वापस ला पाएंगे?
5: हाँ, सही कह रही हो, तो चलो चलो चलो, सभी बाहर चलते हैं।
2: छोटे भाई ने अपने हाथों से घर में आग लगा दी, पूरा घर लहलहाता हुआ जल उठा। वहाँ पर खड़ा दिखाई दिया एक बड़ा विशाल मकान।
5: ये क्या देख रहा हूँ मैं? बूढ़े बाबा, ये कैसे हुआ, आपका घाव?
0: नहीं है। बेटा, मैं तुम लोगों का वही धर्म पिता हूँ।
5: बाबा,
0: तुम तीनों में सिर्फ एकमात्र तू ही है जिसने सच्चाई की राह नहीं छोड़ी। सुखी रहो, सुखी रहो।

0: दी एल्स एंड शूमेकर। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक जूता बनाने वाला और उसकी बीवी रहते थे। वो अपना गुजारा करने के लिए नए जूते बनाकर बाजार में बेचने का काम करता था। इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी वो बहुत ही कम पैसे कमा पाता था। जैसे तैसे वो दोनों अपना गुजारा कर लेते थे। फिर वो दिन भी आ गया जब उसके पास नए जूते बनाने के लिए चमड़ा खरीदने के वास्ते पैसे ही नहीं बचे। सिर्फ आखिरी एक चमड़े का टुकड़ा जूता बनाने के लिए उसके पास बचा था।
1: मुझे लगता है मेरा यह आखिरी मौका होगा जूता बनाने का। मैं इस चमड़े से एक शानदार जूता बनाऊंगा।
0: और हमेशा की तरह वो जुट गया जूता बनाने के लिए और बड़ी सफाई से अपना काम करने लगा। शाम ढलते ही उसने कटाई का काम पूरा किया और फिर जूते सिलने लगा। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए उसने जूते को टेबल पर रख दिया।
1: आज के लिए बस इतना काम काफी है, बाकी बचा काम मैं कल पूरा कर दूंगा।
0: फिर उसने अपना वर्कशॉप बंद किया और घर की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन सुबह वो जल्दी उठा और अपने काम के लिए तैयार हो गया।
1: सुनो, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज मेरे काम का वर्कशॉप में आखिरी दिन है, न जाने अब आगे गुजारा कैसे होगा।
2: आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इस कठिन समय से भी निकल जाएंगे। आप ऐसे हिम्मत मत हारिए।
0: कारीगर जानता था कि उसकी बीवी की ये हिम्मत बांधने वाली बातें अब किसी काम की नहीं। फिर भी वो मुस्कुराया और काम पर निकल पड़ा। पर जब उसने वर्कशॉप पहुंचकर दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गया। उसने देखा कि टेबल पर बहुत ही बढ़िया तैयार जूते पड़े थे। ये वही जगह थी जहाँ उसने अधूरा काम छोड़ रखा था।
1: मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मुझे अब ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। मैं अभी बाजार जाता हूँ और ये शानदार जूते बेच कर आता हूँ।
0: वो तुरंत बाजार गया और जूते अच्छे दाम में बेच दिए और फिर उन्हीं पैसों से उसने जूते बनाने के लिए नया चमड़ा खरीदा। वर्कशॉप में आकर कारीगर ने और जूते बनाने के लिए नए चमड़े पर काटने का काम शुरू किया। और जैसे ही शाम हो गई, उसने अपना अधूरा काम वैसे ही रख कर वो घर के लिए निकल पड़ा। खाना खाते वक्त उसने अपनी बीवी को दिन में घटी घटना के बारे में बताया।
2: मैंने कहा था ना आपसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखा, आपको मेहनत का फल मिल गया। ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं।
0: अगले दिन जब वो वर्कशॉप पहुंचा तो वो दंग रह गया, क्योंकि वहाँ एक नहीं कई जोड़े खूबसूरत जूते तैयार पड़े थे, उसी जगह जहाँ उसने कल रात चमड़ा काट कर रखा हुआ था।
1: ये तो चमत्कार हो गया। इतने सालों से कड़ी मेहनत करने के बाद भी मैं इतने सारे जूते नहीं बना पाता था, पर आज तो देखो गजब हो गया। मुझे लगता है जरूर कोई मेरी मदद कर रहा है।
0: वो फिर एक बार बाजार गया और वो जूते बेचकर और चमड़ा खरीद कर लाया। इस बार उसने ज्यादा चमड़े की कटिंग की और वैसे ही टेबल पर रख कर घर चला गया। अगले दिन सुबह उसने फिर से देखा कि कई जूते उसका इंतजार कर रहे थे। वहाँ सैंडल्स थे, बूट्स थे, बैले शूज, क्लॉग्स, ब्रोग्स और मोकासिन, वो भी अलग अलग रंगों में।
1: ओहो, क्या लाजवाब शानदार जूते हैं। जरूर कोई नेक बंदा अच्छी नियत से मेरी मदद कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी पैसे वाला बन जाऊंगा। हमारी लाइफ सेट हो जाएगी।
0: कारीगर ने फिर से चमड़ा कटिंग करके टेबल पर रख दिया ताकि कोई आकर उसके बढ़िया जूते बनाए। ऐसा कई रोज चलता रहा। कारीगर को हर सुबह वर्कशॉप में नए जूते तैयार किए हुए मिलते थे और जल्द ही हर जगह उसके बनाए हुए जूतों की तारीफ होने लगी। वो जाना माना कारीगर बन गया। फिर उसने रहने के लिए एक शानदार घर बनाया।
2: देखा कैसे हमारी जिंदगी बदल गई? सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।
1: हाँ, तुम सही कहती हो। तुमने हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाई है और इसलिए आज हम खुश हैं।
2: हाँ, और हमें उसे नहीं भूलना चाहिए जो हमारी मदद कर रहा है। हमें पता लगाना होगा कि वो है कौन, ताकि हम उसका शुक्रिया अदा कर सकें।
1: पर मेरे पहुंचने से पहले ही वो चले जाता है, हम पता कैसे लगाएंगे?
2: कल हम उसको देखने के लिए वर्कशॉप में छुप कर बैठेंगे।
1: हाँ, ये सही रहेगा। मैं भी तो देखूं आखिर हमारी मदद कौन कर रहा है।
0: अगले दिन रोज की तरह कारीगर अपने काम में व्यस्त था और शाम होने पर उसकी बीवी वर्कशॉप में आ गई।
2: चलो अब हम छुप जाते हैं।
1: हाँ, हम उस कमरे के पीछे छुप जाते हैं।
0: फिर वो दोनों एक कमरे में छिप गए जो पीछे की तरफ था और इंतजार करने लगे। रात में उन्हें किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी जो बहुत ही सुरीली थी। उन्होंने कमरे में झांक कर देखा तो वो हैरान रह गए। वहाँ दो नटखट से बौने पुराने फटे कपड़ों में खिड़की से अंदर आ रहे थे। उन्होंने खिड़की से अंदर छलांग लगा दी और फिर दोनों बौने गुनगुनाते हुए हवा में नाचने झूमने लगे। कारीगर ने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था।
3: तरप तरप तरा, तरप तरा, तरप तरा।
0: मस्ती में झूमने के बाद दोनों बौने जूते बनाने का काम करने लगे। उन्होंने कटाई, सिलना, रंग और सजावट से एक से बढ़कर एक जूते बनाए। कारीगर और उसकी बीवी ये सब नजारा देखकर बहुत खुश हुए। यही नहीं, कारीगर तो उनके जूते बनाने की कला से एकदम हैरान रह गया। आखिरकार बौनों ने जूते बनाने का काम खत्म करके खिड़की से बाहर छलांग लगाई और गायब हो गए।
2: ये तो जादुई बौने थे, यही रोज आकर हमारी मदद कर रहे थे। हमें उनके लिए कुछ खास करना चाहिए।
1: हाँ क्यों नहीं, पर हम भला उनके लिए क्या कर सकते हैं?
2: देखा नहीं आपने, उनके कपड़े कितने फटे और पुराने थे। हम उन दोनों को कुछ कपड़े दे सकते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं उनके लिए नए जूते बनाऊंगा
2: और मैं उनके लिए बढ़िया से कपड़े बनाऊंगी।
0: फिर उन दोनों ने बौनों के लिए अपने अपने तरीके से बढ़िया उपहार बनाने का काम शुरू किया। एक हफ्ते बाद कारीगर ने दो जोड़े नन्हे जूते बनाए और उसकी बीवी ने दो नन्हे जैकेट, दो कमीज और गर्म कपड़े से पैंट बनाई।
2: ये जूते और कपड़े उन प्यारे बौनों पर बहुत ही अच्छे लगेंगे। उन दोनों को इन कपड़ों में देख कर मुझे बहुत खुशी होगी।
1: हाँ, कल क्रिसमस का त्योहार भी है और इसलिए हम अपने वर्कशॉप को सजाएंगे और उनके लिए बनाए हुए तोहफे को टेबल पर रख देंगे।
0: दोनों ने मिलकर वर्कशॉप को बड़ी खूबसूरती से सजाया और टेबल पर वो तोहफे रख दिए। जैसे ही रात हो गई, उनको बौनों की आवाज सुनाई दी और हमेशा की तरह उन बौनों ने खिड़की से प्रवेश किया और खुशी से नाचने झूमने लगे। पर जब उनकी नजर टेबल पर पड़ी तो दोनों हक्का बक्का रह गए।
4: लगता है अपने लिए आज काम ही नहीं है।
5: काम की छोड़ो, ये देखो यहाँ कितने बढ़िया कपड़े और जूते पड़े हैं।
4: हाँ, और रंग बिरंगी भी हैं।
5: लगता है वो कारीगर हमारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
4: लगता है वो हमारे काम से खुश हैं।
5: चलो पहन के देखते हैं।
0: उन बौनों ने वो कपड़े और जूते पहन लिए जो उन पर जच रहे थे।
4: तुम तो सुपर से भी ऊपर लग रहे हो।
5: और तुम झकास लग रहे हो। ये कपड़े वाकई में शानदार हैं।
4: और ये जूते भी बहुत प्यारे हैं। मुझे तो नाचने और झूमने का मन कर रहा है।
5: तो शुभ काम में देरी कैसी।
0: और वो दोनों मस्त में झूमने गाने लगे। कारीगर और उसकी बीवी को ये नजारा देखकर बहुत खुशी हुई कि उन बौनों को उनके कपड़े और जूते पसंद आ गए। कुछ देर बाद वो दोनों बौने खिड़की से छलांग लगाकर रात के अंधेरे में गायब हो गए। कारीगर और उसकी बीवी अपने कमरे से बाहर आ गए।
2: ओह, देखा, कितनी अच्छी बात है कि उनको हमारे तोहफे पसंद आए।
1: वाह क्या बात है, अब हम भी मजे से जश्न मनाएंगे। चलो अब घर चलते हैं।
0: अगले दिन सुबह क्रिसमस का त्योहार था। कारीगर ने फिर चमड़ा काटना शुरू किया और रात को उन बौनों के लिए टेबल पर छोड़ गया। लेकिन जब सुबह कारीगर अपने वर्कशॉप लौटा तो देखा कि वहाँ कोई भी जूता नहीं था। उसने घर लौटकर अपनी बीवी से सारी बातें बताई।
1: वो जादुई बौने तो कल आए ही नहीं और वहाँ जूते भी नहीं थे।
2: कोई बात नहीं, उन दोनों ने हमारी काफी मदद की। अब आपको पहले जैसे खुद कड़ी मेहनत करनी चाहिए।
1: हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। इतने दिनों में मैंने सीख लिया है कि लोगों को क्या चाहिए और कैसे जूते पसंद हैं। देखना, मैं अब बढ़िया से बढ़िया जूते बनाऊंगा।
0: और एक बार फिर कारीगर जुट गया जूते बनाने में जैसे वो पहले बनाता था और उसने वैसे ही बढ़िया और शानदार जूते बनाए जैसे वो जादुई बौने बनाते थे।
6: तो बेहतरीन कुछ कहानियों के साथ आज की खूबसूरत शाम उड़ान में आप सुनते रहे। तो ये खूबसूरत शाम थी जहाँ पर कहानियाँ थी, कुछ बेहतरीन गीत थे। तो चलिए कल मिलने का वादा करते हुए कहना चाहती हूँ गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, यानी माय विलेज माय एरिया। क्योंकि जिस गांव और जिस अंचल में रहते पले बड़े और यहां तक पहुंचे, वो गांव और अंचल को कभी नहीं भूल पाते। वो अपनापन होता है, स्वर्ग जैसे लगता है। और सरकार का जो मंशा है, आसपास गांव में जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, सिर्फ उनका पास क्यों सीमित रहे? सब तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच, एक स्टेज देता है। क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं। और आपको विदित होगा, ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय, दोनों विद्यालय का मिलित सहयोग से बच्चों का प्रतिभा को, बच्चों का विकास को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज आबरोड ब्लॉक से सीधा पहुंचे पिंडोड़ा ब्लॉक में, और सनवाड़ा आर में पहुंचे। आर मन में राजी खुशी रहने वाले सभी आर है, तो आज राजी खुशी कराएंगे, इस कार्यक्रम को सजाएंगे बारी बारी। और पहला प्रस्तुति सुनने का इंतजार कर रहे हमारा सभी श्रोता मित्र लिसनर, बच्चों का हुनर को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज पहुंचे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सानवाड़ा आर में। तो पहला प्रस्तुति एक वार्म अप कराने के लिए मैं सर को, जो कि संस्कृत का प्रभारी है और संगीत में रुचि रखते हैं, उनका आवाज सुनकर बच्चे भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप सुनना लास्ट तक, कितना बच्चे क्या क्या प्रस्तुत लेकर आए हैं। और वार्म अप कराने के लिए सर अपना परिचय दीजिए, हमारा श्रोता मित्र भी जानेंगे हाँ ये सर को हम जानते हैं।
1: धन्यवाद रेडियो मधुबन, आज आप हमारे विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनवाड़ा आर में पधारे हो, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन।
2: जी सर,
1: मैं इस विद्यालय में अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, मेरा नाम राजेंद्र टेलर है।
2: जी सर,
1: और इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मैं बढ़ चढ़कर विद्यार्थियों को प्रेरित भी करता हूँ, खुद भी भाग लेता हूँ।
2: अरे वाह।
1: तो एक सामूहिक गीत जो देशभक्ति गीत है,
2: जी सर,
1: उससे मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत आगाज करना चाहूंगा।
2: शुरू।
1: स्वयं अब जाग कर हमको

0: खोने का, बड़े बल राष्ट्र का जिससे वो करना मेल है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना, देश है अपना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और जगा दिए जो सोए हुए हैं उनको जगा दिए, और गीत के माध्यम से हम जगेंगे तो जग जगेगा, हम सोएंगे तो जग भी सो जाएगा। इसलिए इस गीत का जो मोटिवेशनल गीत है, सही में जो ध्यान से सुन रहे हैं उसको तो मजा आ रहा होगा, और हम जगेंगे तो सजग रहेंगे और देश भी सजेगा। हम जगेंगे देश सजेगा, तो सजबाज होकर हम चलेंगे। और आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम काल तक हम पहुंच रहे, जब आजादी का 100 साल 1947 में बनाए गए, बच्चे ही आगे और सर भी बच्चों को उमंगों साथ दे रहे हैं, और देशभक्ति का साथ साथ एक जनहित में एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सर को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रस्तुति के लिए।

0: माफ करा देने के लिए। और इसको ही आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ और छोटी सी परी गुड़िया है, वो भी आएगी, क्या प्रस्तुति करेगी वो सुनाएगी, उसका नाम का साथ सार का साथ ही।
1: मैं कक्षा 5 में पढ़ने वाली दीपिका हूँ। मैं एक आपके सामने गीत लेकर आने वाली हूँ, अगर गलती हो तो क्षमा करना।
0: सुनाओ।

0: मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
1: क्या बात, क्या बात, ताली बजा बच्ची के लिए। फिर से नाम बताओ।
0: मेरा नाम दीपिका है।
1: दीपिका, तो दीप प्रज्वलन कर दिया और दीपिका दीप जला, सबको सार ने दीप का बिना जागरूक होंगे नहीं, इसलिए वो जला ज्योति जगा दिए और दीपिका इस कार्यक्रम को सजाए। छोटी सी बच्ची परी है लेकिन कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, पूरा बुलंद आवाज से इसका श्रेय तो उनका सर को जाता है और उनका माता पिता को जब सुनेंगे, अरे ये हमारा दीपिका का आवाज, क्या वाह क्या वाह वाह वाह करेंगे सही में। और नामांकन में भी वृद्धि होगा, बच्चे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ इस तरह कार्यक्रम में भाग लेते। दीपिका को तो मानना पड़ेगा, कभी कंपटीशन कराएंगे तो दीपिका को याद करेंगे, है ना दीपिका? बहुत अच्छा, चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे। एकल गान के लिए हमारा पूरा शक्ति का साथ आएगा पांडव, लेकिन अल्प विराम का बाद।
2: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। माने आवे पिया जीरी हिचकी, मारो वादीलो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा दीपिका और सर पूरा उमंग उत्साह बढ़ा दिए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अगला कड़ी में और एक छात्र तो कौन सा क्लास के और कहाँ से अपना परिचय देंगे।
1: मैं कक्षा 11 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम कल्याण सिंह राणावत है। मैं आपके सामने एक प्रस्तुति लेके आया हूँ। मैं एक माँ के ऊपर सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ।
0: बाबा माँ का बराबर कोई नहीं कर सकता। माँ माँ मतलब भारत माँ और हमारे घर में भी माँ और माँ का तुलना किससे कर नहीं सकते लेकिन इतना अपरंपर है। चलिए और एक प्रस्तुति हमारा माँ का बराबर।
1: ओ जीना जीना जीना रे उड़ा गुलार माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना जीना रे उड़ा गुलार माई तेरी चुनरिया लहराई। रंग

0: जब मुझ पे उठा सवाल, माही तेरे चुनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हुमा। एक दिन चमकूंगा मैं तो तेरा सितारा हुमा। माई रे तेरा सितारा हुमा।
1: क्या बात, क्या बात। सही में माँ बाप भगवान तुल्य होते हैं। भले सबको भूलो, लेकिन माँ बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। चाहे भारत माँ हो, चाहे देश हमारा माँ हो, और अपना माँ कभी भूलना नहीं चाहिए। उनका अवदान, उनका त्याग, उनका तपस्या हमारा जीवन में बहुत कुछ काम में आता है। तो इस गीत का माध्यम से, सीख भरी गीत का माध्यम से हमें बहुत कुछ सुनने को मिला। इस कड़ी में ही एकल के बाद डबल कविता प्रस्तुत होगा अभी, और नाम का साथ बताएंगे। कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, सबका सामने। इतना बच्चे, फिर भी छोटी बच्ची कौन सा क्लास के?
2: पांचवी,
1: फिफ्थ क्लास। नाम बोलना।
2: मेरा नाम राजश्री है, मैं कक्षा पांच में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने एक कविता सुनाना चाहती हूँ, गलती हो तो क्षमा।
1: कौन रखा नाम राजश्री?
2: पापा ने।
1: भाई पापा को कैसे बोलेंगे, माँ का गीत सब तो गाए, लेकिन हमारा बच्ची बोला मेरा पापा कम नहीं है। माँ का गीत सभी तो गाए, लेकिन पापा पापा होते है ना। पापा घर में नहीं होते तो पैसा नहीं होता, पापा घर में नहीं होते तो हमको बाजार में घुमाने के लिए कौन लेगा, खर्ची कौन देगा, पापा देते ना। इसलिए पापा को भी भूलना नहीं चाहिए। पापा घर का पूरा मुरब्बी है, मुखिया ना। माँ मुखिया, कौन मुखिया है घर के? पापा ना बड़े ना माँ बड़े होते, पापा है ना। पापा कमाते पापा कमाते और मम्मी खर्च करते। चलिए राजश्री का गीत सुनाएगी, सुना।
2: हे भारत के राम, जागो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। सो धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज दरबार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जागो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की बेरी बज रही है, उठो मौन निंद्रा, त्यागो पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र। जागो हे भारत के राम, जागो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ।
1: जगाने के लिए आया, साहब ने पहले जगा दिया और बच्चे तो जग गए। जगना चाहिए, और जो जग गए उसके लिए सवेरा है, जो जग गए उनके लिए नया सवेरा है, जो सोया है वो खोया है। इसलिए जो जगेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो रोएगा वो खोएगा। इसलिए जगना है और सबको जगाना है, खुद जगकर दूसरों को भी जगाना है। बहुत अच्छा गीत, और माँ बाप का भी महिमा होता है। तो इस कार्यक्रम को लेते हुए और एक एकल गान तो सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

0: चलिए ब्रेक का पहले हम सुन रहे थे छोटी सी परी अपना गीत को सुनाए, बहुत अच्छा लगा। इसको आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए दो छात्रा उपस्थित है, वो भी अपना परिचय का साथ नाम का साथ बताएंगे और क्या प्रस्तुत करेंगे वो सुनाएंगे।
1: हम दोनों कक्षा 6 में पढ़ती है, हमारा नाम मानसी और भव्या है। हम आपके सामने एक कविता सुनाने आए हैं।

0: जन्माष्टमी का पर्व मनाए, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की।
1: छोटी सी कविता है लेकिन उसमें बहुत सार है, क्योंकि नेक्स्ट टू गॉड कहते कृष्ण का, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, और कृष्ण का देश का माँ का बाप का सबका महिमा हो रहा है। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ दो छात्रा है तो उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम को सजाने के लिए।
2: मैं कक्षा 6 की छात्रा, मेरा नाम कन्या और छाया कुमारी है। हम दोनों एक छोटा सा संगीत सुनाना चाहती हूँ।

0: गोपाल।
1: चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और सभी का आवाज में जो दम है, मधुर आवाज है, कोई प्रस्तुति नहीं था, अचानक में आए, कोई सूचना नहीं था, फिर भी बच्चे अचानक में एवर रेडी थे बच्चे। ये कम बात नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं था, फिर भी बच्चे अपना आवाज को दिए, इसलिए धन्यवाद देते। और इसका श्रेय तो संस्था को जाता है, संस्था प्रधान, सभी विद्यालय के बच्चों को, माता पिता को भी जाता है, क्योंकि बच्चों को इतना उमंग उत्साह, उनको सब कुछ देते माँ बाप, खुद नहीं खाकर बच्चों को खिलाते हैं, खुद नहीं पहनते बच्चों को पहनाते हैं, चप्पल खुद नहीं पहनते माँ बाप, फिर बच्चों के लिए नया नया सब चीज देते हैं, इसलिए माँ बाप को भी धन्यवाद, इतना उमंग उत्साह देकर विद्यालय में भेजते हैं। और उनका हुनर, उनका जो विशेषता को आज प्रस्तुतिकरण रेडियो मधुबन का माध्यम से हो रहा है, इस कड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ और एक प्रस्तुति को लेकर आए हैं। तो कौन हुए होनहार, स्वर्ग में एक सीट खाली, जैसे रेडियो में एक सीट खाली के लिए आ जाओ, बड़े बच्चे भी आए हैं। परिया, तो अपना नाम और कौन सा क्लास और कहाँ से?
2: मैं कक्षा 11th की छात्रा, मेरा नाम मानसु कुंवर है।
3: मैं कक्षा 11th की छात्रा, मेरा नाम जसवंत कुंवर है।
2: हम दोनों एक प्रस्तुति आपके सामने रख रहे हैं, गलती हो तो क्षमा करें।

0: सच्चा वीर, वीर तो सब बनते लेकिन सच्चा वीर, सच्चा वीर सदा, एक दिन सच्चा नहीं, सदा सच्चा वीर चाहिए। वीर तो बहुत है लेकिन सच्चा वीर भी होना चाहिए, और सच्चा भी एक दिन के लिए नहीं, सदा। और ये कौन बना पाएगा? माँ, माँ के पास इतना शक्ति है। बाप भी सहयोग देता है लेकिन माँ मेकर है, माँ को ही क्रिएटर कहते हैं, जैसे गॉड क्रिएटर है, जन्मदाता। तो माँ का अवदान और क्रिएटर है, और ऐसे सच्चा सदा वीर है। तो इस गीत के माध्यम से मैं सुने, तो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं तुम बताओ?
1: मैं पुलिस बनना चाहती हूँ।
0: देखो बहन बोला मैं पुलिस, भाई लोग आएगा तो जो डाकू गुंडागिरी करता है तो उनको कैसे संभालेंगे? आप तो लड़की है, वो तो लड़का है, उसके पास शक्ति है, और वो दादागिरी करेगा, तुम पुलिस होकर तो उसके सामने तो डर जाएगी।
1: कैसे डरेंगे, हमारे माँ ने हमको पहले से हिम्मत दे रखी है।
0: क्या बात, श्रोता मित्र सुन रहे हैं, कौन बोलता है भाई लड़का आगे बढ़ सकता है, लेकिन लड़का को भी सवार करने के लिए खराब करेगा, लड़का कोई भी हो तो उनका पास यदि हम सच्चे दिल से सच्चा वीर होंगे तो जरूर हम उसको क्या करेंगे, सम्मुखीन मैंने फेस कर सकते हैं। और ये बोला माँ का पालना लिए, माँ का दूध पिया है बोलते ना, तो वो सास रहेगा बहुत अच्छा। नेक्स्ट तुम क्या बनेगी? वो तो पुलिस बनेगी। तुम?
2: मैं सच्चा वीर के साथ भी मैं भी पुलिस बनना चाहूंगी।
0: सच्चा वीर मैंने रक्षा, सेल्फ, खुद को रक्षा करेंगे पहले, सेल्फ डिफेंस, इसके बाद दूसरों को भी रक्षा दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और दो छात्र उपस्थित है उनको भी सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद। लेकिन आप सब भूलना नहीं, ये आप सब सुन पा रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनवाड़ा।

0: क्या बात क्या बात, कितना सुंदर प्रस्तुति, और बच्चों को जो मौका मिला, ये मौका का तो चौका छक्का लगा रहे अपना अपना बात को, क्योंकि उनका दम है और उमंग है, सर मेरा ऐसे कहते कहते जोड़ते जा रहे। और इस कार्यक्रम में एक माला गुलदस्ता बन रहा, गुलदस्ता कैसे, आवाज का गुलदस्ता, जैसे गुलदस्ता में वेराइटी फूल होता है, कितना मजा आता है, तो आवाज का गुलदस्ता बन रहा है हमारा कार्यक्रम। और हमें खुशी है क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा और सामुदायिक के लिए, फॉर द रेडियो, ऑफ द रेडियो और बाय द रेडियो, रेडियो द्वारा रेडियो का बच्चे रेडियो में भाग ले रहे। चलो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए दो छात्र उपस्थित है, तो दो परी, तो नाम बताएंगे, अभी चेहरा से स्माइलिंग आ रहा है ना, बताइए नाम।
1: मेरा नाम साक्षी कुंवर और मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ।
0: गुड।
1: मेरा नाम संजना माली और मैं भी कक्षा 11 की छात्रा।
0: वेरी गुड। साक्षी दृष्टा होकर हम सब सुन रहे, देख रहे और हमारा श्रोता भी साक्षी होकर देखा, क्या बात, साक्षी इस कार्यक्रम को सजाएगी। तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है साक्षी?
1: यहाँ पर नहीं है, वो बहुत दूर है मेरे से।
0: मेरा दूर से कोई पहुँच नहीं पाएगा, मैं ही पहुँच पाऊंगा, मेरा दोस्त का खुदा दोस्त होगा, इतना दूर कोई नहीं पहुंच पाएगा, तो भाई मेरा दोस्त यहीं पर नहीं रहता है, वो बहुत दूर ऊपर वाला ही, मुझे लगा ऊपर वाला ही उनका दोस्त होगा, क्योंकि ऐसे कोई बोला नहीं भाई मेरा दोस्त यहाँ पर कोई मिलेगा नहीं, मेरा दोस्त ऐसे होना चाहिए, मेरा जैसे होना चाहिए, मैं दोस्ती उससे करता हूँ जो मेरे से संस्कार मिलता है ना सच्ची। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तुम्हारा अच्छा फूल का नाम बताओ, कौन सा फ्लावर, कौन सा कलर का फूल आपको पसंद है? हाँ, गुलाब कितना देखने में मजा आता है, लेकिन वो उसका जीवन कांटे से भरपूर है, कांटे से पार होकर वो गुलाब बनता है, तो हमारा हर कदम में भी कांटे जैसे, लेकिन हमें उसे पार कर आगे गुलाब फूल जैसे बनना है। बहुत अच्छा, लाल कलर है गुलाब फूल और उनका विशेषता अधिक है। चलिए एक प्रस्तुति सुनेंगे।
2: आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के जंग, आज जंग की घड़ी के दुम्ब वार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड,

0: मौत अंत है नहीं तो मौत सिर्फ की उड़ रही है, जाके आसमान में दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। इस कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हमारा 3 छात्र है तो वो भी प्रस्तुति देने के लिए तैयार है। एक कदम हमारा है, 1000 कदम सभी का है और परमात्मा का है, तो एक कदम एक स्टेप हमारा है, शुरुआत हमारा से और समाप्ति दूसरों से। चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, हेलो नाम बताइए।
2: मेरा नाम दीक्षा कुंवर है।
3: मेरा नाम शिवानी कुंवर है।
4: मेरा नाम आस्था माली है।
1: क्या सुंदर सुंदर आवाज, कौन नाम रखा है उनको, धन्यवाद देंगे माता पिता को भी, सुंदर सुंदर नाम रखा है और इस नाम से उनका पहचान होता है, इनका नाम और आवाज से पहचानते, नाम नहीं बोलेगा तो आवाज भी सुनेगा, ये तो लता मंगेशकर का आवाज है, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही आवाज है, भले नहीं देखे उसका आवाज से पहचान होता है। आज इस कार्यक्रम में आवाज का दुनिया में आवाज से ही दीक्षा शिक्षा सभी का नाम पता चल रहा है। चलिए एक प्रस्तुत सुनेंगे, रेडी

0: सीखे,
1: हमें तो कुछ देना सीखे। विद्यालय हमें बहुत कुछ देता है, शिक्षक हमें बहुत कुछ देता है, देश तो देता ही, लेकिन प्रेजेंट में साक्षात अभी माँ बाप देते हैं, रेडियो मधुबन वाले भी देते हैं, सभी देते हैं, उनके लिए तो कुछ देना चाहिए, है कि नहीं? माँ बाप देते हैं ना, देते कि नहीं? माँ बाप देते हैं।
0: हाँ।
1: क्या क्या देते हैं माँ? गरम गरम रोटी देते हैं ना, गरम गरम भोजन देते हैं, तो उनके लिए भी देंगे ना, रिटर्न देंगे? माँ बाप को कब देंगे?
0: बड़े होकर।
1: बड़े होकर पैसे कमाएंगे तब देंगे। वेरी गुड, भूलना नहीं माँ बाप को। बहुत अच्छा, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा चार छात्र आए, होवनहार बड़े बच्चे है, छोटे बच्चे से शुरू हुई और बड़े बच्चे से समाप्ति होगी। चलिए नाम बताइए।
2: मेरा नाम हवन कुमारी है, मैं 8वीं की छात्रा हूँ।
3: मेरा नाम पूनम कुंवर है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ।
4: मेरा नाम कृष्णा कुंवर है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ।
5: मेरा नाम पायल कुंवर है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ।
1: ये सब इतना आवाज है बुलंद से, गांव के बच्चे होकर शहरांचल बच्चों को भी टक्कर देंगे, इतना बुलंद आवाज। ये सब आवाज कहाँ से सीखे, कौन आपको प्रेरणा दिया?
4: हमारे माता पिता।
1: माता पिता और
3: हमारे माता
1: पिता,
3: हमारे अध्यापक जी।
1: अध्यापक जी,
5: हमारे माता पिता,
1: माता पिता सबसे,
4: माता पिता अध्यापक जी, हम दोनों ने दिए।
1: और खुद भी, जब खुद नहीं तो सार क्या करेंगे? खुद को विसरे जाना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, लगन होना चाहिए। चलिए क्या प्रस्तुति सुनाएंगे? सुनाएंगे सभी, ये अंतिम प्रस्तुति होगी।

0: इंदिरा सिंह सपूत लाडला वारा मुंडा मोरिया गाओ गाओ हर गली गली में मजद आसान हो इन पर वारा प्राण हो आदरती हिंदवाणी आदरती हिंदुस्तानी।
1: धन्यवाद
2: धन्यवाद के लिए धन्यवाद सभी को नाम का साथ। इतना सुंदर प्रस्तुति कभी सोचा नहीं था, फिर भी बच्चे अचानक में प्रिपरेशन किए और तुरंत दिए, तुरंत दान माँ पुण्य, तो पुण्य अर्थ कर दिए जनहित में। और बच्चे सच्चे मन से अपना प्रस्तुतियां दिए। जब इस तरह कार्यक्रम सुनते हैं माता पिता अभिभावक बंधु और शिक्षकगण सभी ने बोलेगा ये तो हमारा बच्ची का आवाज है, तो बहुत कुछ उनको मिलेगा और नामांकन में भी वृद्धि होगा और स्कूल में बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इस तरह कार्यक्रम में। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। यह था खासकर राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय छानवाड़ा आर का और रेडियो मधुबन कार्यक्रम जो कि सामुदायिक रेडियो से सुन पा रहे। तो सभी को धन्यवाद देते हुए लेते हैं आप सबसे इजाजत। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल। अच्छा आभार।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए.
1: दिस इज ट्रिपल गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर गजल श्रीनिवास एंड यू आर लिसनिंग टू ब्रह्म कुमारीज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन. कीप लिसनिंग, कीप स्माइलिंग. थैंक यू रेडियो मधुबन.

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, की कैन हो। जी हाँ दोस्तों, दिन भर की भागदौड़, चाय की चुस्किया और ढलते हुए सूरज, जब शाम धीरे धीरे अपने से अंचल आंचल फैलाती है ना, तो दिल करता है कि थोड़ा ठहरे, कुछ पुरानी यादों को टटोले और सुरीले नगमों की छाव में बैठ जाए। कहते हैं कि शाम का समय दिल की बातें सुनने और कहने के लिए सबसे हसीन होता है। यहाँ तो आज की यह शाम भी हम सजाएंगे सदाबहार गीतों के नाम, उन गानों के नाम जो सीधे दिल को छू जाते हैं और चेहरे पर एक प्यारी सी खुशी और आ जाती है। आज के इस सफर में मेरे पास आपके लिए 50, 60, 70 गाने नहीं है, 50 और 60 और 70 के दशक के कुछ ऐसे नायाब नगमे हैं जिन्हें सुनकर आपको अपनी पुरानी हंसी, मुलाकातें और वो मासूम दिन याद आ जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, जी हाँ, अपनी चाय की प्याली हाथ में लीजिए, खिड़की के पास बैठिए और बहने दीजिए संगीत के उस मखमली से आवाज़। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त केवल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आपका अपना पसंदीदा शो खुशी के नगमे, दिल की बात है। जी हाँ, तो आज के सफर की हम शुरुआत करते हैं, आइए सफर का आगाज करते हैं बेहद ही खूबसूरत से प्यारे से नगमे के साथ। तो सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

धड़क रही है दाई आंख, ये अच्छा है सगुन। धड़क रही है दाई आंख, ये अच्छा है सगुन।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा न करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: वेलकम बैक दोस्तों। और अभी हमने जो गाना सुना, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। जी हाँ दोस्तों, ये गाना अभी हमने जो सुना है नौकरी ही मूवी से गाना है। नौकरी मूवी का ही नाम है और इसे अपनी बेहद ही सुरीली आवाज़ से सजाया है किशोर कुमार जी ने। इसे म्यूज़िक दिया था सलिल चौधरी जी ने और इसे लिखा था शैलेंद्र जी ने। बहुत ही प्यारी से इसमें जो इसे जो लिखा है, इसके जो बोल है बहुत ही प्यारे लिखे हुए हैं। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ, तुमसे जो कुछ मांगू तो गुनहगार हूँ मैं। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे, चलिए करते हैं सबसे पहले उनसे बातें। हेलो
3: सर, नमस्ते।
2: नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
3: थोड़ा सा बंद हो गया था, क्या हुआ था? कुछ प्रॉब्लम हुआ था
2: शायद, हो सकता है। मुझे सुभाष भाई का भी कॉल आया, बोले आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा ठीक है, चेक कर।
3: आवाज नहीं आ रही थी, थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था।
2: ओके,
3: लेकिन अब ठीक है, अब चल रहा है।
2: आवाज आ रही है ना ठीक से?
3: अच्छी गाने, हाँ गाने सुन रहे हैं। और हमारे साथी मित्रों को नमस्ते सर
2: जी।
3: हमारे सुभाष भाई है, बुरी राम जी है, हमारे बड़ा लाल जी है, भाई है,
2: हमारे बुरीलाल जी का 2 दिन से कॉल नहीं आ रहा, आज भी हमें कॉल नहीं आया।
3: पता नहीं, हाँ मैं थोड़ा शायद मैं कॉल करके बताता हूँ क्या हुआ।
2: जी जी,
3: तो मैं जरूर उसको बुरीलाल जी से बात करूंगा थोड़ी देर में।
2: बिल्कुल,
3: हाँ वो तो एक गाना है सर, फिल्म का नाम तो पता है, लेकिन और नहीं कुछ तुमसे कहना, तुमसे कहना जीवन साथी, जीवन साथी है
2: जी,
3: साथ में रहना, ऐसा कोई गाना है सर
2: जी? चलिए कोशिश करते हैं आपके लिए प्यारा सा गाना हम प्ले करें।
3: प्यारा ही है लेकिन वो गाना अच्छा है, तो मैंने तो जरूर सुना देना सर।
2: बिल्कुल कोशिश करते हैं हम आपके लिए प्यारा सा नगमा हम आपके लिए सुना दें।
3: ठीक है सर
2: जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश भाई ने हमें जो कॉल किया है और हमारे साथ इतनी प्यारी प्यारी बातें भी शेयर की है। और चलिए कोशिश करते हैं हम उसके लिए ये प्यारा सा गाना जो हमें उन्होंने फरमाइश के रूप में दिया है, हम उसे प्ले करें। और बात हम कर रहे थे इस प्यारे से नौकरी के बारे में जो गाना अभी सुना, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने की है कि कुछ और जो तुमसे मांगू तो गुनहगार हूँ, और 108वीं अर्जी मेरी अरमानों की, कर लो मंजूर की बेकरारी से भी रोजगार हूँ मैं। चलिए उससे पहले हमारे साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे, चलिए उनसे भी करते बातें। हेलो,
4: ओम शांति, गुड इवनिंग भाई जी।
2: गुड इवनिंग सुभाष भाई, कैसे हैं आप?
4: बहुत ही बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आपको रेडियो मधुबन परिवार और हमारे सभी दोस्त छोटे भाई बहने, सुरेश भाई जोटाना, मुरीलाल जी, बुरा राम जी, मदन भाई, सभी को सुभाष भाई का प्यार भरा नमस्कार। और आज भाई जी हमारे फिल्मी दुनिया के जो जीवन में वास्तविक बहुत ही गंभीर है और अनेक संकटों को सामना किया है उन्होंने लाइफ में, मैं उनको मिला भी हूँ। और वो जो है मशहूर मेमू जी, हमारे कॉमेडियन की, उनका जन्मदिन है
2: जी।
4: तो उनका ही बहुत मशहूर गीत है, हम काले हुआ तो क्या हुआ, दिल वाले है
2: जी।
4: तो ये मेरी फरमाइश है
2: जी।
4: और सभी को दोस्तों को सुभाष भाई का नमस्कार, ओम शांति, शुक्रिया भाई जी।
2: ओम शांति, शुक्रिया सो मच, थैंक यू सो मच सुभाष जी, आपने हमें कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यस दोस्तों वेलकम। तो अभी हमने सुभाष भाई से बात की, सुरेश भाई से बात की। सुभाष भाई ने भी कल भी दो तीन बार हमें कॉल किया, दो बार उन्होंने कॉल किया और वो चाहते थे कि हम ऑनलाइन सभी की आवाज़ सुने, सभी से बात करें। और आज भी उनकी ये था कि हम आप सभी से ऑनलाइन में बात करें, और उनकी ये इच्छा को जानते हुए और हमें भी अच्छा लगता है जब सुभाष भाई हमसे बात करते। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे इस नौकरी के तलबगार के बारे में, और इससे पहले जो हमने गाना सुना था, कुछ तुम कहो कुछ हम करे, जी हाँ दोस्तों ये गाना 1970 के दशक की आत्मीय और पारिवारिक सिनेमा की बात होती है, जो निर्देशक उमेश मेहरा की 1979 में आई फिल्म हमारे तुम्हारे के नाम चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान ले आता है। संजीव कुमार और राखी जी की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म सिर्फ दो लोगों के मिलन की कहानी नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग परिवार को प्यार की डोर से बांधने का एक खूबसूरत सफर था। इस फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा दिल को छू लेने वाला नगमा, कुछ तुम कहो कुछ हम कहे, जो हमने सुना था, आनंद बख्शी साहब के लिखे इस गीत को राहुल देव बर्मन यानी कि हमारे आरडी बर्मन साहब ने अपनी जादुई धुनों से सजाया था और उसे अपनी मखमली आवाज़ दी थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने। जी हाँ, ये गीत हमें सिखाता है कि जिंदगी का सफ़र और रिश्तों का ताना बाना कुछ अकेले भी बुनना जाता है, तब दो लोग एक दूसरे का हाथ थाम कर थोड़े कदम आप चले और थोड़े कदम हम, तो बड़ी सी बड़ी मुश्किलें भी बेहद आसान हो जाती है। आपसी समझ, समझदारी और प्यार का इसे खूबसूरत संदेश शायद ही किसी और गीत में मिले। दोस्तों इस फिल्म से कुछ और भी जुड़ी कुछ बेहतरीन बातें हैं, चाहे मैं आपको बता देता हूँ। इस फिल्म में अनिल कपूर साहब जिन्होंने एक छोटे से रोल निभाया था, और अमजद खान के भाई इम्तियाज़ खान के साथ मिथुन चक्रवर्ती भी उस दौर में अपनी पहचान बना रहे थे। संजीव कुमार की सहज अधिकारी और राखी जी के साथ

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।
1: जी दोस्तों, वेलकम बैक। और ये गाना अभी जो हमने सुना, आओ तुम्हें चांद पे ले जाए। जी हाँ दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे बचपन के या फिर हमारे कभी भी किसी भी समय ऐसा कभी हमारे साथ भी कोई वक्त आता है जब हमने ये गाने को इतने प्यार से या इतने याद से हमने इसको नहीं सुना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कॉलर से। हेलो, मैं या आप? हम तो इधर ही, हम कहाँ जाएंगे, हम तो डेली आते हैं शो पे। आप ही दो दिन से हमें याद नहीं कर रहे हैं।
2: हम तो अपने कमरे में ही बैठे हुए हैं हमेशा, यहाँ शर्म से
1: अच्छा मुझे लगता है कि आज आपको सुरेश भाई जी ने हमारी याद दिलाई है।
2: हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की आवाज तो इंसान ही रहेगा।
1: ठीक है,
2: तेरा आपके सामने हमेशा मिल के जुड़ करके रहना है सर।
1: बिल्कुल,
2: जब तक जिंदा है जब तक रहेंगे आपके साथ नहीं रहेंगे।
1: बिल्कुल,
2: आपको छोड़ करके हम नहीं जा सकते।
1: बिल्कुल,
2: क्या करें भाई, मजबूरी है और मैं मजबूरी में भी हूँ।
1: चलिए बहुत बहुत नहीं, नहीं अभी तो आपकी आवाज अच्छे से आ रही है हमारे पास।
2: हमारी आवाज आपके पास आ रही है, आपका प्रोग्राम लिखा चले अच्छे से।
1: हाँ क्या कह रहे हैं? अच्छा अभी आ रही है हमारी आवाज? अच्छा रेडियो पे तो आ रही है, सभी सुन रहे हैं। अभी तो सुरेश भाई का भी फोन था, सुभाष भाई का भी फोन था, सभी सुन रहे हैं। आप शायद रेडियो फिर से एक बार बंद करके चालू कीजिए। अच्छा एक बार फिर से बंद करके चालू करके देखिए, शायद आपको आवाज आ जाए ठीक से। ठीक है, अभी शायद आपको आवाज आएगी क्योंकि अभी आप फोन पे, अभी आप फोन पे बात कर रहे हैं ना, आप जैसे ही फोन रखेंगे तो। अच्छा बिल्कुल, अब आएगी ना आपको हमारी आवाज? हाँ ठीक है, आप एक बार फोन रखेंगे तो फिर आपको आवाज आएगी। जी जी हाँ, तो ये थे हमारे भूरीलाल जी, और हमारे भूरीलाल जी ने हमें आखिरकार हमें कॉल किया, उनको याद दिलाई गई कि रेडियो मधुबन में भी आपको कोई याद कर रहा है। जी हाँ, तो ये गाने के बारे में हम बात कर रहे थे जब हम छोटे थे, तो माँ ये बड़े या बड़े अक्सर हमें परियों की, सितारों की और चंदा मामा की कहानियाँ सुनाया करते थे। बचपन की वो मासूमियत और सपनों की दुनिया आज भी कहीं ना कहीं हमारे दिल के किसी कोने में छुपी होती है। वर्ष 1975 में आई फिल्म जख्मी का एक ऐसा ही खूबसूरत ये जो अभी हमने गाना सुना, आओ हम तुम्हें चांद पे ले जाए, जो हमें सीधा अपने बचपन के सुनहरे और बेफिक्रे लम्हों में वापस ले जाता है। गौहर कानपुरी साहब के लिखे इस प्यारे से गीत को बप्पी लहरी जी ने संगीतबोध किया था और उसे अपनी बेहद सुरीली व ममतामयी आवाज़ से सजाया था लता मंगेशकर जी और सुषमा श्रेष्ठ यानी कि पूर्णिमा जी ने। यह गीत सिर्फ एक लोरी या गाना नहीं है, बल्कि अपनों के प्रति निश्चल प्यार, हिफाजत और एक छोटी सी दुनिया में खुशियाँ तलाशने का एहसास है। इस गाने में जो मासूमियत है वो मन की सारी थकान मिटा देती है और चेहरे पर एक आत्मिक सुकून भी, मुस्कान भर देती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की, और अगला जो हमारा फरमाइश है हमारे सुभाष भाई ने जो अभी अभी हमें दिया था प्यारा सा महमूद जी के जन्मदिन के अवसर पर, तो सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं।

पाका नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंग

0: हटूंगा वही हिला को हक डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर अल्लाह, मैं कुर्ती को छोड़ूंगा नहीं मैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
1: आप क्यों नहीं खेल रहे हो?
2: मुझे कोई अपने साथ खेलने नहीं देता।
1: चलो मेरे साथ, हम भी उन बच्चों के साथ खेलते हैं।
2: पर वो
1: बच्चों, क्या हम भी आपके साथ खेल सकते हैं?
3: पर आंटी, ये कैसे खेलेगा, ये तो चल नहीं सकता।
1: क्या आप भी अगर इस हाल में होते तो क्या आपका मन नहीं करता खेलने का? आरव का भी मन आपकी तरह है, ये भी खेलना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है, हंसना चाहता है।
4: चलो हम भी अब आरव को अपने साथ खिलाते हैं। चलो आरव, खेलते हैं मिलकर।
5: कहीं हम अपनी पिछड़ी सोच की वजह से बच्चों से उनके खेलने का अधिकार छीन तो नहीं रहे हैं? रेडियो मधुबन कहता है, खेलना हर बच्चे का अधिकार है।
6: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
7: या दोस्तों, वेलकम बैक। और अभी अभी हमने जो गाना सुना, ऐसा कभी नहीं होता कि इस गाने को सुनने के बाद लोगों की हंसी ना छूट जाए। जब हम ये गाना फिल्म पर्दे पे देखते थे, टीवी पे देखते थे, या जब भी जहाँ पे भी हम ये गाने को देखते थे, तो इस गाने में जो महमूद साहब ने अपना जो रूप बनाया है, या उनकी जो छोटी छोटी चैपलिन वाली जो हम मूछों की बात करते थे, या उनकी जो ये अदाकारी की हम बात करते, तो ये गाना अपने आप में एक बेहद ही बेमिसाल है। और इसमें ये जो बोल है, ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये सोला साला तंदाना, हाय मेरे ख्याला तंदाना। या दोस्तों, ये जो साउथ का जो तड़का लगाया है इसमें, इस गाने के बोलों में, और इसे जिसने भी, मतलब ये जो जिस तरह से भी इसे गाया है, हम उसकी बिल्कुल तारीफ करना चाहते हैं। कि ये फिल्म थी गुमनाम, इसके संगीतकार थे, म्यूज़िक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन जी, इसे लिखा था शैलेंद्र जी ने, और गायक इसके खुद महमूद और मोहम्मद रफ़ी साहब रहे हैं। महमूद जी ने भी कई फिल्मों में गाने गाए हैं, लेकिन इसमें भी उन्होंने, इस गाने में भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। और जी हाँ दोस्तों, बात यही है कि जब भी हम, कभी ऐसा मूड होता है कि हम उदास होते हैं, या कभी कुछ ऐसी चीज़ों के साथ हमारा दिन ठीक नहीं चलता है, तो ऐसे गाने बिल्कुल से सुन लेने चाहिए। जैसे कि अभी एक हमने, इससे पहले हमने गाना सुना था, आओ तुम्हें चांद पे ले जाए। जी हाँ, ये गाना सुनते ही कहीं भी हो, कैसे भी वक्त पे हो, आप बिल्कुल से अपने मन को फ्रेश कर लेंगे। और इसके अलावा भी, जैसे अभी हमने ये गाना सुना, जैसा भी आपका मूड ऑफ हो, आपका दिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हंसी नहीं आ रही है, तो ये गाना भी सुन लिए तो हंसी बिल्कुल से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसे गाने पे हंसी ना छूटे। जहाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं एक और प्यारे से अगले से नगमे की तरफ। और जो हमारा प्यारा सा नगमा है अगला, ये हमारे सुरेश भाई जेठाना से, इन्होंने हमें फरमाइश के रूप में दिया है। चलिए सुनते हैं इस गाने को, फिर करते हैं ढेर सारी बातें।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर गलती एक सबक है, आत्ममंथन के माध्यम से उनसे सीखें और आगे बढ़ें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

जी दोस्तों, वेलकम बैक। और अभी बहुत ही प्यारा हमने गाना सुना, जीवन साथी जीवन साथी जीवन साथी साथ में रहना। जी दोस्तों, प्यारा सा नगमा अभी हमने सुना फिल्म अमृत से। 1986 में ये फिल्म आई थी। इसके गीतकार थे आनंद बख्शी जी और इसे गाया था अनुराधा पौडवाल जी और मनहर उदास जी। हाँ, नॉट पंकज उदास, मनहर उदास जी ने इसे गाया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, जो मैंने जैसे बताया आपको, इसके संगीतकार रहे हैं। और बहुत ही प्यारा सा नगमा अभी हमने सुना। और चलिए दोस्तों, वक्त है अभी अब मैं आपसे विदाई लेने का, क्योंकि इसके बाद जो शो है वो है सहज स्वास्थ्य। और हम आपसे लेंगे विदाई और फिर हम मिलेंगे आपसे ठीक कल इसी वक्त, यानी कि 8 बजे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शपा खैर, खमा गणी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, रेडियो मधुबन का जो टैगलाइन है वो है सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। और हम अक्सर ये याद दिलाते हैं कि आप जब रेडियो सुन रहे हैं तो आप मुस्कुराइए। वैसे भी आप कभी लखनऊ जाएंगे तो आप इस बोर्ड को पढ़ेंगे कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। यानी व्यक्ति को मुस्कुराना अनिवार्य है या वो खुश रहे, इसके लिए चीज बताई जाती। व्यक्ति के खुशी के द्योतक के रूप में भी, सूचक के रूप में भी मुस्कुराहट को देखा जाता है। क्या हम हमेशा मुस्कुरा सकते हैं? अगर हम सुखी हैं, हम अंदर से खुश हैं तो हम मुस्कुरा सकते हैं। जो व्यक्ति व्याधि में है, दुख में है, किसी प्रकार से परेशान है या किसी रोग ने उसे ग्रसित किया है, तो ऐसा व्यक्ति कष्ट में कैसे मुस्कुरा सकता है? उसके लिए जरूर मुश्किल होती है। अब हम ये सोचें कि क्या ये जो रोग आते हैं हमारे पास, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? प्रायः हम समझते हैं कि रोगों का निदान चिकित्सकों के पास, डॉक्टर्स के पास, हमारे चिकित्सा कर्मियों के पास है। वो बात तो सत्य है, मगर क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हम खुद अपने आप को रोगों से ग्रसित करने के लिए कर रहे हैं? पिछली बातचीत में हमने ये समझा था कि रोगों के कारण क्या हैं। हम बैक्टीरिया, वायरसेस इत्यादि कीटाणुओं को समझते हैं कि वो रोग को पैदा करने वाले हैं। उनके इन्फेक्शन हो जाने से, उनके संक्रमण होने से हमें रोग होते हैं। मगर ये भी बात समझ में आई थी कि सिर्फ ये जीवाणु या कीटाणु ही नहीं है, हमारे अपने शरीर का स्वास्थ्य यानी हमारी अपनी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति भी एक बड़ी भूमिका निभाती है। क्या ऐसे में हम रोगों से बच सकते हैं? क्या ऐसा काम तो हम नहीं कर रहे जिससे हम रोगों को न्योता दे रहे हैं? आइए आज ऐसे ही एक विषय पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पे उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: सर्वप्रथम तो मैं यही प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हम ये समझते हैं कि भाई व्यक्ति सुखी रहे, मुस्कुराता रहे, उसके लिए वो अनेक प्रयास करता है। हम कहते भी हैं कि भाई रोगों के कारण हमारे हाथ में नहीं है। हालांकि हम ये बात समझते हैं कि बहुत सारे कीटाणु, रोगाणु हमें रोगग्रस्त बनाते हैं, हमें अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। कभी हम देखते हैं कि भाई मौसम बदला तो बीमार हुए, कुछ और हुआ तो बीमार हुए। कभी कभार लोग ये भी कह देते हैं कि भाई बीमारी तो आती रहती है, इसमें हमारा हाथ कहाँ है, इसमें हमारा कंट्रोल क्या है। अब प्रश्न उठता है कि क्या वास्तविकता में रोगों के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है? क्या रोग आना ये सब कुछ स्वाभाविक चीज है, या रोगी होने के पीछे यानी स्वयं को रोगग्रस्त करने के पीछे हमारा भी कोई हाथ है?
1: हम कल जैसे जब बात कर रहे थे कि हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उससे हम रोगी हो सकते हैं। जैसे बारिश के समय अगर हम छतरी लेके जाएं तो हम नहीं भीगेंगे, अगर हम नहीं भीगेंगे तो शायद बीमार न पड़े। बारिश के समय हमें बाहर की चीजों को नहीं खाना चाहिए। आप गर्मी के समय कहा जाता है गर्मी बहुत पड़ रही है, कृपया हाथ धोइए, सफाई से रहिए। बहुत बार बोला गया कि गन्ने का रस अगर आप सड़क पे पी रहे हैं तो मशीन साफ होनी चाहिए, जो गन्ना साफ होना चाहिए, मक्खियों उसके ऊपर ना बैठे, ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो हम बहुत बड़ी जनसंख्या और बहुत सारी बीमारियां बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होती हैं जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। मगर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो यदि एक व्यक्ति को होती है तो उससे दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकती है, इस जो लंबे समय तक रहती हैं। और क्रॉनिक डिजीजेस में जैसे हमने कहा कि कम्युनिकेबल डिजीज बैक्टीरिया जरूरत है कि हम गंदगी से बचें, हमें अगर कहीं चोट लग गई है तो हम उसका पट्टी करें, हम उस पर मरहम लगाएं, उसको खुले में ना रखें, ये सारी चीजें हमें करने की जरूरत पड़ती है। बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत कुछ आपके अपनी जीवन शैली, की वजह से आपको मिलती है। जैसे मोटापा, आप बहुत अच्छे से खा रहे हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आपका वजन बढ़ रहा है, आपका जो बिहेवियर है कि आप बहुत सिगरेट पी रहे हैं, आप बहुत शराब पी रहे हैं, या आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं, आप बहुत पॉल्यूशन है आपके अगल बगल, बहुत वातावरण प्रदूषण है, तो ये सारी चीजें आपको बीमार कर सकती हैं, क्योंकि ये आपके सारे अंगों पे इसका धीरे धीरे असर पड़ने लगता है और इसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। इस समय नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक ज्यादा बड़ा चैलेंज है डॉक्टर्स के लिए दैन कम्युनिकेबल डिजीज, और ये हमारे जो सबसे कॉमन सुने जाने वाली चार बीमारियां हैं वो इसमें आती हैं। पहला ओबेसिटी या मोटापा, दूसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर जो आपके हृदय की वजह से है, तीसरा डायबिटीज जो आपके पैंक्रियास के ठीक से काम करने की वजह से नहीं हो रहा है, और जो चौथा है वो अस्थमा जो आपके फेफड़ों की वजह से नहीं हो रहा। और इन सबको मिला के जो सबसे बड़ा राक्षस है बीमारियों का वो है मोटापा, क्योंकि वो सबको असर दे देता है, वो सारे जोड़ खराब कर देता है, वो सारे ऑर्गन्स को खराब कर देता है, वो हृदय को, मतलब सारे के सारे आपके अंदरूनी अंगों को मोटापा आपका नुकसान दे सकता है।
0: यानी मोटे रूप में ये बात समझ में आ रही है कि आपने बीमारियों को दो अलग अलग हिस्सों में बांट के रख दिया। पहले एक हिस्से में वो बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती हैं, संक्रामक बीमारियां हैं, संक्रमण हो सकता है जिससे वायरस बैक्टीरिया इत्यादि ये चीजों की वजह से ये चीजें बीमारियां हो रही हैं, और ये दूसरी प्रकार की बीमारियां हैं जो संक्रामक नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि ये जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न फैलने वाली बीमारियां हैं ये एक बहुत बड़ा समस्या का रूप है, स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, दूसरे बीमारियों के मुकाबले ये बीमारियां ज्यादा हैं। क्या मैं इस बात को सही समझ रहा हूं?
1: आप एकदम सही समझ रहे हैं भैया। आप देखिए सुपर स्पेशलिस्ट के नाम, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, डीएम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट, डीएम गैस्ट्रोएंटोलॉजिस्ट, एमसीएच न्यूरोसर्जरी, एमसीएच कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, एमसीएच गैस्ट्रोसर्जरी, एमसीएच नेफ्रोलॉजी, मतलब जितनी भी सुपर स्पेशलिटी जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर बनी है वो उसमें सबसे बड़ा रोल इन्हीं बीमारियों का है। और मैं, अगर मेरे श्रोतागण सुन रहे हैं तो सबसे बड़ी बीमारी मोटापा है। आप एक बड़ी सीधी बात समझिए कि अगर हम और आप दोनों सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, हम आज जो सूटकेस इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पहिया लगा हुआ है, व्हील्स लगी हुई है, यदि हमें वो सूटकेस उठाना पड़े तो हमें बहुत परेशानी होगी, और खासकर अगर वो हमें सूटकेस उठा के सीढ़ी चढ़नी पड़े तो बहुत परेशानी होगी। और हम लोग अमूमन एक 5 से 10 किलो का एक बैग भी अपने कंधे पर टांगते हैं, 15 किलो का सूटकेस, मतलब 25 किलो उठा के अगर हमको किसी रेलवे स्टेशन पे या बस अड्डे पे या एयरपोर्ट पे चलना पड़ता है तो हम थकने लगते हैं। सोचिए कि इतना वजन आपके शरीर के अंदर है, कितना ज्यादा प्रेशर अपने हृदय पे दे रहे हैं, कितना फेफड़ों शक्ति, कोई मोटे व्यक्ति के बगल में आप बैठ जाइए तो उसका मोटापा आपको नहीं मिल सकता, ये आपके पास नहीं आ सकती। तो इसीलिए मैं सबको ये बोलता हूं कि, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम लोग अपने भोजन से, एक्सरसाइज से एकदम ठीक कर सकते हैं, तो अपने आप को बचा के रखने की जरूरत है, और बचाने से ज्यादा कि अपने एक लाइफस्टाइल की जरूरत है जिससे हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हम ग्रसित ना हो सके। कुछ जेनेटिक्स है, कुछ लोगों के परिवार में वो चीजें चली आ रही हैं जो आज मेडिकल साइंस बोलता है कि जीन्स है या आपके ये अंदर आपके जो बनावट है उसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। मगर बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं अगर हम अपने आप को ठीक रखें तो हमें वो परेशान नहीं करेंगी।
0: आपने बहुत ही मजेदार बात कही कि मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है। यहां पर मैं दो चीजें कहूंगा। पहली तो बात यह है कि अगर आप एक मोटे व्यक्ति के बगल में बैठे हैं तो आप मोटे नहीं होंगे, उनके साथ रहने से आपको मोटापा नहीं मिल सकता। अक्सर मोटे लोग पतले लोगों को देख के ये कहते हैं, जब उनका बोझ ज्यादा हो गया होता है शरीर का, कहते हैं भाई मेरे से 5-10 किलो ले लो, मैं थोड़ा हल्का हो जाऊंगा। तो ये महसूस होता है कि मोटा व्यक्ति अपने शरीर के बोझ को महसूस करता है। दूसरी बात, जब आप मोटापे को एक बीमारी के रूप में कहते हैं तो प्रायः लोग ये कहते हैं, हम सुनते भी आए हैं कि भाई खाया पिया करो, लोग तो चाव से खिलाते हैं, ज्यादा खिलाते हैं, और कहते भी हैं कि भाई खाते पीते घर के लगने चाहिए, अगर तुम खाओगे नहीं तो क्या समझेंगे लोग, ये भी चीज सुनने को मिलता है। तो ऐसे में आप मोटापे को एक बीमारी कह रहे हैं, ये इसे हम कैसे समझें?
1: भैया एक बड़ा हास्यपद एग्जाम्पल अभी मेरे साथ हुआ। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब पूड़ी तो बड़ी हल्की होती है। तो मुझे हंसी आई, हमने कहा अरे आप ये कैसे कह सकते हैं, ये तो भाई घी और तेल में बन रहा है,

0: डॉक्टर साहब आपने ध्यान दिया है, पूरी तेल के ऊपर तैरती रहती है, तो तेल से हल्की हो गई ना, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि हल्की चीज ऊपर तैरती है, भारी चीज बैठ जाती है। मैं कुछ बोलने लायक नहीं रहा। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप तेल को अगर पानी के ऊपर डालेंगे तो जो तेल है वो भी पानी के ऊपर तैरता रहेगा।
1: बिल्कुल तैरता है।
0: तो सबसे भारी चीज क्या है? सबसे भारी चीज है पानी, और पूरी तो देखिए पानी से भी हल्की है। अब इस मानसिकता के व्यक्ति को आप क्या सिखाएंगे और आप क्या समझाएंगे? क्योंकि अच्छा, और मोटापा का जो व्यक्ति है, अगर उसमें हार्मोनल चीजें को हटा दिया जाए तो 90% व्यक्ति सिर्फ अपनी जिह्वा के वजह से मोटे हैं। वो खा ज्यादा रहे हैं और उसको खर्च कम कर रहे हैं, इसीलिए वो मोटे होते चले जाते हैं और उनको सब तरह की परेशानी हो जाती है। त्वचा पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, हृदय की परेशानी हो जाती है, सांस फूलती रहती है, उनको सांस लेने में परेशानी होती है, जोड़ों में दर्द होता रहता है। और अच्छा, लोगों को लगता है मोटा व्यक्ति मजबूत है, जबकि वो ज्यादा कमजोर रहता है, क्योंकि वो एक इतना भारी वजन अपने शरीर से उठा रहा है जो काम बहुत लंबे समय तक नहीं करना चाहता। हम आप जितने श्रोतागण हमारी बात सुन रहे हैं, अगर किसी ने भी 2-4-5 किलो वजन कम किया होगा तो उसे बड़ा अच्छा लगा होगा। वो बोलते ना, अरे थोड़ा वजन कम हुआ, हल्के लग रहे हैं। मैंने अपने अस्पताल में ये तक सुना है कि अरे 3-4 दिन बुखार हो गया, एकदम पड़े हुए थे, या 3-4 दिन दस्त हो गया, उठे हैं तो बड़ा शरीर हल्का लग रहा है, वजन कम हो गया। लोग सोचिए बीमारी के बाद भी इसको एक पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। तो अगर हम और आप मोटापा कंट्रोल कर लें, और हम देखिए ना, फिट, हम सहज स्वास्थ्य की बात क्यों कर रहे हैं, और एक बोला जाता है मोटापा बीमारियों का घर है। तो इसीलिए प्लीज, जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं, वो अपने वजन और अपने भोजन का विशेष रूप से ध्यान रखें।
1: ये बात समझ में आती है जब आप कहते हैं कि मोटापा रोगों का घर है। जब जवान व्यक्ति मोटा है तो उस समय पर तो लगता है कि भाई इसको तो क्या ही रोग होंगे, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि भाई ये तो हट्टा खट्टा इंसान है, ये तो चल फिर भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, ऐसा लगता है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि एक मोटा व्यक्ति, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो उसके शरीर में धीरे धीरे रोग आने लग जाएंगे?
0: अगर आप मोटे व्यक्ति हैं तो आपका भोजन जो है वो बहुत ही नेचुरोपैथी आयुर्वेद के हिसाब से कहा जाए तो आप भारी भोजन कर रहे होंगे, जिसमें बहुत सारा तेल, बहुत सारा मसाला और बहुत सारा तला हुआ भोजन होगा नॉर्मली। और अगर हम मॉडर्न इसको बात किया जाए तो इसमें बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक होगा, बहुत सारे फास्ट फूड होंगे। तो जब तक आपका शरीर यंग है, और यंग का मतलब 30-35 साल तक जब तक आप हैं, तब तक आपके शरीर में ऊर्जा बहुत होती है। भैया मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि वजन एक आदमी का एकाएक 25-26 साल के बाद बढ़ना शुरू होता है। बहुत सारे छोटे बच्चों का भी वजन बहुत ज्यादा रहता है, बट एकाएक, क्योंकि जब लंबाई रुक जाती है तब आदमी का भोजन पता चला वही खा रहा तो चौड़ाई बढ़ने लगती है। दूसरा, जब आदमी कॉलेज वगैरह में रहता तो चल रहा होता, क्लास अटेंड कर रहा होता, ऊपर नीचे उसको मूव करना रहता है, और जो हम लोग के समय में कंप्यूटर और मोबाइल उतना नहीं था तो एक फोन अटेंड करने के लिए भी दौड़ के जाना पड़ता था। हम लोग बाहर क्रिकेट, फुटबॉल और ये सारी मैदान भी बहुत थे भारत में। मैं ये भी बात बोलूंगा कि बहुत सारे गार्डन थे, मैदान थे, खुली हवा थी, प्रदूषण कम था, हम लोग खेल रहे थे, कूद रहे थे, इसलिए वजन जो था वो बढ़ ही नहीं पा रहा था, और हमें उतना खाने को भी नहीं मिलता था क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी उतनी नहीं थी। मगर अब जब आप जैसे ही 30-35 साल के होते हैं और आपका वजन बढ़ने लगता है और आप कोई भी एफर्ट नहीं करते उसको कम करने के लिए, तब आपका हृदय, आपके फेफड़े और आपकी पैंक्रियास धीरे धीरे जवाब देने लगते हैं। आपको ब्लड प्रेशर की समस्या, अस्थमा की समस्या और डायबिटीज की समस्या होने लगती है, और कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सारी चीजें होने लगती है। तो इसीलिए आपको जरूर अपने आप को देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या भोजन कर रहे हैं और अपने आप को कैसे उस भोजन को पचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं।
1: मैं एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, जब एक
0: हाँ
1: व्यक्ति मोटापे की हम बात करते हैं तो लोग फूले हुए नजर आए तब हम उन्हें मोटा कहें, या वो वजन कांटे पे अपने को तोले तब उनको मोटा कहें, एक व्यक्ति अपने आप को मोटा हूं ये वो कैसे समझे? कभी कभार लोग ये कह देते हैं कि भाई हमारे घर में तो सभी मोटे हैं, हमारे घर में तो हम खाते पीते घर के हैं, ये भी लोग समझ लेते हैं। तो ऐसे में अपने मोटापे के प्रति जागरूकता के लिए व्यक्ति क्या करे, कैसे वो मेजर करे कि हाँ मैं मोटा हूं?
0: भाई आप इंटरनेट बहुत सारे पैरामीटर्स आप देख सकते हैं कि आपकी वेट और आपकी हाइट के हिसाब से आपका आइडियल वेट क्या होना चाहिए, आपकी लंबाई और आपकी उम्र के हिसाब से आपका क्या आइडियल या क्या आपका बेस्ट वजन होना चाहिए, इसके आपको बहुत सारे टेबल्स मिल जाएंगे। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स भी एक बहुत कॉमन पैरामीटर है। ये माना जाता है कि आपका बीएमआई 30 से थोड़ा सा ऊपर है तो आप क्लास 1 ओबेसिटी में आ जाएंगे, 35 के ऊपर है तो क्लास 2 में आ जाएंगे और 40 के ऊपर है तो क्लास 3 में आ जाएंगे और 50 के ऊपर है तो आप सीवियर मोटे माने जाएंगे। और जितने लोग हैं मैं सबको बोलता हूं कि आप अगर शीशे के सामने खड़े हैं और आप सामने ना हो कि अगर आप मतलब 90 डिग्रीज पे शीशे पे खड़े हैं और आप अपना आपका मोटापा है, आप शर्ट का बटन अगर बंद कर रहे हैं वो खींच रहा है पेट के पास, तो इसका मतलब कि आपका वजन जो है वो थोड़ा ज्यादा है। तो इसीलिए सबसे इजी तरीका है अपना वजन लीजिए और आपकी उम्र और आपकी लंबाई के हिसाब से अगर वो आपका वजन ज्यादा है तो प्लीज अपना ख्याल रखना शुरू करिए।
1: आज ये बहुत ही सुंदर सी बात समझ में आई है कि मोटापा रोगों का घर है। आप खाते पीते घर के लोग नहीं हैं, अगर आप मोटे हैं तो आप रोगों के घर हैं। तो इसलिए अपने आप को देखें कि आपका वजन कितना है, आपकी उम्र और आपके हाइट के हिसाब से, आपकी लंबाई के हिसाब से आपका शारीरिक वजन कितना है, उस पर ध्यान दें। अपने आप को स्वास्थ्य का तोहफा खुद देना शुरू करें, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर के एक एक अंग जवाब देना शुरू करेंगे, और उन रोगों को आप आने से पहले ही रोक सकते हैं। अगर आप युवा हैं, अगर आप मोटे हैं और आप में कोई समस्या नहीं है तो अभी से सुधार शुरू करें, ताकि आप अपने आप को एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन दे सकें और हमारे चिकित्सा कर्मियों पर, स्वास्थ्य जगत पर जो बोझ है उसको कम कर सकें। दोस्तों, आज की चर्चा में यही विराम लेते हैं। बहुत ही सुंदर आज की चर्चा रही है। और भी प्रश्न हैं मगर समय इतना ही इजाजत देता है तो इसलिए यहां रुकते हैं। आज हमारे सभी के प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया, तो आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में बस इतना ही। स्वस्थ रहने के लिए अपने मोटापे को कम करें, स्वस्थ बने और स्वास्थ्य के इस तोहफे को अपने को पहले दें और अपने परिवार और अपने समाज को स्वस्थ बनाने की ओर एक कदम उठाएं। रेडियो मधुबन पर यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: हेलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी और परी आ गए हैं लेकर आपका फेवरेट शो सपनों की सैर।
2: और आजकल सपनों की सैर में बातें हो रही है परी लोक के बारे में।
1: हाँ बच्चों, परी लोक की नई नई बातें बताती है तो कितना मजा आता है ना।
2: हाँ बच्चों, आप भी सपनों की दुनिया में वहाँ पहुँच जाना।
1: अच्छा, जरूर पहुँचेंगे परी। तो बताओ फिर आज की कौन सी नई बात है परी लोक की।
2: बच्चों, आज आपको सुनाएंगे इंद्रधनुष।

0: के बारे में।
1: अरे वाह।
0: हाँ बच्चों, एक सुबह जादुई जंगल के सारे रंग गायब हो गए।
1: क्या, पूरे रंग गायब हो गए? तो सब सफेद हो गया होगा।
0: हाँ बच्चों, सारा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया।
1: अच्छा, तितली भी, फूल भी, पेड़ भी सब सफेद हो गए।
0: हाँ, तितलियाँ भी बेरंगी हो गई, आसमान भी फीका पड़ने लग गया।
1: अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ?
0: फिर एक परी आई और अपनी सहेलियों के साथ रंगों की तलाश शुरू कर दी।
1: अच्छा, वही नूर परी ने?
0: हाँ मनी दीदी।
1: अच्छा, फिर कहाँ मिले वो सारे रंग?
0: उन्हें एक छोटी सी गुफा में 7 चमकते हुए मोती मिले।
1: अच्छा, लेकिन वो तो मोती था, उससे क्या किया?
0: बच्चों सोचो क्या किया होगा। बच्चों पता है, हर मोती तभी चमकता था जब कोई अच्छा काम किया जाए।
1: अच्छा, फिर?
0: तो हर अच्छे काम के साथ एक मोती चमकता गया, और क्या हुआ सोचो बच्चों।
1: अरे वाह, तो फिर सबकी मदद करते गए होंगे और मोती के चमकने से वो रंग फिर आ गए होंगे।
0: हाँ बच्चों, अंत में तो फिर पूरा जंगल रंग बिरंगा हो गया।
1: अरे वाह, तो वो रंग बिरंगे मोती जो मिले वो फिर से पूरे जंगल में रंग ले आए। अरे वाह, और इंद्रधनुष का रंग भी मिल गया फिर तो।
0: हाँ बच्चों, सारी तितलियाँ, फूल, फल सब कुछ कलरफुल हो गया।
1: अरे वाह, तो बड़ा मजा आया बच्चों। तो देखा, हमारे अच्छे कर्म ही हमारे जीवन में सुंदर सुंदर रंग भरते हैं।
0: हाँ बच्चों, तो इसीलिए इस जादुई कहानी से यही सीख मिलती है, सबकी मदद करो।
1: हाँ तो बच्चों, अभी कहीं जाइएगा नहीं, अभी मैं और परी ऐसे ही आपके लिए और अच्छी अच्छी बातें लाएंगे, तो बने रहिएगा।
0: हाँ बच्चों, मिलते हैं इस गाने के बाद।
1: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह।
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से।
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड।
1: मिट्टी से नहीं, जज्बातों से।
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

चलो बच्चों, सुनते हैं अब कहानी। गाना भी पूरा हो गया, बातें भी कर ली। आज आपको फिर से एक अकबर और बीरबल की कहानी सुनाएंगे। बच्चों, आपको पता है ना, अकबर को तो जटिल सवाल पूछने की बहुत आदत थी। तो उसने एक बार अपने दरबार में सबको पूछा कि बताओ, इस शहर में कितने कौवे हैं। बच्चों, एक एक दरबारी पर उसने नजर डाली और दरबारी सब सिर नीचे झुकाकर खड़े हो गए। और उतने में बीरबल आया और देखा कि सारे दरबारी सिर झुकाकर खड़े हैं, माना जरूर कुछ तो जटिल समस्या आन खड़ी हुई है। तो बच्चों, बादशाह ने जब बीरबल को देखा तो पूछा, बीरबल तुम बताओ, इस शहर में कितने कौवे हैं। बच्चों, बीरबल तो हाजिर जवाबी था ना, उन्होंने कहा, हुजूर, इस शहर में कुल 50,378 कौवे हैं। मगर ये बात तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो, बीरबल, बादशाह ने पूछा। बच्चों, बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, यदि इसमें आपको संदेह हो तो आप गिनवा कर देख लीजिए। अगर वे 50,378 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि बाहर से कुछ कौवे अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं, और अगर कुछ कौवे कम है तो वे अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर गए हैं। तो देखा बच्चों, बादशाह बीरबल की हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, शाबाश बीरबल, तुम सचमुच लाजवाब हो। तो देखा बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है ना कि जैसा सवाल वैसा जवाब देना आना चाहिए। कोई भी ऐसी समस्या खड़ी हो तो अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, तो हम उस समस्या का आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलो अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

ओम शांति। मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। हम पढ़ रहे हैं तेनाली रामा की अनोखी दुनिया और उसमें भी एक कहानी जिसका शीर्षक है सप्तद्वीप नौखंड, जिसमें पहले हमने पढ़ा कि महाराज विचित्र भानु जो कि सप्तद्वीप नौखंड राज्य के राजा हैं, अपने पड़ोसी राज्य विजयनगर की समृद्धता को देखकर उनके मन में जलन की भावना आ गई है, ईर्ष्या की भावना आ गई है। और अचानक महाराज कृष्णदेव राय को ये संदेश मिलता है कि उनके गाँव में गायों की महामारी फैल गई है जिसमें बहुत सारी गायें मर रही हैं। अब तेनाली राम इस सच्चाई का पता लगाने वाला है कि क्यों ऐसी खबर फैलाई गई है जिसमें कहा गया है कि हिस्ट पुष्ट गायें ही बीमार हो रही हैं। अब आगे बिना देर किए मैं पढ़ना शुरू करती हूँ बच्चों। तेनाली राम ने महाराज को सांत्वना दी और वह उनसे आज्ञा लेकर अपने घर वापिस आ गया। वह चिंतित था, पता नहीं क्यों उसका दिमाग ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी कोई रोग होता है जो केवल स्वस्थ गायों को अपनी चपेट में लेकर पलों में उसे मार डालता है। ऐसा तो सांप के काटने पर भी नहीं होता। दूसरे दिन महाराज कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपने आसनों पर विराजमान थे। महाराज कुछ विलम्ब से आए और दरबार में चर्चा चल रही थी कि विजयनगर के कुछ गाँवों में मवेशियों के व्यापारी घूम रहे हैं और ग्रामीण बहुत कम मूल्य लेकर उनसे गायें बेच रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय तक जब यह बात पहुंची तब उन्होंने पश्चाताप की मुद्रा में कहा, आह अब यही होना था। विवश से महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम के आसन की ओर देखा, आसन रिक्त था। तेनालीराम दरबार में उपस्थित नहीं था तो महाराज को एक कचोट सी महसूस हुई। वे इस समय तेनालीराम की आवश्यकता तीव्रता से महसूस कर रहे थे। दरबार में काम काज चल रहा था। महाराज कृष्णदेव राय बार बार तेनालीराम के आसन की ओर देख रहे थे, आसन रिक्त था। उस दिन दरबार के समापन तक तेनालीराम नहीं आया। दूसरे दिन दरबार में तेनालीराम सशस्त्र बल के जवानों के साथ दरबार में उपस्थित हुआ और सशस्त्र बल के जवानों ने 5 अजनबियों को रस्सियों में जकड़कर महाराज के सामने प्रस्तुत किया। महाराज कृष्णदेव राय को जब तक कुछ समझ में आता तो फिर उन्होंने पूछा, ये सब क्या है तेनाली राम? और अब तेनाली राम ने क्या जवाब दिया होगा बच्चों, और क्या वह षड्यंत्र का खुलासा करने वाला है? तो ये पता चलेगा हमें अगली कड़ी में। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,
1: चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी और परी आ गए हैं फिर से लेकर आपके लिए पहेली का जवाब, जो पिछली कड़ी में परी ने पूछा था, चार दिशाओं का ज्ञान कराऊं बिना बोले राह दिखाऊं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बताऊं तो बताओ कौन कहलाऊं।
2: हाँ बच्चों, इसका सही जवाब बहुत सारे बच्चों ने भेजा है और सही जवाब है कंपास।
1: हाँ बच्चों, और हिंदी में इसे कहते हैं दिशा सूचक यंत्र, तो हिंदी में इसका जवाब सही रहा।
2: बिल्कुल बच्चों, तो चलो नोट कर लो आज की पहेली। ना मैं चलता ना मैं बोलता हूँ, फिर भी जीवन देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन वापस देता हूँ।
1: अब बच्चों, इसके लिए तो हिंट देने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है परी ने। तो चलो चलो जल्दी से 9414151415 पर वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो।
2: हाँ बच्चों, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। एक काम और करना है बच्चों, याद है ना,
1: भगवान जी को सोने से पहले सॉरी और थैंक यू करना है।
2: बिल्कुल बच्चों, तो हम भी चलते हैं, करते हैं गुड नाइट,
1: स्लीप टाइट,
2: गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 1.0

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

समय सुबह का, तब बनता है खास जब आती है उषा अशना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। बाहर के दुखों से मनुष्य लड़ लेता है, लेकिन भीतर के क्लेशों का सामना करना उसके लिए सबसे कठिन हो जाता है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, तरोई कैसे फायदा करती है हमारे स्वास्थ्य के लिए, कौन सी बीमारियां ठीक करती है, जानेंगे आप सभी। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो व्यंजन कैसे भूल सकते हैं, नए नए व्यंजन भी सिखाएंगे। और आज का प्रश्न बहुत सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें। धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, बाहर के दुखों से मनुष्य लड़ लेता है, लेकिन भीतर के कलेशों का सामना करना उसके लिए सबसे कठिन हो जाता है। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे, बात चाहे उसके स्वयं के भीतर की हो या घर के भीतर की, दोनों ही क्लेश एक मनुष्य को तोड़ने के लिए किसी शस्त्र के समान है। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, भीतर का युद्ध जीतना इसलिए भी अति कठिन हो जाता है क्योंकि मनुष्य सबको समझा लेता है, लेकिन स्वयं के भीतर हो या घर के भीतर, दोनों को समझाना आसान नहीं हो पाता। दुनिया में अपनी वीरता का पराक्रम दिखाने वाला शूरवीर भी भीतर के क्लेशों के आगे मात खा करके हताश हो जाता है। भीतर की शांति ही हमारे जीवन में प्रसन्नता का स्तर निर्धारित करती है। स्वयं के भीतर हो अथवा घर के भीतर, जहां शांति का वास होता है वहां मनुष्य के जीवन में खुशियों का निवास भी होता है। मन के भीतर की शांति किसी मनुष्य को खुशहाल कर देती है और घर के भीतर की शांति पूरे जीवन को ही निहाल कर देती है। तो यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही जो आप सभी के सामने रखना चाहूंगी। एक भाई है बहुत बहादुर और बहुत ही अच्छे पद पोजीशन पर, बाहर से दुनिया उनको हर प्रकार से सुखी समझती है, उनका स्वभाव मिलनसार है और परिवार भी भरा भरा है, तो सब यही कहते कह रहे भाई किस्मत आपके जैसे होने चाहिए। देखो हमारे कहाँ ऐसे किस्मत है, आप तो खुश है, आपके कोई कमी नहीं, माता पिता है, भाई भी आपके अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, आपकी बीवी भी अच्छी है, आपका इतना अच्छा पद पोजीशन है, लोग आपको सम्मान देते हैं, और आपको क्या चाहिए। वो भी मुस्कुरा करके टाल देते कि हाँ बिल्कुल मैं भाग्यशाली हूँ, लेकिन अंदर उनका मन बेचैन रहता, अशांत रहता है, अकारण ही। और अकारण भी कैसे, अकारण नहीं, परिवार में कलह कलेश है लेकिन बाहर वो लाना नहीं चाहते, इसलिए अंदर ही अंदर उनका मन खाए जाता है कि कैसे मैं अपने परिवार में शांति लाऊं, कैसे मैं अपने भाई को शिक्षा दूं, कैसे मैं अपने बच्चों को सुधारूं, यही उतल पुतल अंदर मची रहती है और बाहर सबके सामने हंसते हुए पेश आते हैं। बच्चा है, जुआ खेलना, शराब की लत, और बच्चा भी ऐसे लोगों के सामने अच्छा रहेगा लेकिन चुपके चुपके वो शराब पिएगा और जुए खेलेगा, गलत संग, तो पिता दुखी नहीं होंगे तो और कौन दुखी होंगे। और भाई है कि हर पल प्रॉपर्टी पर डिस्कस करना, चर्चा करना, झगड़ा करना, तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब है, ये घर मेरा है, ये वो मेरा है, माता पिता की भी नहीं सुनता है भाई। भाई पिता कहता है कि भले कैसे का भी पद पोजीशन अच्छा हो लेकिन बंटवारा तो दोनों बराबर होगा, तो भाई हर पल झगड़ने को तैयार, और वो नहीं चाहते कि नहीं घर की बात बाहर जाए, इसलिए वो हर पल मुस्कुराते रहते हैं, घर की बात घर में रखते हैं, घर में अपने परिवार के सदस्यों को समझाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाहर लोग एक इशारे में समझ जाते हैं, बाहर किसी को भी वो सलाह देंगे तुरंत मान लेंगे, अंदर कोई मानने वाला नहीं, लेकिन बाहर से सुखी। इसीलिए कहा जाता है कि बाहर के दुखों से मनुष्य लड़ लेता है लेकिन भीतर के कलेशों का सामना करना उसके लिए सबसे कठिन हो जाता है। ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, और फिर से सुन लेते हैं गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। जी हाँ, तरोई जिसको गुजराती में तुरिया कहते हैं, कौन सी बीमारी ठीक करती है जानेंगे। देखिए तरोई क्या है, मधुर, स्निग्ध, पित्त शामक, कफवात वर्धक, मृदुरेचक, कृमिनाशक, मूत्रल, ज्वर, रक्तपीत और कुष्ठादि विकारों में पथ्यकर और उपयोगी है। ठीक है, उष्ण प्रकृति वालों को और पित्तजन्य व्याधियों में तथा श्वास, सुजाक, अर्श, रक्त, मूत्र आदि में इसका शाक विशेष पथ्यकर एवं हितकर है। ठीक है, तो कौन कौन सी बीमारी देख लीजिए, उष्ण प्रकृति वाले, पित्तजन्य व्याधि वाले, श्वास की समस्या, सुजाक, अर्श, रक्त, मूत्र, जिनको भी ये तकलीफ है उनको आप ये तरोई की सब्जी बना करके खाइएगा, काफी हितकर रहेगा। ठीक है, फिर देखिए तरोई के बीज पीस लीजिए, गरम करके तिल्ली की सूजन पर लेप करिए, इससे तिल्ली की सूजन कम हो जाएगी। अगर तिल्ली पर सूजन है तो तरोई के बीज पीस लीजिए, गरम करके तिल्ली के सूजन पर लेप करिए, इससे ये सूजन कम हो जाएगी। तरोई के ताजा पत्ते पीस कर लगाने से अर्श ठीक हो जाता है। तरोई के ताजा पत्ते पीस कर लगाने से अर्श ठीक हो जाता है। अगर पथरी की समस्या है तो तरोई की जड़ ठंडे पानी में पीस करके छानिए, सुबह ही सुबह 3-4 दिनों तक पीजिएगा, पथरी गल करके निकल जाएगी। पथरी जिसको स्टोन की समस्या भी कहते हैं, तो ऐसी स्थिति है तो तरोई की जड़ ठंडे पानी में पीस करके छान करके सुबह ही सुबह खाली पेट 3-4 दिनों तक पीजिएगा, इससे पथरी गल करके निकल जाएगी। आंखों की पुंसिया है, क्या है, कभी कभी बच्चों के आंखों पर पुंसिया हो जाती है, तो इसमें तरोई के पत्तों के रस की 2-3 बूंद डालनी चाहिए, लेकिन यह आंखों का मामला है इसलिए आप डॉक्टर से राय जरूर लीजिएगा। तरोई के सेवन से पेशाब में जलन दूर होती है और मूत्र खुल करके आता है। तरोई के सेवन से भले आप सब्जी बना करके खाइएगा या किसी भी प्रकार खाइएगा, तो इससे एक तो पेशाब की जलन होगी वो दूर होगी और बाथरूम है जो खुल करके आएगा। तो ये सारे उपाय बहुत ही अच्छे हैं और आप चाहे तो आजमा सकते हैं, क्योंकि इसमें तो अपना कुछ भी नहीं जा रहा है भाई, सब्जी बना करके तो हम खाते ही है, और अगर इस तरह की समस्या आए तो थोड़ा ज़्यादातर लगातार खाइए तो इन समस्या से आप निजात पाएंगे। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, देखिए श्राद्ध का समय चल रहा है, ठीक है, तो अगर आपको अपने किसी दिवंगत बुजुर्ग से 2 मिनट बात करने का अवसर मिले तो आप उनसे क्या कहना या पूछना चाहेंगे, ये आज का प्रश्न है। सभी आप अपने अपने पसंद के अनुसार, अपने अपने विवेक के अनुसार जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो श्राद्ध पक्ष चल

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। आज का विषय बहुत ही सुंदर है। पानी तो सबके लिए एक जैसा ही होता है, लेकिन गन्ना मीठा, अंगूर खट्टा, करेला कड़वा और मिर्ची तीखी होती है। इसका कारण पानी नहीं बल्कि बीज है। हम अपने मन में जैसे विचार बोते हैं वैसे ही फलते फूलते हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत ही सुंदर विषय आप सभी के समक्ष रख चुकी हूँ, तो आप जुड़ने की कोशिश जरूर करिएगा। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। अगर आपको अपने किसी दिवंगत बुजुर्ग से 2 मिनट बात करने का अवसर मिले तो आप उनसे क्या कहना या फिर पूछना चाहेंगे? भैया अपना अपना जवाब है, इंडिविजुअल आप अपना अपना जवाब दे सकते हैं। और आज के विषय में आप जुड़ करके अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है तो आप जुड़ने की कोशिश कर जरूर करिएगा। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आज के विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। क्या बात है हमारे श्रोता बंधु भाई, व्यस्त हो गए ना? अच्छी बात है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। किसके किसकी तिथि, किसके किसकी तिथि? और श्राद्ध पक्ष तो ऐसे ही सुबह ही किया जाता है, तो जिनके यहाँ श्राद्ध है वो तो नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन सभी के एक साथ में तो आता नहीं है, तो जिनके यहाँ नहीं है वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप? विषय प्रैक्टिकल है। पानी तो सबके लिए एक जैसा ही होता है, लेकिन गन्ना मीठा, अंगूर खट्टा, करेला कड़वा और मिर्ची तीखी होती है। इसका कारण पानी नहीं बल्कि बीज है। हम अपने मन में जैसे विचार बोते हैं वैसे ही फलते फूलते हैं। हेलो हेलो, चलिए भाई फोन उठाया है तो बात कर लीजिए और फिर से आप कोशिश करिएगा। अगर आपके फ़ोन में कोई गड़बड़ है, मान लीजिए आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो फिर से आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर विषय है। कितनी अच्छी बात है कि देखिए पानी तो एक जैसा ही होता है, फिर सारी चीज़ें भी एक ही स्वाद की होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए गन्ना मीठा लगता है, अंगूर खट्टा लगता है, करेला कड़वा लगता है, मिर्ची तीखी लगती है, जबकि पानी एक जैसा होता है ना? तो इंसान हम सभी क्या कहते हैं? अरे इंसान तो सब इंसान है, हम सभी एक जैसे ही तो है। दो आँख, दो हाथ, मुंह, दो पैर, सब एक जैसे ही तो है, फिर क्यों इतना भेदभाव? लेकिन है सब एक जैसे, ऊपर से सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर के विचार सबके अपने अपने होते हैं, है ना? जैसे कि आपने इंट्रो में भी सुना था। चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो, हाँ जी नमस्ते। Hello. नमस्ते Hello. नमस्ते सुभाष भाई।
1: आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है, आपका मेरा आवाज आ रहा है?
0: आपके आवाज अच्छी तरह सुनाई दे रही है।
1: थैंक यू। देखो सबसे पहले आपको रेडियो मधुबन परिवार और हमारे सभी श्रोते भाई बहनों को सुभाष भाई का प्यार भरा नमस्कार। और आज हृदय बीमारी के ऊपर हमने कैसा ध्यान देना है, तो हृदय दिन पर आपने बहुत ही अच्छा सुविचार भी, विषय भी और सवाल भी रखा है। तो देखो हम जैसे विचार मन में लाते हैं और बुद्धि भी वैसी निर्णय देती है। अगर अच्छे विचार अगर हमने लाए, भले अपोजिट परिस्थिति है, लेकिन सामना करने की शक्ति से, सहन शक्ति से वो बुरे विचारों को खत्म करके अच्छे विचार लाएंगे, तो हमारी शक्ति बढ़ेगी और जो भी सामने प्रॉब्लम है उसके ऊपर शांति से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये शॉर्ट में बता दिया, जिसे आप और श्रोते भाई भी बताएंगे। और अपने सवाल जरा फिर से गुनगुना दीजिए।
0: हाँ जी, आज का प्रश्न है, अगर आपके अपने किसी दिवंगत बुजुर्ग से 2 मिनट बात करने का अवसर मिले तो आप उनसे क्या कहना या पूछना चाहेंगे?
1: दिवंगत का कौन सा अर्थ लगा रहे?
0: दिवंगत यानी कि देखिए हम श्राद्ध कर रहे जो ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं।
1: वही मैं भी समझ गया। अभी जो हमारे पिताजी है, माताजी है, दादा दादी, नाना नानी और कोई भी हो रिलेटिव के, कोई भी अपने प्यारे दोस्त हो जिनके बारे में अभी हम याद कर रहे, लेकिन वो तो अभी नहीं है, पर उन्होंने जैसा जीवन व्यतीत किया है अच्छी तरह से और हमको पहले जो सीख दिए, अगर वो विचारों पर हम चलेंगे और धारणा करेंगे तो उनके आत्मा को शांति मिलेगी, तो हम उनको ये बोल सकते हैं श्राद्ध के दिन कि हम आपके सीख पर, आदर्श विचार करने पर चले चल रहे हैं। तो ये अच्छा श्राद्ध हम मना रहे हैं।
0: क्या बात है।
1: और जो दुखिया और जो दुखी आत्मा है उनको अगर हम शांति दे, कोई भी उनकी गरज की चीजें दे या खाना खिलाए तो उनको आत्मा को शांति मिलेंगी और ये हम उन दिवंगत आत्माओं को भी बोल सकते हैं। ये थोड़े में बताया दीदी। और सभी को नमस्कार और ओम शांति।
0: बहुत बहुत आभार सुभाष भाई, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से। बहुत ही सुंदर आपने बात कही है, दिवंगत आत्माओं से अगर आप पूछना चाहेंगे तो क्या पूछेंगे, ये सभी के लिए है आज का प्रश्न। ठीक है, सब अपने अपने अनुसार दीजिएगा जवाब, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, और आज का विषय बहुत ही सुंदर है। पानी तो सबके लिए एक जैसा ही होता है, लेकिन गन्ना मीठा, अंगूर खट्टा, करेला कड़वा और मिर्ची तीखी होती है। इसका कारण पानी नहीं बल्कि बीज है। हम अपने मन में जैसे विचार बोते हैं वैसे ही फलते फूलते हैं। हेलो,
2: हाँ दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
2: बात बहुत अच्छे हैं और आप आ गए, बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू।
2: बातें भी हो रही है, विषय भी अच्छा दिया है और सवाल भी अच्छा किया है दीदी। तो हमारे सुभाष भाई ने भी बहुत अच्छी बात बताई दीदी। तो मैं भी बात बताऊं कि हमारे दीदी भी हमारे परसों भी मेरे माता जी की श्राद्ध की विधि थी, उसको 3 साल पूरे हो गए। तो हमारे घर पे भी कई सारे मेहमान आए थे, बहन आए थे, भांजी आई थी, भांजा आया था, भांजे की बहू आई थी, भांजा का जमाई आया था, सभी लोगों को हमने दीदी का हमारा यहाँ जो विधि थी और भोजन का भी रखा था
0: जी, तो जी,
2: सभी
0: जी।
2: ने सभी को हमने बुलाया था दीदी, मेरे घर कम से कम 70 लोग थे।
0: जी जी। तो पहला श्राद्ध था।
2: हाँ पहला श्राद्ध था दीदी। हाँ जी। महाराज को भी बुलाया था, महाराज के साथ हमने कई सारे दो घंटे तो हमारी माता जी की विधि की और यहाँ घर पे, और कई सारे मेहमान भी आए थे, तो सभी खुश हो गए दीदी की इतने सारे इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे को भी मिलना जुलना हो जाता है और एक दूसरे को अच्छा एक कहते ना कि ऐसे तो सभी लोग मिलते नहीं हैं आपस में
0: जी।
2: तो हमने सभी लोगों को, हमने परिवार को बुलाया था, सभी तो सभी इकट्ठे हुए और हमने यहाँ हमारी माता जी की पूजा भी की। 3 साल पूरे हो गए। तो बस दीदी हम तो एक ही कहेंगे कि जो आत्मा जाती है तो इस आत्मा को हम पीछे ज्यादा हम ऐसा नहीं कि हम करोड़ों का भी दान करें, लेकिन इसको थोड़ा आह्वान करें कि भाई हमारी माता जी को सबको लगेने के भाई हमारे हमारे जाने के बाद हमारे सभी भांजी हैं बहनें को वासी हम बोलते हैं गुजराती में, तो सबको खाना भी खाते खिलाते हैं और जो मिले हम दक्षिणा भी देते हैं दीदी। तो इसके आत्मा को भी शांति होती है कि इसे हम हमारे जो आत्मा होती है तो आत्मा खुश हो जाती है कि भाई मेरे बेटे ने किया है अच्छा किया, और करना ही चाहिए दीदी, क्योंकि हम वासी बहने को दीदी को भांजी को नहीं बुलाएंगे तो वो क्या हम अकेले अकेले खाएंगे तो क्या सही है नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो हमने सबको बुलाया था परसों संडे के दिन, तो पूरा हमारा घर पूरा मेहमानों से भरा हो गया था दीदी।
0: जी जी,
2: तो इतनी खुशियाँ सबको मिली, और हमने पुजारी को बुलाया और पुजारी पूजा करवाई, अच्छी अच्छी पूजा भी करवाई माता जी के पीछे।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूर्वजों का देखे उनका भी तर्पण करना ही चाहिए, उनका भी
2: करना ही चाहिए।
0: हाँ,
2: करना ही चाहिए, क्योंकि बस संतों दीदी एक ही बात करेंगे कि चलो भाई हम जीते जी तो हमने बहुत माता जी को रखा है, लेकिन बाद में भी हमने जो हमारे शुरुआत में किया है, लेकिन आज क्या दीदी परिवार आज जो माता पिता को बच्चे रखते नहीं है वृद्धाश्रम भेज देते हैं, बाद में जो गुजर जाते हैं बाद में वो घर पे करते हैं ऐसा कुछ, सब कुछ तो कोई फायदा नहीं है दीदी।
0: जी जी जी,
2: जी जितना हो सके इसको रखो, अच्छी तरह से खाना खिलाओ, अच्छी तरह से उसको उसको चाहिए तो बस दो टाइम का भोजन चाहिए और जो दवाई चलती है वो चाहिए।
0: बुजुर्गों को प्यार और विश्वास की जरूरत रहती है न कि उनको खाने पीने के भूखे
2: नहीं दीदी, इसीलिए मैं तो यही कहता हूँ आपका प्यार दीजिए, आपको जो जब तक है तब को उसके साथ बात कीजिए, बैठिए अच्छी तरह से रखिए, वही सब कुछ आपके पीछे वही आप कितने करोड़ों का जो दान करे भोजन करवाए को फायदा नहीं है।
0: बिल्कुल, जब वो अपने परिवार से संतुष्ट होकर के जाते हैं तो उनकी दुआएं निकलती है।
2: बिल्कुल, इसलिए दीदी आज माता पिता जो हमारे गुजर से हिसाब हम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दुआ पे मेरे पास हरदम मेरे माता पिता की रहती है
0: जी।
2: और हम तो सभी को वह कह रहे कि आप चाहे पीछे मत कुछ कीजिए, लेकिन जब तक है तब तक उसको अच्छी तरह से रखिए, खाना खिलाइए, अच्छी तरह से बात कीजिए, कभी तो आप पास में बैठिए थोड़ा सा, इसको भी अच्छा लगे नहीं मेरा बेटा है मेरे पास
0: जी,
2: ऐसा लगना चाहिए।
0: बिल्कुल
2: जी दीदी,
0: बिल्कुल। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे?
2: प्रश्न का जवाब तो मेरा वही है और विषय भी यही दोनों एक ही है।
0: नहीं, अगर आपको अवसर मिले तो आप क्या पूछना चाहेंगे अपने पूर्वजों से या फिर अपने माताजी से भी?
2: हम तो वो एक ही पूछना चाहिए जो जो जीवित है दीदी
0: जी,
2: अभी
0: जी
2: कोई गुजर है हमारे पास पास में कोई रहता है कोई हमारे जो रिश्तेदार में है
0: जी,
2: तो हम तो दीदी ऐसा है कि उसकी सलाह लीजिए जरूर, क्योंकि गुजर जो गुजर लोग होते हैं इसको कोई पता होता है सभी कुछ सबको पता होता है, हमारे कोई बात होती है तो इससे हम पूछ लेते हैं, पूछना ही चाहिए, वो अच्छी सलाह देते हैं, तो इसी सीख से हम आगे चले तभी तो हम अच्छी तरह से कोई भी कार्य में हम पीछे नहीं रहे।
0: लेकिन आज का प्रश्न है, अगर आपके जीवन में किसी दिवंगत बुजुर्ग से 2 मिनट बात करने का अवसर मिले तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे जो ये दुनिया छोड़कर चले गए, उनसे मान लीजिए 2 मिनट आपको बोलने का अवसर मिले तो आप क्या बोलोगे उनको?
2: बस हम तो एक ही बोलेंगे दीदी कि बस जीते जी माता पिता को अच्छी तरह से रखते हुए, और
0: वो तो वो चले गए, दिवंगत आत्मा चली गई है, अब उनसे आप क्या कहोगे?
2: बस आत्मा को दीदी हम एक ही कहेंगे कि इसके आत्मा को परमात्मा सुखी रखे, जहाँ उसका आत्मा हो वहाँ अच्छी तरह से रहे, और बस एक ही मांगेंगे हमने इसकी आत्मा को परमात्मा शांति दे।
0: अच्छा चलिए ठीक है
2: जी,
0: बहुत बहुत आभार। हाँ जी नमस्ते। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, और अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। विषय भी बहुत सुंदर है, प्रश्न भी आज का बहुत अच्छा है, उसको समझने की कोशिश करिएगा कि ये प्रश्न क्या कहना चाहता है, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपको अपने किसी दिवंगत बुजुर्ग से 2 मिनट बात करने का अवसर मिले तो आप उनसे क्या कहना या पूछना चाहेंगे? मान लीजिए मैं चली गई ये दुनिया छोड़ करके, ठीक है, फिर मैं आ गई कभी अचानक 2 मिनट के लिए आप सभी से मिलने, अब आप मुझे क्या कहने, आप लोग क्या कहना चाहेंगे मुझसे, क्या पूछना चाहेंगे, इस तरह का प्रश्न है। इसको और भी अधिक स्पष्ट कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही हमारे घर में बहुत सारे पूर्वज होते हैं, दादाजी, दादी जी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, जो भी परिवार के सदस्य है चले गए और हमको 2 मिनट का अवसर मिला उनसे बात करने का, तो हम क्या बात करेंगे उनसे, क्या पूछेंगे उनसे। जैसे सुभाष भाई ने कहा था, ऐसे आप भी देखें अपने अपने विचार से, सबका विचार अलग अलग है, तो अपने अनुसार दीजिएगा जवाब। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं, आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं, तो आज के विषय में आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। तो अभी तो ले लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: प्यार में हंसी मजाक नोकझोंक चलता ही रहता है। पत्नी जब पति को कहती है कि उसे नीम की निमोली कड़वी लगती है, तो पति उसको मिश्री का बाग लगाने के लिए कहता है। यही तो प्यार है।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में बहुत ही सुंदर आज का प्रश्न भी है, तो विषय भी बहुत ही सुंदर है। प्रश्न है, अगर आपको अपने किसी दिवंगत बुजुर्ग से 2 मिनट बात करने का अवसर मिले तो आप उनसे क्या कहना या पूछना चाहेंगे? दिवंगत का मतलब है जो ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं, और मान लीजिए 2 मिनट उनसे बात करने का अवसर मिल गया आपको, तो सबसे पहले आप उनको क्या पूछेंगे? और आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है, पानी तो सबके लिए एक जैसा ही होता है, लेकिन गन्ना मीठा, अंगूर खट्टा, करेला कड़वा और मिर्ची तीखी होती है, क्या कारण है इसका बताइए। वो कहते हैं ना कि इसका कारण पानी नहीं बल्कि बीज है, हम अपने मन में जैसे विचार बोते हैं वैसे ही फलते फूलते हैं। तो देखिए, पानी होता है, अलग अलग रूप से उसका उपयोग किया जाता है, अलग अलग प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है। रोटी बनाने में घूनते हैं तो रोटी का टेस्ट अलग होता है, सब्जी बनाने में डालते हैं तो सब्जी का टेस्ट अलग होता है ना? ऐसे पानी डालते जाओ आप, चीजें अलग अलग अलग अलग डालते जाओ तो स्वाद चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या भावार्थ है, इसका क्या भावार्थ है, क्या बात है? आज हमारे श्रोता बंधु कहाँ व्यस्त हो गए हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो स्वाभाविक है, बुजुर्गों का श्राद्ध तो करिएगा, लेकिन समय मिले तो रेडियो से भी जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ये इसी के अंतर्गत प्रश्न है कि भाई अगर आपको मान लीजिए 2 मिनट के लिए भगवान ने छूट दे दी, ठीक है कि चलो 2 मिनट बात कर लो अपने बुजुर्ग से, तो आप क्या बात करना चाहेंगे, क्या उनको पूछना चाहेंगे, ये आज का प्रश्न है। और विषय बहुत सुंदर है, देखिए पानी एक जैसा है लेकिन फिर भी अंगूर खट्टे है, करेला कड़वा है, मिर्ची तीखी है, गन्ना मीठा है, सबके स्वाद अलग अलग होते हैं। वो क्या है कि मन के विचारों के ऊपर है ये सारा खेल, किसी के मन में पॉजिटिव चीज़ें चलती है, किसी के मन में नेगेटिव चीज़ें चलती है, ठीक है। और मन भी ऐसा है कि कभी पॉजिटिव भी चला लेता है तो कभी नेगेटिव भी चला लेता है। किसी ने प्यार से बोल दिया, सत्कार दे दिया, सम्मान दे दिया, तो उसके प्रति हमारे भाव बढ़ जाएंगे, तो मन में संकल्प चलेगा, देखो कितने अच्छे लोग हैं, है ना, कितना मतलब आदर्शवान है जो हमको सम्मान दिया, प्यार से बोला, वाह भाई वाह, मेरा तो आज मन बड़ा खुश हो गया, मेरा तो मन ऐसा हो रहा है कि बस मैं इसके लिए कुछ करूं। इतने में दूसरा बंदा मिल गया, उसने थोड़ा सा हमारा तिरस्कार कर दिया, थोड़े से रूडली बात कर ली, तो फिर से वो मन खराब हो गया, अरे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, इनको तो तमीज ही नहीं है बात करने की, अरे भाई मैंने इसका क्या बिगाड़ा जो ये ऐसी बातें कर रहा है, अरे भाई मैंने थोड़े ना इसके घर का कुछ खाया जो मैं इसकी 2 बात सुनूं, फिर सुना देते हैं। मतलब ये मन का ही खेल है कि मन में विचार किसी के प्रति अच्छा है, किसी के प्रति बुरा चलता रहता है और उथल पुथल होती रहती है, तो ये सारे बीच का खेल है। अगर किसी ने तिरस्कार भी कर दिया फिर भी हम ये सोच ले कि चलो ये उसके संस्कार है, मैं अपने संस्कार क्यों चेंज करूं, भाई उसने भले कैसा भी व्यवहार किया हो, जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसका रूडली व्यवहार, तो मैं भला दूसरों के साथ रूडली व्यवहार कैसे कर सकती हूँ, नहीं मुझे नहीं करना है, और उसने मेरे साथ जो किया है मैं भूल जाना चाहती हूँ, मुझे वो दोहराना नहीं है, मुझे वो याद नहीं रखना है, ये उसके संस्कार है, मेरे संस्कार अपने हैं, तो बात ही खत्म और मन शांत हो जाता है, ज्यादा फिर वो सोचता नहीं है, क्योंकि क्यों क्या कैसे इन सब में हम जाते हैं ना, तो अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं मेरे प्यारे श्रोता बंधु, और मन बड़ा उदास हो जाता है, अशांत हो जाता है, इसलिए मन को तो समझाना बहुत जरूरी है। किसी ने हमारे से चीटिंग कर ली, धोखा दे दिया, तो मन कितना खराब हो जाता है, उसके प्रति नफरत हो जाती है कि अरे देखो देखो उसने रास्ते चलते हमको धोखा दे दिया, स्वाभाविक है धोखा सहन नहीं होता है, ठीक है, फिर भी मिल गया, हमारे बस में तो नहीं था ना, अब सामने वाला धोखा दे रहा है, क्योंकि देखिए रिश्ते भी विश्वास पर चलते हैं, कारोबार भी विश्वास पर किया जाता है, हर चीज़ के लिए प्रूफ नहीं होता है, पहले तो बड़े बुजुर्ग चलते फिरते जुबान दे देते थे,
कि चलो ये हो गया, हम जुबान देते हैं, हमारे पोता हो गया, आपके पोती हो गई, तो हमारा अपना संबंध फाइनल। माता पिता से भी नहीं पूछते थे, जिनके बच्चा होने वाला उनको भी नहीं पूछते थे कि हम ये इस तरह का, मतलब आपका क्या विचार है। अपनी बात, अपना निर्णय सुना देते थे और छोटे भी उसको स्वीकार कर लेते थे कि कोई बात नहीं, बड़े बुजुर्गों ने कहा है तो पत्थर की लकीर है, सोच समझ के कहा होगा। और सचमुच अच्छा भी हो जाता है, क्योंकि सब पॉजिटिव रहते ना, पॉजिटिव रहते तो अच्छा भी हो जाता है कि भले बचपन में सगाई संबंध हो जाता है, लेकिन बड़े होने के बाद भी अच्छी तरह निभाते, और फिर भी बड़ों का सम्मान कम नहीं होता था। यही कहते हैं कि बात जो बड़े करते वो अच्छा है। और आज तो पति करके आया है संबंध बच्चों का, तो पत्नी को संकल्प चलेगा, पता नहीं कैसा परिवार देखा होगा, इनको क्या समझ में आता है। और मान लीजिए पत्नी ने कही बात चला दी अपने रिश्तेदारों में, तो पति के संकल्प चलेंगे, अरे इसको तो समझ में नहीं आता है, बच्चों की जिंदगी का सवाल है, कितने प्रश्न खड़े हो जाते हैं, है ना। और पहले घर के बुजुर्ग अपने हिसाब से फाइनल कर देते थे, उसमें भरा परिवार होता, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि अरे आपने ऐसे कैसे फाइनल कर दिया हमें पूछे बिना, ये हमारे व्यक्तिगत मामला है, कोई ऐसे नहीं बोलते थे। तो ये विचारों का खेल है सब, है ना। पल में विचार अच्छा भी आता है, पल में विचार बुरा भी आता है। किसी ने कुछ खाने पीने का दे दिया तो दिल से दुआ निकलती है, अगर अरे वाह भाई आज तो मेरे को भूख लग रही थी और समय पर इसने मुझे अच्छा, बहुत अच्छा खाना खिला दिया, बहुत इसका भला हो। किसी के घर पर गए, पानी का भाव भी नहीं पूछा, तो मन क्या कहेगा, अरे कैसे लोग हैं, फालतू के आए, हमारा समय गया और फालतू के टिकट के पैसे बर्बाद हुए, इसने तो खाने पीने का भी नहीं पूछा है। ऐसे लोगों से तो कोई दोस्ती नहीं रखनी है। मतलब ये मन ऐसा है, अच्छा भी सोचता है बुरा भी सोचता है, लेकिन हमें हर समय किस तरह रहना है वो अब मन को समझाना पड़ेगा, क्योंकि मन तो चंचल है ना, तोड़ता रहता है बेलगाम घोड़ा, तो इसके लगाम पकड़ना तो बहुत जरूरी होता है। इसलिए हर हाल में मन को समझाना है कि तुझे तो हर पल खुश ही रहना है, और ये हर एक के बस में नहीं होता है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। इसके लिए काफ़ी कुछ हमें अच्छी अच्छी बातें सुननी होती है, जैसे कोई अच्छे वाचन आप कर सकते हैं, अच्छी किताबें आप पढ़ सकते हैं, अच्छे लोगों की दोस्ती में आप रह सकते हैं, या बड़े बुजुर्गों के संग आप रह सकते हैं, या फिर कोई आपके कॉन्टेक्ट में कोई अच्छे गुरु है, संत महात्मा है, या अच्छा आश्रम है, या जो भी है, कि जहाँ से आपको पॉजिटिव वेव्स मिले, जहाँ से आपको सकारात्मक बातें मिले, तो ऐसा आपको संग करना होगा, तभी ये मन धीरे धीरे धीरे धीरे शांत होगा और समझने लगेगा कि हाँ मुझे हर हाल में खुश रहना है। बाकी तो कहते हैं ना कि आप अच्छे रहेंगे तो दुनिया को थोड़े ना पचेगा कि ये अच्छे रह रहे तो कैसे रहने देवे, कुछ ना कुछ तो ऐसा ला करके रखेंगे कि दुखी हो जाए। लेकिन अब ये हमारे मन पर डिपेंड करता है कि हम खुश रहे या दुखी रहे। अपने विचारों पर आप ध्यान दीजिएगा, संकल्पों का ही सारा खेल है, ठीक है। और क्या बात है, आज हमारे श्रोता बंधु इतने व्यस्त हो गए हैं, अरे गणपति के त्यौहार निकले उसमें भी आप इतने व्यस्त नहीं थे, आप जुड़े आराम से बात की, और श्राद्ध में आप व्यस्त है, तो चलिए कोई बात नहीं, अपने बुजुर्गों के लिए भी समय देना बहुत ज़रूरी है। और अब इस विषय को यही समाप्त करते हैं, आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, मान लीजिए अगर आपको अपने किसी दिवंगत बुजुर्ग से 2 मिनट बात करने का अवसर मिलता है तो उनसे आप क्या पूछना चाहेंगे। कोई बात अधूरी रह गई है या आप अपने हिसाब से बताइएगा, जवाब दीजिएगा। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर एक गीत सुन करके फिर से लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं गीता चिकारा करनाल से। आप सभी को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए। आज आपको मैं सिखाने जा रही हूँ खांडवी, ठीक है, जो गुजरात में बहुत ही बनाई जाती है। खांडवी बहुत पसंद करते हैं और गेस्ट आते हैं तब तो स्पेशल बनाते हैं, लेकिन बनाना आएगी तभी बनाएंगे ना। सुना तो बहुत है, खाया तो बहुत है, लेकिन क्या करे, बनाना नहीं आता है। तो आप चिंता मत करिए, आज आप रेडियो मधुबन के जरिए खांडवी बनाना सीखेंगे। लेकिन उसके पहले आज का प्रश्न, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो अगर आपको अपने किसी दिवंगत बुजुर्ग से 2 मिनट बात करने का अवसर मिले तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे, ये आज का प्रश्न है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और आइए खांडवी के लिए मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ। बेसन 1 कप ले लीजिए, छाछ लेनी है 2 कप, हल्दी 1/4 चम्मच लेना है आपको, और नमक अपने स्वाद के अनुसार। फिर अदरक हरी मिर्च का पेस्ट 1 छोटा चम्मच आप ले सकते हैं। तड़के के लिए ले लीजिए तेल 1 चम्मच, 1/2 चम्मच राई, तिल ले लीजिए 1 चम्मच, करी पत्ते और हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, और ऊपर से नारियल, कद्दूकस किया हुआ और हरा धनिया। तो फिर से मैं सामग्री दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। गुजराती खांडवी के लिए 1 कप बेसन ले लीजिए, 2 कप छाछ लेनी है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिएगा, नमक अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, अदरक हरी मिर्च की पेस्ट 1 चम्मच आपको लेना है। फिर तड़का के लिए लेना है तेल 1 चम्मच, 1/2 चम्मच राई, 1 चम्मच तिल, करी पत्ते और हरी मिर्च आवश्यकता के अनुसार, ऊपर से नारियल, कद्दूकस किया हुआ, हरा धनिया। अब बनाने की विधि भी ध्यान से सुनिएगा, कैसे बनाया जाता है खांडवी, आप कैसे बनाएंगे। बेसन और छाछ को अच्छी तरह घोल करके उसमें नमक, हल्दी और अदरक हरी मिर्च की पेस्ट डालिए। हाँ, ये सब मिक्स करते समय ध्यान रखिएगा, घाट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, घाट नहीं पड़नी चाहिए। तो ये हो गया इसका मिश्रण। अब मिश्रण को कढ़ाई में डालकर लगातार आप हिलाते हुए मध्यम आंच पर इसको पकाइए। जब मिश्रण गाढ़ा होकर के चिकना हो जाए तो तुरंत ही थोड़ा सा मिश्रण थाली या प्लेट के पिछले पतली परत में फैलाइएगा। ठंडा होने पर चाकू से लंबी पट्टियां काट करके इसके रोल बना लीजिए। ऊपर से राई, तिल, करी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का लगाइएगा। और जब ये तड़का लगा दो तो ये जो खांडवी का आपने रोल बना रखे हैं, इन रोल को सब में एक जैसा जमा करके ये सारा मसाला उन रोल पर डाल दीजिए, और फिर ऊपर से नारियल और हरा धनिया भी डाल दीजिए। तो ये बन गई खांडवी। आप ध्यान से सुनिएगा विधि फिर से। आप क्या करेंगे, बेसन और छाछ लिया है, बेसन को छान दीजिए और बेसन में छाछ डाल करके इसका घोल तैयार करिए। फिर इसमें देखिए नमक, हल्दी, अदरक हरी मिर्च की पेस्ट भी डाल दीजिए। फिर इस मिश्रण को अच्छी तरह मिक्स करिएगा, घाट नहीं पड़नी चाहिए,

के अब मिश्रण को कढ़ाई में डाल करके लगातार हिलाते हुए, जब ये मिश्रण तैयार हो जाए ना उसके बाद की प्रोसेस आपको बता रही हूँ, मिश्रण को कढ़ाई में डाल करके लगातार आप हिलाते रहिए, गैस चालू कर दीजिए और इसको हिलाते रहिए। नहीं हिलाएंगे ना तो गठाने पड़ जाएगी, फिर वो बेसन का स्वाद आएगा, खांडवी का स्वाद नहीं आएगा, इसलिए लगातार हिलाते रहिए, ठीक है, मध्यम आंच पर इसको पकाते हुए। जब मिश्रण गाढ़ा हो करके चिकना हो जाए तो तुरंत ही आप थोड़ा सा मिश्रण थाली या प्लेट के पिछले भाग में, ठीक है, पिछले भाग में थोड़ी सी चिकनाई लगा दीजिए, और चिकनाई लगा करके थोड़ा सा मिश्रण तुरंत डाल करके उसको फैला दीजिए, ठीक है। और फैलाने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो फिर इसको चाकू से लंबी लंबी पट्टियाँ, जैसे हम शक्कर पाले कर लंबी लंबी एक बार तो लंबी लाइन काटते हैं ना, बाद में हम तिरछी, तो हमको तिरछी नहीं काटनी है, लंबी लंबी काटिएगा, ठीक है। और काटने के बाद जब ये लंबी पट्टी हो गई है, अब इसका राउंड कर दीजिए, राउंड करके किसी बर्तन में रख दीजिए। और इधर आप क्या करेंगे, कढ़ाई रखिए गैस पर, फिर से उसमें तेल डालिए, तेल में राई का तड़का लगा दीजिए, राई, तिल, हरी मिर्च और मीठा पत्ता, इन सब का तड़का लगा दीजिए। जब ये तड़का लग जाए तो इस तड़के को, अब ये जो खांडवी आपने बना रखी, रोल बना रखे हैं ना, रोल बना करके एक बर्तन में आपने रख दिया है, अब इसके ऊपर आप ये जो तड़का लगाया है सारा मसाला डाल दीजिए, चारों तरफ फैला दीजिए, और फिर ऊपर से नारियल कद्दूकस किया हुआ और हरा धनिया डाल दीजिएगा। तो ये बन गई खांडवी, बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी पसंद करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप अपने इष्ट देव को भोग लगा करके ही खाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बन जाए तो चिंता मत करना, रख देना, इसमें खटाई है, ख़राब नहीं होगा, दूसरे दिन भी आप खा सकते हैं, ठीक है। और आज के प्रश्न की तरफ फिर से बढ़ते हैं। देखिए, दो मिनट के लिए कुदरत आपको छूट दे देवे कि आप अपने पसंद के बुजुर्गों से मिल सकते हैं, दिवंगत आत्माओं से मिल सकते हैं, तो सबसे पहले आप क्या उनको पूछना चाहेंगे, यह आज का प्रश्न है भाई। जैसे चलिए मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे मैं ये दुनिया छोड़कर चली गई, ठीक है, फिर दो मिनट के लिए ईश्वर ने या कुदरत ने छूट दी है कि हाँ भाई, आप सभी को पता चल जाए कि हाँ, आज दो मिनट के लिए उषा दीदी आने वाली है रेडियो पर, तो आप मुझे सबसे पहले क्या पूछना चाहेंगे, इस तरह का प्रश्न है, ठीक है। तो जो भी आपके बुजुर्ग इस दुनिया से गए हैं, कुदरत ने दो मिनट आपको दिया है कि आप मिल सकते हैं और पूछ सकते हैं अपनी मन की बात, तो क्या पूछेंगे, यह आज का प्रश्न है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15, और यहीं पर फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टर नी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टर नी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो

प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं जिनको आप आजमा सकते हैं। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, तो रेसिपी में आपको खांडवी बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके खाइएगा। ठीक है, अरे भाई कभी कभार बता दिया करो कि कौन सी रेसिपी बनाई है और कैसी अच्छी, मतलब कैसी लगी है। ठीक है, बहुत सारे श्रोता बंधुओं का इंडिविजुअल फ़ोन भी आता है, लेकिन आप रेडियो में बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अभी कल ही कोई बता रहे थे कि सर्दी खांसी के लिए जो आपने सूखी खांसी के लिए जो इलाज बताया है कि गीला कपड़ा पेट पर रखना है और शहद और काली मिर्च खानी है, उससे हमारे काफ़ी फ़र्क पड़ा है और हमारी सूखी खांसी ठीक हो गई। तो भगवती बहन तारापुर से तो मैं उनके लिए तालियां बजाना चाहूँगी, और अच्छा है, हम तो चाहते हैं कि इसी तरह फ़र्क पड़े, सभी स्वस्थ रहे, हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहे, हम भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई बीमारियों से हम वंचित रहते हैं, लेकिन हाँ वापिस इलाज तो करना ही होता है, नुस्खों के माध्यम से ठीक होने की कोशिश करते हैं। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था, बात अगर आपको अपने किसी दिवंगत बुजुर्ग से 2 मिनट बात करने का अवसर मिले तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे। तो सुभाष भाई महाराष्ट्र से आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। सुरेश भाई ने कहा है, झोटाना वाले सुरेश भाई ने कहा है कि हम यही कहेंगे कि उनको शांति मिले, वो सुखी रहे। तो वो तो देखो, वो तो हम ईश्वर से प्ले करेंगे ना, ईश्वर से दुआ मांगेंगे कि भाई हमारे बुजुर्ग आपके पास आए हैं तो ये इनको शांति मिले, सुखी रहे। लेकिन हम अपने बुजुर्ग से क्या पूछना चाहेंगे, जो हमारे दिवंगत आत्मा है वो हमें मिले तो क्या कहना चाहेंगे। ये जवाब सुभाष भाई महाराष्ट्र से आपने सही जवाब दिया है। पहले तो आपके लिए भाई मैं अपना भी जवाब देती हूँ कि अगर मुझे कोई हमारी दिवंगत आत्मा मिल जाए, 2 मिनट का अवसर मुझे ईश्वर देवे कि आप बात कर लो, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि भाई आपने अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाया, कैसे आपने उन्नति की और कैसे सबको खुश किया आपने। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि ऐसे भी पर्सनैलिटी होते हैं जिनसे सभी खुश और संतुष्ट रहते हैं, तो इस गुण को और भी मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो ज़रूर पूछूँगी कि कैसे आपने परिवार को खुश और संतुष्ट किया, और कारोबार में भी, कर्म क्षेत्र पर भी, और घर परिवार में भी कैसे बैलेंस बना करके आप आगे बढ़े। तो इसमें और भी मैं बेहतर बनने की कोशिश करूंगी, तो यही प्रश्न मेरा रहेगा। किसे हमारे श्रोता बंधु का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए मैं ये दुनिया छोड़कर चली गई, फिर 2 मिनट के लिए भगवान ने चांस दे दिया माइक पर बोलने का, तो आप मुझसे क्या पूछोगे। तो मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी, मजाक की बात है। तो हमारे श्रोता एक जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि दीदी आपको ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो हम यही कहेंगे कि अच्छा आपको और क्या चाहिए, ड्राई फ्रूट्स की कौन सी मिठाई आपको पसंद है जो देवे, क्या चाहिए आपको। इस तरह उन्होंने कहा है, चलिए एक मजाक हो गई, बहुत अच्छी बात है। और आज का मीठा मोती है, सरलता में महान सौंदर्य होता है, जो सरल है वह सत्य के समीप है। अब देखिए समय हो चला है आप सभी से इजाजत लेने का, आज गीत कविता का बिल्कुल समय नहीं है, इसलिए बस हम आप सभी से अनुमति चाहेंगे। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी के नए रंग लेकर आते हैं हम आपके पास। वैसे तो हर कोई चाहता है कि मैं जिंदगी में ये करूं, मैं जिंदगी में वो करूं, लेकिन लौट कर अपने घर की ओर आते हैं, अपने पन की ओर आते हैं, उनके पास आते हैं जिनसे हम बेहद प्यार करते हैं। लेकिन अगर वहाँ रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी भी मुश्किल आ जाती है तो ऐसा लगता है वो सफलता भी कुछ फीकी सी है। तो चलिए उन इमोशंस को संवारते हैं, आपकी जिंदगी को संवारते हैं, सफलता को खुशियों से और भर देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं भावनाओं के बारे में, सेंसिटिविटी वर्सेस सेंसिबिलिटी में आप कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी एक्सपर्ट ग्लोबल अस्पताल से कल्पना जी, जो कि हमारे गाइड हैं और साथ साथ हमारे दोस्त भी हैं। वो एक साइकोथेरेपिस्ट हैं और स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। एक लंबे काल का अनुभव है उन्हें, बहुत लोगों को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं। कल्पना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरुषि जी, ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे रेडियो के माध्यम से श्रोताओं से मुखातिब होने का चांस मिलता है। और जब हम श्रोताओं से ऐसे बातचीत करते हैं तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो अनसुलझी पहेलियां होती है अपने जीवन की, वो धीरे धीरे सुलझते हुए महसूस होती है। सो मुझे अक्सर श्रोताओं से बात करना बहुत पसंद है, तो इस चांस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और मुझे एक बात, जब हम टॉपिक पे आए उससे पहले, क्योंकि कई बार हमें काउंसलर के पास जब जाने की बात आती है तो डर लगता है या फिर घबराहट लगती है कि मुझे कुछ हुआ थोड़ी है जो मुझे जरूरत पड़े जाने की। लेकिन जिसने भी काउंसलिंग की है वो आई थिंक एक्सपीरियंस करके बता सकते हैं कि बहुत ही फ्रेंडली अप्रोच होती है, एक्सेप्टिंग होते हैं और जैसा आपने कहा सुलझाते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप काउंसलिंग के बारे में भी अगर आज हमारे श्रोताओं को बताएं तो हमें अच्छा लगेगा।
1: वंडरफुल, मुझे ये प्रश्न सुनकर बहुत अच्छा लगा और मैं थोड़ा सा पास्ट में चली गई, रिफ्लेक्ट करने लगी कि जब मेरे पास पेशेंट आता है तो वो बहुत चिढ़ा हुआ और गुस्से में होता है कि डॉक्टर ने मुझे यहाँ क्यों भेजा, मैं कोई पागल हूँ या मुझे कोई काउंसलिंग की जरूरत है। सो सचमुच आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि काउंसलिंग में जाना मतलब आपके मेंटल फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है, आप मेंटली शायद ठीक नहीं हो इसलिए आपको काउंसलर के पास जाना पड़ता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास आने वाला कोई भी व्यक्ति केवल 10 मिनट के लिए ही उलझा हुआ रहता है, 10 मिनट के बाद वो महसूस करने लगता है कि अरे मैं तो सही जगह पर आया, क्योंकि हमारा जो अप्रोच होता है हमारे आने वाले हर व्यक्ति की तरफ, जिसको हम काउंसिली कहते हैं या क्लाइंट कहते हैं, उनके प्रति हमारा जो अप्रोच होता है वो किसी भी प्रकार के जजमेंटल नहीं होता है, रिलैक्सिंग होता है। हम अपने आसपास का एटमॉस्फेयर भी ऐसा बना के रखते हैं फिजिकल, जिससे कि आने वाले को ऐसे लगता है कि अरे कितनी अच्छी जगह है ये, कितनी शांति है यहाँ, कितना सुकून है। और फिर जो हमारा इसको कहते हैं ना एप्रिसिएटिव इंक्वायरी,
0: जी
1: एप्रिसिएटिव इंक्वायरी या कंपैशनेट इंक्वायरी का तरीका हम अपनाते हैं, तब उन्हें महसूस होता है कि अरे मेरी बात छोटी भी है या बड़ी भी है तो भी मुझे डिस्कस करनी चाहिए, इतना प्यार से मुझे रिस्पेक्ट देते हुए पूछा जा रहा है। सो 10 मिनट्स लगते हैं लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन जब जुड़ जाते हैं तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि कई माउंट आबू के यूथ है, बच्चे है, जो सालों से खुद फोन करके कहते हैं दीदी मैम मुझे आपके पास आना है, क्या मैं आऊं, थोड़ा मुझे जरूरत है आपके साथ बातचीत करने की। सो दिस इज आवर क्रेडिट कि जब लोग खुद फोन करके कहते हैं कि आज मुझे आपसे मिलने आना है, कई लोग ऐसे हैं माउंट आबू के, आबू रोड के या सिरोही जिले के, जो कहते हैं कि हम खास आपके पास इसलिए आए हैं कि आपके डिपार्टमेंट में आसपास इतनी जो शांति है उस शांति का अनुभव करने के लिए आए हैं, फिर जो आपके पास स्पेशल मेडिटेशन रूम है वहाँ पर बैठने के बाद हमें अपने कई सारे सवालों का जवाब ऐसे ही मिल जाता है, तो हम वहाँ केवल बैठने आए हैं।
0: मतलब आप जब बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कितना प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, और वो डर तो सिर्फ मन में ही है, एक्चुअल रियलिटी तो है ही नहीं। तो अगर आप किसी को नहीं सुना सकते हैं तो आप काउंसलर के पास जाइए, आपको वो एक्सपीरियंस होगा जो आपने सोचा भी नहीं है। तो डेफिनेटली परसेप्शन बहुत अलग है और रियलिटी बहुत अलग है, हम सोचते अलग है होता अलग है,
1: राइट।
0: right. आज आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम रेडियो के माध्यम से भी पहुंच रहे हैं बहुत घरों तक, और ये भी एक तरह की काउंसलिंग है जो शायद हम सबको चाहिए, क्योंकि हम अपनी भावनाओं में खुद ही बहुत फंसे हुए हैं आज कल्पना जी। तो जी, आज जब हमने कुछ एपिसोड्स में बात की थी कि हम सेंसिटिव हो गए बहुत ज्यादा इमोशंस को लेके भी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी सेंसिबिलिटी क्या होते हैं। सेंसिबिलिटी मतलब ऐसा लगता है कि वो दिमाग का काम है बहुत, तो इमोशनल सेंसिबिलिटी।
1: देखो, सिंपल से सेंसिटिव होना, ये जनरल कॉमनली शब्द हम यूज करते हैं कि क्या अरुषि जी आज बहुत आप सेंसिटिव हो गए थी। सो आपको याद है कब आप सेंसिटिव हुए थे? तो आज ही मेरे पास एक सिस्टर आए थे जो कैंसर पेशेंट के लिए प्रमोशन का काम कर रहे थे, जो हमारा अबू रोड में कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर बना है जो कि फ्री कैंसर स्क्रीनिंग करवाता है हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए और आसपास की बहनों के लिए भी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। तो वो प्रमोशनल काम कर रही थी और देख रही थी कि इतना प्रमोशन करने के बाद भी लेडीज स्क्रीनिंग के लिए आने में दिक्कत होती है उनको या नहीं पहुंच पाती है। तो बड़ी उदास हो रही थी, निराश हो रही थी और सेंसिटिव इसलिए हो रही थी, उसके आंखों में आंसू आ गए। इतनी बहनें तकलीफ में हैं, कईयों को पता ही नहीं है। कैंसर जैसी बीमारी ऐसे है जो माताओं बहनों में ज्यादा होती है, एक पेल्विक कैंसर होता है, एक ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो वो बीमारी माताओं बहनों में, क्योंकि उनको ब्रेस्ट है तो वो कैंसर ऐसी चीज है ना, वो पेनलेस गांठे होती है या पेनलेस होता है, वो उसका हमें जल्दी पता नहीं चलता है। तो वो रोने लग गई कि देखो ना, इतनी बहनें तकलीफ में हैं। कई बहनों का स्क्रीनिंग के बाद, डिटेक्ट होने के बाद भी वो मेडिसिन नहीं ले रही है, ट्रीटमेंट नहीं ले रही है, मुझे नहीं समझ में आता है क्या मजबूरी है उनकी। तो वो रोने लगी तो हम थोड़ा सा चुप हुए। आसपास हम जो दो काउंसलर्स बैठे थे, हमने कहा जो आपको रोना आ रहा है ना, इसे सेंसिटिविटी कहते हैं। जो आपका काम है, जो आपका प्रोफेशन है, अगर आप हर बार ऐसे रोते रहेंगी, मेरे पास पेशेंट आते हैं अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं, तो अगर हम उनकी कहानी में रोने लगे या सेंसिटिव हो जाए तो हम उनको मदद कैसे करेंगे, है ना। तो सेंसिटिव होना मतलब जल्दी से इमोशंस के प्रभाव में आकर उस इमोशंस के साथ रिएक्ट करना, चाहे वो गुस्सा हो, रोना हो, उदास होना हो, निराश होना हो, या डर लगना हो, चिंता होनी हो, या लज्जा आनी हो, शेम फील करना हो, या गिल्ट फील करना हो, ये जो फीलिंग हम तुरंत रिएक्ट करते हैं उसको सेंसिटिविटी कहते हैं। ये बहुत सेंसिटिव है, तुरंत रोने लगती है, ऐसे बोला जाता है,
0: ऐसे बोला जाता
1: है। एंड हमें अब सेंसिटिविटी से सेंसिबिलिटी की तरफ बढ़ना है। सेंसिबिलिटी का मतलब है समझदारी, संवेदनशीलता।
0: ओके,
1: संवेदनशील, उसमें शील शब्द आता है, शील मना वो ऊंचा चरित्र है।
0: ओके,
1: है ना। सो संवेदना क्या है कि भाई हम दूसरों की बात को समझते हैं, उनके साथ हम खड़े हैं, परंतु जब वो इमोशनल है तब हम स्टेबल रहते हैं, शांत रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और उनके अपने साथ होने का, मैं उनके साथ हूँ ऐसा हम उनको एहसास कराते हैं। इसलिए रोना जरूरी नहीं है, रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, चेहरे के हाव भाव बदलना जरूरी नहीं है, बस किसी के साथ होना, उसको कहते संवेदनाशीलता या समझदार इमोशंस के एक्सप्रेशन। समझो, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में डेथ हो जाती है
0: जी,
1: है ना, तो हम उनके पास सांत्वना देने के लिए जाते हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, उनको रोता हुआ देखकर खुद भी रोने लग जाते हैं
0: जी,
1: है ना, तो माहौल गमगीन हो जाता है। बट ऐसे समय पर ऐसे समझदार लोगों की आवश्यकता है जो बिना रोए उनको साथ का अनुभव कराए। और कई लोग क्या करते हैं कि रोते हुए को बोलते, अरे क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रोने से क्या होगा, रोने से क्या फायदा, ऐसे रिएक्ट करते हैं। ये भी समझदारी नहीं। अगर कोई रो रहा है तो उसे रोने का पूरा मौका देके, जरा सा हल्का करके, फिर उसके बाद हम उनको प्यार से अगर कहे कि कोई बात नहीं, अब जो हुआ है सो हुआ है, हम आपके साथ है, बहुत जल्द आप शांत और रिलैक्स महसूस करेंगे, बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा, है ना। वास्तविकता को सामना करना, किसी की मृत्यु हो या कई बार किसी को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तब भी उनकी स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई व्यक्ति मर गया हो, सब कुछ डूब गया, खत्म हो गया, उड़ीसा में बाढ़ आई, कई जगह बाढ़ आती है, सब कुछ खत्म हो रहा, कल था आज कुछ भी नहीं है। तो ऐसे समय पर रोना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, तो किसी को रोने से रोकने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो रोने का उबाल जब शांत हो जाए तब तक इंतजार करके उस व्यक्ति को सही सपोर्ट करना। इंग्लिश में दो शब्द है, सिंपथी और एम्पथी, है ना, इनको समझना बहुत जरूरी है। सिंपथी वो है कि हम सहानुभूति दिखाते हैं लोगों को और रहम करते हैं उनके ऊपर, उनकी स्थिति पर हमें दया आती है। लेकिन एम्पथी, एम्पथी का मतलब है आप उनके साथ उनकी भावनाओं का अनुभव करते हुए, कदर करते हुए उनके साथ खड़े हैं, है ना, बिना रिएक्टिव हुए, स्टेबिलिटी के साथ।
0: ये एक लाइन है कि हम वहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं भावनाओं के साथ, और यहाँ पे भावनाएं हैं, ऐसा नहीं है भावनाएं चली गई हैं, लेकिन हैंडल कर पा रहे हैं सिचुएशन को बेटर, दूसरे को भी मदद कर पा रहे हैं।
1: जी
0: बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना, मुझे लगता है हम सबको काम आने वाली चीज है, खासतौर से हम आज बच्चों की बात करें अगर, या यंगस्टर्स की बात करें, कई बार हमें बहुत बुरा लगता है, जैसे हम मान लीजिए एक छोटी सी ही बात है, किसी को कुछ चाहिए और लेकिन वो नहीं मिलता है, तो हमें कभी कभी ये लगता है कि बहुत अनफेयर हो रहा है हमारे साथ, कि हमारे माता पिता दे तो सकते हैं हमें, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं दे सकते हैं, बट वो नहीं दे रहे हैं, उनको लग रहा है हम बिगड़ जाएंगे, हम वो कर जाएंगे, तो फिर वो फील होता है कि उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या, और ये तो हमारे लिए जरूरी है, ये तो नॉर्मल है, सबके पास है, चाहे वीडियो गेम हो या फोन हो, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगती है जितना बड़ा रिएक्शन होता है पेरेंट्स का कि नहीं मिलेगा, तो फिर उससे इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, और लगता है कि वो हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे, वो इनसेंसिटिव है हमारी भावनाओं को लेकर, तो ऐसे में फिर क्या करें।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, आजकल की जो पीढ़ी आगे आ रही है उनमें बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, सेंसिबिलिटी की कमी महसूस होती है। सेंसिटिविटी का मतलब है कि उनको हर वो चीज जो चाहते हैं वो तुरंत मिलनी चाहिए, अगर ना मिले
0: इनसेंसिटिव लगते हैं, ऐसा लगता है वो हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे, वो इनसेंसिटिव है, हमें तो जरूरत है, बट हाउ कैन दे बी सो इनसेंसिटिव।
1: बिल्कुल ये उनकी जो समझ है वो सही नहीं है। मैं एक घटना के साथ आपको उस बात को समझाना चाहूंगी।
0: जी।
1: हमें साइकिल चाहिए, या हमें स्कूटर चाहिए, या हमें मोबाइल चाहिए। अच्छा, मोबाइल की आवश्यकता जब है तब वो आवश्यकता कितनी है, मतलब बेसिक चीजें उसमें से हमें यूज करनी है, जैसे फोन पर बात करनी है, या मैसेजिंग के लिए यूज करना है, इमरजेंसी के लिए यूज करना है, पढ़ाई के लिए यूज करना है, बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो पढ़ाई में काम आते हैं, बट फोन एक लग्जरी हो जाए, रिक्वायरमेंट की जगह वो एक लग्जरी का साधन बन जाए, शो करने के लिए अपने दोस्तों के सामने कि मेरे पास इतना महंगा मोबाइल है। तो जब माता पिता वो पूरी नहीं करते इच्छा, तो बच्चे रिएक्ट हो जाते हैं, इनसेंसिटिव समझते कि इनके पास तो इतना धन दौलत है, फिर ये हमें क्यों नहीं देते हैं,
0: हमारी खुशी के लिए इतना तो कर सकते हैं,
1: कर सकते हैं ना, बट बच्चे तो नादान है, उनको नहीं पता, पेरेंट्स को पता है कि ये चीज के साथ नहीं, भावनाओं की बात है, चीज की बात नहीं है, भावनाओं की बात है। अब इसमें कौन सी भावनाएं जुड़ी है, देखो हर एक इंसान को समझना चाहिए कि मेरी आवश्यकता क्या है और लग्जरी क्या है, मतलब बिना आवश्यकता के मैं दूसरों को दिखाने के लिए वो चीज कितनी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर शो के लिए मुझे वो चीज लेनी है, तो ये सेंसिबिलिटी है भावनाओं की कि वो चीज आपके काम नहीं आएंगी, या काम की चीज आप उससे यूज नहीं कर पाएंगे, बिना काम के चीजों में आपका उसमें टाइम चला जाएगा, जैसे गेमिंग है, या फिर मेरे पास कई ऐसे यूथ के माता पिता आए हैं, यूथ्स के, कि हमारा बेटा मोबाइल पर पता नहीं क्या कुछ गेम के माध्यम से पैसे कमाने का कोई पता, मुझे भी नहीं पता है ये कि वो कुछ करते हैं। तो पेरेंट्स आते हैं कि ये इसको अभी लत लग गई है, ये गेम्स के माध्यम से पैसा कमाने के लिए घंटों फोन से चिपका रहता है। सो ये नहीं हो, इसलिए पेरेंट्स लग्जरियस चीजें बच्चों को प्रोवाइड करने में थोड़ा सा समय लेते हैं। तो अब मतलब मेरी भलाई तो मुझे ही सोचनी है ना, पेरेंट्स सोचते हैं तो हमें उनको लगता है कि वो सेंसिटिव नहीं है,
0: इस जनरेशन को नहीं समझ रहे, वो हमें वैसे बड़ा करना चाहते हैं जैसे वो बड़े हुए हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: टाइम चेंज हो गया, उनके पास फोन उस समय नहीं था, अब है, तो फिर why not?
1: हाँ, तो सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी अगर हम हर चीज में इस बात को अप्लाई करते हैं तो बहुत मजा आएगा। सेंसिबल बनकर कोई काम करना या सेंसिटिव होकर कोई काम करना, इसमें हमें फायदा है। अगर हम सेंसिबल बनके, मतलब समझदार बनके अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए, अगर पेरेंट आपको कुछ चीज देने में देरी करते हैं तो मुझे बताइए कि आप में कौन सी एक वैल्यू है जो डेवलप होगी अगर आप इंतजार करेंगे।
0: ओके, आई थिंक पेशेंस।
1: यस, पेशेंस डेवलप होगा, है ना? और पेशेंस कितना जरूरी है, कोई भी चीज पाने के लिए अगर हमें इंतजार करना पड़ता है तो वो चीज मिलने के बाद उसकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है। और हम में वो वैल्यू आ गई पेशेंस की, तो हर चीज हमें सिखाने वाली है। क्यों ना हम सेंसिबल बनकर ये सोचे कि चलो अगर देर हो रही है या पेरेंट्स मेरी बात नहीं समझ रहे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम एक किस्सा लेते हैं कि समझो एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स से कुछ डिमांड कर रहा है और पेरेंट्स उसको नहीं दे रहे हैं, तो वो समझता है कि मेरे पेरेंट्स के पास तो है, कैपेबिलिटी है, फिर भी नहीं दे रहे हैं। और बच्चे की मांग, तो अब बच्चा अगर ये करे, जिद करने की जगह, गुस्सा करने की जगह, टेंट्रम दिखाने की जगह, वो पेरेंट्स को बोले कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ।
0: ओके,
1: मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो दोनों पेरेंट्स बैठ जाओ एंड मैं भी बैठता हूँ। क्या बात करनी है बेटा? तो वो बेटा बोलेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने इतने कामों के लिए जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे ये चीज आप अगर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पेरेंट्स क्या कहेंगे? हाँ बेटा, हम जानते हैं आपको इस चीज की बहुत आवश्यकता है, परंतु हम जो घर का खर्चा चला रहे हैं, EMIs भर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने EMIs जो जा रहे हैं, इसके कारण थोड़ा मैनेज करने में हमें अभी दिक्कत आ रही है, तो क्या हम आपको थोड़े दिन के बाद पैसे को मैनेज करके आपको दे तो आपको चलेगा?
0: मतलब बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स बताते नहीं है कई बार।
1: हाँ,
0: बच्चे या कुछ
1: वो सोचते हैं क्यों हम अपनी परेशानी बच्चों को बताएं। हाँ, तो वो सोचते हैं कि ठीक है थोड़े दिन बाद मैनेज करके दे देंगे उनको। तो बच्चों को जब समझ में आता है कि अरे जैसे मेरी 4-5 प्रायोरिटीज है, रिक्वायरमेंट्स है, वैसे 4-5 चीजों जगह पर उनको मनी मैनेज करना है, तो मैं थोड़ा सा रुक सकता हूँ। और वो देखता है कि कितना सिंसियर इफर्ट कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स मुझे वो चीज दिलवाने के लिए, तो उसको कदर होती है उस चीज की, उसे एहसास होता है कि इस वजह से देरी हो रही है।
0: ओके,
1: है ना? तो उसमें पेरेंट्स के बीच में बहुत ये जो फैमिली का बॉन्डिंग है ना, पेरेंट्स के बीच में एक पीसफुल कम्युनिकेशन होता है, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एक बहुत सुंदर ब्रिज बन जाता है। मैं देखती हूँ आजकल रिलेशनशिप में वॉल्स बनती जा रही है, दीवारें खड़ी हो रही है आपस में, शेयर नहीं करते, तो ब्रिज बन जाएगा।
0: That's wonderful, क्योंकि सेंसिबिलिटी की बात है, भावनात्मक, तो मुझे लगता है बच्चे शायद इतना नहीं समझेंगे, पर बच्चों को बताएंगे तो समझेंगे और वो बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा। ये हमने आज जाना आज के एपिसोड में। आई थिंक बहुत बहुत ही अच्छा आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन था, बहुत इंटरेस्टिंग था कॉन्वर्सेशन। जाते जाते कल्पना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई भी ऐसे 2 मिनट का आप हमें एक्सपीरियंस करा सके या कोई भी ऐसे शब्द बता सके जो हम शायद रिकॉल करें, तो हम ये बातें याद रखें, अपने साथ लेकर जाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आज हमने सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी दो शब्दों को अच्छे से समझा और उन्हें महसूस किया, तो उसी तरह से अगर हम सेंसिटिविटी को सेंसिबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो हमें कुछ अभ्यास मेंटल और फिजिकल करने की आवश्यकता है। जो एक छोटा सा अभ्यास हमें बहुत सारी चीजों को अचीव करने में मदद करेगा, इंटरनली, इमोशनली और फिजिकली भी। तो एक बहुत सुंदर अभ्यास है जिसको अगर हमारे यूथ 1 मिनट के लिए भी बैठकर करें। अरुषि जी, आप ये बताएंगे कि 1 मिनट में हम कितनी सांसें लेते हैं?
0: गिननी पड़ेगी।
1: चलो, तो हमारे श्रोताओं को ये अभ्यास है कि वो गिने 1 मिनट में कितनी सांसें।
0: मैं भी करूंगी अभ्यास, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है।
1: और गिनते समय थोड़ा हर सांस को लंबा और गहरा लेने की कोशिश करें। इसे सांस हम नाक से लेते हैं तो हमारे छाती से होकर पेट तक पहुंचती है सांस। तो एक बहुत सुंदर अभ्यास है कि बस शांति से बैठ जाए, अपनी सांसों को देखे और लंबी और गहरी सांसें ले, और उसके साथ अपने मन में दो या तीन विचारों को दोहराए जो भी आपको अच्छे लगते हैं, है ना। सो आज के टॉपिक के अनुसार हम क्या ले सकते हैं कि आई एम अ सेंसिबल पर्सन। गहरी और लंबी सांस लेकर अपने सांसों को देखने का अभ्यास करें, हर सांस के साथ अपने मन और शरीर को रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स फील करें। अपने मन में इन विचारों को दोहराए, मैं संवेदनाशील सेंसिबल हूं। संवेदनाशीलता सेंसिबिलिटी मेरी शक्ति है। गहरी और लंबी सांस ले, इस सवाल को, इस प्रश्न को या इस वाक्य को दोबारा दोहराए, मैं संवेदनाशील हूं, मेरी संवेदनाशीलता मेरी शक्ति है। गहरी लंबी सांस ले, दूसरा वाक्य है, मैं प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना और सोचना ये अभ्यास करती हूं। मैं प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना और सोचना ये अभ्यास करती हूं। गहरी लंबी सांस ले और रिलैक्सेशन के साथ तीसरा अफर्मेशन या तीसरा वाक्य अपने मन में दोहराए, मैं आहत होने पर भी सम्मान पूर्वक संवाद करना चुनती हूं या चुनता हूं। मैं आहत होने पर भी सम्मान पूर्वक संवेदनाशील होकर संवाद करना चुनती हूं या चुनता हूं। गहरी लंबी सांस लें और इसी के साथ हम यहीं पर इस चीज को समाप्त करते हैं।
0: थैंक यू सो मच कल्पना जी। मुझे लगता है हमने आज डिफरेंस भी जाना, सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी की वो लाइन को भी समझा, और किस तरह से रिएक्ट करते हैं इमोशंस को लेके, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है वो भी जाना, और कैसे हमारा उससे बॉन्ड भी हमारे हर रिलेशनशिप से बेटर हो रहा है ये भी जाना। वो तो हम सब चाहते हैं कि हो, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमें इस कार्यक्रम में समय देने के लिए।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और सबसे पहले हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच दोस्तों, और चलिए फिलहाल वक्त हो गया इजाजत लेने का। लव यू जिंदगी के साथ लव यू जिंदगी कार्यक्रम में अगली कड़ी में मुलाकात होगी। तब तक जिंदगी को खुल कर कहिए कि लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, यानी माई विलेज माई एरिया। क्योंकि जिस गांव और जिस अंचल में रहते पले बड़े और यहां तक पहुंचे, वो गांव और अंचल को कभी नहीं भूल पाते। वो अपनापन होता है, स्वर्ग जैसे लगता है। और सरकार का जो मंशा है, आसपास गांव में जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, सिर्फ उनका पास क्यों सीमित रहे? सब तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच, एक स्टेज देता है। क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं। और आपको विदित होगा, ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय, दोनों विद्यालय का मिलित सहयोग से बच्चों का प्रतिभा को, बच्चों का विकास को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज आब रोड ब्लॉक से सीधा पहुंचे पिंडोड़ा ब्लॉक में और सनवाड़ा आर में पहुंचे। आर मन में राजी खुशी रहने वाले सभी आर है, तो आज राजी खुशी कराएंगे, इस कार्यक्रम को सजाएंगे बारी बारी। और पहला प्रस्तुति सुनने का इंतजार कर रहे हमारा सभी श्रोता मित्र लिसनर, बच्चों का हुनर को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज पहुंचे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सानवाड़ा आर में। तो पहला प्रस्तुति एक वार्म अप कराने के लिए मैं सर को, जो कि संस्कृत का प्रभारी है और संगीत में रुचि रखते हैं, उनका आवाज सुनकर बच्चे भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप सुनना लास्ट तक, कितना बच्चे क्या क्या प्रस्तुत लेकर आए हैं। और वार्म अप कराने के लिए सर अपना परिचय दीजिए, हमारा श्रोता मित्र भी जाने। हाँ, ये सर को हम जानते हैं।
1: धन्यवाद रेडियो मधुबन, आज आप हमारे विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनवाड़ा आर में पधारे हो, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन।
0: जी सर,
1: मैं इस विद्यालय में अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, मेरा नाम राजेंद्र टेलर है।
0: जी सर,
1: और इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मैं बढ़ चढ़कर विद्यार्थियों को प्रेरित भी करता हूँ, खुद भी भाग लेता हूँ।
0: अरे वाह।
1: तो एक सामूहिक गीत जो देशभक्ति गीत है,
0: जी सर,
1: उससे मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत आगाज करना चाहूंगा।
0: शुरू।
1: स्वयं अब जाग कर हमको

0: खोने का, बड़े बल राष्ट्र का जिससे वो करना मेल है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना, देश है अपना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और जगा दिए जो सोए हुए हैं उनको जगा दिए, और गीत का माध्यम हम जगेंगे तो जग जगेगा, हम सोएंगे तो जग भी सो जाएगा, इसलिए इस गीत का जो मोटिवेशनल गीत है सही में जो ध्यान से सुन रहे हैं उसको तो मजा आ रहा होगा, और हम जगेंगे तो सजाग रहेंगे और देश भी सजेगा, हम जगेंगे देश सजेगा, तो सजबाज होकर हम चलेंगे। और आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम काल तक हम पहुंच रहे, जब आजादी का 100 साल 1947 में बनाएंगे, ये बच्चे ही आगे और सर भी बच्चों को उमंगों साथ दे रहे हैं, और देशभक्ति का साथ साथ एक जनहित में एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, सर को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रस्तुति के लिए, वार्म अप करा देने के लिए, और इसको भी आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ और एक छोटी सी परी गुड़िया है वो भी आएगी, क्या प्रस्तुति करेगी वो सुनाएगी, उसका नाम का साथ सर का साथ ही।
2: मैं कक्षा 5 में पढ़ने वाली दीपिका हूँ, मैं एक आपके सामने गीत लेकर आने वाली हूँ, अगर गलती हो तो क्षमा करना।
1: सुनाओ।

0: मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
1: क्या बात, क्या बात, ताली बजाओ बच्ची के लिए। फिर से नाम बताओ।
0: मेरा नाम दीपिका है।
1: दीपिका, तो दीप प्रज्वलन कर दिया और दीपिका दीप जला, सबको सार ने दीप का बिना जागरूक तो होंगे नहीं, इसलिए वो जला ज्योति जगा दिए और दीपिका इस कार्यक्रम को सजाए। छोटी सी बच्ची परी है लेकिन कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, पूरा बुलंद आवाज से इसका श्रेय तो उनका सर को जाता है और उनका माता पिता को जब सुनेंगे, अरे ये हमारा दीपिका का आवाज, क्या वाह क्या वाह वाह वाह करेंगे सही में। और नामांकन में भी वृद्धि होगा, बच्चे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ इस तरह कार्यक्रम में भाग लेते। दीपिका को तो मानना पड़ेगा, कभी कंपटीशन करेंगे तो दीपिका को याद करेंगे, है ना दीपिका? बहुत अच्छा, चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे। एकल गान के लिए हमारा शक्ति का साथ आएगा पांडव, लेकिन अल्प विराम का बाद।
2: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, माने आवे पिया जीरी हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान

ओम शांति। मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा दीपिका और सर पूरा उमंग उत्साह बढ़ा दिए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अगला कड़ी में और एक छात्र तो कौन सा क्लास के और कहां से अपना परिचय देंगे।
1: मैं कक्षा 11 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम कल्याण सिंह राणावत है। मैं आपके सामने एक प्रस्तुति लेके आया हूँ। मैं एक माँ के ऊपर सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ।
0: बाबा माँ का बराबर कोई नहीं कर सकता। माँ माँ मतलब भारत माँ और हमारे घर में भी माँ और माँ का तुलना किससे कर नहीं सकते, लेकिन इतना अपरंपर है। चलिए और एक प्रस्तुति हमारा माँ का बराबर।
1: ओ जीना जीना जीना रे उड़ा गुलार, माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना जीना रे उड़ा गुलार, माई तेरी चुनरिया लहराई। रंग

0: जब मुझ पे उठा सवाल, माही तेरे चूनरिया लहराई, जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हुमा। एक दिन चमकूंगा मैं तो तेरा सितारा हुमा। माई रे तेरा सितारा हुमा।
1: क्या बात, क्या बात। सही में माँ बाप भगवान तुल्य होते हैं, भले सबको भूलो लेकिन माँ बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। चाहे भारत माँ हो, चाहे देश हमारा माँ हो, और अपना माँ कभी भूलना नहीं चाहिए। उनका अवदान, उनका त्याग, उनका तपस्या हमारा जीवन में बहुत कुछ काम में आता है। तो इस गीत का माध्यम से, सीख भरी गीत का माध्यम से हमें बहुत कुछ सुनने को मिला। इस कड़ी में ही एकल के बाद डबल कविता प्रस्तुत होगा अभी, और नाम का साथ बताएंगे। कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, सबका सामने। इतना बच्चे, फिर भी छोटी बच्ची कौन सा क्लास के?
2: पांचवी,
1: फिफ्थ क्लास। नाम बोलना।
2: मेरा नाम राजश्री है, मैं कक्षा पांच में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने एक कविता सुनाना चाहती हूँ, गलती हो तो क्षमा।
1: कौन रखा नाम राजश्री?
2: पापा ने।
1: भाई पापा को कैसे बोलेंगे, माँ का गीत सब तो गाए लेकिन हमारा बच्ची बोला हमारा पापा कम नहीं है। माँ का गीत सभी तो गाए लेकिन पापा पापा होते है ना। पापा घर में नहीं होते तो पैसा नहीं होता, पापा घर में नहीं होते तो हमको बाजार में घुमाने के लिए कौन लेगा, खर्ची कौन देगा, पापा देते ना। इसलिए पापा को भी भूलना नहीं चाहिए। पापा घर का पूरा मुरब्बी है, मुखिया ना। माँ मुखिया, कौन मुखिया है घर के? पापा ना, बड़े ना माँ बड़े होते, पापा है ना। पापा कमाते, पापा कमाते और मम्मी खर्च करते। चले राजश्री का गीत सुनाएगी, सुना।
2: हे भारत के राम, जागो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, सो धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज दरबार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जागो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की बेरी बज रही है, उठो मौन निंद्रा, त्यागो पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र, जागो हे भारत के राम, जागो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ।
1: जगाने के लिए सर ने पहले जगा दिया और बच्चे तो जग गए। जगना चाहिए, और जो जग गए उसके लिए सवेरा है, जो जग गए उनके लिए नया सवेरा है, जो सोया है वो खोया है। इसलिए जो जगेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो रोएगा वो खोएगा। इसलिए जगना है और सबको जगाना है, खुद जगकर दूसरों को भी जगाना है। बहुत अच्छा गीत, और माँ बाप का भी महिमा होता है। तो इस कार्यक्रम को लेते हुए और एक एकल गान तो सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

0: चलिए ब्रेक का पहले हम सुन रहे थे छोटी सी परी अपना गीत को सुनाए, बहुत अच्छा लगा। इसको आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए दो छात्रा उपस्थित है, वो भी अपना परिचय का साथ नाम का साथ बताएंगे और क्या प्रस्तुत करेंगे वो सुनाएंगे।
1: हम दोनों कक्षा 6 में पढ़ती है, हमारा नाम मानसी और भव्या है। हम आपके सामने एक कविता सुनाने आए हैं।

0: जन्माष्टमी का पर्व मनाए, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की।
1: छोटी सी कविता है लेकिन उसमें बहुत सार है, क्योंकि नेक्स्ट टू गॉड कहते कृष्ण का, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, और कृष्ण का देश का माँ का बाप का सबका महिमा हो रहा है। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ दो छात्रा है तो उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम को सजाने के लिए।
2: मैं कक्षा 6 की छात्रा, मेरा नाम कन्या और छाया कुमारी है। हम दोनों एक छोटा सा संगीत सुनाना चाहती हूँ। छोटी

0: जन गोपाल।
1: चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और सभी का आवाज में जो दम है, मधुर आवाज है, कोई प्रस्तुति नहीं था, अचानक में आए, कोई सूचना नहीं था, फिर भी बच्चे अचानक में एवर रेडी थे बच्चे ये कम बात नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं था, फिर भी बच्चे अपना आवाज को दिए, इसलिए धन्यवाद देते। और इसका आश्रय तो संस्था को जाता है, संस्था प्रधान सभी विद्यालय के बच्चों को, माता पिता को भी जाता है, क्योंकि बच्चों को इतना उमंग उत्साह, उनको सब कुछ देते माँ बाप, खुद नहीं खाकर बच्चों को खिलाते, खुद नहीं पहनते बच्चों को पहनाते हैं, चप्पल खुद नहीं पहनते माँ बाप, फिर बच्चों के लिए नया नया सब चीज देते हैं, इसलिए माँ बाप को भी धन्यवाद, इतना उमंग उत्साह देकर विद्यालय में भेजते हैं। और उनका हुनर, उनका जो विशेषता को आज प्रस्तुतिकरण रेडियो मधुबन का माध्यम से हो रहा है, इस कड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ और एक प्रस्तुति को लेकर आए हैं। तो कौन हो होनहार, स्वर्ग में एक सीट खाली जैसे है, रेडियो में एक सीट खाली के लिए आ जाओ, बड़े बच्चे भी आए हैं। परिया, तो अपना नाम और कौन सा क्लास और कहाँ से?
2: मैं कक्षा 11 की छात्रा, मेरा नाम मानसु कुंवर है।
3: मैं कक्षा 11 की छात्रा, मेरा नाम जसवंत कुंवर है।
2: हम दोनों एक प्रस्तुति आपके सामने रख रहे हैं, गलती हो तो क्षमा करें।

0: हाँ धन्यवाद।
1: सच्चा वीर, वीर तो सब बनते लेकिन सच्चा वीर, सच्चा वीर सदा, एक दिन सच्चा नहीं, सदा सच्चा वीर चाहिए। वीर तो बहुत है लेकिन सच्चा वीर भी होना चाहिए, और सच्चा भी एक दिन के लिए नहीं, सदा। और ये कौन बना पाएगा? माँ, माँ के पास इतना शक्ति है। बाप भी सहयोग देता है लेकिन माँ मेकर है, माँ को ही क्रिएटर कहते हैं, जैसे गॉड क्रिएटर है, जन्मदाता। तो माँ का अवदान और वो क्रिएटर है, और ऐसे सच्चा सदा वीर है। तो इस गीत के माध्यम से मैं सुने, तो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं तुम बताओ?
0: मैं पुलिस बनना चाहती हूँ।
1: देखो बहन बोला मैं पुलिस, भाई लोग आएगा तो जो डाकू गुंडागिरी करता है तो उनको कैसे संभालेंगे? आप तो लड़की है, वो तो लड़का है, उसके पास शक्ति है, और वो दादागिरी करेगा, तुम पुलिस होकर तो उसके सामने तो डर जाएगी।
0: कैसे डरेंगे, हमारे माँ ने हमको पहले से हिम्मत दे रखी है।
1: क्या बात, श्रोता मित्र सुन रहे हैं, कौन बोलता है भाई लड़का आगे बढ़ सकता है, लेकिन लड़का को भी सवार करने के लिए खराब करेगा, लड़का कोई भी हो, तो उनका पास यदि हम सच्चे दिल से सच्चा वीर होंगे तो जरूर हम उसको क्या करूंगे सम्मुखीन मैंने फेस कर सकते हैं। और ये बोला माँ का पालना लिए, माँ का दूध पिया है, बोलते ना, तो वो सास रहेगा बहुत अच्छा। नेक्स्ट तुम क्या बनेगी? वो तो पुलिस बनेगी। तुम?
2: मैं सच्चा वीर के साथ भी मैं भी पुलिस बनना चाहूंगी।
1: सच्चा वीर मैंने रक्षा, सेल्फ, खुद को रक्षा करेंगे पहले, सेल्फ डिफेंस, इसके बाद दूसरों को भी रक्षा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और दो छात्र उपस्थित है उनको भी सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद। लेकिन आप सब भूलना नहीं, ये आप सब सुन पा रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनवाड़ा आर।

0: क्या बात क्या बात, कितना सुंदर प्रस्तुति। और बच्चों को जो मौका मिला, ये मौका का तो चौका छक्का लगा रहे अपना अपना बात को, क्योंकि उनका दम है और उमंग है। सर मेरा ऐसे कहते कहते जोड़ते जा रहे। और इस कार्यक्रम में एक माला गुलदस्ता बन रहा है। गुलदस्ता कैसे, आवाज का गुलदस्ता, जैसे गुलदस्ता में वेराइटी फूल होता है, कितना मजा आता है। तो आवाज का गुलदस्ता बन रहा है हमारा कार्यक्रम, और हमें खुशी है क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा और सामुदायिक के लिए। फॉर द रेडियो, ऑफ द रेडियो और बाय द रेडियो, रेडियो द्वारा रेडियो का बच्चे रेडियो में भाग ले रहे। चलिए इस कार्यक्रम को सजाने के लिए दो छात्र उपस्थित है, तो दो परी, तो नाम बताएंगे। अभी चेहरा से स्माइलिंग आ रहा है ना, बताइए नाम।
1: मेरा नाम साक्षी कुंवर और मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ।
0: गुड।
1: मेरा नाम संजना माली और मैं भी कक्षा 11 की छात्रा।
0: वेरी गुड। साक्षी दृष्टा होकर हम सब सुन रहे, देख रहे और हमारा श्रोता भी साक्षी होकर देख रहा। क्या बात, साक्षी इस कार्यक्रम को सजाएगी। तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है साक्षी?
1: यहाँ पर नहीं है, वो बहुत दूर है मेरे से।
0: मेरा दूर से कोई पहुँच नहीं पाएगा, मैं ही पहुँच पाऊंगा। मेरा दोस्त का खुदा दोस्त होगा, इतना दूर कोई नहीं पहुंच पाएगा। भाई मेरा दोस्त यहीं पर नहीं रहता है, वो बहुत दूर ऊपर वाला ही, मुझे लगता है ऊपर वाला ही उनका दोस्त होगा, क्योंकि ऐसे कोई बोला नहीं भाई मेरा दोस्त यहाँ पर कोई मिलेगा नहीं। मेरा दोस्त ऐसे होना चाहिए, मेरे जैसे होना चाहिए। मैं दोस्ती उससे करता हूँ जो मेरे से संस्कार मिलता है ना सच्ची। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तुम्हारा अच्छा फूल का नाम बताओ, कौन सा फ्लावर, कौन सा कलर का फूल आपको पसंद है? हाँ, गुलाब कितना देखने में मजा आता है, लेकिन वो उसका जीवन कांटे से भरपूर है, कांटे से पार होकर वो गुलाब बनता है। तो हमारा हर कदम में भी कांटे जैसे, लेकिन हमें उसे पार कर आगे गुलाब फूल जैसे बनना है। बहुत अच्छा, लाल कलर है गुलाब फूल और उनका विशेषता अधिक है। चलिए एक प्रस्तुत सुनेंगे।
2: आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के दुम्ब हार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी पे दुम्ब हार दो। आन

0: मौत अंत है नहीं तो मौत से भी उड़े ये जाके आसमान में दहाड़ दो आरंभ है प्रचंड।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। इस कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हमारा 3 छात्र है तो वो भी प्रस्तुति देने के लिए तैयार है। एक कदम हमारा है, 1000 कदम सभी का है और परमात्मा का है। तो एक कदम एक स्टेप हमारा है, शुरुआत हमारा से और समाप्ति दूसरों से। चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, हेलो नाम बताइए।
2: मेरा नाम दीक्षा कुंवर है।
3: मेरा नाम शिवानी कुंवर है।
4: मेरा नाम आस्था माली है।
1: क्या सुंदर सुंदर आवाज, कौन नाम रखा है उनको धन्यवाद देंगे, माता पिता को भी। सुंदर सुंदर नाम रखा है और इस नाम से उनका पहचान होता है, इनका नाम और आवाज से पहचानते हैं। नाम नहीं बोलेगा तो आवाज भी सुनेंगे ना, ये तो लता मंगेशकर का आवाज है, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही आवाज है, भले नहीं देखे उसका आवाज से पहचान होता है। आज इस कार्यक्रम में आवाज का दुनिया में आवाज से ही दीक्षा शिक्षा सभी का नाम पता चल रहा है। चलिए एक प्रस्तुत सुनेंगे, रेडी

0: सबक हमें तो कुछ देना सीखे,
1: हमें तो कुछ देना सीखे। विद्यालय हमें बहुत कुछ देता है, शिक्षक हमें बहुत कुछ देता है, देश तो देता ही है, लेकिन प्रेजेंट में साक्षात अभी माँ बाप देते हैं, रेडियो मधुबन वाले भी देते हैं, सभी देते हैं, उनके लिए तो कुछ देना चाहिए, है कि नहीं? माँ बाप देते हैं ना, देते कि नहीं? माँ बाप देते हैं, क्या क्या देते हैं माँ? गरम गरम रोटा रोटी देते हैं ना, गरम गरम भोजन देते हैं, तो उनके लिए भी देंगे ना, रिटर्न देंगे? माँ बाप को कब देंगे?
0: बड़े होकर,
1: पैसे कमाएंगे तब देंगे। वेरी गुड, भूलना नहीं माँ बाप को। बहुत अच्छा, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा चार छात्र आए, होवनहार बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे से शुरू हुई और बड़े बच्चे से समाप्ति होगी। चलिए नाम बताइए।
2: मेरा नाम हवन कुमारी है, मैं 8वीं की छात्रा हूँ।
3: मेरा नाम पूनम कुंवर है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ।
4: मेरा नाम कृष्णा कुंवर है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ।
5: मेरा नाम पायल कुंवर, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ।
1: ये सब इतना आवाज है बुलंद से, गाँव के बच्चे होकर शहरांचल बच्चों को भी टक्कर देंगे, इतना बुलंद आवाज। ये सब आवाज कहाँ से सीखे, कौन आपको प्रेरणा दिया?
4: हमारे माता पिता।
1: माता पिता और
3: हमारे माता पिता, हमारे अध्यापक जी।
1: अध्यापक जी,
5: हमारे माता पिता,
1: माता पिता सबसे,
4: माता पिता अध्यापक जी, हम दोनों ने दिए।
1: और खुद भी, जब खुद नहीं तो सार क्या करेंगे? खुद को विसरे जाना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, लगन होना चाहिए। चलिए क्या प्रस्तुति सुनाएंगे, सुनाएंगे सभी? ये अंतिम प्रस्तुति होगी,

0: மோடியா, இந்திரா சிங் சபூதலாடலா, வாரா முண்டா மோடியா, காவு காவு கலி கலி மே மஜு தமசானோ, இன் பர வாரா பிராணோ, ஆதத்தி இந்த வானலி, ஆதத்தி இந்துஸ்தானலி.
1: धन्यवाद
2: के लिए धन्यवाद सभी को नाम का साथ. इतना सुंदर प्रस्तुति कभी सोचा नहीं था, फिर भी बच्चे अचानक में प्रिपरेशन किए और तुरंत दिए, तुरंत दान महापुण्य, तो पुण्य अर्थ कर दिए जनहित में. और बच्चे सच्चे मन से अपना प्रस्तुतियां दिए. जब इस तरह कार्यक्रम सुनते हैं, माता पिता, अभिभावक, बंधु और शिक्षकगण सभी ने बोले ये तो हमारा बच्ची का आवाज है, तो बहुत कुछ उनको मिलेगा और नामांकन में भी वृद्धि होगा और स्कूल में बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इस तरह कार्यक्रम में. आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर. यह था खासकर राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय छानवाड़ा आर का और रेडियो मधुबन कार्यक्रम जो कि सामुदायिक रेडियो से सुन पा रहे. तो सभी को धन्यवाद देते हुए लेते हैं आप सबसे इजाजत. सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल. अच्छा, आभार.

0: की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम कार्यक्रम एक नारी शक्ति पर आधारित है। हर एक महिलाओं में कोई न कोई विशेषताएं होती है, लेकिन वो विशेषताएं बाहर तक नहीं आ पाती है। लेकिन रेडियो मधुबन का मंच ऐसा है जिसके द्वारा आप अपनी आवाज, आप अपने विचार, आप अपनी बात को सभी तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति आज हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में विराजमान है, जिनका नाम है नीलम शर्मा। आप आबू तलेटी में रहते हैं। आपने पढ़ाई नहीं की है, आपकी उम्र 50 वर्ष की है। शिक्षा का अभाव है जो आज भी आपको खलता है। बाकी आप कढ़ाई बुनाई और मधुर व्यवहार आपका सभी के साथ है, और घर बार तो सभी संभालते हैं। और एक नारी शक्ति घर परिवार को कितनी बखूबी संभालती वो आप सभी जानते ही है। तो आइए मिलवाते हैं नीलम जी से। नमस्कार नीलम जी।
1: नमस्ते दीदी,
0: बहुत बहुत स्वागत आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: थैंक यू दीदी।
0: तो नीलम जी, चलिए हम आपके बचपन की तरफ चलते हैं थोड़े समय के लिए। आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता?
1: सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है।
0: सोनीपत हरियाणा?
1: जी हरियाणा।
0: अच्छा जी।
1: उधर मेरा जन्म हुआ था और एक गरीब परिवार से जन्म हुआ था। हम 7 भाई बहन हैं
0: जी।
1: 3 भाई हैं 4 बहनें।
0: अच्छा, आपका नंबर कौन सा था?
1: मैं सबसे लास्ट हूँ।
0: क्या बात है, आप तो सबसे छोटे, तो आपके ऊपर इतना लोड नहीं रहा होगा?
1: नहीं, लोड तो नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे मास्टर मारते पीटते बहुत थे बच्चों को।
0: अच्छा।
1: तो मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन भाइयों ने मेरे को भेजा नहीं। कह रहे नहीं नहीं, बहुत मारते हैं, तू मार नहीं सहन कर पाएगी। तो इस कारण से मेरे को स्कूल में भेजा ही नहीं।
0: अच्छा, तो आप कोई भी बहन ने पढ़ाई नहीं की?
1: कोई बहन ने पढ़ाई नहीं।
0: भाइयों ने की?
1: हाँ, भाइयों ने किसी ने 8, किसी ने 10, किसी आगे नहीं।
0: अच्छा, इससे ज्यादा नहीं। तो आपके पढ़ने की इच्छा थी?
1: जी।
0: तो आप कहते ना कि भाई मैं गलती करूंगी तो मुझे मारेंगे, बिना गलती मुझे कैसे मारेंगे, मुझे पढ़ने दो।
1: लेकिन कोशिश तो करी थी, किसी ने मेरा नाम ही नहीं लिखवाया वहाँ पे।
0: अच्छा, पढ़ने की बड़ी इच्छा थी लेकिन नाम नहीं लिखाया और आप पढ़ाई से वंचित रहे।
1: जी।
0: तो आपकी सखी सहेलियां भी रही होगी, वो भी सभी अनपढ़ी थी या उन्होंने पढ़ी की?
1: बस एक ही थी, वो भी कम ही पढ़ी हुई थी, बाकी खेती थी हमारी, तो खेत वगैरह का ही काम था।
0: अच्छा, खेती बाड़ी संभालते थे।
1: जी।
0: और आपस में आप सभी भाई बहन कैसे रहते थे?
1: मैं सबसे छोटी थी तो बस एक भाई के साथ में मैं अच्छे से बोल लेती थी, बाकी के साथ में तो चुपी रहती थी।
0: अच्छा, उम्र का ज्यादा गैप था क्या?
1: जो बड़ी बहनें वे सब जब मैं 2 साल की थी उनके शादी हो चुकी थी।
0: अच्छा जी जी। तो एक भाई के साथ आपकी अच्छी बनती थी जो आपसे बड़े थे?
1: हाँ।
0: उनको आप दिल खोल करके बात करते थे?
1: हाँ, उनसे अच्छे से बात।
0: लड़ाई झगड़ा भी होता था कभी? चिटचैट
1: होती थी।
0: और बाकी तो भाई बड़े हैं, बहनें बड़ी हैं, तो शादी हुई होगी तो आपके सामने भाभियां भी रही होगी, आपके जीजा हाँ। भी आए होंगे। तो हाँ। भाभियों के साथ किस तरह का तालमेल था?
1: बस जो छोटे वाले हैं उनके साथ में थोड़ा अच्छा था, क्योंकि वो मेरे साथ सीखे थे, बाकी बड़ों के साथ में तो ऐसे ही जैसे माँ बाप के सामने रहते हैं।
0: जी जी, उस समय की बात कर रहे हैं जब मर्यादाएं हुआ करती थी, भाभियों को भी माँ के समान देखा जाता था।
1: जी।
0: तो ज्यादा ऐसे हंसी मजाक वगैरह नहीं होती थी?
1: नहीं।
0: फिर आपको कोई चीज चाहिए तो आप किसको कहते थे, अपने माता जी को या भाइयों को?
1: मम्मी को बोलती थी।
0: जी जी, चलिए अच्छी बात है। और खेती बाड़ी में आप क्या काम करते थे?
1: खेती बाड़ी में हर प्रकार की खेती होती थी, जैसे भुट्टे वाला मक्का होता और सगरगंदी वगैरह, गेहूं भी होते, धान भी होते, सभी खेती होती थी, सब्जी भी सभी होती है।
0: तो आप क्या करते थे, बोतने का काम करते थे या पानी या केयर करने का, पंछी पक्षी कहीं आपके दाने नहीं खा जाए ऐसे?
1: नहीं, जैसे भाई वगैरह जाते थे तो उनका खाना देने के लिए चले जाते थे, और थोड़ा अपने खेत को चारों तरफ से देखते थे, बाकी तो काम तो कोई और ही करते थे।
0: भाई लोग खेत पर जाते तो आप खाना लेके जाते, बना के आपके भाभियां देती, तो आप किचन में मदद करते थे?
1: जी।
0: अपनी भाभियों की मदद करते थे?
1: जी।
0: अच्छा, और आप सबसे छोटे हैं तो प्यार तो बहुत आपको मिला होगा सभी का?
1: हाँ
0: जी,
1: सभी का बहुत प्यार मिला है।
0: खेती बाड़ी में जाना आपको अच्छा लगता था? आप टिफिन लेके जाते थे, फिर वहाँ खेतों को निहारते थे, और आपको क्या अच्छा लगता है?
1: बस ऐसे जैसे सभी खेतों में होते थे, उनके साथ में ऐसे ही चिट चैट करना, थोड़ा पेड़ पौधों पे चढ़ जाना।
0: अच्छा।
1: ऐसे खेल कूद में
0: पेड़ पौधों पर क्या तोड़ने के लिए, कुछ फ्रूट तोड़ने के लिए?
1: हाँ, जैसे कोई अमरूद तोड़ने के लिए, कभी जामुन तोड़ने के लिए, ऐसे कई बार पेड़ से गिर भी गई थी।
0: अच्छा, वो तो चढ़ेंगे तो गिरेंगे भी है, लेकिन बचपना होता है ना तो गिरने का भी डर नहीं रहता है कि गिरे तो फिर से संभलेंगे और फिर से चढ़ेंगे।
1: वही वही।
0: तो कभी कोई डांटते नहीं थे कि भाई गिर गई हो, लगी है, अब नहीं चढ़ना है?
1: डांटते थे लेकिन बचपना था, फिर कर देते थे वही।
0: जी जी जी, वो मजा ही अलग है। भले सब नीचे अपने को मिल जाता है, कि किसी को बोलते तो कोई आपको हाथ में लाके दे देते, हाँ। लेकिन एक चढ़ करके तोड़ के खाने का मजा ही अलग था,
1: वो अलग है।
0: और आप क्या क्या काम करते हैं?
1: जैसे सिलाई वगैरह करते थे।
0: अच्छा, सिलाई आती थी?
1: हाँ,
0: सिलाई कहाँ से सीखी आपने?
1: सिलाई मैंने घर से ही सीखी थी, और सिलाई वैसे तो कम ही आती थी, लेकिन फिर जैसे ससुराल में चले गए थे उस टाइम के बाद थोड़ी सी कुछ परिस्थिति आई, तो उस टाइम पे थोड़ा सिलाई का।
0: अच्छा, बाद में सीखा, पहले नहीं सीखा था?
1: पहले सीखी थी लेकिन कम ही करते थे।
0: जी, आप सबसे छोटे थे, इतनी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। आपकी भाभियाँ थी, माताजी थे, हाँ। बहनें थी बड़ी, हाँ। तो वो करते होंगे, हाँ। लेकिन आपने वो ध्यान नहीं दिया होगा।
1: हाँ
0: जी जी। और किचन में आप क्या बनाते थे, किस तरह की मदद करते थे अपने मम्मी और भाभी?
1: ऐसे जैसे बर्तन वगैरह धुलाई कर दिए, थोड़ी साफ सफाई में, खाना तो बाकी वही बनाते थे।
0: अच्छा। कभी खाना नहीं बनाया आपने शादी के पहले?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो कभी जैसे कोई घर पर नहीं है, कुछ बनाने का आपको बोल दिया
1: तो बनाते थे?
0: अच्छा, ऐसे ज्ञान था।
1: हाँ, हाँ। ऐसे तो बना लेते, रोटी सब्जी सब कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी।
0: जी जी। और आप बता रहे कि आपके सखी एक ही है?
1: हाँ, वो एक ही है।
0: तो आपके मोहल्ले में एक ही?
1: नहीं, और भी थी, लेकिन ज्यादातर उन्हीं के साथ मैं ज्यादा रहती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ, और उससे पहले एक और भी थी जिसको थोड़ा सांप ने काट लिया था और उनकी डेथ हो गई थी।
0: अच्छा, तो क्या सांप भी निकलते थे क्या आप जा रहते थे वहाँ?
1: पता नहीं, वो जैसे अपने ही घर में कोई पैसे उसने छुपा रखे थे वहाँ पे, तो उनकी मम्मी ने बोला कि कुछ सामान लेके आना है, तो वो वहाँ से पैसे निकालने लगी, कह लगी पता नहीं मेरे हाथ में कुछ लग गया, तो एक दो घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई।
0: अच्छा, तो फिर कैसे पता चला, वो सांप पकड़ में आया?
1: नहीं, सांप पकड़ में नहीं आया, बस फिर जैसे वो नीली हो गई, जहर चढ़ गया, तो यही लगा कि वहां से पैसे निकाल लेती, शायद फिर वहीं पे इसको कुछ
0: काट दिया। ओहो, पता भी नहीं चला और सांप भी पकड़ में नहीं आया। कितने बड़ी होगी और उसकी डेथ हुई इस तरह?
1: नहीं, उसकी डेथ हुई जब वो होगी 16-17 साल तक की।
0: अच्छी बड़ी होकर गई।
1: काफी बड़ी थी।
0: आपको तो उस समय बहुत ऐसा लगा होगा कि जैसे मेरा कोई नहीं लगता है ना?
1: बिल्कुल।
0: सखियों के साथ जितना हम खुल करके बात कर सकते हैं, उतना किसी के सामने नहीं कर सकते।
1: किसी के सामने नहीं कर सकते।
0: जी
1: बिल्कुल।
0: थोड़े हंसी मजाक भी कर लेते हैं।
1: हाँ।
0: हर प्रकार से हम जैसे चाहे सखियों के साथ रह सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप तीन सखिया थी। जी, फिर आप दो ही रह गए?
1: फिर हम दो ही।
0: तो खेती बाड़ी में आप दोनों साथ में जाते या फिर आप ही जाते?
1: नहीं, साथ साथ में भी चले जाते थे हम, कभी उन्होंने भी जाना होता था जब कह देते ठीक है चलो आज दोनों चलते हैं।
0: जी,
1: तो दोनों चले जाते थे। फिर ऐसे थोड़ा जैसे पापा के भाई थे, चाचा हमारे।
0: जी,
1: तो उनके साथ में ज्यादा हमारी टकराव ज्यादा रहते थे।
0: अच्छा, क्यों, कारण?
1: बस कुछ ऐसा होता था, जैसे मैं तो जब जन्म लिया था मैंने, एक दो साल की होंगी, तभी मेरे पापा की डेथ हो गई थी।
0: अच्छा, तो आपने तो पिताजी को देखा ही नहीं?
1: नहीं, मेरे कोई शक्ल भी याद नहीं है मेरे पापा की।
0: जी,
1: तो उसके बाद में फिर जैसे चाचा अम्मा को दबा के रखना चाहते थे।
0: जी,
1: एक बार चाचा ने काफी कुछ हमारे साथ में मारपीट की, भाभी का हाथ तोड़ दिया था।
0: भाभी के ऊपर भी हाथ उठा दिया?
1: हाँ, भैया का सिर फोड़ दिया था और हमारी भैंसों को जहर वगैरह भी दे दिया था।
0: और रे रे रे, तो भैंसे भी मर गई?
1: सब मर गई थी।
0: फिर आपने पुलिस केस नहीं किया?
1: सब कुछ हुआ था लेकिन मैं तो उस टाइम पे बिल्कुल छोटी थी।
0: जी,
1: तो सब कुछ किया था, मेरी मम्मी के भी अंगूठे भी खा लिए थे।
0: अच्छा,
1: उनकी लड़की। हाँ, काफी कुछ हुआ था।
0: चलिए नीलम जी, और भी आपके अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चाहे गीत सुनने का, तो गीत सुन करके पुणे लौट रहे हैं, कहीं भी जाइएगा नहीं। नीलम जी के अनुभव और भी बाकी है जो हम बाद में सुनेंगे, पहले सुनेंगे गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नारी केवल रिश्तों की डोर नहीं, नारी केवल रिश्तों की डोर नहीं, आधुनिक युग की मजबूत हकदार है। वो चलती है स्नेह भी लेकर, वो चलती है स्नेह भी लेकर, और हर कदम पर प्रखर प्रहार है, और हर कदम पर प्रखर प्रहार है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में नीलम जी हमारे साथ बने हुए हैं। नीलम जी के काफी अनुभव हमने सुने हैं, और आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। तो नीलम जी, जैसे आप बता रहे थे कि आप साल डेढ़ साल के थे और आपके पिताजी का देहांत हो गया
2: जी।
1: फिर चाचा जी ने बहुत खराब व्यवहार किया, हाथ भी तोड़ दिया आपके भाभी के, आपके मम्मी के हाथ की उंगलियां खा गए, भाई का सिर फोड़ दिया, आपके जो भैंसे थी उनको जहर दे दिया
2: जी।
1: पहले तो ये बताइए कि आपका गांव कितना बड़ा था, शहर था या गांव था?
2: गांव था,
1: गांव था। तो आपके आसपास के लोगों ने या और भी रिश्तेदारों ने कुछ कहा? नहीं,
2: सभी आए थे, लेकिन जो हो गया तो उसको तो कोई बदल नहीं सकता था उस टाइम पे
1: जी।
2: लेकिन उसके बाद फिर पुलिस केस वगैरह हुए, काफी दिन तक केस चले
1: जी।
2: लेकिन हमारे चाचा का यही रहता था, थोड़ा सा चलते थे, एक केस खत्म हुआ दूसरे के साथ में फिर कर देते थे।
1: आपके साथ ही करते थे
2: और किसी के साथ में भी कर देते थे?
1: अच्छा।
2: लेकिन हमारे साथ में कुछ ज्यादा करते थे।
1: अच्छा, तो वो हर एक के साथ ऐसे झगड़ना करना?
2: हमारे साथ में तो इसी बात पे किया था कि उनका घर नीचे की साइड में था, हमारा ऊपर की साइड में, कह रहे यहाँ से ना पानी नहीं जाने देंगे आपका।
1: अच्छा।
2: जो ढलाव में पानी जाता था, क्योंकि पानी नहीं जाने देंगे, तो कह लगे भी पानी तो यहीं से ही जाएगा
1: जी।
2: तो ऐसे करके उन्होंने हमारा पानी रोक रखा था
1: जी।
2: फिर पड़ोसियों ने आके भाइयों को बोल दिया तुम खोल लो, हम खड़े हैं
1: जी।
2: जैसे उन्होंने उस पानी को खोला तो बस उस टाइम पे फिर मारपीट उन्होंने शुरू कर दी।
1: तो आपके तो चार भाई है, वो तो अकेले चाचा जी थे?
2: नहीं नहीं, उनके भी चार पांच लड़के थे, और उसके पास में और भी कोई आते थे बाहर के भी।
1: बाहर के लोग भी सपोर्ट करते थे?
2: हाँ।
1: तो सबने मिल के मारा? तो उस समय गांव वालों ने कुछ नहीं किया जब उन्होंने कहा कि आप खोलो? तो
2: बस उस टाइम पे देखो, बीच में लड़ाई के बीच में जब मारपीट होती है तो तब कोई नहीं जाता है
1: जी।
2: लेकिन फिर भी कुछ इंसान आगे आके छुड़वाने के लिए आए थे
1: जी,
2: छुड़वाया था। उसके बाद फिर केस वगैरह आगे चले गया
1: जी। तो आपके तो, एक ही चाचा जी है?
2: हाँ, एक ही थे, वो भी चले गए अब तो
1: जी। लेकिन ऐसे वो बहुत उन्होंने
2: हाँ बहुत कुछ उन्होंने
1: जी
2: किया,
1: तो उनके बेटे

0: भी ऐसा ही करते थे जैसे चाचा कहते वैसे ही करते थे उनके बेटे, या
1: हाँ
0: वो थोड़े अक्कल वाले थे?
1: बस एक ही उनका अच्छा था, जो नहीं मानता था वो अपनी पत्नी को लेके कहीं बाहर चला गया था, कैसे ना कैसे करके उन्होंने खत्म करवा दिया,
0: बेटे को ही खत्म करवा दिया?
1: उनको भी खत्म करवा दिया था।
0: अच्छा, ये तो बड़े खतरनाक बात है। तो आपके
1: फिर जैसे उनकी बहू को भी एक बेटा था, उन्होंने अपने घर पे जन्म दिया, वहीं पे पाला, कम से कम 10-12 साल का हो गया वो वहीं पे बैठी थी कि भाई मेरे को ले जाएं, लेकिन कोई इसको लेने नहीं जा रहा था। तो फिर जैसे थोड़ा सा वो बड़ा हो गया था, बड़ा होने के बाद उसको खोस लिया, लड़के को भी
0: खुद ले गए,
1: उन्होंने,
0: लड़के को ले गए?
1: लड़के को भी उन्होंने खोस
0: क्यों,
1: लिया।
0: लड़के को क्यों ले गए भाई? आपने तो माता पिता को चाहा ही नहीं, फिर लड़के को कैसे ले जा सकते? उन्होंने केस नहीं किया?
1: बस वो बहू भी थोड़ी गरीब घर की थी तो ज्यादा कुछ नहीं उसने किया, बस इंतजार ही किया, लेकिन लास्ट में सुनाई में आई है कि वो आ गई थी वहीं पे ही, अपने बेटे के पास में ही आ गई थी।
0: अच्छा, बेटा तो छोटा था, फिर पालन पोषण कौन करता है?
1: उस टाइम पे
0: तो
1: दादा दादी जिंदे थे तो उन्होंने ही किया,
0: फिर वो बहू को ले आए?
1: नहीं वो नहीं लेके आए। जब जैसे धीरे धीरे वो बड़ा हुआ तो थोड़ा सा हमारे चाचा जी चले गए, फिर उसके अंदर में थोड़ी हिम्मत आ गई कि मैं अब जाके अपने अपना हक लूं, मेरा बच्चा है मैं उससे मिलूं, तो ऐसे करके फिर वो लास्ट में उधर आ गई थी।
0: अच्छा, फिर तो बेटा ने भी माँ को
1: हाँ
0: रखा, तो उनके साथ तो फिर अच्छे रहे, वो उनके भी चाचा चाची हो गए ना?
1: हाँ उनके भी चाचा चाची थे, लेकिन उस टाइम पे थोड़े सही रहे, लेकिन वो हमारे साथ में बाकी कुल मिला के अच्छा नहीं रहा था।
0: तो ये कितने साल आपके चला था?
1: ये कम से कम चला होगा 15-20 साल।
0: 15-20 साल, बहुत लंबे होते हैं।
1: डेथ
0: आपके पिताजी की डेथ के बाद ही वो झगड़ते या पहले से झगड़ते आए?
1: के बाद ही।
0: अच्छा, बाकी आपके पिताजी का रुतबा था,
1: हाँ बाकी उस टाइम पे कुछ नहीं कहते थे,
0: तो बाद में उनको क्या सूझा, क्यों वो आड़ाई पर आ गए?
1: पता नहीं उनका क्या दिमाग में आ जाती थी। जैसे खेत में अच्छा कुछ हो जाता था उनके जैसे, तो पैसा आने के बाद उनके अंदर में एक अजीब सी फीलिंग हो जाती थी,
0: पैसा कहाँ से
1: और
0: आता है उनका?
1: वो जो खेत में जाते थे ना
0: जी,
1: तो खेत से उनके पैसा आता था,
0: तो आपके शामिल तो नहीं था, अलग अलग था?
1: अलग अलग था,
0: अच्छा, तो वो पैसे को ऐसे बर्बाद करते थे
1: बर्बाद कर
0: ऐसे?
1: देते थे।
0: तो बेटे कुछ नहीं कहते कि घर में पैसे नहीं है और आप झगड़ा?
1: बेटे भी उनके साथ में थे।
0: अच्छा, इसलिए वो सब ऐसे ही करते थे।
1: हाँ
0: तो कभी पुलिस तक वो पहुंचे, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत जनों के साथ झगड़ते थे, तो कभी उनको अरेस्ट भी किया नहीं?
1: हाँ अरेस्ट भी किया था उनको, लेकिन वही बात है फिर आगे भी क्या होता है, पैसा वगैरह भर देते हैं और छूट जाते हैं,
0: जी, हाँ
1: तो केस तो काफी साल चला भी था,
0: जी
1: लेकिन फिर हो कुछ नहीं पाया, पैसा भर दिया गया और वे छूट गए।
0: जी जी जी अभी कैसा है? अभी जैसे चाचा जी तो नहीं आपके, उनके लड़के हैं तो वो सब आते जाते हैं परिवार में,
1: नहीं आते जाते नहीं है,
0: पर अभी तो झगड़ा खत्म हो गया या अभी तक भी ऐसा ही है?
1: नहीं झगड़ा तो खत्म हो गया है लेकिन आते जाते नहीं है, किसी ने कभी बोलना हो तो बोल भी लेते हैं लेकिन वो बात नहीं है।
0: हाँ, वो तो फिर रख के भी क्या करेंगे, जब
1: हाँ
0: कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, इतना नुकसान पहुंचा चुके
1: हाँ
0: हैं, कितनी भैंसे मरी होगी उस समय?
1: पांच
0: 5 भैंस। अब उनको मारने से उनको क्या मिला?
1: अब क्या बताएं, ये सोच रहे थे ना भाई अब ये कहीं कहीं से पैसा इनका नुकसान हो जाएगा, कहाँ से लगाएंगे केस में, इस प्रकार से मतलब उन्होंने सोच के ऐसा
0: जी
1: किया।
0: जी जी और झूठ भी बोल दिया होगा क्योंकि डायरेक्ट तो मारेंगे नहीं।
1: हाँ नहीं ऐसे देखो देखा नहीं ने, कुछ वो करते हुए, लेकिन जैसे ऐसे कभी किसी के साथ में हुआ नहीं कि भाई सभी भैंस एकदम से ऐसे मर गई हैं और फट भी गई हैं जैसे।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: ओहो, वो जहर इतना खतरनाक था। चलिए, आपके बचपन की बातें चल रही है, आप तो 1.5 साल के थे तो आपको कुछ पता नहीं, जब आप संभले तो आपके पिताजी तो नहीं थे, आपके माताजी ने आपको शिक्षा संस्कार दी होगी,
1: जी
0: तो उस समय आपके माताजी के साथ सब अच्छे रहते थे, भाई भाभी आपके सभी?
1: हाँ सभी अच्छे रहते थे।
0: जी, तो आपको विशेष करके उस समय क्या आपको सीखने को मिलता, क्योंकि आप सबसे छोटे हैं तो काफी मर्यादाओं में आप रहे होंगे, बड़ों के सामने नहीं बोलना या विशेष डिमांड नहीं करना, पिताजी नहीं होने से भी बहुत सारी चीजें ऐसे लगता है ना कि माताजी दे नहीं पाएंगे, तो अपने मन को मारते थे या फिर आपको मिल जाता था जो चाहते थे वो?
1: नहीं, बस किसी बड़ी चीज की तैसी में डिमांड नहीं करती थी, क्योंकि हमने पता था अपने घर क्या हालात कैसे हैं
0: जी।
1: लेकिन कोई भी ऐसी छोटी मोटी कोई सूट है, कोई भी चीज है ऐसी मेरी, तो मम्मी को बोल देती थी, दिला देती थी।
0: अच्छा, मम्मी दिलाते।
1: भाई भी कोई ऐसे वो नहीं करते थे, सब अच्छे थे।
0: जी जी। और आपके तो बड़ी बहनें भी थी।
1: हाँ, बड़ी बहनें।
0: तो बहनों से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा।
1: बस बहनें तकरीबन ससुराल में ही चली गई थी
0: जी,
1: तो कई बार बहनों के पास में जाना हुआ, जैसे उनके छोटे छोटे बच्चे थे इस टाइम पे
0: जी,
1: तो कई बार चली जाती थी, काफी काफी दिन उधर रुक आती थी। वहां का भी उनका सबका प्यार बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि सबसे छोटी थी तो सबका ही लगाव था मेरे साथ में।
0: जी जी जी। और जैसे आप बड़े हुए, आपने दुनिया देखना शुरू किया, तब आपके चाचा चाची आपको बुलाते थे या बिल्कुल बेटियों से भी बात नहीं करते थे?
1: नहीं, वो बात नहीं करते थे।
0: अच्छा, और उनके बेटों बेटियों से भी बात नहीं करना?
1: नहीं, कभी कभी कभार हो भी जाती थी, लेकिन वो बात नहीं थी कि उनके घर जाके बैठना ये
0: हाँ,
1: करना,
0: वो कुछ नहीं था।
1: हाँ, ऐसा नहीं था।
0: जी जी जी।
1: बस निकलते राम रमी हो जाती थी।
0: जी जी,
1: बस इतना ही।
0: अच्छा, और आपको क्या शौक रहा?
1: सिलाई का भी शौक था मेरे को और पढ़ाई का भी शौक था। सिलाई का तो फिर भी कुछ हद तक मैंने पूरा किया, लेकिन पढ़ाई का नहीं हो पाया।
0: तो जैसे घर में बैठ के भी तो आप पढ़ सकते थे, कभी ये नहीं सोचा कि मैं घर पर बैठ कर भी अपना साइन करना है, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना सीखूं?
1: नहीं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। भाभी भी मेरी कोई सी पढ़ी लिखी नहीं है, और बहन भी पढ़ी लिखी नहीं है।
0: अच्छा,
1: भाई पढ़े लिखे थे।
0: जी जी।
1: तो भाइयों ने भी कुछ फिर आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की।
0: जी जी, सभी उन्हीं उलझन में उलझे हुए थे।
1: जो मेरा छोटा वाला भाई था मास्टर, उसको इतना मार देते थे, वो चक्कर खा के बेहोश होकर गिर जाता था।
0: टीचर तो इतना मारते थे?
1: इतना मारते थे, तो इसीलिए वो कहता था, देख मैं इतना, मेरे को मार देते तू तो इतना सहन भी नहीं कर पाएगी।
0: तो इतना क्यों मारते?
1: पता नहीं क्या पहले के क्यों करते थे ऐसा। अभी तो
0: भाई बच्चे गलती करे तो उनको भाई समझाओ मारो, लेके ऐसे मारते थे कि चक्कर भी आ जाए?
1: हाँ, चक्कर खा के बेहोश हो जाता था।
0: ओ, तो फिर सुन करके तो दूसरे तो घबराएंगे ना। तो फिर कभी कंप्लेंट नहीं की कि आप क्यों इतना मारते हो?
1: बस ऐसे कंप्लेंट वगैरह का नहीं था उस टाइम पे इतना कुछ।
0: अच्छा,
1: इतना कुछ नहीं था, बस थे काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ।
0: चलो, अब उसका तो कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि समय बीत चुका है। तो नीलम जी, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर से समय हो चला है गीत सुनने का। तो ये गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma
1: Kumaris. Jis ghar mein betiyan muskura de, jis ghar mein betiyan muskura de, wo ghar mandir ho jata hai. Uske aanchal ki thandi chhaya mein har dukh chhota ho jata hai. Uske aanchal ki thandi chhaya mein har dukh छोटा हो जाता है. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में नीलम जी हमारे साथ बने हुए हैं. नीलम जी, आपके काफी अनुभव हमने सुने हैं. अब इतना सा हम पूछना चाहेंगे कि आपके शादी कितने साल के थे और हुई, और शादी के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया?
2: जब मैं होंगी 24 साल के करीब तब मेरी शादी हुई थी
1: जी.
2: तो अगले ससुराल में भी 6 भाई थे, 2 ननद थी
1: जी,
2: ससुर नहीं थे, सास थी
1: जी.
2: सभी परिवार अच्छा था. और लेकिन जैसे जैसे ससुराल में रहे, सभी के साथ में अच्छे से रहे.
1: आपका ससुराल में कौन सा नंबर आता है?
2: ससुराल में मेरा 3रा नंबर आता है.
1: अच्छा अच्छा. गांव से कितना दूर था?
2: गांव से काफी दूर था. गांव से?
1: अच्छा, काफी दूर.
2: हाँ.
1: क्या नाम है आपके ससुराल के गांव का?
2: लेकिन है सोनीपत के उसमें मुरथल.
1: मतलब मुरथल में आपकी शादी हुई. तो ये एक गांव है, कस्बा है, कैसा है?
2: सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ही लगता है.
1: मतलब गांव है या कस्बा है, शहर है?
2: शहर में लगता है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के नजदीक है, बिल्कुल लगता ही है.
1: जी जी. तो यहाँ पर भी बड़ा परिवार, सभी साथ में रहते थे?
2: साथ में रहते थे. दो जो बड़े जेठ थे वे बाहर गए हुए थे.
1: अच्छा, वो बाहर रहते थे?
2: वो बाहर रहते थे.
1: अच्छा, और आप लोग गांव में रहते थे?
2: हम गांव में रहते
1: थे. तो आपके हस्बैंड क्या काम करते थे?
2: इनका अपना काम था, बस थोड़े दिन रहे थे गांव में, फिर इनका अपना काम था. हम दिल्ली आ गए थे, इनका फ्रूट का काम था, हिमाचल से फ्रूट लेके आते थे और आड़त की दुकान पे सप्लाई करते थे.
1: होलसेल का?
2: होलसेल का
1: जी. तो फिर आप कितने समय ससुराल रह करके हिमाचल चले गए?
2: मैं दो साल के करीब रहे होंगे.
1: अच्छा, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आए? ससुराल में आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपको मिलता था?
2: हाँ, ठीक था, सब अच्छा था
1: जी. और ससुराल वाले भी, सास ससुर सभी अच्छे थे?
2: सभी अच्छे थे.
1: जेठ जेठानी देवर देवरानी
2: सभी अच्छे थे
1: जी. जी, तो दो साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला होगा
2: जी.
1: फिर उसके बाद आप हिमाचल चले गए, तो वहां पर आपको बहुत ही अकेलापन लगा होगा, क्योंकि बड़े परिवार से आप निकले.
2: नहीं, हिमाचल ऐसे बीच बीच में जाते थे, बाकी दिल्ली आ गए थे हम.
1: अच्छा.
2: हाँ,
1: फिर दिल्ली. तो दिल्ली आप अकेले रहते होंगे?
2: दिल्ली अकेले नहीं, साथ में रहते. हाँ, हस्बैंड के साथ में.
1: हाँ, वही आप. हाँ, और आपके हस्बैंड. हाँ, तो इधर तो इतना बड़ा परिवार, उधर आप दोनों जने, तो आपको बहुत ही ऐसे अकेलापन महसूस हुआ होगा.
2: ये तो है.
1: तो पूरे दिन आप क्या करते हैं? आपके हस्बैंड बिजनेस पर चले जाते हैं? फिर
2: वो करीब 10 बजे से बज जाते थे, उसके बाद घर का काम करना, कपड़े धुलाई, साफ सफाई, इसी में लगे रहते थे. और उसी टाइम पे था
1: बेटे का जन्म भी हुआ.
2: जन्म हुआ उसी टाइम पे, समय से सत्संग में जाने लग गई थी.
1: अच्छा, आप गर्भवती थे तब से आपको सत्संग मिल गया
2: जी.
1: तो आप सत्संग में जाते थे
2: जी,
1: दिल्ली में
2: जी.
1: तो आप एक छोटे से गांव से बड़े शहर में आए, आपको पहले तो बड़ा अजीब लगा होगा कि ये मैं कहाँ आ गई. एक तो गांवों में तो मिलना जुलना चालू रहता है.
2: बिल्कुल.
1: आप शहरों में सब व्यस्त होते हैं.
2: हाँ,
1: तो कैसे आप समय व्यतीत करते थे? आपको ऐसा लगता होगा ना कि मैं किससे बात करूं?
2: नहीं, जिसके हम किराए पर रहते थे वो दीदी बहुत अच्छे थे
1: जी.
2: बहुत प्यार से रहते थे, ऐसे रहते थे जैसे अपने घर की तरह से. खाना भी मेरे पास ही आके खाते थे और अच्छे मिलजुल के रहते थे बहुत अच्छी तरह से
1: जी. जी,
2: उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया.
1: अच्छा.
2: हाँ, अच्छे से रहते थे.
1: तो आप कितने साल वहाँ?
2: वहाँ मैं 4 साल के करीब.
1: दिल्ली में?
2: दिल्ली.
1: फिर 4 साल बाद?
2: फिर 4 साल बाद जैसे इधर भी आए थे एक बार.
1: आबू
2: भी
1: जी.
2: तो पूरे परिवार के साथ में आए थे, बेटा भी और उनके पापा भी
1: जी.
2: तो उस टाइम पे ये इससे जुड़ चुके थे, इस सत्संग से
1: जी. जी.
2: तो फिर जैसे यहाँ आए उसके बाद, फिर वो जाने के बाद थोड़े से ऐसे सत्संग में जाते थे उनको पसंद नहीं आता था कि भाई कहते थे नहीं ये कुछ नहीं है ढोंग होता है ये होता है।
1: अच्छा हाँ। फिर आबू आने के बाद आप अपने ससुराल गए?
2: नहीं ससुराल नहीं गए। हाँ फिर एक बार यहाँ से आके फिर एक बार वापसी चले गए थे।
1: हाँ तो आप अपने गांव ही गए होंगे ना आपके
2: हाँ,
1: ससुराल।
2: हाँ
1: तो वहाँ पर फिर सभी ने कहा कि इस सत्संग में नहीं जाना है। तो फिर क्या किया आपने?
2: तो फिर ऐसे करके इनकी तबीयत खराब हो गई। ये दौर चलते चलते तबीयत खराब होने के बाद ये एक दो साल बीमार रहे और फिर इनको अचानक ही उल्टी दस्त वगैरह और उनकी उस टाइम पे फिर डेथ हो गई।
1: तो इलाज नहीं करवाया?
2: हाँ हॉस्पिटल में ही थे उस टाइम पे जिस टाइम पे डेथ हुई तो इलाज ही चल रहा था लेकिन कुछ नहीं हो पाया।
1: अच्छा बेटा कितना बड़ा था उस समय?
2: 4 साल का।
1: 4 साल का ही था? आपके ससुराल में ये हादसा हुआ?
2: नहीं ये हादसा हुआ करनाल में।
1: करनाल आ गए थे रहने
2: जो हॉस्पिटल में?
1: नहीं वो तो है लेकिन रहते थे आप अपने ही घर में? ससुराल में ही रहते थे?
2: नहीं करनाल में ही रहते थे।
1: अच्छा करनाल में क्या बिजनेस था आपका?
2: नहीं फिर उन्होंने दिल्ली से जब बीमार हो गए थे तो कहने लगे भाई मैं थोड़ा सा ऐसे एरिया में रहना चाहता हूँ तो वहाँ पे आ गए थे थोड़ा खुला खुला से उसमें।
1: अच्छा करनाल आ गए रहने और फिर यहीं पर यह तकलीफ शुरू हो गई?
2: जी।
1: और यहीं पर डेथ हो गई? तो फिर क्या किया आपने? आप अपने ससुराल जाकर रहे या फिर सीधे आबू आए रहने?
2: नहीं ससुराल तो नहीं गई, थोड़े ही जैसे उनकी डेथ के बाद जो जेठ थे उनके थोड़े से मेरे प्रति गलत संकल्प हो गए थे
1: जी,
2: तो थोड़ा जिठानी के दिल दिमाग में ऐसा हो गया भाई मेरा घर उजड़ जाएगा ये हो जाएगा
1: जी,
2: तो मैंने उसको बोला कि दीदी आप चिंता ना करें मैं ऐसा कभी सुन नहीं सकती जो आप सोच रहे हैं
1: जी,
2: तो ऐसा कभी नहीं होएगा। तो फिर मैं बेटे को उधर से लेके और मैं कहीं बाहर आ गई रेवाड़ी आ गई मैं।
1: रेवाड़ी क्या है?
2: बस ऐसे ही आ गई रेवाड़ी की जान पहचान थी उधर तो उनके उधर आके मैं किराए पर रहने लग गई।
1: 4 साल के बच्चे को लेके उस समय आपके सास ससुर नहीं थे?
2: नहीं ससुर तो पहले ही नहीं था सास थी
1: जी। तो आपके सास ने कुछ नहीं कहा कि तू अकेली कहाँ जाएगी रहने तू यही घर में रह?
2: नहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा उस टाइम पे।
1: तो फिर रेवाड़ी में आकर
2: उन्होंने और उल्टा इल्जाम मेरे ऊपर ही लगा दिया कि तेरे वजह से ये हो गया वो हो गया, तो फिर इसलिए मैंने वहां पर रहना फिर अच्छा नहीं समझा
1: जी। तो रेवाड़ी तो कोई नहीं था, आप अपने पियर जा सकते थे?
2: देखो पियर में भी अब मैं सबसे छोटी थी और सबको ये हो जाता मम्मी मेरी डेथ हो गई थी।
1: अच्छा जी जी जी। हाँ, तो भाई भाभी है तो फिर अपना अधिकार इतना नहीं रहता।
2: हाँ फिर सभी को ये रहता उसके पास रहे उसके पास रहे, तो ये चीजें मैं फिर मैं उधर मैंने किसी को परेशान नहीं किया
1: जी। बहुत अच्छा किया। फिर रेवाड़ी में आपने क्या किया?
2: मैंने वहाँ पे आके सिलाई शुरू की।
1: अच्छा तो पहले सिलाई सीखी होगी आपने?
2: नहीं सिलाई मैं पहले से थोड़ी सीख रही थी ना, तो वहाँ पे मैं रेडीमेड जैसे साड़ी के नीचे वाले पेटीकोट होते हैं वो मैं रेडीमेड सिलती थी।
1: अच्छा।
2: और बच्चे को पढ़ाती थी।
1: तो गुजारा चल जाता था?
2: बस चल जाता था
1: जी जी। तो चलिए नीलम जी के अनुभव और भी सुनेंगे लेकिन फिर से समय हो चला है एक गीत सुनने का, तो एक ब्रेक लेंगे उसके बाद पुनः लौटेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। नारी को कमजोर कहने वालों, हिम्मत करो, पहले उसे समझो तो सही। नारी को कमजोर कहने वालों, हिम्मत करो, पहले उसे समझो तो सही। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में नीलम जी हमारे साथ है। नीलम जी के काफी अनुभव सुने हैं, और आइए और भी हम सुनेंगे। नीलम जी, जैसे आप बता रहे थे कि आपके हस्बैंड की डेथ के बाद आप रेवाड़ी चले गए रहने के लिए, 4 साल के बच्चे को लेकर। उस समय आपके पास कोई काम धंधा नहीं था, क्या करेंगे क्या नहीं कुछ पता नहीं था। फिर वहां आकर के आपने सिलाई शुरू की, फिर कैसे आप आगे बढ़े? और वहां पर किसी का सपोर्ट मिलता था?
3: नहीं, जैसे कुछ मेरे को इंश्योरेंस था इनका, तो वो पैसा मिला था, उधर ही मैंने घर ले लिया था।
2: अच्छा।
3: और बस ऐसे सिलाई वगैरह करती रही, थोड़ा किराए पे भी मैंने दे दिया था उधर।
2: अच्छा, घर रेवाड़ी में खरीदा आपने?
3: जी।
2: तो आपको घर में से तो कुछ नहीं मिला हिस्सा?
3: नहीं मिला, उधर से तो कुछ नहीं मिला था, इंश्योरेंस था, मैं वहां से कुछ नहीं लेके आई।
2: अच्छा अच्छा, हाँ वो इंश्योरेंस था जो, उससे आपके बच्चे का भी गुजारा। हाँ। और आपका मतलब घर भी खरीद सके।
3: हाँ।
2: तो ये अच्छा किया कि कम से कम अपना घर होगा तो कोई निकालने वाला तो नहीं मिलेगा।
3: भाई भाई।
2: फिर आप आबू तलेटी कैसे आए?
3: जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी रही, तो मैंने बस ये ठान लिया, भगवान भी कहते हैं कि लास्ट में इधर ही आना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अभी से ही अपने जाने की तैयारी करूं। बीच बीच में इधर मैं माउंट आबू में आती रहती थी।
2: तो ये अच्छा लग गया आपको?
3: अच्छा लगता था, जब अपने बहन भाइयों का इतना प्यार, इतना स्नेह से मिलन देखते थे, बाबा का प्यार, तो फिर मैंने ठान लिया कि अब मैं यहाँ से अब रोड चली जाऊंगी।
2: बच्चा कितना बड़ा था और आप इधर आए?
3: अब तो बड़ा हो गया था बच्चा, काफी 17-18 साल का हो गया।
2: और आपको इधर आए हुए कितना समय हो गया?
3: 5-6 साल हो गए।
2: 5-6 साल हो गए, तो अच्छा लग रहा है यहाँ आपको?
3: हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान के प्यार में, सभी भाई बहनों के स्नेह में, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
2: जी, कहते हैं ना कि आपके 4 साल का बच्चा था और आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, बहुत जने दूसरी शादी कर लेते हैं, आपने कभी सोचा नहीं?
3: नहीं, लेकिन देखो परिस्थितियों को देखते हुए देख रहे थे, और फिर थोड़ा सा सत्संग की तरफ भी थे।
2: जी,
3: तो इसी कारण से फिर समझा कि ठीक है, जो भी हमारी किस्मत में था वो मिल गया है, अब भगवान में जुड़ गए तो फिर दूसरी तरफ नहीं देखा।
2: जी जी, बिल्कुल आपने सोचा ही नहीं, क्योंकि आप सत्संग में शुरू से जाते थे इसलिए।
3: जी,
2: चलिए बहुत अच्छा। और बच्चे को कहाँ तक पढ़ाया आपने?
3: बच्चे ने 10 की थी बस, उससे आ गया, इसका दिमाग नहीं चला, बाकी ये और काम, हर काम कर लेता, इससे कोई काम भी नहीं छूटा। शायद ऐसा महसूस होता जैसे पिछले जन्मों का कोई इंजीनियर है।
2: अच्छा।
3: इससे कोई काम नहीं छूटा, हर काम को कर लेता ये।
2: चलिए बहुत बढ़िया। और आपके ससुराल जाते हैं आप?
3: नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाती हूँ, ना मायके जाती ना ससुराल जाती।
2: नहीं बुलाते वो, या फिर आपने अपने मन से?
3: मैं जाती ही नहीं हूँ।
2: और बच्चा अभी यहाँ पे खुश है?
3: हाँ खुश है
2: जी। सिलाई काम अभी भी करते हैं आप?
3: नहीं अभी नहीं करती।
2: तो अभी आप क्या काम करते हैं?
3: अभी बस थोड़ा सा ये SLPS कंपनी से जुड़े हुए हैं, और उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हम अभी इसी में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागृत करते हैं।
2: अच्छा, तो ये आपने कहीं से ट्रेनिंग ली?
3: हाँ, ये ट्रेनिंग चलती है हमारी ऑनलाइन।
2: अच्छा, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर के ऐसे आप जुड़े हैं?
3: जी।
2: तो आपका काम अच्छा चल रहा है?
3: जी अच्छा चल रहा है।
2: और फिर आपके रेवाड़ी में घर, उसका क्या किया?
3: नहीं, उसको बेच के हमने इधर ही ले लिया था।
2: अच्छा, इधर खरीद लिया।
3: हाँ,
2: चलिए बहुत अच्छा है। और नीलम जी, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जो हमारी बहनें सुन रही है उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
3: देखो, यही कहना चाहते कि अब खुद ही हम करेंगे तभी हमें सुख मिलेगा, दूसरों के ऊपर जिएंगे तो दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है।
2: जी जी जी, तो आपके कहने का मतलब यह है कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए।
3: जी,
2: तो बहुत अच्छा संदेश दिया है नीलम जी ने कि आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। दूसरों पर डिपेंड रहेंगे तो दुखी होंगे और आत्मनिर्भर बन के रहेंगे तो सुखी होंगे। बहुत ही सही मैसेज आपने दिया है, क्योंकि आपने भी सिलाई के द्वारा अपने बच्चे की पालना की है और स्वयं का भी किया है। तो नीलम जी के हिम्मत को दाद देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, जो आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव शेयर किए सभी के साथ इसके लिए।
3: थैंक यू दीदी, थैंक यू।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में नीलम जी शर्मा हमारे साथ बने हुए थे। आपकी उम्र 50 वर्ष की, आप हरियाणा से थे, लेकिन अभी 6-7 वर्षों से आप आबू तलेटी में रहते हैं और आपके जीवन के अनुभव हम सभी ने सुने हैं कितने गहरे हैं। कम उम्र में आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और आपने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन सिलाई के द्वारा आपने 4 साल के बच्चे की परवरिश की, घर चलाया। उस समय आप किराए पर रहते थे, धीरे धीरे आपने घर भी खरीदा।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

शांति। आज है 30 सितंबर 2026 और हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में भी गीत बजा है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए, प्रीत बंधी है दुनिया से मर जाने के लिए। ऐसा महसूस होता है जैसे कल की मुरली का कंटिन्यूएशन है। कल बाबा ने महफिल और महफिल में क्या मिलता है उस बात को स्पष्ट किया था। आज की मुरली में बाबा कहते हैं गीत कितना वंडरफुल है और विचित्र भी है, प्रीत बनी है किसके लिए? तो कहा मरने के लिए। बाबा के किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मर करके उसी के पास जाना है। ऐसी कब किसके साथ प्रीत हुई है क्या? बाबा कहते हैं ऐसी कब किसके साथ प्रीत हुई है क्या जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे फिर कोई प्रीत रखेंगे। तो कितना वंडरफुल ये गीत का अर्थ है। बाबा कहते क्षमा से परवाने प्रीत रखकर फेरी पहनकर जल मरते हैं। जिसके साथ हम प्रीत रखें और मर जाए तो इसलिए मनुष्य डरते हैं। भले एक तरफ दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि भी करते हैं भगवान के पास जाने के लिए, तो भगवान के पास जाएंगे तो मर करके ही जाएंगे, ऐसे तो नहीं जा सकेंगे। तो वास्तव में बाबा कहते इस देह भान से मर जाओ, अर्थात इस पुरानी पतित देह से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर ये गीत का भावार्थ बताया है और बाबा ने यह भी कहा आगे चल करके ऐसे अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे और अच्छे अच्छे गीत बनाएंगे जो प्रैक्टिकल में बाबा का वचन सिद्ध हुआ है कि आज यज्ञ के अंदर कितने अच्छे अच्छे बाबा के गीत बनते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे इस देह भान से मर जाओ, अर्थात इस पुरानी पतित देह से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? उत्तर है, ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना, यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। ज्ञान से बाबा कहे सदगुणों से नेचुरल रूप से सजे सजाए रहना। जो ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते हैं उनका चेहरा खुशी में फूल की तरह खिला रहता है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर कोई देह अभिमान की आदत है जिससे ही सब विकार उत्पन्न होते हैं। देह अभिमान में है तो जरूर और विकार भी आ जाएंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए, प्रीत बंधी है दुनिया से मर जाने के लिए। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? मरने के लिए। किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। ऐसी कब किसके साथ प्रीत हुई है क्या? बाबा पूछते ऐसी कभी किसी के साथ प्रीत हुई है क्या जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे फिर कोई प्रीत रखेंगे। गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख फेरी पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाप के पास आते आते ये शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। यह तो जैसे बड़ा दुश्मन हो गया। हाँ, बाबा कहते हैं अगर जिसके पास जाए और मर जाना पड़े तो यह तो जैसे बड़ा दुश्मन हो गया। जिसके साथ हम प्रीत रखते और मर जाए इसलिए मनुष्य डरते हैं, भगवान से डरते हैं।
भले एक तरफ दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए, शरीर छोड़ते हैं तो मनुष्य कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान कितना नामे ग्रामी है, वह आते हैं तो सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते ही है इसलिए, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। क्या रास्ता बताते हैं नई दुनिया में जाने का? सिर्फ मुझे याद करो, मैं हूं हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन, मिल्कायत, मकान आदि मिलेगा। बच्चियों को वर्षा मिलना नहीं है भारत में, तो बच्चियों को वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे घर भेज देते हैं, गोया वो बारिश नहीं ठहरी। यह तो बाप है सब आत्माओं का बाप, इनके पास सबको आना है। किसलिए? मरना है, सबको आना है, मरना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। पुरानी दुनिया में तो बहुत है, नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य है तो दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते रहते हैं। बापू गांधी जिसको भारत का पिता समझते थे, वह भी कहते थे हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी है पतित पावन परमपिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेंगी, ये भूल है। सारी दुनिया परमपिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है। लिबरेटर कहते हैं किससे, किसे मुक्ति देना है? दुखों से। अच्छा, दुख देने वाला कौन है? बाप तो दुख दे न सके क्योंकि वो पतित पावन है। पावन दुनिया सुखधाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसे बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के हैं जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को समझना है, क्या समझना है? कि हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। हम स्टूडेंट है, ये भूलना नहीं चाहिए। हम स्टूडेंट है, बाबा के पास आए हैं तो अपने को आत्मा समझना है ताकि वर्षा मिले। बाबा कहे ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है। शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं, वह काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है। शिव बाबा आकर के कोई काठ की मुरली नहीं बजाते, लेकिन मुरली क्यों नाम दिया है? मुरली नाम इसीलिए दिया बाबा के महावाक्यों को, क्योंकि मुरली अर्थात जिसमें से मधुर ध्वनि निकलती है, मधुर स्वर निकलता है, तो इसीलिए बाबा के महावाक्य इतने मधुर है। जो सुनना चाहते थे लोग, और इसीलिए इतने सत्संगों में गए, इतनी कथाएं सुनने जाते थे कि कहीं तो हमें वो मधुर महावाक्य ईश्वर के सुनने के मिलेंगे। परंतु अफसोस कहां भी नहीं मिला, क्योंकि वो तो तब मिलता है जब परमात्मा कल्प के संगम युग पर इस दुनिया में आए और वो महावाक्य उच्चारण करे, तभी तो सुनने को मिलेगा। तो इसीलिए जिस तरह मुरली जब बजाते हैं तो मुरली की धुन इतनी मधुर होती है जिसमें खो जाता है इंसान, ठीक इसी तरह बाबा के मधुर महावाक्य इतने मधुर है जो सुनने के लिए आत्मा तरसती थी, और जब वो सुनने को मिलते हैं तो उसमें समा जाते हैं, खो जाते हैं, उस दिव्य प्यार का अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं शिव बाबा मधुबन में जब आते हैं तो मुरली बजाते हैं। वो काठ की मुरली की बात नहीं,
ये ज्ञान मुरली की बात है। तो बाबा कहते श्री कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, वो तो भक्ति मार्ग का है। तुम श्री कृष्ण के लिए मुरली नहीं कह सकते, वो काट की मुरली है, ये ज्ञान मुरली नहीं बजाते। मुरली शिव बाबा बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुमको कोई भक्ति मार्ग के गीत आदि नहीं गाने हैं। तुम्हें तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। बाप कहते मुझ अलफ को याद करो, शिव को कहते हैं बिंदी। व्यापारी लोग शिव माना बिंदी, तो व्यापारी लोग बिंदी लिखेंगे तो कहेंगे शिव, लगाओ शिव। एक बिंदी लिखे 10 हो जाएगा, फिर बिंदी लिखो तो 100। तुमको भी शिव बाबा को याद करना है हर घड़ी। उस बिंदु बाबा को याद करने से जैसे आत्मा की कमाई बढ़ती जाती है। जितना शिव को याद करते हो तो आधा कल्प के लिए बहुत शाहूकार बन जाते हो। वहां गरीब होते नहीं है, सब सुखी रहते हैं। स्वर्ग में गरीब कोई होते नहीं, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं। बाप की याद से विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। बिंदी लगाते जाओ, बिंदु बाप को याद करते जाओ और सच्ची कमाई बढ़ती जाएगी। यही साथ चलेगी, यही कमाई साथ चलेगी। मनुष्य सभी खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है। बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है प्यूरिटी होगी तब पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। जहां पवित्रता होगी वहां शांति और समृद्धि मिलेगी। तुम आत्मा पहले पवित्र थी, फिर अब पवित्र बनती हो। सन्यासियों को भी सेमी पवित्र कहेंगे। शरीर अपवित्रता से बना है, आत्मा पवित्र है तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वह कितना सुख पाते हैं। स्वर्ग में देवताएं फुल पवित्र होने कारण, शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होने कारण कितना सुख पाते हैं। थोड़ा सुख है फिर तो दुखी ही है, थोड़ा सुख है फिर तो दुखी है इस दुनिया में। वह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में हनुमान की पूजा करो तो उसका दीदार हो जाता है। चंडिका देवी का कितना मेला लगता है, उनका चित्र भी होगा। जिनका ध्यान करेंगे वह तो जरूर सामने आएगा ही, परंतु उससे क्या मिलेगा। अनेक प्रकार के मेले लगते हैं क्योंकि आमदनी तो होती है ना, ये सब उनका धंधा है। बाबा कहते हैं जहां आमदनी होती है ये सब उनका धंधा है। कहते धंधे सब में धूर, बिगर धंधे नर से नारायण बनाने के, यह धंधा कोई विरला करे। जहां किसी का जीवन बनता हो, ऐसी बातें जहां हो, तो वो सर्वश्रेष्ठ पुण्य का काम है। तो एक तरफ पुण्य की कमाई भी होती है और मनुष्य ऊंच भी उठता है। धंधा करो तो किसी का जीवन बने, वो नर से नारायण बनने की प्रेरणा प्राप्त करे, चरित्र श्रेष्ठ बने। ऐसा धंधा जो करता है तो उसमें कल्याण भी है, पुण्य भी, पुण्य की कमाई भी है। तो बहुत सुंदर बात बाबा ने यहां कही, बाप का बनकर सब कुछ दे सहित बाप को दे देना, क्योंकि तुम जानते हो हमको नया शरीर चाहिए। बाप कहते तुम कृष्णपुरी जा सकते हो, परंतु जब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको पावन बनाओ, यहाँ सब मनुष्य मात्र पुकारते हैं हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने। वहां जाना तो अच्छा है ना, मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति कहते किसको है,
ये नहीं जानते हैं। कर्म बिगर तो कोई रह नहीं सकते हैं। शांति तो है शांति धाम में, फिर ये शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए शांत रहते हैं, अशांति में मनुष्य को दुख होता है। इसलिए कहते शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम हमारा घर है। सतयुग में शांति सुख सब कुछ है, अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए।

तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते हैं। भक्ति करते ही है भगवान से मिलने के लिए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, सीढ़ी में देखो कितना अच्छा दिखाया है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन है, श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में ये कौन था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी गवाही देती है। बाबा कहते हैं जो अच्छी सेवा करते उनकी दिल भी गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जरूर तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही है, कोई डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। शिव बाबा को आत्मा कहती मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूं, परंतु तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं है। फिर बाबा क्या करेंगे, बहुत पाप किए हुए हैं, अब बाबा उनको क्या करेंगे। टीचर को कहेंगे हम कम पढ़ते हैं, टीचर क्या करेंगे, टीचर तो कोई कृपा नहीं करेंगे, या कृपा करने की तो बात ही नहीं है, करके एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे वह तो तुमको मना नहीं है। अनेक बार मुरली पढ़ो, एक्स्ट्रा टाइम जैसे बाबा कोचिंग देते हैं, प्रदर्शनी खाली पड़ी है बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे ये मंत्र याद करो, यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं। बाप को ये याद करना है जिससे वर्षा मिलता है। सतयुग में तो पारलौकिक बाप का वर्षा मिल जाता है, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाता है, तो बाप से अच्छी रीति से वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना, थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार टेस्ट करते तो संग का रंग झट लग जाता है, फिर उस आदत को छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। बहाना कितना करते हैं, आदत कोई नहीं डालनी चाहिए, ऐसी कोई गंदी आदत बाबा कहे नहीं डालनी चाहिए, छी छी आदतें मिटानी है। बाप कहते जीते जी देह का भान छोड़ो, मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र खाओ, पवित्र भोजन स्वीकार करो। अभी तुम बच्चों को फूल मुआफिक हर्षित रहना चाहिए। कन्या को पति मिलता है तो मुखड़ा खिल जाता है ना, अच्छे जेवर आदि कपड़े पहनती है तो चमक उठती है। अभी तुम तो ज्ञान के जेवर पहनते हो ना? कितना सुंदर बाबा आध्यात्मिक रीति से हमें कहते तुम्हें ज्ञान का जेवर पहनना, वहां स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। श्री कृष्ण का नाम ही है सुंदर, राजा रानी प्रिंस प्रिंसेस सब सुंदर होते हैं, वहां प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ना सके, उनको कोई इन आंखों से देख थोड़ी सकते हैं। हाँ साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई हूबहू चित्र बना थोड़ी सकेंगे। हाँ कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए और उसी समय बैठ बनाए, परंतु है मुश्किल। एक्यूरेट लक्ष्मी नारायण से कृष्ण के फीचर्स कोई बना ही नहीं सकते हैं। बाबा कहे हाँ अगर साक्षात्कार हो जाए और उसी समय बैठ बनाए, परंतु है मुश्किल, तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं, बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ये हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में होने से खुशी होंगी, विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते काम महाशत्रु है, द्रौपदी ने भी इसीलिए पुकारा है। बाप कहते तुम एक मेरे से ही सुनो और यही श्रीमत औरों को सुनाओ। फादर शोज सन, सन शोज फादर।
फादर कौन? शिव परमात्मा, शिव फादर। शिव और शालिग्राम का गायन है। शिव बाबा जो समझाते हैं इस पर फॉलो करो, फॉलो फादर। यह गायन है उनका, यह गायन उनका है। बाप कहते मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो, फॉलो करने से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरते हो, अब पारलौकिक बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते एक एक रत्न लाखों रुपए का है, एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है। बाप रोज समझाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चों पहले पहले सबको दो बाप का परिचय देना है। लौकिक बाप वर्षा देते हैं पतित बनने का, पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनने का। कितना फर्क है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो, विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। तुम्हारी मिशन है क्या? बाबा कहते तुम्हारी मिशन है पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने वाले। पारलौकिक बाप भी अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। प्रदर्शनी में यह भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए, पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो हाँ, बाबा कहते प्रदर्शनी में यह प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए, क्या पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे? लिखो। बाप ही गारंटी लेते हैं, तुम भी गारंटी ले सकते हो। तुम पतित बनते क्यों हो जो फिर पुकारते हो हे पतित पावन आओ? सारी बात है यही प्योरिटी पर। तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी रहनी चाहिए, हमको बाप स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कोई भी गंदी छीछी आदत नहीं डालनी चाहिए, नहीं डालनी है। जीते जी देह का भान छोड़ना है, फूल मुआफिक हर्षित रहना है। दूसरी पॉइंट, पारलौकिक बाप को फॉलो कर पावन बनना है, उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी और करानी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है, निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं वह सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी व 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करती, वही फरिश्ता कहलाते हैं। इसके लिए साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। आज का स्लोगन है, जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। आज का व्यक्त इशारा है, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते ब्राह्मण आत्माओं के पास ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन उनके प्रति 2 प्रकार से दाता बनो। पहला, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस आत्मा को मनसा द्वारा
अर्थात शुद्ध वृत्ति।